0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चली होंगी, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चली होंगी। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती, व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग, द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे 8 घंटे जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सेक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितने आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।

खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार। अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपनेपन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में। सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8 खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MBA छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूँ और आशा करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं लौकिक ज्ञान विस्फोट के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। तो आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज जो है संसार में अनेकानेक नए जो है नामों से नई विद्याओं के बारे में हम सुनते हैं, और पहले जो ज्ञान शाखाएं भी थी उनमें से भी हर एक का इतना विस्तार हो गया है कि अब वे स्वतंत्र रूप से तथा अलग अलग नाम से पढ़े जाने वाले ज्ञान अथवा विज्ञान हो गए हैं, और उनका जो है घेरा इतना बढ़ गया है कि उनका पूरी तरह अध्ययन करने के लिए मनुष्य को उन विषयों का विशेष बोध प्राप्त करना पड़ता है। अब हम अंतरिक्ष युग से गुजर रहे हैं। हाँ, तो देखते हैं कि आज हर एक विषय पर कई संस्थानों में एक ही समय पर शोध कार्य हो रहा है। कितने ही लोग नए नए विषयों पर अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। हर विषय पर इतनी पुस्तकें लिखी हुई है कि उनकी सूचियां बनाने पर भी काम नहीं चलता। ज्ञान के विश्वकोश डायरेक्टरिया जो है, लेखकों की नामावलियां इत्यादि तैयार की गई है, परंतु वे छपते छपते ही पुरानी हो जाती है, और इसी बीच नए आश्चर्यजनक आविष्कार अथवा दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी इतनी संख्या में छपते हैं कि जिसकी पहले कल्पना भी नहीं हो सकती थी। विश्व में शीघ्र ही एक के बाद दूसरे युग का पदार्पण हुआ। पहले आविष्कार युग, फिर मशीनी युग, फिर उसके बाद विज्ञान युग और तकनीकी युग, फिर अणु युग आया, और अब हम अंतरिक्ष युग से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार आज ज्ञान विज्ञान ऐसी स्थिति को पहुंच चुके हैं जिसे विश्व में आप देखो तो विज्ञ लोग जो हैं ज्ञान विज्ञान विस्फोट की स्थिति कहते हैं। औषधि विज्ञान को ही आप ले लीजिए। एक ही बीमारी की जांच करने के लिए खून, मल, थूक, फेफड़े इत्यादि की जांच करने वाले अलग अलग विशेषज्ञों के पास जाना पड़ता है। नित्य प्रति इतनी नई दवाइयां निकल जाती है कि एक सामान्य डॉक्टर के लिए क्या होता है उनके बारे में तुरंत जान पाना भी कठिन है। आंकड़े और ब्यौरे इतने दिए जाते हैं कि मनुष्य का दिमाग चक्कर खा जाता है। इतनी सूचनाएं कठिन हो जाती है कि इतनी सूचनाएं आती है कि इसकी इकट्ठी हो जाती है इतनी सूचनाएं कि आज कंप्यूटरों के बिना आज काम चलना कठिन हो गया है। छोटी कक्षा के बच्चों को लोहे के पेटी भरकर स्कूल में ले जानी पड़ती है, और उसे वे जो है अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से, कोमल हाथों से उठाते हैं। कभी एक हाथ में उठाते हैं, कभी दूसरे हाथ में। आप ही बताइए कि क्या अभी भी आणविक विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण विस्फोट और भ्रष्टाचार विस्फोट की तरह ज्ञान विज्ञान के विस्फोट की स्थिति नहीं आ पहुंची है क्या? इस पे हम विचार करते हैं और अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी स्मरण शक्ति की भी तो कोई सीमा होती है ना, तो यदि इस गति से अनुसंधान होते रहे तो विज्ञान जो है विज्ञान को इतना मतलब इतना हो जाएगा कि मनुष्य बचपन से लेकर और कुछ ना करके 30-40 वर्षों तक स्कूल कॉलेज में विद्या ही पढ़ता रहे तो उसका पाठ्यक्रम शायद ही पूरा होगा और शायद ही वह वैज्ञानिक कहलाने के का जो है वो अधिकारी हो सकेगा। नित्य नए गणित के तरीकों को कौन सीख सकेगा? इतिहास का जो ज्ञान है इतना अधिक हो जाएगा कि या तो पुराना इतिहास पढ़ाना बंद करना पड़ेगा और या केवल इतिहास ही का एकमात्र विषय पढ़ाया जा सकेगा। आखिर मनुष्य को स्मरण शक्ति जो है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति की भी तो कोई सीमा है। अतः जो लोग कहते हैं कि कलयुग अभी दूध मुहा बच्चा है और कि अभी यह 4,27,000 वर्ष और चलेगा, उनसे कोई पूछे कि क्या मनुष्य ईंटों की बजाय किताबों के घर फर्श और छत बनाकर रहेगा और क्या इससे पहले ही वह बावरा नहीं हो जाएगा? तो आप सोचो कि आज मनुष्य की जो स्थिति है वो क्या है। एक होता है प्रवेशार्थी विस्फोट, देखने के योग्य एक बात यह भी है कि आप देखो तो इसका योग्य जो एक इसकी बात जो है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ विद्यार्थियों की जो है संख्या भी तीव्र गति से बढ़ी है। एक दो पीढ़ी पहले इतनी संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर कार कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान विस्फोट के साथ साथ आज जो है प्रवेशार्थी विस्फोट की भी स्थिति आ पहुंची है। द्वितीय महायुद्ध के पहले कोई विरला ही व्यक्ति स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करता था। बहुत से लोग स्कूल के बाद ही शिक्षा समाप्त कर देते थे, परंतु अब तो ऐसे लोग की संख्या यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है जो विज्ञान तकनीक औषधि तथा अन्य प्रकार की स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब सोचने की बात है कि हर वर्ष तीव्र गति से बढ़ती हुई प्रवेशार्थी संख्या को प्रवेश कैसे मिल सकेगा? इतने अधिक तकनीकी या औषधि विज्ञान संबंधी कॉलेज इत्यादि कैसे खोले जा सकेंगे और पढ़ने के बाद उन लोगों को रोजगार कैसे मिल सकेगा? इसका भी विस्फोट होगा। इसका जो है इसका और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम हर वर्ष देखते हैं कि प्रवेशार्थियों की जो लाइन बढ़ती ही जाती है और कितनी ही जो है कितनों को ही प्रवेश तथा रोजगार न मिलने से युवा असंतुष्ट, तोड़फोड़, अनुशासनहीनता, मादक पदार्थों का प्रयोग तथा अपराध इत्यादि बढ़ते ही जाते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय, तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान के जो परिणाम है उसे हम क्या करते हैं। पहले कहा जाता था कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे समाज की जो समस्याएं हैं उसकी भी हल होगी, और मनुष्य को जो है मनुष्य का दूसरों से व्यवहार सुधरेगा तथा उसमें नम्रता, संतोष और सद्गुण आएंगे, लड़ाई झगड़ों तथा बुराइयों का अंत होगा। इसके ज्ञान को प्रकाश, सद्गुण, नैतिक, प्राकृतिक, मानसिक तथा सृजनात्मक शक्ति देने वाला माना जाता था, परंतु आज हम जो देख रहे हैं वह इसके विपरीत हो रहे हैं। आज मनुष्य में इच्छाएं, असंतोष, अशांति, अधैर्य, असहनशीलता और अनुशासनहीनता जो है बढ़ती जाती है, उद्दंडता भी बढ़ती जा रही है, और लड़ाई भी और उद्दंडता के साथ लड़ाई ये सब भी बढ़े हैं ही है। बल्कि विज्ञान तथा तकनीक ने तो लड़ाई के ऐसे नए अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार किया है जिससे वह स्वयं के अस्तित्व का भी मूल्यांकन कर देगा। आज सभी लोग कहने लगे हैं कि इस ज्ञान से संसार में उथल पुथल बढ़ी ही है, जीवन में कृत्रिमता जो है आई है, और मनुष्य और अधिक कुटिल तथा दम्भी बना है, और प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करके मनुष्य ने सारे संतुलन को बिगाड़ दिया है। उसने वायु, जल, खाने पीने की चीजें और जो भी है सभी को दूषित और जहरीला बना दिया है, और ये नई समस्याओं तथा मानसिक व्याधियों को जन्म दिया है। एक तरफ हम देखते हैं दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदने वाला है वो स्वयं खाई में गिरता है।

इस ज्ञान द्वारा यद्यपि मनुष्य ने एक कंप्यूटर की तरह कुछ तथ्य बुद्धि में धारण कर लिए हैं या विश्वकोश में ये जो एक दो खंड हैं, एक दो खंडों में जितनी सामग्री खोपड़ी में फूसती है, तथापि उसके लिए जीवन में वह भद्रता स्नेह शील शांति की स्थापना नहीं हुई है, न ही उसने सही मूल्य तथा दृष्टिकोण अपनाए हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा ज्ञान और विज्ञान स्वयं अपने लिए तथा जो है उपजाने वाले के लिए अभिशाप ही सिद्ध होगा। जिस ज्ञान से मनुष्य की आवेगों का जो संतुलन तथा शुद्धिकरण नहीं हुआ और जिससे मनुष्य की उलझने बढ़ी है और उसमें निराशा अतृप्ति वासना तथा भोग निपासा में वृद्धि हुई है, वह ज्ञान उसे अवश्य ले डूबेगा। आज जिस ज्ञान के आधार पर मनुष्य अपनी पंडिताई तथा तार्किकता का अभिमान करके अपने जीवन से विश्वास ईश्वर निष्ठा नैतिकता इत्यादि को खो बैठा है, वह ज्ञान उसे एक बारूद की ढेरों पर ले जाकर बिठाएगा जहां से उसका अस्तित्व सुरक्षित रहना संभव नहीं होगा। सच जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं खाई में गिरता है, जो दूसरों के लिए एटम बम बनाता है वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान ने भगवान से मुख मोड़ना सिखाकर पति पत्नी को तलाक देना, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना सिखाया, जिस विज्ञान ने ईश्वरीय प्रकाश के प्रति आंखें मूंद कर एटम के प्रकाश का साक्षात्कार कराया, जिस सभ्यता ने पारंपरिक आनंद को जिला चली देकर अफीम शराब तंबाकू तथा सेक्स की ओर मनुष्य का मुख मोड़ दिया, वह ज्ञान विज्ञान रूपी बम निश्चय ही फट पड़ेगा और अपने कर्ता के कर्मों का महाभीषण फल भी उसे देगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। तो आज हम देखते हैं एक ईश्वरीय ज्ञान का जो है अनोखी जो संधि का समय है ये। दूसरी ओर हमें यह भी समझना चाहिए कि आज जब भौतिक ज्ञान तथा विज्ञान अपनी अंतिम सीमा तक जा पहुंचा है, तब आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा तथा योग विज्ञान का सूर्य भी पूर्ण प्रकाशमान हो चुका है। असत्य की तुलना में ही सत्य और अधर्म की तुलना में ही धर्म को समझा जा सकता है। अतः आज जबकि भौतिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य देह अभिमान तथा नैतिक रात्रि में प्रवेश कर चुका है, जो उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय होना ही स्वाभाविक है, क्योंकि जो है घटा टोप रात्रि के बाद ही दिन की प्रकाश रश्मियां उजाले और जागृति का सवेरा लेकर प्रवेश शुरू करती है। यह बात हम अपने अनुभव के आधार पर संसार को बता रहे हैं कि एक ओर कलयुग के अंत के लिए विज्ञान अपने जो है विध्वंसक जो है आणविक अस्त्रों शस्त्रों के लिए बोलिए वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर ईश्वरीय ज्ञान आत्मिक परामात्मिक और उजाला लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है पदार्पण कर चुका है। दोनों की यह अनोखी संधि का समय है। एक का जो है पटाक्षेप और दूसरे के पट के अनावरण की एक जो है यह शुभ बेला है। हम जैसा कि हम देखते हैं अभी समाज की जो स्थिति है, तो आप थोड़ा सोचिए कि यदि हम इस बात पर अगर विचार ना करें तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो इस ज्ञान को जानना और समझना बहुत जरूरी है। हाँ, ईश्वरीय ज्ञान को लेना हमारे जीवन में एक उजाले की तरह है, तो इसे हम अवश्य धारण करें अपने जीवन में और अपने जीवन का जो है भाग्य को जो है यहाँ से भाग्य का उदय होगा। तो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाते रहिए, हंसते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।
1: प्यारे बाबा, जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया,

0: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
1: अपने आप को देखे एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
0: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

हकीकत के फासले को कम करते हैं, नई जानकारियों से नए अवसर खड़े करते हैं। सुनते रहिए पुनेरी आवाज़ 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में बात की थी रोल्स की। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक एक्टर के रूप में अपने आप को जरूर देखना चाहता है। तो आज मौका मिला है कि हम जिंदगी में किस तरह के रोल अदा करते हैं उन्हें देख पाए। जब अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर जो रोल मैं दिन भर में प्ले कर रहा हूँ उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूँ, थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिटैच करके देख पाते हैं, इट इज एक्चुअली लाइक एन एक्टर। हम वो हर रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड था कि इस रोल को मुझे ऐसे ही डिफाइन करना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या पिछली कड़ी अगर हमें देखें, वो हमें फ्रीडम देती है कि मैं हर रोल को, हर सीन को अपने हिसाब से अदा कर सकता हूँ। तो फिर कौन ज्यादा अच्छा एक्टर होगा जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसे प्ले करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ट्राई किया तो स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीजें हैं वो टेक ओवर कर जाती हैं। कैसे अपने स्क्रिप्ट लिखनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रभा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत है। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें कि हाउ इज दिस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि उसमें कहीं फन दिखता है, वो जिंदगी के नजदीक दिखती है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसे लगता है कि नहीं, समथिंग टू रियली यू नो थिंकिंग है या डूइंग में कुछ नहीं हो रहा होता।
1: सी वी फॉरगॉट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी मींस कि जो हम कर रहे हैं, हमारा हर कर्म, हमारा हर संबंध, हमारा हर इंटरेक्शन, उसमें मेरा अपनी चॉइस, मेरा अपना कंट्रोल, मेरा राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ फीलिंग, राइट वे ऑफ परसीविंग एंड देन राइट वे ऑफ एक्टिंग। हर कर्म करते हुए मेरी सही सोच क्या है, उसका रिजल्ट मेरी सही फीलिंग क्या होगी, मैं हर एक व्यक्ति को, हर परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखती हूँ, और फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरे व्यवहार में आएगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पावर दी है कि वो राइट थिंकिंग क्या है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं थिंकिंग करती हूं, पहले तो यही नहीं पता
0: था। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो तीन पोर्शन आपने बताए वो तो ऑटोमेटिक हो रहे थे, मैं सिर्फ एक्टिंग या मैं जो कर्म कर रहा था उस पर केंद्रित था,
1: क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ बाहर देखा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीइंग कि वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। यू नो, जैसे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट रेडी होकर मेरे हाथ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हुआ। तो आज दिन तक बॉडी कॉन्शियस या हम मटेरियलिस्टिक जिसको कहते, मतलब प्रोडक्ट को देखना, दिस पर्सनैलिटी आफ्टर इट इज रेडी, तो ये पर्सनालिटी कैसे बोलती है और ये पर्सनालिटी कैसे व्यवहार करती है, लेकिन ये पर्सनालिटी क्या सोचती है वो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ माय एवरी वर्ड एंड एक्शन, और मुझे ये नहीं पता था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, मेरा हर संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर कि इरिस्पेक्टिव परिस्थिति कैसी भी है, आई हैव द पावर टू क्रिएट विच एवर थॉट आई वॉन्ट। सो बेसिकली ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी हमें ऑटोमेटेड मोड से चॉइस के मोड में ले आता है कि आई चूज टू डू, टू थिंक, टू प्ले, टू एक्ट द वे आई वॉन्ट, एंड दिस इज फ्रीडम, दिस इज कम्प्लीट फ्रीडम। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी विल गिव मी फ्रीडम, दिस फ्रीडम विल गिव मी क्रिएटिविटी, कि एक बार मुझे समझ में आ गया मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, मैं हर रोल को कैसे भी प्ले कर सकती हूँ, दिस विल गिव मी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी विल एनहांस माई इफेक्टिवनेस। नाउ वेदर इट्स अ पेरेंट्स रोल, वेदर इट इज द रोल ऑफ अ बॉस, द रोल ऑफ अ वाइफ, एनी रोल, माई इफेक्टिवनेस इन प्लेइंग दैट रोल विल इंक्रीज, एंड जहां मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी माई सेटिस्फेक्शन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज।
0: और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहेगा कि आपको जो कुछ भी मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे पहले का प्रोसेस में समझ चुका हूँ, और ये मैं अपने कारण कर रहा हूँ।
1: That's why we call the program awakening. कि पहले हम अंदर तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे और बाहर काम कर रहे थे, तो मतलब ड्राइवर सोया हुआ था, गाड़ी चल रही थी अपने आप, बट देन इट वॉज जस्ट गोइंग wherever इट wanted. नाउ द ड्राइवर हैज द पावर टू टेक द कार where he wants to take the car and drive exactly the way he wants to drive, and then when the driver wakes up he can drive avoiding accidents. humne spirituality ko प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा था कि हाउ इज इट वर्किंग. हमें लगा स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, विच इज येस, बट परमात्मा को याद करके फिर उससे क्या करना, उस शक्ति को लेकर जीवन के हर रोल में प्ले करते हुए उसको कैसे यूज करना. सो आई थॉट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना, तो वो तब करेंगे जब सारे कामों से बाकी फ्री हो जाएंगे.
0: 70 साल में आप जाओ और तब करो.
1: सो इसीलिए द फर्स्ट कॉमन आंसर दैट कम्स इज आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ सेपरेट थिंग. तो जहां की मेरे आज अभी की जो जिम्मेवारियां वो ही नहीं पूरी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक अलग पहलू के लिए टाइम निकालना इट इज चैलेंजिंग. वी नीड टू हैव फन, बट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग फन इनसाइड, वी वर लुकिंग फॉर फन आउटसाइड.
0: हमने इतना खेला बाहर, इतना खेला और समझ में आया नहीं कि हम मतलब उसको हम एंजॉय ही नहीं कर पाए बिल्कुल.
1: लेकिन हम फिर अगेन वी वर लुकिंग फॉर फन इन सिचुएशंस. सी अगेन मटेरियलिस्टिक मींस आप सब कुछ बाहर सिचुएशंस में ढूंढते हो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे आई विल हैव फन, मैं क्या ऐसा खाऊं, मैं क्या ऐसा पहनूं, मैं क्या ऐसा यू नो लोगों से मिलूं, मैं क्या करूं जिससे आई विल हैव फन. बिकॉज I want to have fun, I want to have joy, I want to enjoy life. But then we were looking for it in physical things because we thought I am the body. Just then samajh mein aaya ke who wants to have fun? I want to have fun. I, not body doesn't want to have fun kyunki iski to koi feeling hi nahi hai, isko nahi aati. I want to have fun. Now where do I have fun?
0: In fact, yes, I just go back to that jab hame ye samajh mein aaya tha ki responsibility sabse pehle kiski hai, meri, you know, like the being. और उसकी फिर कोर वैल्यूज क्या है और तब पर्पस ऑफ लाइफ जो है इट एक्चुअली नाउ स्टेज यू नो.
1: सो स्पिरिचुअलिटी आंसर दिस फंडामेंटल क्वेश्चन कि मैं कौन हूँ, और मैं कौन हूँ जब शरीर से हटकर आत्मा पर आंसर आया तो सब कुछ चेंज होने लग गया ना. जस्ट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग चेंज एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड. आई वॉज डूइंग एवरीथिंग, पहले भी हम सब कुछ कर रहे थे, बट ये ना जानकर कि कौन है वो जो यू नो चाहता है अच्छा फील करना, एक्सपीरियंस करना, आई डिडंट नो. सो सब कुछ करते हुए भी आई वॉज नॉट रियली एंजॉयिंग, एंड फिर वो जीवन कट रहे है वाला एक्सपीरियंस था कि बीत रहा है, हर एक दिन गुजर रहा है. अगेन देयर वॉज नो फन. सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सीरियस, स्पिरिचुअलिटी इज एक्साइटिंग. आप एक दिन को ही देख लो ना, अगर हर दिन आप इस अवेयरनेस से हम चलेंगे कि आई एम गोइंग टू चूज माई रोल, इट्स एक्साइटिंग, आई विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीन. लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, यू नो यू आर गोइंग टू कंट्रोल माई सीन, यू आर गोइंग टू लुक कंट्रोल माई डायलॉग, वाई शुड आई लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीन? Then I don't look forward to the next scene, क्योंकि मेरा जो एक्सपीरियंस है वो ये कि परिस्थितियां और लोग मुझे ऐसे कंट्रोल करके चल रहे हैं और मैं सब चीज के अंदर जैसे फंसी हुई हूँ और बस उन्हीं की वजह से मैं जैसा सोच रही हूँ, बोल रही हूँ और व्यवहार कर रही हूँ, that's not fun at all.
0: लेकिन अब क्या आ रहा है कि very true, अगला पल मेरा क्या होगा, अगला सीन क्या होगा, उसके बारे में अगर मैं अवेयर भी हूँ, अगला रोल मेरा आएगा, पर मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा. वो जो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स जो है वो मंजी हुई नहीं है अभी उतनी, क्योंकि वो काफी टाइम से उस पर काम नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा यू नो अभी इमर्ज नहीं हो पाया.
1: लाइक व्हाट वी सॉ लास्ट टाइम वाज के हम पोजीशन को पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं, तो एक्टर कॉन्शियस नहीं रहते. एक्टर कॉन्शियस मीन्स सोल कॉन्शियस, लेकिन हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं. और दूसरा, हम अपने रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार बहुत अग्रेसिव डिफेंसिव हो जाता है कि मेरे रोल को कोई कुछ ना कहे, मेरे रोल को कोई यू नो इनसिक्योरिटी ना हो, आई एम एबल टू मेंटेन माय रोल. तो इसलिए भी हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाते कि वो जैसे चल रहा है ये ऐसे ही ठीक है, आई डोंट वांट एनी चेंज इन दिस. एंड तीसरा, जैसे आपने कहा था कि सम पीपल से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे तो बस ऐसा ही करना आता है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना हो गया. क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव बहुत थोड़े लोग होते हैं, यू नो वी फील, बट एक्चुअली एवरीवन इज क्रिएटिव, ईच वन ऑफ अस इज सो क्रिएटिव. लेकिन इट्स जस्ट दैट डिपेंड्स कि कौन अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है और कौन उसको डोमिनेंट रख रहा है. क्योंकि क्रिएट करना, एक्ट करना मतलब क्या, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्शंस. एवरी थॉट एंड एक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग, आई एम द क्रिएटर, इसको ही तो एक्ट बोलेंगे ना, क्रिएटर ऑफ द एक्शन. तो एक्शन कौन क्रिएट कर रहा है सारा दिन, हम क्रिएट कर
0: रहे हैं। मैं पानी का ग्लास भी उठा रही हूँ, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, ये एक्शन है जिन्हें मैं क्रिएट कर रही हूँ।
1: जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं एक्शन है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो हु इज डूइंग इट? तो हाउ कैन आई से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट? लेकिन जब हम उस अवेयरनेस से चलेंगे, हमें पता चलेगा कि रोल मीन्स व्हाट। रोल मीन्स अ सेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस, कैसे सोचना और कैसे उसको व्यवहार में लाना, दैट इज माई रोल। एंड आई कैन लर्न हाउ टू डू दैट। आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग। आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ बिहेविंग। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, एक्चुअली मतलब मैं चेंज होना नहीं चाहती।
0: मैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अब उस पर भी कोई काम करे। अभी तक तो मेरे पास इतने सारे काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे पास इतनी बड़ी डेडलाइन है, मुझे फिर आगे चल के जो है अपने हॉलीडे को भी पूरा प्लान करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो अब मैं इस पर कैसे काम कर सकती?
1: लेकिन ये हमने देखा कि इस पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको सिर्फ इस अवेयरनेस से करना है, लेट मी डू इट डिफरेंटली, लेट मी डू इट द वे इट विल गिव मी हैप्पीनेस, लेट मी डू इट द वे इट विल गिव मी सैटिस्फैक्शन, बजाय कि एक मोनोटोनस तरह से चलने के लिए। इसको तुरंत अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना ये कहकर के मैं नहीं कर सकता। सी अगेन अ नेगेटिव थॉट।
0: इन फैक्ट लेट अस ट्राई।
1: Yes.
0: इसमें कुछ करना थोड़ा है, कर तो हम वही सारी चीजें रहे हैं।
1: Absolutely.
0: लेकिन उसको हम मतलब थोड़ा सा एडवेंचरस तो हमें होना चाहिए।
1: एडवेंचरस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि एडवेंचर हमेशा अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है। और दूसरी एक चीज ये भी है कि हम डरते भी हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ बीइंग क्रिएटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सोचा ये जीवन जो है ना एक कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन में हार और जीत की कॉन्शियसनेस सारी लगी हुई है कि somebody will win, somebody will lose. आई डोंट want to lose. Definitely. I always want to be a winner. And so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges, yes. Situations, yes. Suffering, no.
0: No, yes.
1: That's the point. So basically, like you say, लोग सोच रहे हैं कि आप suffer कर रहे हैं. Suffering मतलब अंदर की फीलिंग है और वो हमें ही पता होता है। कई बार लोग हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे बेचारे आप, आपके सामने कितने दुख आए। हमारे सामने परिस्थिति आई, आप उसको दुख की तरह परसीव कर रहे हैं। हो सकता है आई एम नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन इनसाइड। एंड कई लोगों के लिए हमें लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से प्रोबेबली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो ये हर एक सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है। इसमें वी डोंट नीड एनीवन एल्सेस यू नो ओपिनियन, बिकॉज ओनली आई नो। सो इफ आई नो दैट आई एम नॉट सफरिंग, देन इवन इफ अदर पीपल से इट डजंट
0: नो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टर शिवानी ये भी एक बिलीव सिस्टम आता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ या कोई और इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इसमें तो दुख होगा ही।
1: तो इट्स अ कंडीशन्ड बिलीफ ना, क्रिएटिविटी नहीं है। अगेन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो कंडीशन्ड बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे कि ऐसा होगा ही। लेट्स से फॉर एग्जांपल मी, आई नो मी एज अ पर्सनालिटी, कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ अच्छी तरह से एंड वो मुझसे वापस ठीक से बात नहीं कर रहे, या वो बात ही नहीं कर रहे हैं, यू नो दे हैव व्हाटएवर इशू और व्हाटएवर एनर्जी फ्लोइंग इन बिटवीन, तो वो बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर एक तरफ एक बार बात किया ठीक से, फिर भी नहीं बात कर रहे। दो बार किया, अभी भी नहीं बात कर रहे। ना इफ आई लुक एट माई सेल्फ एज द ओल्ड पर्सनैलिटी, मैं एक बार आपसे करूंगी, दो बार करूंगी, तीसरी बार आई विल से ओके यू डोंट वांट टू टॉक टू मी, देन आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इट्स फिनिश्ड, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। वैसे भी मुझे आपसे क्या चाहिए, यू नो इट्स लाइक दैट, आई डोंट केयर फॉर, आपको बात नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। ना आई विल वर्क कि ठीक है वो बात नहीं कर रहे, Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried, okay, I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not upar se. This is fundamental. See, every time hum is program pe jo bhi discuss kar rahe hain, har ek jo usko practice kar raha hai, usko ye dhyan rakhna padega, it has to be internally.
0: Thought se shuru hoga.
1: Bahar se nahi kijiye. Kyunki majority time jo hum keh rahe hain, hum kar rahe hain, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अंदर से नहीं कर रहे। अगर आप थॉट और फीलिंग से करेंगे तो यू विल एंजॉय एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है, एक बार दो बार आई कैन गो ऑन टॉकिंग 10 times, 20 times, 100 times to you, because I feel like talking. And every time आप मेरे से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा फील करके आपसे फिर भी बात कर रही हूँ. इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ विक्ट्री ओवर माई सेल्फ, नथिंग टू डू विद यू. आप जैसे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं, नो प्रॉब्लम. एंड उस एंगल से नहीं बात कर रहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज. पहले जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो बहुत भाई बहने ये लगते हैं, मैंने दो बार बात की, मैंने चार बार बात की, aren't they supposed to now change? No, now we're not waiting for anyone. क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ एक के रोल पर फोकस करना है. अच्छा, 50 बार बात की, वो अभी भी नहीं बात कर रहे, हाउ डू आई वॉन्ट टू प्ले माई रोल? नो, आई स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू नाइसली, स्टिल कंटिन्यू. एंड जिस तरह से हम फिर इस क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, हम खुद हैरान होते हैं
0: और उसमें फिर हमारा हर्ट नहीं आ रहा ना,
1: हर्ट होता है,
0: मेरा डिसीजन, मेरी चॉइस,
1: मुझे अच्छा लगता है करके, आई एंजॉय डूइंग इट. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. हम अपने आप को देखते हैं कि अच्छा, पहले इसी परिस्थिति में हम इस तरह से बिहेव करते, टुडे आई एम डिफरेंट, विच वन मेक्स मी फील बेटर. तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा. कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज इरिटेशन है ही है, हर रोज आर्ग्यूमेंट है.

0: यू नो स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन आजकल कई बार वी डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे बिकॉज समटाइम्स आर रिस्पॉन्सेज हैव बिकम वेरी अनप्रडिक्टेबल आजकल. लेकिन वो जो यू नो अनप्रडिक्टेबिलिटी है वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रियक्ट करने लग गए
1: रिएक्शंस इतने
0: हैं.
1: स्ट्रांग होने लग गए
0: यू नो
1: हैं.
0: बच्चे हमारे जो ठीक थे सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रडिक्टेबिलिटी आ रही है. सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेस फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेस
1: फिक्स
0: फिक्स्ड थे आपके. लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हर एक के साथ जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है. तो समवेयर आई कैन नॉट फिक्स माई रिस्पॉन्सेज, आई विल हैव टू बी रेडी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं. हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द बेस्ट वे. कई लोगों के साथ ऑफिसेज में स्पेशली पता ही नहीं चलता सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, कल तक तो ठीक थे आज क्या हो गया. फिर क्या होता, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे. सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है, मेरे से नाराज है,
1: हाँ, मुझसे
0: मैंने
1: मुझसे
0: कुछ
1: रूठ
0: कहा.
1: क्यों हो गए हैं, मेरे साथ, मेरे इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम आएगी, किसी और ने तो नहीं कहा.
0: एग्जैक्टली सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया और अब मैं क्या करूं जिससे आप अपना रोल चेंज
1: ठीक
0: करें.
1: है.
0: दैट्स इट. व्हाई नॉट कि ठीक है आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, व्हाई कैन आई जस्ट नॉट कंटिन्यू. इज इट नेसेसरी कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूं. नो, आई हैव टू बी क्रिएटिव विद माई रोल एंड कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी और कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी जरूर जागृत करेगी. दैट इज डेफिनेट. सो लेट्स बी कॉन्शियस, अवेयर. अवेयरनेस जहां आई कि हर पल अवेयरनेस ऑफ हाउ आई एम गोइंग टू क्रिएट माई रोल. अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे कैसे कैसे करेंगे, इज इट वेरी डिफिकल्ट. इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहां कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था या कहाँ हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी, जस्ट गो एंड बी क्रिएटिव एंड यू नो जस्ट डू इट अ डिफरेंट वे टुडे.
1: एंड इनफैक्ट यू नो वो चेंज होता है या नहीं होता, उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती हैं नहीं
0: डोंट
1: पहुंचती,
0: वेट फॉर दैट
1: आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो हैं वो आपको बहुत खुशी दे देंगे.
0: बिकॉज हमने खुद को ही खुशी देनी है. दैट्स व्हाट वी सेड, हर चीज जो हम करेंगे इट मेक्स मी फील गुड. अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके
1: इट विल मेक
0: देन
1: मी
0: आई
1: फील
0: विल फील गुड. बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आप करो या नहीं करो, अगर मैं आपको अच्छी तरह से विश करती हूँ आई फील गुड. दैट्स ऑल. अब मैं हर स्टेप पे हर एक को मिलती जाऊं, हर सीन में क्रॉस करती जाऊं और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊं, फील गुड फैक्टर
1: मेरा है.
0: मेरा.
1: यू नो आई फील
0: हाउ टू
1: सो
0: फील
1: लाइट
0: गुड.
1: एक्चुअली.
0: यस, पहले आपको देख देख कर आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहाँ बहुत भारी कर लिया था, इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, यू नो हर चीज में भारी. अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है. अ न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम, दिस विल मेक मी फील वेरी लाइट एंड ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और क्रिएटिविटी मुझे एक मोटिवेशन देगी सारा दिन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी, क्योंकि जहां अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है.
1: मेरे अपने हाथ.
0: क्विकली गो चेंज, प्ले द रोल अ डिफरेंट वे. दूरी आई क्योंकि हम इतने पर्टिकुलर टाइम से उस रोल को इस तरह से प्ले कर रहे थे. अगर लग रहा है दूरी आ रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू नो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो जस्ट गो एंड प्ले द रोल अ डिफरेंट वे.
1: बट हम तो बेसिकली क्या होता है, कई लेवल्स पे पहुंच के हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते, क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है उनसे, हमें मुझे मिल के, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था,
0: उनसे नहीं मिल रहा है
1: पर
0: ना.
1: हाँ, बट बेसिकली ये मुझे एम्पावर कर रहा है.
0: एब्सोल्युटली. तो इसको आई थिंक अगर हम आज के आज एक्सपेरिमेंट करके देखें.

0: इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टूगेदर.
1: एंड इफ इज गोइंग टू बी विद मी, जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही.
0: एब्सोल्युटली.
1: तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊं?
0: क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं, क्योंकि वो सारी किसके हाथ में है? सारी अपने हाथ में है, तो उसको करते जाओ. एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल कुछ एक बातों का हमें ध्यान देना है. सबसे पहला है हमारा दृष्टिकोण. माय परसेप्शन हैज टू बी वेरी राइट, कि मेरा जीवन के प्रति क्या परसेप्शन है.
1: लोगों को छोड़ो, स्थितियों को छोड़ो, अब लाइफ के प्रति,
0: लाइफ के प्रति मेरा क्या परसेप्शन है. एंड इट हैज टू बी अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, इसमें मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ. रोल प्ले कर रहा हूँ इज वेरी इम्पोर्टेंट. एंड एवरी टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ इट्स जस्ट अ रोल. उसके अंदर इतना ना अटक जाए कि
1: बस वहीं रुक जाए.
0: इट्स जस्ट अ रोल. एंड जब मुझे याद रहेगा दिस इज जस्ट अ रोल, दिस इज जस्ट अ सीन, हर सीन जो गया इट्स जस्ट अ सीन. नो वन सीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर सीन. एवरी सीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ सीन. एंड आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम एन एक्टर. जब मुझे ये याद रहता है, ये परसेप्शन रहती है कि आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल, मुझे ये भी याद रहता है आई कैन क्रिएट इट द वे आई वॉन्ट. मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुझे एक पर्टिकुलर तरह से नहीं प्ले करना. मुझे ये भी याद रहता है कि आई विल नॉट स्विम विद द करंट, मैं फ्लो नहीं हो जाऊंगी. आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ जहां चाहिए, क्योंकि इट्स जस्ट अ सीन. और फिर मुझे ये याद रहेगा कि फाइनली ये सीन भी खत्म हो जाएगा. चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज, इट्स जस्ट अ सीन विच विल फेड अवे. एंड आई ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर दिस रोल विल ऑल्सो वन डे फेड अवे. द ओनली वन हु रिमेन्स
1: मी
0: इज द एक्टर. तो वो राइट दृष्टिकोण से मुझे इस जीवन की यात्रा में चलना पड़ेगा कि ये रोल भी आज है, कल हो सकता है नहीं है. द ओनली थिंग इटर्नल इज आई द एक्टर. तो जब सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं, एक्टर का ध्यान दे. एक्टर को भूल के रोल के कॉन्शियसनेस में अगर इतने फिट हो जाते हैं, तो ये परसेप्शन अगर रहता है इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स जस्ट अ रोल.
1: एंड आई हैव अनदर चॉइस. यू नो लाइक अगर ठीक है इस सीन में मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया फिलहाल, आई हैव अनदर ऑप्शन. अगला सीन जो है उसमें आई कैन डू माय बेस्ट,
0: आई कैन डू. सो इट गिव्स मी दैट फ्लेक्सिबिलिटी. और उससे क्या होगा, जब यहाँ इस तरह से हम जीवन को देखेंगे तो हम बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. यू नो जैसे हम प्ले करते थे तो उसमें कितना मजा आता था, जीवन में क्यों नहीं वो मजा आ रहा?
1: बिल्कुल. हम थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं, कितने कितने घंटों हम बैठ पाते हैं, क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं
0: इट्स वेरी
1: टाइम रुक जाता है.
0: एब्सोल्युटली, इट्स वेरी एंजॉयबल. तो वो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को जीवन की यात्रा में ले आओ. दिस इज ऑल अ ड्रामा, एवरीवन इज एन एक्टर, वी आर ओनली प्लेइंग रोल्स. रोल्स में इतने ना फंस जाएं, क्योंकि एक सेकेंड एंड ये रोल खत्म हो जाएगा, एक मिनट लगेगा एंड अ रोल कैन फिनिश. उस रोल में इतने नहीं अटैच्ड हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए, तो वो एंजॉय नहीं करेगा. तो रोल प्ले करेंगे क्रिएटिवली, बहुत प्लेफुल हो जाएंगे. प्लेफुल होंगे ना तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे, it will become very, very easy. And creativity ki jo basic energy hoti hai, wo hai love, pyar. So when I'm creative continuously, love as my quality will just flow naturally. You know, aap kisi bhi artist ko dekho, love ki energy hai, to unka jo wo art hai, wo kitne उस तरह के रूप से निकल कर आता है. तो मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप. सो व्हेन आई एम यूजिंग माय क्रिएटिविटी आई विल नॉट हैव टू फोर्सफुली बी यू नो क्रिएट लव. प्यार स्नेह मेरा फ्लो करेगा,
1: सारी हैप्पीनेस फ्लो करने लगती है जब भी हम किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में होते हैं. जब राइटर लिख रहा होता है, जब पोएट पोएम लिख रहा होता है, वो बिल्कुल कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद में है, वो कहते हैं खुद. और जब वो पेंटर कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है, तो हमारे पास तो क्रिएट करने को हर पल है.
0: इट्स लाइक अ कैनवस, या उस पे कुछ भी क्रिएट
1: जीवन में है. तो अब में से हम में से हर कोई जो कह रहा था कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है, आई एम नॉट अ राइटर, आई एम नॉट अ पेंटर, बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग, यू नो, हु कैन एक्चुअली क्रिएट ईच मोमेंट,
0: एंड देन इट विल बिकम लॉट ऑफ फन. लेकिन इसको करके देखना है. लेट्स नॉट जस्ट कीप इट हियर, वी विल हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड देन सी इफ द रिजल्ट वर्क्स फॉर अस.
1: वंडरफुल, थैंक यू सो मच सचिन.
0: ओम शांति.
1: कोई सवाल, कोई बात, कोई सजेशन अगर आपके पास है, आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं, तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं। ये मंच आपका है, इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं। हमारे फोन नंबर है 0999-344-555, 0999-344-666, 0987-366-555, 0999-744-555। हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@bkmail.org। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही। रोज को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं उसका अनुभव जरूर ले। आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे। ओम शांति।
2: ब्रह्मा कुमारी के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निःशुल्क सिखाया जाता है। ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है। भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं। राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें।

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM। आनंदी रहा आणि आनंद लुटा।
1: शिवाजी की तलवार है, लावणी बेमिसाल है, टेक्नोलॉजी के साथ संस्कार है। मराठी करती स्वागत हर भाषा का, यहाँ भूमि अपनाती हर त्योहार है। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शिवम सरवसु, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को तलाशने का, खुद को पहचानने का सफर जो हम तय करते आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे सामने बातें ऐसी आई हैं जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो बहुत नेचुरल है, सहज है। जिनमें एक सबसे बड़ी बात जो थी वो ये कि तनाव जो है, टेंशन है, वो बहुत नेचुरल है, एंगर बहुत नेचुरल है, एंग्जाइटी बहुत नेचुरल है। लेकिन हमने ये जाना कि नहीं, ये नेचुरल नहीं है, असहज है, और किसी तरह से भी कुछ भी करके हमें इसे नहीं अपनी जिंदगी में शामिल करना है। एक और मुद्दा जिस पर हम सोचते थे, जिसे मानते थे कि भाई हैप्पीनेस जो है वो कहीं हमें बाहर से मिलेगी, ये रियलाइज हुआ, ये सेल्फ रियलाइजेशन कि नो, हैप्पीनेस इज विद इन अस, हमारे ही अंदर है वो सुख, वो शांति, वो खुशी। जान तो लिया लेकिन ये सफर काफी मुश्किल है, कई पड़ाव और अभी तय करने हैं, क्योंकि जिन बातों को लेकर हम अभी तक चलते आ रहे हैं, तनाव है जिंदगी में, एंग्जाइटी है, उससे कहीं ना कहीं हमारी जिंदगी में डिप्रेशन भी आता जा रहा है। क्या है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन मैं खुद ठीक कर सकती हूँ या फिर मुझे इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए? क्यों होता है डिप्रेशन? क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? यही सारी बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे, और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से आए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं, और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी ना किसी वक्त पर जिंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है?
2: बीमारी तो जरूर है, जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें, या तो कहे वो शुरू कहां से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहां से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। नहीं, जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे, तो वो वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा।
0: बहुत अच्छी आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है, वही हम चाहते थे। तुझे क्या चाहिए जिंदगी वाली बात आ जाती है। सिस्टर शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी?
1: अनुभव हर वक्त करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताया वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना, और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतजार करना है कि ऐसा होगा। बिकॉज जनरली अगर अपने जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी, और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर हॉलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंट्री एक्साइटमेंट जेनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी। और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन टेंशन, फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट यू नो दैट पिट हैज गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है, लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू यू नो अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे, लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़े से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को।
0: डेफिनेटली दिस इज आवर इंटरनल जर्नी, यू नो, जो हम अंदर अपने सफर को तय करते हैं। डॉक्टर गिरीश, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता। वो जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन की, जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहाँ बात की है, वो अगर हम अपनी जिंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती है?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे राजयोग के अनुभव से, साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरापी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि भी स्टेजेस क्या है लोगों की। जैसे कि सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे हैं। नो रियली देयर इज अ स्पार्कल इन लाइफ, नो एट एवरी डे, मे बी नो एवरी आवर यू फील हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज रेयर। शायद नहीं 1 करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, बट दैट्स अ रियल स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज यू आर हैप्पी, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है, वह भी रेयर है, वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे
0: हैं।
2: थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सब सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट नो एवरी आवर यू मे नॉट बी हैप्पी। फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, काम काज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है। यहाँ पर वो स्टेज कहेंगे कि भी शुरुआत हुई डिप्रेशन की, कि यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस। उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, कि भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में जो। उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था, भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है,
0: लेकिन
2: फिर भी होता है कि भी चलो नहीं हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छा है। कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले ले तो
1: मुक्ति अच्छा, मिल जाए मुझे
2: तो अच्छा है, तो ये फिर स्टेज है। उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, कि भी लगता है कि भाई नहीं
0: एवरीथिंग फिनिश्ड,
2: हाँ, या तो आप ढूंढ रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना, लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, है ना, प्लान भी बनाने लगते हैं। और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड,
0: कर ही लेते हैं,
2: या तो भी काम काज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को, ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है। That is a really, you are deep down in depression if that stage comes.
0: Good. So like, ये एक पूरे stages को हमारे सामने बहुत clarity से आप लेकर आए हैं, तो वो stage पर आते हैं जहाँ हम पकड़ सकते हैं, you know, like,
2: या तो उससे भी पहले मैं कहूँगा सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी स्टेज बने कि जिसमें स्पार्क इन लाइफ है, you are really feeling happiness at every hour, every moment of your life. और वो लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे। अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी थोड़े गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने।
0: बिल्कुल, हम बहुत अच्छे आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली। क्या पा सकते हैं हम?
1: आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छी पॉइंट निकली, बिलीफ सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीफ सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा, ऐसा तो जीवन, मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है, ये तो पॉसिबल ही नहीं है। जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना, यहाँ तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहे और बहुत समय खुश रहे तो कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी एक्सपेक्ट, यू नो, एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा, दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी।
0: ज्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा,
1: सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है, अभी जैसे द यू नो दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम। लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहां हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी। अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट, तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा एक टारगेट रख दे कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा, दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट। ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता। अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे बिलीफ, लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम।
2: शिवानी बेन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया, इट्स अ डीपर पॉइंट कि भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी सुख चला, एक महीने तक सुख चला तो अभी दुख आना ही चाहिए। इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा और सोचता है तो होगा,
0: सोचता है पता नहीं कौन सा दुख आएगा और क्या होगा। लेकिन डॉक्टर साहब आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं पहली चीज हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ एक और दिन, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, उफ फिर ये सारा कुछ, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है? इज इट अ सिम्पटम ऑफ डिप्रेशन?
2: इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, लेकिन इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे। इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते भले कैसा भी है समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो, और 1 मिनट सोने दो, फिर उठते हैं तो जोर से उठ, ऐसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो अच्छे से, सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, भी टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो,
0: लेट इट सीक एक्चुअली अंदर जाने देने,
2: सेव इट्स अ गुड डे टुडे। अभी सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना तब देखना, वातावरण भी चेंज होने लगे, एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है वो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली हो जाएगी।
0: लेकिन डॉक्टर साहब और सिस्टर शिवानी बात वही आ जाती है कि एक सच्चाई के रूप में तो आ चुका है ये अवेकनिंग विल हैपन इनफैक्ट, एंड इट्स अ लॉन्ग प्रोसेस, इट्स अ होल वे ऑफ लाइफ, यू नो व्हेन वी टॉक अबाउट इनफैक्ट सच अ इंटरेस्टिंग थिंग कि जब हम कहते हैं कि मेडिटेशन करना, तो अब ये रियलाइजेशन हो रहा है तो मेडिटेशन तो इज पार्ट ऑफ इज लाइफ, यू नो कि आप जिंदगी जी कैसे रहे हैं वो मेडिटेशन हो जाती है। तो हम जहां तक आ चुके हैं डिप्रेशन एक सच्चाई के रूप में हमारे सामने है, उससे एक तो अवेयर कैसे होना है कि मैं डिप्रेस्ड हूं, क्योंकि अगर जब तक मुझे पता नहीं चलेगा कि मैं डिप्रेस्ड हूं तब तक उसका इलाज नहीं तलाशूंगा मैं, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूं?
2: कनुप्रिया जी आपके प्रश्न में उत्तर बहुत अच्छा है, आपने कहा अवेयरनेस, है ना, जो अवेयरनेस से पावरफुल शब्द है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है, अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहां पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया, बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूँ लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है।
0: कैन वी गो बैक सिस्टर शिवानी, डॉक्टर साहब जैसा आप कह रहे हैं,
1: आई एक्चुअली जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग, थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुन आते हैं, जैसे कहते हैं आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते, दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट इन दैट सेम स्टेट ऑफ माइंड विच आई यूज्ड टू बी अ कपल ऑफ इयर्स बैक, एंड देन ही सेड व्हाई, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो इस तरह से जो अवेयरनेस अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर बिहेवियरल पैटर्न में
0: नहीं, तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहां से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया, तो क्या मैं अपने वापस सफर को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती
2: हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज इजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है, आप सिक्स्थ स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है।
1: मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताए थे, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करे, और एक है कि हमेशा उदासी, लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाते हैं, यू नो व्हाट इज इट दैट ट्रिगर्स दैट, और उसकी फ्रीक्वेंसी आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं, वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर परेशान
0: होने लग गया कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं, कभी कभी खुश हो रहे हैं वो भी, और वो भी डर लगता है फिर हो ही चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है। क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है, क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं?
2: नाउ इट डिपेंड, किस स्टेज पर आधार है? हाँ, कि कौन से स्टेज पर आप है,
0: किस स्टेज पर हम अपने हाथ में ले सकते हैं उसे?
2: ऐसे हाथ में तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं।
0: अच्छा,
2: आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, भले मेहनत ज्यादा लगेगी परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहां तक तो बिल्कुल इजी है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म्स को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि बीज आज कॉमन कोल्ड है तो उसका मूल है वायरस, बी वायरस के कारण ये हो रहा है। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है,
0: नेगेटिव थॉट,
2: या तो भी आपके नेगेटिव ना भी हो लेकिन सही नहीं है जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं। नहीं, अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, बिजनेस नहीं चल रहा है, समझते उसी के कारण मुझे डिप्रेशन।
0: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपेंस, यू नो, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन जो आस पड़ोस हमारे रिलेटिव हैं या हमारे घर वाले हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है, तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में, हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं?
2: वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल, आपने शायद पढ़ा भी इसके बारे में। हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सच, मुझे ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन हो गया तो आप वीक है,
0: हाँ।
2: ना कि भी आप कमजोर व्यक्ति,
0: अरे हाँ।
2: क्यों हो गया तुमको? तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर, कहीं बार मेजर डिप्रेशन
0: ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रॉन्ग।
2: इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहाँ तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी मिथ है। और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जीन्स भी पॉसिबल है। बल जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है। वैसे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस
1: तो क्या उस केस में पहले से ध्यान रख सकते हैं ना कुछ, फिर इसका मतलब इफ आई वुड ऑलरेडी नो
0: कि मेरे
1: जेनेटिकली मेरे को सस्केप्टेबल है उस चीज के लिए।
0: शिवानी, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पेन, जब हमने ये पेन की थी कि डिप्रेशन हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है, है ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हमें, हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जा रहे हैं। स्टार्ट टेकिंग इट दैट,
1: उस आदत में रहना, उस स्थिति में रहने की एक आदत से पड़ जाती है।
2: या तो ये होता है जैसे कईयों को, जैसे आपके बिल्कुल राइट है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस सब अरे अरे अरे क्या हो गया तुमको, कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नोबडी आस्क्स। तो आज कल लोग अटेंशन,
1: वो इसलिए भी है कि अगर मुझे बहुत यू नो, जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहां थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी। तो ये चीज भी
2: बच्चों में, स्पेशली तो बच्चों में मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है, इट्स डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई, ऐसा करीब 4 बार हुआ। फिर माँ को यह रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है, उस पर साइकिल गिर जाती है।
0: तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण अकेला होना जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है? क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है? क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयां ही हैं जो डिप्रेशन के से बाहर निकाल सकती हैं?
2: सबसे पहले तो अपने आप को,
0: फैमिली पे
2: भी, हाँ फैमिली, ये भी ठीक है कि मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर ये सेकेंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं। कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसी सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है कि जिसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी। जैसे एक है रिएक्टिव डिप्रेशन, जहां विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं। और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन, जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं, ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहां पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे, अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी।
0: एंड आने वाली कड़ियों में हम इन पे जरूर हर जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। सिस्टर शिवानी, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जिसको हम एक पूरा पहचानने की बात कर रहे हैं, हर तरह के एस्पेक्ट को तलाशा है, उसमें ये बात सामने जो आ रही है, क्योंकि मैं व्हेन आई गो आउट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, कि इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, हर कदम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका बन चुका है, तो उसको अब चेंज करके इंटरनलाइज करने का नहीं है। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जिसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है।
1: जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्प में भी जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसिलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग,
0: खुद से बात कर,
1: सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसिल कर सकते हैं, कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट यस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प, द मेडिकल हेल्प, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं, फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है दैट वी आर नॉट
0: टू कम है।
2: बहुत अच्छी है, जो पॉइंट है ना, सेल्फ काउंसलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप साइकोथेरापिस्ट या काउंसिलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप। जो रियल चीज है ना वो आप उनको बताते ही नहीं,
0: क्योंकि खुद भी नहीं पता होता ना शायद।
1: नहीं, कई बार खुद पता होता है, बट यू डोंट वांट टू शेयर। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते।
2: फ्रॉइडियन साइकोथेरेपी है ना, सारी साइको एनालिसिस उसको कहते हैं, साल भर लग जाता है
1: निकलवाने के लिए,
2: व्यक्ति उसके बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड।
0: एक और, मैं चलते चलते जो एक और मिथ को या एक उस चीज को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में, जैसे यू नो डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज को पकड़ के, क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो है अपने आप को बचाता, उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं। ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है, अटैचमेंट की जो बात है वो भी एक, क्या क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकता है?
2: ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है, इस उदाहरण के रूप में कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वह एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं होना चाहिए।
0: वो हम क्लिंग कर जाते हैं उससे, फिर वो तंग करती रहती है चीज। सो हाउ वो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसको हटाना, क्योंकि हम फिर एक एक चीज से निकल के दूसरी चीज में अटक गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है उसको, पर उससे क्लिंग कर जाते हैं उस क्लिंगिंग से।
1: लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है,
0: कुछ क्योंकि
1: थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी। अटैचमेंट जनरली
0: जॉब है, कुछ जॉब
1: समथिंग आउटसाइड, तो फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए।
0: बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकोसिस,
1: वी कैन यू नो क्लिंग ऑन टू द काउंसलर, क्योंकि वो बहुत, वो एक सकर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला तो फिर उनसे स्टिक हो गए।
0: काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए?
2: एक्चुअली पहले से ही ध्यान रखना, यहाँ तो देखेंगे काउंसिलर को ही अटेंशन देना, वी नीड टू ट्रेन काउंसिलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट दैट यू वांट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ,
0: बिल्कुल
2: उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इससे उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं।
0: और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हो हम डिप्रेशन के, उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं। ये पूरे मुद्दे हम अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर हर एपिसोड में हर कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच।
1: थैंक यू।
0: आज जो हमने बातें की उससे ये बात तो सामने आई कि डिप्रेशन एक सच्चाई है, आज के इस दौर की सच्चाई है। हम में से किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, कई स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की, जरूरत है कि उसे सही वक्त पर पहचान ले। कहा जाता है कि जहां आंख खुले वहीं सवेरा होता है, सवेरे की या रोशनी की वो किरण वहीं से नजर आने लग सकती है, और अपने ही माइंड पावर से हम काफी कुछ चीजें बदल सकते हैं। लेकिन जहां लगे कि सहायता चाहिए तो फिर सहायता या मदद ले लेनी चाहिए। और एक और बात जो सामने आ रही है कि किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है। ये कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी दर्शक हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं उन सबके लिए है, क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो डिप्रेशन से जुड़ा हो या फिर जिंदगी से जुड़ा हो, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर डिप्रेशन क्यों होता है, हर स्टेज डिप्रेशन की क्या होती है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगली कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

मेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: हमने कहा था ना कि बाजू में है ताकत जिसकी, चलती है हुकूमत उसकी।
1: टेंशन को दूर भगाने के लिए आइए सुनते हैं सिस्टर शिवानी के अनमोल कथन।
2: अपने आप को देखें एंड प्रिपेयर माई सेल्फ फॉर टुडे। आज सारा दिन में बातें आएंगी, लोग कुछ कुछ ऐसा करेंगे या कहेंगे विच विल नॉट बी अकॉर्डिंग टू द वे आई वॉन्ट देम टू बी। आज सारा दिन अवेयरनेस एंड चेकिंग, कौन ज्यादा पावरफुल है, बातें, सिचुएशंस और मी, किसका प्रभाव किस पर पड़ता है। आज सारा दिन सिर्फ चेकिंग, बात आई बात गई, मुझ पर उसका कितना प्रभाव पड़ा। दिस इज माई चेकिंग फॉर टुडे।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जा, तू खोई है जिसके लिए इस तरह, भूल जाए तुझे इस तरह जिस तरह भूल जाती है सुबह गई रात को, भूल जाता है पागल कही बात को।
1: कंप्यूटर से नजर नहीं हटती, नजारे हम क्या देखें। अगर देखने का समय नहीं है तो सुनी लीजिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है, या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म। वन। सेकंड,

0: अब मैं अगर वाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए वाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम वाइट एनर्जी भेजेंगे मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
1: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो मधुबन द्वारा निर्मित एक विशेष कार्यक्रम प्रस्तुत कर
3: रेडियो मधुबन में आप सभी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे विशेष कार्यक्रम यशस्वी भारत में। साथियों, जैसे हर बार हम आपके पास एक ऐसे हस्ती को लेकर के आते हैं जिसने भारत देश की यशोगान में एक सुर अपना भी लगाया है, लेकिन आज हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में एक नहीं दो दो ऐसे सुर हैं जिन्होंने इस यशोगान को बहुत बहुत बहुत सुरीला बनाया है, या कहूँ ये एक ऐसा सुर है जो दोनों साथ में ही बजते हैं। आज हमारे स्टूडियो में है नलिनी जी और कमलिनी जी, जो भारत देश के वो वीर वीरांगनाएं हैं जिन्होंने एक बहुत प्राचीन प्रथा को इस समय इस दौरान युवाओं के बीच में भी प्रचलित करने के लिए अपना जीवन समर्पित किया हुआ है। आप सोचते होंगे कौन सी वो प्रथा है? कथक।
4: ये हुई चक्करदार तिहाई।
3: और इस तिहाई में और मजा आज श्रोता साथियों आपको तब आएगा जब आपको ये पता चलेगा कि ये साधारण इंटरव्यू नहीं है, बट चार कथक प्रेमियों के बीच में बातचीत है। आप सोच रहे होंगे चौथा कौन? चौथा आपकी प्रिय दोस्त आरजे आरुषि। आरुषि बहन, आपका भी स्वागत है।
5: थैंक यू सो मच, और मैं बहुत खुश हूँ कि मैं इस इंटरव्यू का हिस्सा बन पाऊंगी।
3: इंटरव्यू नहीं, डायलॉग,
5: डायलॉग का हिस्सा बन पाऊंगी, माफ कीजिएगा मुझे। जी,
3: तो जैसे साथियों आपने सुना, शुरुआत ही एकदम जबरदस्त हुई है, और जिसका आगाज ही इतना अच्छा है उसका अंदाज, उसका अंत, अंत तो मैं नहीं कहूंगा क्योंकि ये एक जर्नी है जिस जर्नी पे हम सब आप चल रहे हैं। तो इस जर्नी की शुरुआत, आपकी जर्नी की शुरुआत कैसे हुई नलिनी जी कमलिनी जी दोनों?
6: देखिए, मेरा ऐसा मानना है कि ईश्वर हर एक में एक पात्र ढूंढता है और हम बाध्य हो जाते हैं उस पात्र की पात्रता निभाने के लिए। कितनी अच्छी तरीके से हम उस पात्रता को निभाते हैं ये हमारे कर्म पे निर्धारित करता है, क्योंकि हमारा जन्म ही कर्म के लिए हम इस धरातल पे आए हैं, और कर्म से ही मोक्ष मिलता है, मृत्यु से मोक्ष नहीं मिलता। जो साधारणता लोग सोचते हैं ना, खुदकुशी कर ले, मर जाए, इससे दुखी हो गए तो उससे मोक्ष नहीं मिलता। जो कर्म आपको दिया गया है उसको सफलतापूर्वक आप करें, आप अपने से प्रसन्न हो तो दूसरा आपसे प्रसन्न होगा।
3: बिल्कुल।
6: और जो कलाकार है वो कभी भी कर्महीन नहीं हो सकता, क्योंकि कर्म के बिना कला आती नहीं है। हर रोज आपको कुआं खोदना पड़ेगा, ऐसा नहीं कि बने बनाए कुएं में आप बाल्टी डाले और निकाले, कुआं भी हर रोज खोदना पड़ेगा, उसमें पात्र भी हर रोज डाल के पानी को भी खींचना होगा और तभी प्यास बुझानी होगी। इस सोच से, जिसे आप कहते हैं, जब कार्यरत होते हैं, क्रियाशील होते हैं, तो आपका जीवन आनंदित होता है, और अपनी जीवन में जो अपनी साधना से आप अर्जित करते हैं उसको दूसरों को भी आनंदित कर सकते हैं। और उसके लिए सबसे बड़ा एक सानिध्य चाहिए होता है, गुरु का। हमारा सौभाग्य रहा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है हम जिसको गुरु मानते हैं, अगर आप चंद्रमा को, वो भी पूजनीय है, चंद्रमा को सूर्य समझ लें और उसे सोच के सोचे वो ऊर्जा मिल जाएगी, नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता।
4: तो सुपात्र देगा,
6: शीतलता ही देगा, देगा तो सही लेकिन शीतलता देगा। और क्या कहते हैं, सुपात्र गुरु मिल जाना आपको, और एक गुरु को अच्छा शिष्य मिल जाना, ये भी संस्कार में निर्धारित करता है
3: जी।
6: कहते हैं कि मन के सुप्त भाव जब जागृत हो, क्रियाशील होते हैं, तो वो मन की अंतरंगों को किसी ना किसी तरह से प्रेरित करते हैं। सुसंस्कृत संस्कार जिस माध्यम से प्रकट होते हैं, स्पष्ट होते हैं, उन्हें कला की संज्ञा दी गई है, और कलाकार भी जन्मता है संस्कारवश। एक अच्छे गुरु जी का मिल जाना उसके अपने पूर्व जन्म का ही एक निर्धारित कर्म का होता है। मैं कमाऊं, चेक आप काटे तो नहीं मिलेगा, मैं ही कमाऊं और मैं चेक काटूं तो वो ही हो पाएगा,
4: तो बाउंस हो जाएगा,
6: फिर तो बाउंस हो जाएगा। तो ये मेरे कर्म की संचित पूंजी है, तो मैंने चेक काटा, मुझे अच्छे गुरु मिल गए, कर्म का चेक। ऐसा नहीं मैंने चेक काट के मुझे गुरु मिल जाए, और उससे सबसे अच्छी चीज मिली, आपकी बात सुनती हूँ, अगर हम सफर सफर में अच्छा हो तो ईश्वर की कृपा देखिए कितनी अच्छी बहन दे दी। जब हम लोगों में कभी झगड़ा होता है ना, पता है किस बात का होता है?
3: झगड़ा होता भी है
6: किसी बात में नहीं लगता ना, किसी चीज को लेके जब होता है ना कि मान मोट ऐसा नहीं होना चाहिए ऐसा नहीं, तो मैं क्या बोलती हूँ, ईश्वर कितना अच्छा है, उसने एक साल पहले मेरे सानिध्य के लिए एक नौकर चाकर भेज दिया। ये कहती ना, ईश्वर मेरे लिए ज्यादा मेहरबान है, जब मैं एक साल की हो गई तो मेरे लिए भेजा। तो हमने कहा एक दूसरे की नौकरी ही कर लेते हैं। तो हमने कहा किसकी करे, तो ईश्वर ने एक ही कर्म दिया है, नृत्य, उसी की कर लेते हैं। जब उसके सामने आते हैं तो फिर हम एक दूसरे को भूल के हम उसी की चाकरी
7: नहीं। वो जैसे शांतनी जी आपने कहा ना, लड़ाई होती है, लड़ाई नहीं होती हमारे मन में, परफेक्शन की एक जिसे कहते हैं, एक परफेक्शन और अच्छा हो उसके लिए हम लोगों की कसाई होती है, आपसी कसाई। वी क्रिटिसाइज अवरसेल्फ सो मच दैट अदर्स डोंट हैव द चांस टू क्रिटिसाइज अस।
6: नहीं, पर एक और बात है, जैसे धनुष लिया है, अब वो धनुष बाण है या प्रेम बाण है उसकी अभिव्यक्ति में फर्क हो जाता है। मैं थोड़ी लक्ष्मण बुद्धि की हूँ, एकदम नाराज हो जाती
7: हूँ,
6: ये मुझे शांत करती है, फिर वो जब ये कभी होते नाराज होती है तो मैं इन्हें शांत करती हूँ। मतलब
3: यू कॉम्प्लीमेंट ईच अदर,
7: ब्लो हॉट ब्लो कोल्ड चलता है।
6: अच्छा, नदी में बाढ़ ना आए इसके लिए कई प्रबंध कर जाते हैं, तो कला वो है उस बाढ़ को रोक देती है। आप कुछ कह रहे थे, मैंने
3: मैं ये एक्चुअली बोल रहा था कि आपने ना, आप जब बोल रहे थे तो इतना सुंदर एक वाक्य आपने बोला कि कर्म से मोक्ष मिलता है, मृत्यु से नहीं। जनरली लोगों में एक कॉन्सेप्ट है कि मोक्ष मतलब मोक्ष इज द प्लेस वेयर आई शुड बी एंड नॉट दिस, क्योंकि लोग एस्केपिज्म से ग्रसित हैं, लोग चाहते हैं कि उनकी जो वर्तमान परिस्थिति वो नहीं होनी चाहिए, कुछ और होनी चाहिए, और इस वजह से वो सोचते हैं कि बस ये परिस्थिति खत्म हो तो एवरीथिंग इज बेटर।
6: शांतनु जी, क्या है, लोग सोचते हैं नृत्य केवल नृत्य है, ये आपको अपने आप को समझने की, अपने आंतरिक को समझने की कला है,
7: दर्पण है,
6: ये स्वयं को आपके सामने दर्पण नहीं है, लेकिन आप अपने सामने एक दर्पण खड़ा करके अपने से साक्षात्कार करते हैं। और बहुत भ्रमित होते हैं लोग जिनको कोई समझाने वाला नहीं होता, और जो अपने आप को नहीं समझ सकते वो बड़े भ्रमित होते हैं। देखिए क्या है, कई बार हम निराश हो जाते हैं जीवन में, तो बहुत दिशाओं में जैसे थेरेप्यूटिकल वैल्यूज ऑफ डांस, रिलेशन ऑफ डांस विद योगा, और मैं आजकल की युवाओं को भी कई बात देखती, जब आप कभी अपने जीवन से निराश होते हैं, अपनी उपलब्धियों से निराश होते हैं, तो कई बार लोग कहते हैं हमें नहीं मिला, बिकम डिजर्विंग देन हैव ए डिजायर। आजकल लोग क्या करते हैं, पहले डिजायर रखते हैं फिर सोचते हैं उसको क्यों मिल गया, मुझे क्यों नहीं मिला। ये तो देखो कि 24 घंटे की ड्यूटी है उस फूल की रखवाली करने के लिए जो दो दिन बाद झड़ जाएगा, लेकिन कांटा अपनी वो नहीं भूलता, वो वैसे ही रहता है, उसे कोई पूछता नहीं है, वो चुभने के लिए तैयार है, उसकी सुरक्षा के लिए, एक फूल के लिए। फूल खिलता है, सुगंध देता है, अपने जीवन में अगर वो तोड़ के किसी के सामने अर्पित किया जाता है तो उसका सौभाग्य बिखर जाता है, तो भी अपनी एक आभा को लेके बिखरता है, लेकिन जो कांटे के लिए ईश्वर ने उसकी ड्यूटी दी है उसको वो पूर्ण करता है हर तरीके से। तो आपको चाहे फूल का आनंद दिया जाए कांटे का, ये देखिए कि आप दूसरों से जो जिन लोगों को वो उपलब्धि नहीं मिली उनसे कितने, आपको ईश्वर ने अच्छे हाथ पांव के साथ, एक अच्छी सोच के साथ, एक अच्छे, दोनों आंखें दिख रही हैं उसमें भी, दोनों पुतलियां देखिए बराबर है, क्या अच्छी कंपोजिशन है ईश्वर की। थोड़ी सी नाक इधर हो जाए तो टेढ़ापन आ जाता है, थोड़ी सी आंख इधर हो जाए तो भेंग, उसमें भी आपको ज्योति दी है, उसमें भी आपको वाणी दी है, बोलने की क्षमता दी है, अच्छी चीज दी है, तो आप दूसरे लोगों जो इससे
7: वंचित हैं
6: उनसे आप अपने आप को सौभाग्यशाली मानिए। और मुझे एक चीज हमेशा बड़ी अखरती है, लोग ना ज्यादा जोड़ने में लगे रहते हैं, ईश्वर ने दो आंखें दी तीसरी देंगे तो आप चाहेंगे नहीं चाहेंगे ना, दो पैर की जगह चार दे दें तो नहीं, जो दिया है जितनी जरूरत है उससे ज्यादा जोड़ने की कोशिश करती। बस ज्ञान एक ऐसी चीज है जो आप आवश्यकता से ज्यादा, ज्ञान इसलिए है क्योंकि वो कुछ फिल अप द ब्लैंक्स ईश्वर ने आपको दी जिसको आप ही को भरना है। आपको मस्तिष्क दिया है, इसमें बुद्धि का समावेश आपको खुद ही करना है, और वो भी कर्म के माध्यम से। दूसरे की बुद्धि आप नहीं चुरा सकते, दूसरे का मस्तक काट के आप अपने अंदर नहीं ला सकते, किसी तरीके से नहीं ला सकते, चाहे कितने भी साइंटिस्ट।
7: सेम बात कला में भी है,
6: सेम बात कला में भी है।
7: सुबह
6: आप मेरे किसी विद्वान के पड़ोस में बैठे रहिए और 24 घंटे उसकी चाकरी करिए, लेकिन विद्या का आदान प्रदान नहीं करेंगे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि सीखने के बहुत सारे स्टेजेस हैं। एक अक्षर ज्ञान जिसके लिए दुनिया सोचती है कि फलानी यूनिवर्सिटी में चला जाए, उस स्कूल में चले जाए इधर से, क्योंकि वो जो सिखा रहा है उसने भी उस पुस्तक से लिया है, वो भी आपको उसको दे रहा है, आप भी उसी से ग्रहण करें, कल को दूसरा भी उसी से लेगा, आप एक ही माध्यम से सब चीज ले रहे हैं। वो एक ही ज्ञान रहेगा, हजारों बच्चे पढ़ेंगे और आगे आने वाली पीढ़ी, क्योंकि वो अक्षर ज्ञान है और अक्षर ज्ञान में क्षमता नहीं है यहाँ से वहां जाने की जब तक उसको स्वर की क्षमता ना मिले। उसी चीज को आप गायन में ले लेंगे, उसी चीज को आपको जब तक
7: अक्षर को एक साक्षात्कार मिलेगा,
6: एक स्वर नहीं मिलेगा तब तक वो दूसरे तक नहीं पहुंच जाएगा, वो सिर्फ नेत्र और उस पुस्तक तक सीमित रहेगा। दूसरा है सानिध्य का, जब हम गुरु के सानिध्य में आते हैं तो उसका चाल चलन आपके व्यक्तित्व को बनाता है ज्ञान के अलावा। तीसरा है अनुभव का, सानिध्य से जब तक आप अनुभव में नहीं आएंगे आप सानिध्य तक रहेंगे, अक्षर से सानिध्य तक रहेंगे लेकिन अनुभव में नहीं आएंगे। और जब आपको अनुभव का ज्ञान मिल जाता है वो वहीं तक सीमित रहता है जब तक उसमें संघर्ष नहीं आता। तो अक्षर, सानिध्य, अनुभव और संघर्ष, इस सबसे जब तब की कोई छात्र निकलता है या कोई शिष्य निकलता है तो वो कुछ कुछ गुरु के रूप में अपने आप को समझता है, उसमें भी उसे गुरु बिंदु को सामने रखना पड़ता है, क्योंकि निराकार को आकार देकर साकार करने वाली विधा है कला, जिसको लोगों ने बहुत छोटा समझ लिया था। सुर लय ताल भाव विचार अभिव्यक्ति, जैसे आपके भाव होंगे वैसे ही आपके विचार होंगे, या जैसे आपके विचार हैं वैसे ही भाव होंगे, लेकिन अभिव्यक्ति एक माध्यम ढूंढती है। भाव और विचार संसार में हर व्यक्ति के साथ हैं, जानवर में भी हैं, लेकिन अभिव्यक्ति का माध्यम सुचारू हो और सुरमय हो तो वो एक कला का रूप ले लेता है। तो यही बात जो है कलाकार के अंदर है। और सुर लय ताल, हर व्यक्ति के अंदर सुर है, लय है और ताल है। जब हम चलते हैं उसमें भी एक लय है, हमारा हृदय धड़कता है उसमें भी एक ताल है, जब वो हट जाती है तो हमें पता चलता है हम बोल रहे हैं। अगर ये लय और ताल हट जाएगी तो मैं हकलाने लगूंगी, लेकिन सुर लय और ताल इसके साथ जब हम अभिव्यक्ति मिलके करते हैं, कला आपको संगठित होने की विद्या है। जब आप हजारों लोग भी एक सुर में गाते हैं, वैसे तो कोई नहीं मिल पाता, दो जनों के सुर नहीं मिलते, और शब्दों का और स्वर का कहाँ पे साहित्य से फर्क हो जाता है, मैं आपसे कहूँ तुम जाके तो देखो, शब्द वही, तुम जाके तो देखो, सुर बदला शब्द वही है, अभिव्यक्ति बदल गई। और वो कहेगा अच्छा, तो कहाँ जीवन में अगर आप कला में थोड़े भी कलाकार नहीं भी बने उसकी समझ रखें तो संसार में जीवन
7: अवेयरनेस, अ स्मॉल अवेयरनेस ऑफ आर्ट कैन चेंज योर होल लाइफ, बिकॉज़ एज शी सेड इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ मेनी थिंग्स टू हार्मोनाइज प्रेजेंटेशन, ऑल दोस थिंग्स आर देयर ना। तो एक कलाकार जैसे नलिनी जी ने बताया उसकी जो अवेयरनेस है वही हम लोगों का ध्येय रहता है। हम लोग हमेशा इतने सारे लेक्चर डिमॉन्स्ट्रेशन पूरे विश्व में करते हैं, वो यही होते हैं कि कला किस तरह से आपको सशक्त, समृद्ध और व्यापक दृष्टिकोण देती है।
8: थोड़ी देर पहले नलिनी जी जब बोल रहे थे तब मैंने पिकअप किया था कि उन्होंने बोला कला की परिभाषा दी थी उन्होंने, संस्कृति और संस्कार उसकी अभिव्यक्ति कला है, और ये मुझे बहुत बात
6: सुसंस्कृत संस्कार,
8: सुसंस्कृत संस्कार दैट इज कला एंड दैट अमेजिंग, बिकॉज ये डेफिनेशन मैंने तो पहले
7: नलिनी जी जो है ना अपने परफेक्ट डिक्शन के लिए बहुत जानी जाती हैं। शी स्पीक्स वंडरफुल।
6: और नृत्य में अध्यात्म, ये हमारा, मैंने कुछ पंक्ति लिखी थी, मैंने कहीं पढ़ा ओशो जी का लिखा हुआ नृत्य में वो तुम्हारे साथ होता है, उसमें हम नृत्य कर रहे थे, आगास उसका नाम था। तो मैंने सोचा नृत्य में तो हमारे साथ जब ही होगा जब हम नृत्य करेंगे, है ना। तो मैंने उसमें कुछ लिखा है, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे। जीवन नृत्य है ना, पाओगे उसे तो तुम नाचोगे और नचाओगे भी, उसके आने से ही नृत्य होता है। वो गुनगुनाएगा और तुम नाचोगे, जब वो नहीं रहेगा तुम नहीं रहोगे, जब तुम और वो एक हो जाओगे, तुम्हारे नृत्य तुम्हारी वाणी में तुम्हारी लेखनी में उसका आभास होगा और यही आगास।
8: क्या बात है मतलब ये था चक्रधर तिहाई, बहुत ब्यूटीफुल,
7: वेरी लिरिकल। शी रिमेंबर्स एवरीथिंग, दैट इज वंडरफुल थिंग।
8: द मोस्ट वंडरफुल थिंग इज कि इट वाज वेरी स्पिरिचुअल आल्सो।
7: या
8: क्योंकि परमात्मा हमेशा हमें यही याद दिलाते हैं कि अगर तुम मेरे साथ हो तुम इतने खुश रहोगे कि ऐसा लगेगा जैसे तुम हमेशा डांस कर रहे हो।
7: हमने पा लिया,
8: यू आर ऑलवेज डांसिंग।
6: यही तो लोग सोचते नहीं। देखिए जिसने आपको इस दुनिया में भेजा है वही तो मैं बोल रही हूँ। दो, एक आंख को बचाने के लिए एक पलक दिए, उसके ऊपर आपको ये आई लैशेस दिए है, उसके ऊपर भौं दी है, उसके ऊपर भी जैसे ही कुछ आघात होते एकदम झपक के बंद हो जाती है। उसने हर समय पे हमको वो चीजें दी है, जब हम अबोध है तो माँ को दूध के साथ हमारे साथ दिया, जब हम उसके लायक हो जाते, हर चीज का इतना ख्याल रखा है एक चीज, और पूरी बॉडी में कितना ऑटोमेटिक सिस्टम है। आप मुंह में खाना तो डालिए, जहाँ जिसको इससे डिस्ट्रीब्यूशन, ये हमें क्रिया सिखाती है, जो आपको मिल रहा है उसको आपको बांटना है और कुछ वेस्ट में चला जाता है तो ये भी है कि अगर आप उसे प्रॉपर तरीके से नहीं बांटेंगे तो वो वेस्ट में चला जाए। हर चीज की शिक्षा आपके शरीर से देती है और जिस परमात्मा ने आपका इतना ख्याल रखा है तो उसके लिए मैं एक सच्ची बहुत बात बता रही हूँ, आप विश्वास करें ना कराएं, मेरा कोई सेक्रेटरी नहीं है, लेकिन इस 50 साल में जब गुरु जी के सानिध्य में आई हूँ शायद ही कोई ऐसा दिन खाली गया है कि कोई एक कार्यक्रम हटता है तो दूसरे का अपने आप फोन आ जाता है। हमने उसके ऊपर पूरा अपने आप को छोड़ दिया है, हमने कभी भी नहीं कहा कि ईश्वर ने हमारे साथ कुछ, उसने जो भी किया हमारे लिए उसी इसलिए किया जो अनुकूल होता है। अगर उसने क्या कहते हैं पेठा को पेड़ में नहीं टांगा तो इसलिए ही नहीं टांगा कि वो गिरेगा तो सर बहुत बुरी तरह से फूटेगा, ये सोच के ही
7: पहले बेल में छोड़ा है।
8: नहीं, आपने पहले भी बोला ना कि भाई try to become deserving before you start desiring, है ना? तो इसलिए आप deserving थे, इसलिए आपके पास सब अपने आप पहुंच रहा है।
6: अरे नहीं, ऐसा कोई बात नहीं
8: है।
6: देखिए भाग्य और बुद्धि का बहुत बड़ा सामंजस्य है, जो आपके भाग्य जब में नहीं होगा तो बुद्धि खराब हो जाएगी, चाहे आप कितने भी इंटेलिजेंट हो। तो हम ईश्वर से जाती हूँ कभी भी, मैंने हर मंदिर में नृत्यांजलि ही दी है, कभी भी कुछ चढ़ाया नहीं है। ये कहती हूँ जब कभी भी विपत्ता का समय हो, ईश्वर हमारी बुद्धि सही रखना, कभी ऐसा ना हो जहाँ बुद्धि बिगड़ी नहीं, विवेक बिगड़ा नहीं तो मनुष्य मनुष्य नहीं रहता, उसमें और एक पागल कुत्ते में कोई फर्क नहीं होता। आप मुझे कितना भी अवार्ड दे दीजिए, कुछ भी दे दीजिए, जब बुद्धि बिगड़ेगी तो मुझ में और उस बेवकूफ में कोई फर्क नहीं होगा। इसलिए ईश्वर से हमेशा मांगो कि मेरी बुद्धि को बनाए रखो, जब मैं विवेकशील हूँ और जब विवेकहीन होने लगूं तो भी वो आप ब्रेक ऐसे मानना जैसे गाड़ी का वो खराब हो जाता है ना तो पाँव का ब्रेक नहीं लगता तो हैंड ब्रेक लगाते थे जी,
7: या फिर एयर बैलून बाहर आ जाता
6: कमलनी जी मेरे लिए वो है जो मेरा फौरन ब्रेक लगा।
7: क्या होता है ना, किसी को किसी का अखबारों में जरा सा निकल जाता है उनका दिमाग खराब हो जाता है, वो ठीक से बात नहीं करते हैं
5: जी।
7: यहाँ पे अवार्ड्स के भंडार हैं, बताइए इसी साल हम लोगों को पद्मश्री दिया और सब लोगों ने कहा ये तो आपको बहुत पहले मिल जाना चाहिए था, तो मैंने कहा ये तो देने की चीज है, लेने की चीज थोड़ी ना, जब मिला तो मिला। इतने सारे अवार्ड मिले और अखबारों में
6: सबसे बड़ा अवार्ड हमारे लिए था जब नहीं, भारत की अपनी देश की तो मिट्टी भी अगर आपको दी जाए तो वो भी सर आंखों में, और हमने तो जितने भी बारह ज्योतिर्लिंग में नृत्य किया उस सब की मिट्टी लाके मैंने अपने इंस्टीट्यूशन की नींव में रखी। फिर 2003 में कैलाश मानसरोवर में 18,000 फीट पे नृत्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और उस समय तो मेरा हीमोग्लोबिन भी 7.30 था और वो सब बोलते थे कि आप गुरुजी और मैं तीनों गए थे, आप जाओगे तो दो लोग वापस लौटेंगे, लेकिन ईश्वर कृपा देखिए कुछ भी नहीं हुआ और इतने आनंद से गए। मैंने कोई पैंट शर्ट नहीं पहनी, वही साड़ी पहन के सात्विक भोजन चिदानंद मुनि जी थे, वो ईश्वर रास्ते बना देते हैं, पता नहीं वो कैसे बनाता है, जिसने इतनी बड़ी दुनिया बनाई है वो एक छोटे हम तुच्छ प्राणी के बारे में नहीं करेगा, और कितनी बड़ी गणित है उसकी, आप जीरो की भी वैल्यू रखी है उसने 100,000 की नहीं, हम जैसे जीरो की भी वैल्यू रखी है।
8: नहीं, आप खुद को जीरो कहते हैं, ये आपकी नम्रता का परिचायक है।
7: जीरो की तो बहुत इम्पोर्टेंस है शांतनु जी,
8: और क्योंकि इंडिया से शुरू ही
6: मुझ जीरो की इम्पोर्टेंस है और किसी के लिए,
7: जहाँ जीरो लगा दिया वो बढ़ता चला जाएगा, एक के आगे तीन जीरो लगा लिए तो चार लगा लिए तो संख्या बढ़ गई।
6: आज कमलिनी के आगे जीरो ही तो लगा है नलिनी,
8: नहीं और एक्चुअली आज इस सभा में एक जीरो और भी है, आरुषि बहन। तो इस सभा का हमारा जो है आज के हमारे इंटरव्यू का,
6: अब ये मत कहिए आप तीनों को जीरो कह के आपको हम हीरो कहेंगे।
8: नहीं, मैंने तो बोला कि हम तीनों जीरो है और हमारे साथ चौथा जीरो आज आरुषि बहन बैठे हुए। आरुषि बहन, अभी तक आप सुन रहे थे, आप क्या समझ रहे हैं, कहाँ जा रहे हो?
5: मैं सच बताऊं, मुझे ऐसा लग रहा है कि नलिनी जी, कमलिनी जी जब बोल रहे हैं दुनिया में कोई हताश हो ही नहीं सकता अगर उनकी बातों को हम एक एक चीज को सुनने और समझने की कोशिश करें। लेकिन मैं पूछना कुछ जरूर चाहती हूं, जैसा कि
6: मैं ड्राइविंग सीट में, स्टीयरिंग मेरे हाथ में, आप लोग सवारी हैं, जैसे कि हुक्म देंगे बस ये गाड़ी मोड़ लूं
5: नहीं, गाड़ी जहां जा रही है हमें बड़ा आनंद आ रहा है।
8: हम एक ऐसे दौरे पे निकले जिसका हमारे पास कोई लक्ष्य नहीं सिवाय इसके कि हम एंजॉय कर रहे हैं सफर, और मुझे लगता है हमारे श्रोता साथियों को भी आज बहुत मजा आने वाला है,
5: बहुत बहुत एंजॉय कर रहे हैं। मैं आपसे पूछना जरूरी है चाहती हूँ कि हम अक्सर जब भी देश की बात करते हैं तो हम कहते हैं भारत युवा देश है और देश के निर्माण की, देश की पहचान क्या है आज ग्लोबली, नृत्य की, बिरजू महाराज जी को भी हमने कहते हुए सुना है कि नृत्य आपको सुंदर बनाता है, आपको खूबसूरत बनाता है, तो नृत्य कैसे चरित्र का निर्माण करता है और क्या युवा जो नृत्य कर रहे हैं सिर्फ देखने से भी क्या वो निर्माण होता है?
6: देखिए जो आप बोल रहे हैं कि नृत्य चरित्र का निर्माण करता है, सिर्फ नृत्य ही नहीं, नृत्य इसलिए ज्यादा करता है क्योंकि उसमें संपूर्ण शरीर का समावेश रहता है।
7: उसमें तीनों चीजें, नृत्य, वाद्य, संगीत। जब हम कोई आर्ट प्रेजेंट करते हैं,
6: इट इज कम्प्लीट, इट इज
7: कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल द थ्री एस्पेक्ट ऑफ ललित कला, है ना, तब वो
6: पूरी इंडियन थाली है जिसमें सूप भी है, सांभर भी है, दाल भी है, इसे कम्प्लीट, आपको अलग से सर्विंग नहीं करनी, इसे कम्प्लीट
7: एक्सरसाइज भी है,
6: सब कुछ है, सब कुछ है, सब कुछ है।
7: साहित्य, संस्कृत साहित्य, सामाजिक पहलू, साहित्यिक पहलू और आध्यात्मिक पहलू, तीनों से ओतप्रोत रहता है। तो उसके लिए जब हम अध्ययन करने चलेंगे किसी चीज को, तो आपको पता है जब आप जिन खोजा तिन पाइया, जितना आप अध्ययन करेंगे उतना ही आप गहराई में।
6: अनुषी अपना क्वेश्चन फिर से रिपीट करेंगी प्लीज।
5: जी जरूर,
6: स्टीयरिंग इन्होंने पकड़ लिया था तो इसलिए जीपीआरएस मेरे माइंड का चेंज हो गया।
5: जी जी, एक्चुअली एक में दो सवाल थे।
6: हाँ,
5: एक तो नृत्य कैसे
6: खूब भी, एक में दो सवाल,
7: सुंदर बनाता है
5: जी, खूबसूरत बनाता है, सुंदर बनाता है, और दूसरा
6: आपके सवाल पे मुझे उत्तर मिल गया।
5: अच्छा,
6: जीवन एक प्रश्न है
5: जी,
6: मानव की चेष्टा उसका उत्तर ढूंढती है
5: जी,
6: फिर हर उत्तर एक प्रश्न बन जाता है और हम विचलित हो जाते हैं, क्या करें क्या ना करें, किससे हमको आनंद आएगा, क्योंकि जीवन में आप चाहे भोजन करिए चाहे कुछ करिए, उसका जो एक आप रिजल्ट चाहते हैं वो आनंद चाहते हैं, सेटिस्फेक्शन चाहते हैं, कंटेंटमेंट चाहते हैं। उस कंटेंटमेंट के लिए हम ही नहीं, दुनिया भर
5: जी
6: एक से एक चीज जोड़ लेते हैं, बड़ा सा घर हो, नहीं नहीं ये खराब हुआ अगले साल फिर उसको रिनोवेट करा लिया, खूब बड़ी गाड़ियों, नहीं एक से काम नहीं हुआ 10 हो गई, नौकर भी बढ़ा लिए, इतनी बड़ी फैक्ट्री हो गई सब। अब एक समय आता है यू टर्न का, जब आप उस सबसे परेशान हो जाते, यू टर्न में भी आपने फिर जो है जोड़ लिया, क्यों आप अतृप्त रहते हैं? क्योंकि आप जोड़ते बाहर से हैं, खालीपन अंदर है, जो अंदर की सत्ता है, वो जो भिखारी बैठा वो अभी भी मांग रहा है मुझे कुछ दे दो मैं भूखा हूँ। तो अंदर की सत्ता को भरने के लिए दो ही चीजें, एक अध्यात्म और एक कला, क्योंकि वो सब चीज बाहर से, सब चीज बाहर से अंदर आती है, ये अंदर से बाहर जाती है। इट इज अ डिस्कवरी टू डिस्कवर योरसेल्फ। जब आप अपने आप में खोजने लगते हैं तो आपको पुस्तक की जरूरत नहीं है, आपको वातावरण की जरूरत नहीं, आप स्वयं से क्रिएट कर लेते हैं। और जितना आप अपने अंदर से, क्योंकि ईश्वर ने हमें शरीर में कितनी नाड़ी, नसें, क्या क्या चीजें नहीं दी, पूरा का पूरा एक पूरी पूरा संसार बसा दिया है। जब उस संसार को हम सुलझाते हैं, एक एक चीज को अपने को समझ लेते हैं, देखिए दुनिया में कितनी अजीब बात है, हम विजिटिंग कार्ड छपवाते हैं परमानेंट एड्रेस के लिए, टेम्पररी लाइफ है, और एड्रेस ढूंढते हैं परमानेंट, सबसे पहले पूछते हैं परमानेंट एड्रेस। तो ये आध्यात्मिक सोच जब आपके अंदर उतर आती है, आप सब कुछ जोड़ लेते, जब कला से आप अंदर से पूरे रिच हो जाते, जब अंदर, जब भोजन का स्वाद कब तक आता है, जब आप भूखे हो, भर पेट वाले को तो कुछ भी दे दिए तो उसे आनंद नहीं आएगा। तो इसलिए जब अंदर की सत्ता संपूर्ण हो जाती है तो बाहर की चीज मायने नहीं रखती है, उसको अर्जित करने की चीजें नहीं, फिर आप किसी से खामखा का कंपटीशन नहीं करते, आप कंपटीशन करते हैं खुद से। मैं अपने आप को, कला, नृत्य, वाद, संगीत एक ऐसी चीज है जिसमें आप स्वयं को हर रोज नहलाते हैं अंदर से, अंदर से उसका टेम्परेचर भी देखते हैं, जैसे बच्चे का देखते हैं ना, उसको पूरा मेडिकल ट्रीटमेंट भी देते हैं, उसको खिलाते भी हैं, और इस समय सोचते हैं जब कोई डिस्टर्ब ना करे तो उसको मैं खिलाऊं, उससे आनंदित रहूं, या फिर ऐसी जगह संसार बसाऊं जहां पे मेरे माहौल के लोग हों। तो जब आप हर रोज ये वाला काम करते हैं, हर रोज सोचते हैं मैं सुंदर लगूं, सुंदर माने मेरी कला सुंदर लगे, मेरा स्वर सच्चा लगे, बेसुरा भी आपको पता चल जाता है, यू बेटर फाई योर सेल्फ, तो आप अपने आप को सुधारते हैं। जीवन में और किस चीज की जरूरत है, क्यों सब लोग लगे हुए हैं सुधारने के लिए, तो लगे हुए हैं, अगर हर व्यक्ति स्वयं को सुधार ले,
7: सुधारना
6: अपनी अध्यात्म प्रभुता, अपनी आंतरिक ऊर्जा से स्वयं को सुधार ले, तो ये समाज में जो इतनी सारी वो है ना, जैसे क्लास में हर इंसान मॉनिटर हो जाए तो किसी दूसरे को कहेगा नहीं, तो सभी मॉनिटर हो गए ना, और हम अपने आप को पहचानते हैं हमने क्या गलती करी। आप कितनी वाह वाह कर लीजिए कि नलिनी जी आप बहुत अच्छा गा के उतरी है मंच से, या बहुत अच्छा नृत्य करके, हमें पता है हमने कहाँ पे चूक गए हैं,
7: या थोड़ा सा काम करने में हल्का पड़ा, जो हम
6: किस वजह से नहीं हो पाया, दर्शक के वजह से नहीं हो पाया, मंच के वजह से नहीं हो पाया, माइक के वजह से नहीं हो पाया, तो हमें पता है हमने LOC क्रॉस करी है, LOC की इधर है, आपको नहीं पता है, इसे फौजी को और क्या कहते हैं जो एंट्री ले रहा है उसको
7: Rangers.
6: पता है, रेंजर्स को पता है, बाकी कॉमन पीपल के लिए तो है कि ये इस बाउंड्री लाइन से सही
7: और,
6: सही जा रहा है, उसे पता नहीं
7: है। हर रोज हम चीजों को साधते हैं। अब देखिए हम लोग जो भी प्रस्तुत करते हैं, बहुत अच्छा बताया नलिनी जी आपने, जो कुछ भी हम प्रस्तुत करते हैं वो एब्स्ट्रैक्ट आर्ट है, इन्होंने पहले ही कहा शून्य में सर्जना करना,
6: निराकार को आकार देके साकार करना, निराकार तो है प्रभु आकार,
7: इंडियन आर्ट
6: कला भी निराकार है,
7: इंडियन आर्ट जो है वो एब्स्ट्रैक्ट है। तो हम जो कुछ भी एक घंटे पांच मिनट दस मिनट जो भी प्रस्तुत करते हैं वो हम ना पर्चे में देखते हैं, अगर आप तबला बजाएंगे तो ना आप तबले के बोलों को देख देख के बजाएंगे, ना गाने वाला सामने पर्चा रखता है। ये हमारी भारतीय संगीत कला है।
6: लैपटॉप मोबाइल किसी के मोहताज नहीं,
7: किसी की भी GPRS माइंड सब हमारे दिमाग में है। और कौन सा राग गा रहे हैं यमन कल्याण में, आप कहाँ मध्यम लगा रहे हैं, कहाँ आप वर्जित कर रहे हैं, वो सब आपको पता है और उसमें खेलना भी आपको पता है। हम लोग नृत्य में क्या कर रहे हैं, गुरुजी ने हमें छोटा सा एक सिखाया, तिग धा दिग दिग दिग थो दिग दिग तिग धा
6: तिग
7: धा दिग दिग दिग थो दिग दिग ता अगर ये करना है तो हम लोगों को पाओ को तिग धा दिग दिग दिग थो दिग दिग थई यहाँ से शुरू करके उसको जो बात 16 मात्रा में आती है उसको 8 में लाएंगे, फिर 4 में लाएंगे, फिर 2 में लाएंगे, फिर 1 में लाएंगे, मतलब 16 को अगर हम डिवाइड मल्टीप्लाई करते जाएंगे तो 64 आ जाएगा। 64 को भी हम लोग कर ले अंधरुत लय बना लेते हैं, ये इसकी मैथमेटिक्स
6: मतलब है। चरण से एक चरण चरण सीढ़ी चढ़ के
7: सीखते हैं। जैसे अगर गुरुजी ने हमें बताया एक छोटा सा कवित बताया, लसत लसत प्रभु लसत कदम तरे, छोटी सी लकुटली ये बैन बजैया, चलत चलत चलत तरवंगी, झलक झलक कान कुंडल सोहिया, या छव देख ब्रग भानी, गोपाल जी की न्यूरी न्यूरी कर लेत बनैया, गंदनी गंदनी बाजत मृगदम, तब ताल देत राधिका और नाचत कन्हैया, कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया कन्हैया। तो
6: ये जो शक्ति ताल दे रही है और ब्रह्मा नाच,
7: तो ये जो छोटी छोटी चीजें हैं, कवित है, टुकड़े हैं, बोल है, परण है, ये सब चीजों को सीखते सीखते सीखते सीखते हम लोगों को उसे जिसे एक रियाज भी कहते हैं, मांझना कहते हैं, मांझा कितना मांझा आपने,
6: जिसे तांबे के लोटे को हर रोज मांझने से चमक जाता है ना,
7: तो ऐसे ही हम लोग करते रहते हैं। और जिस चीज में आप लगे रहते हैं, देखिए अगर गुरुजी ने हमें एक पद सिखाया,
6: हमारे गुरुजी का नाम मैं बताना आपको चाहूंगी, गुरु जितेंद्र महाराज और बनारस घराने,
7: और उन्होंने मंदिर नृत्य शैली के प्रवर्तक माने जाते हैं, क्योंकि आपको पता है जैसे हर चीज के साथ हुआ, संस्कृति सभ्यता में भी मुगल काल में प्रभाव पड़ा, फिर पाश्चात लोग ने इन्वेट किया तो उस पर असर पड़ा, तो जो कला है उस पर कई सारी पड़ते चलती चली गई, लेकिन हमारे गुरुजी ने जितेंद्र महाराज जी ने इसको रिवाइवल ऑफ द प्री मुगल स्टाइल ऑफ डांसिंग किया है। तो इसमें वो सारी चीजें वो तो मैं ये कह रही थी कि अगर आप थोड़ी देर के लिए कृष्ण को साथ रखते हैं तो आप सोचिए उसका पूरा स्वरूप तभी तो प्रस्तुत कर पाएंगे जब आप बालकृष्ण के साथ हैं, या आप कुरुक्षेत्र में कृष्ण है उसके साथ हैं, या आप नटखट कृष्ण के साथ हैं, या आप बाल गोपाल वाले कृष्ण के साथ हैं, या आप माखन चोरी वाले कृष्ण के साथ हैं, या जिन्होंने द्रौपदी को चीर दी थी उस वाले कृष्ण के साथ हैं, तो जितनी देर आप कुछ भी प्रस्तुति करते हैं आप उसके साथ रहते हैं। जब आप उसके साथ रहते हैं तो आप एक ट्रांस में होते हैं। व्हेन यू आर इन ट्रांस एंड प्रेजेंट एनीथिंग देन ओनली द ऑडियंस क्लैप।
6: और एक और चीज है शांतनु जी, एक स्थूल शरीर है, एक सूक्ष्म शरीर है। हम लोग सब जगह अपने स्थूल शरीर से ही पहचाने जाते हैं, लेकिन हमारा सूक्ष्म शरीर आध्यात्मिक ऊर्जा से जब उत्प्रोत होता है तो वो हमारे लिए बहुत कार्य करता है। स्थूल शरीर वहाँ नृत्य कर रहा है, नली नृत्य कर रही है, लेकिन सूक्ष्म शरीर उसी समय पे ट्रेवल कर गया जब मैं चाह रही हूँ मैं कृष्ण बनूं। अभी हजारों की ऑडियंस है, मेरी एक साधना सबको ये रियलाइज कराए कि मैं कृष्ण हूँ, तो वो सूक्ष्म शरीर ने मैंने जहाँ कृष्ण के जहाँ दर्शन किए या उस समय जब मैं चाहती हूँ उसको मैं वो सूक्ष्म शरीर अपने अंदर उतार के मेरे अंदर उतारता है। इसलिए मंच में एक कलाकार कुछ प्रदर्शन कर रहा है और हजारों से प्रभावित होके और
8: एनर्जी उन तक जी बहुत सुंदर बताया नलिनी जी, कमलिनी जी आपने कि कैसे हम हमारे अंतरात्मा का जो स्वरूप है उसको भी बदल सकते हैं जब हम दिल से शिद्दत से किसी भी कला का अभ्यास करते हैं, प्रयास करते हैं, उसको हम दिन बर दिन अपने अंदर ढालने लगते हैं। आपके जैसे तपस्विनी कथक साधिकाएं जो कि देश विदेश में जाकर के कथक का नाम रोशन करती हैं, हमारा भी सौभाग्य रहा है कि आप माउंट आबू में भी आए हैं और यहाँ पर भी आपने परफॉर्म किया है ज्ञान सरोवर में, कुछ उस अनुभव को हमारे सामने साझा करें।
7: हम लोग एक बार ब्रह्मा कुमारीज में नृत्य कर रहे थे, ये
8: ज्ञान
7: सरोवर की बात है, और आप विश्वास नहीं करोगे, हम लोग नृत्य कर रहे थे, हमारे साथ हमारे गुरुजी भी थे,
6: तो कहता स्वर का आनंद,
7: तो श्रोताओं के बीच में आदरणीय ब्रह्मलीन जानकी दादी बैठी हुई थी, वो मंच पे आ गई। उस टाइम पे उनकी उम्र थी 98 होगी। ऊपर आई मंच पे और नृत्य करने लगी, और हमारे गुरुजी से बोला, भाई जी मेरे को ना दो क्षण के लिए आपने दर्शन करा दिए। तो हमें वो उनकी वाली वाणी अभी तक याद है कि इतनी बड़ी
6: पहुंची
7: साधिका को जब ये आभास हुआ होगा तो एक आम आदमी को कहां से कहां तक ले जाया जाता है।
8: दादी जानकी की बात कही तो मुझे याद आता है, दादी जानकी ने ज्ञान से आत्माओं को सशक्त बनाया, उनकी दृष्टि, उनकी शक्ति, उनके योग से सशक्त बनाया,
7: उनके प्यार में।
8: और सबसे ज्यादा जो यादगार रहते हैं, जब दादी सबके बीच में
7: डांस करती थी,
8: उनका डांस जो हल्कापन, बेसिकली हमने जो दादी को देखा कि नृत्य मना हल्कापन ऑफ द माइंड, मन हल्का है, शरीर हल्का है, और मन और शरीर का बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन, क्योंकि आप अंदर से खुश हैं तो यू आर लाइट।
6: कोई भी दुख में तो कभी नृत्य करता नहीं है, तो पहले आपको अंदर से आनंदित होना है, तभी आपका वो आनंद।
8: तो वो दादी का वो जो लाइटनेस था, वो हर एक को अपने पैरों पे खड़े होकर के डांस करने पे मजबूर कर देता था। और आपने दादी को मजबूर किया डांस करने पे, तो ये आप लोग का
7: करती थी
8: जी।
7: और उस दिन बहुत सारी दादी,
6: फिर जब दिल्ली आई तो कितने सारे उनको जो उपहार मिले थे, वो सारे उपहार मेरे पास अभी भी रखे हैं। उसमें किसी ने बहुत प्यारी दो जयपुरी रजाई थी, वो तो मैंने यूज करी, बाकी उनके दिए कुछ जो भी था, टॉवल्स थे, सब मैंने संभाल के रखा, अभी तक इस्तेमाल नहीं किया। दैट्स स्टिल विद मी।
8: अभी जब आप लोग बात कर रहे थे, मुझे एक चीज रियलाइज हुआ कि जैसे कला है, आपने बताया कि एक दर्पण है, उस दर्पण में आप रोज देख रहे हैं खुद को, रोज संवार रहे हैं खुद को, और कला अगर आपको उन्नत नहीं कर रहा है तो कहीं ना कहीं आप रॉन्ग पाथ पे चल रहे हैं। आपका कला रोज आपको अपग्रेड करना चाहिए, जैसे सिस्टम्स अपग्रेड होते हैं। तो इसका मतलब अगर मैं किसी भी कला से जुड़ा हूँ, चाहे वो नृत्य कला हो या संगीत हो या कोई भी प्रकार के ललित कला से मैं जुड़ा हूँ, वो मुझे रोज सवारे, और वो चेकिंग मुझे खुद करनी पड़ेगी कि मैं रोज चेंज हो रहा हूँ या ट्रांसफॉर्म हो रहा हूँ या नहीं। अगर उस चेकिंग के दौरान मुझे समझ में आता है कि नहीं, मेरे में कुछ खास बदलाव नहीं आया, तो क्या करना चाहिए?
6: हो ही नहीं सकता, ऐसा हो ही नहीं सकता कि आप एक गिलास दूध लें और उसमें नींबू निचोड़ें और वो दूध ना फटे, या आप एक गिलास दूध पिए और वो आपको फायदा ना उठाए, या सूरज की किरणें आप में हर रोज पड़ती हैं और आपके आपके कोई के इसके अंदर विटामिन डी की कमी है, हो ही नहीं सकता, ये असंभव है। और या बारिश में खड़े हुए और आप भीगे बिना अंदर आ जाए, जब ये कला आपको अपने अंदर भिगो लेती है, जब वो अपने आगोश में ले लेती है कोई भी शक्ति, मीरा को क्या था, कृष्ण ने आगोश में ही तो लिया था, फिर अपने से दूर नहीं जाने दिया, उसने सांसारिक उसमें फंसने ही नहीं दिया। जब कोई अदृश्य शक्ति, कला भी एक बहुत अदृश्य शक्ति है, उन्हें अभी देख लीजिए, लता जी को देखिए, दुनिया से चली गई, आवाज अभी भी उनकी है, वो जिसे कहते ना वो दिल कहाँ से लाऊं, वो फीलिंग्स कहाँ से आएंगी आपके अंदर, वो आपकी अर्जित आपकी ही पूंजी है, कोई भी चेक नहीं काट सकता, इसके कोई नॉमिनी नहीं होता।
8: तो इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर आप किसी पाथ पे हैं ललित कला के, डोंट गिव अप, वो आपको चेंज कर ही रहा है, इस निश्चय के साथ उसमें आगे बढ़ते रहे।
6: देखिए पोस्चर, जेस्चर और ये आपके इमोशंस, ये आपको एक तरीके से जैसे आपको कोई फल दिया है, और फल जो है आपको पील करना है, आपको लग रहा है यहाँ से खराब है तो आप उतना उधर से काटते चले जाते हैं। तो हीरा बहुत बड़ा होता है, उसकी वैल्यू है, लेकिन उसकी तराश की वैल्यू होती है। आपको अपने आप को तराशना है, हर रोज तराशना है, और वो तराशना आप ही को है, गुरु तो आपको एक बार बता देता है, मार्ग बता देता है, लेकिन एक कई जैसे मैंने केला लिया, उसको छीला, केला भी मैं खरीद के लाई, छील भी दिया, मुंह में भी आपके डाली, चबाना आपका काम है, तो वो आप अपने आप ही उसको डाइजेस्ट करेंगे, या आपको ये अपनी क्षमता बढ़ानी पड़ेगी अगर आपको हजम नहीं होता है।
8: तो ये तराशना क्या आप कहेंगे, रियाज या प्रैक्टिस है?
6: रियाज प्रैक्टिस भी है। सच्ची बताऊं तो कला बहुत सच्चाई की चीज है। इफ यू आर नॉट ट्रू टू योरसेल्फ, यू आर नॉट ट्रू टू योर आर्ट, द आर्ट विल नेवर कम टू यू।
8: अपने साथ सत्यता का बर्ताव रखना,
6: सत्यता का बर्ताव ये है, मैं भी गलत करती हूँ, बट इफ यू से यू आर रॉन्ग, आप फौरन कहिए जी मैं बेसुरा हो गया, मैं गलत हो गया।
7: हमेशा देखा वो कलाकारों को कभी गलत होता है, कांड कर लें,
6: आप तो किसी
7: गलत करते हैं माँ सरस्वती से,
6: गलत चीज की ना, कलाकार कभी भी गलत चीज को ना, ढीठपन नहीं होता, ढीठपन होगा क्या, वो अब जब आप एक कैनवस को इतना प्लेन रखेंगे तो उसमें जो भी पेंट करेंगे आएगा, उसमें पहले ही कुछ इतना मटेरियल लिखा हुआ हो पेंटेड हो, उस पे आप पेंट करेंगे कैसे आए। और फिर दूसरी बात है जेस्चर पोस्चर हमारे में, जैसे आपके खड़े होने का तरीका है, अगर आप सही नहीं चलेंगे तो लड़खड़ा जाएंगे, अगर टेढ़ा खड़े होंगे तो वो आपके अंदर आएगा ही नहीं। अगर आप एक टेढ़ा पात्र ले लेंगे उसमें कुछ डालने की कोशिश करेंगे तो एक धार से अंदर नहीं जाएगा, उस टेढ़ेपन को पहले आपको सीधा लाना है। दैट यू हैव टू डू योर सेल्फ, इतना सुपात्र बनना जिसे एक तरीके से कहते हैं सुपात्र। कुछ तो ऐसा होता है जैसे मैं सुपात्र नहीं थी, मैं गुरु के सानिध्य में गई, उसने मुझे सुपात्र बना दिया। अब उसने जो बनाया है उसको कायम रखने के लिए अब मैं समझने लगी हूँ, मुझे कोई भी कहेगा तो आई रिकॉग्नाइज फ्रॉम बैक। लोग कहते हैं ना कि आप कौन सा कहते फेस देख के पहचान लेते, वो चीज आपके अंदर इतनी उतर जाती है आपको एक मिनट में पता चल जाता है कि ये हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। सुबह और शाम एक समय होता है वो एक से लगते हैं, जब सूर्य उदय होने का ढलने का, लेकिन अज्ञान व्यक्ति को कह सकते हैं कि सुबह हो रही है या शाम ढल रही है, लेकिन जिसको ज्ञान है उसे तो पता है कि इस समय सूर्य उदय हो रहा है या अस्त हो रहा है करके, उसको नहीं पता। तो ऐसे सब चीज की एक परख है, वो परख आपको उसके लिए कोई यंत्र नहीं लगाना पड़ता, आपको स्वयं पता चल जाता है ये किस जगह से आता है। और एक समय आता है कि आप, क्योंकि आप अदृश्य शक्ति के पुजारी होते हैं ना, तो आप पहचानने लगते हैं। सबसे बड़ी चीज है पहचानना, जो व्यक्ति मेरे गुरुजी कहते हैं जीवन में अगर आप पहचानने लगे तो आपको ये भी पता चल जाएगा आपका वक्त कब आ रहा है, आप सही है या नहीं सही है, आप सही सानिध्य में है या नहीं है। तो पहचानने की, क्योंकि स्वर का कोई आकार नहीं है, कोई रूप नहीं है, आप सिर्फ पहचान की तो उसे
7: कि ये कोमल है या तीव्र है,
6: और कब लगाना है अपने अंदर कोई वो नहीं है। घुंघरू में हमारे सिर्फ एक गोली तो पड़ी है, लेकिन हम उससे बाज को इतना पांव से साध लेते हैं कि उसमें एक स्वर उत्पन्न कर देते हैं।
7: वी मेक इट स्पीक, वी मेक इट स्पीक।
6: कलाकार की हर इंद्री बोलती है, जबकि हम मुंह से सिर्फ बोलते हैं, हमारा हाथ नहीं बोलता। कलाकार का हाथ भी बोलता है, आंख भी बोलती है, पांव भी बोलता है, पूरा शरीर अंग बोलता है, और यहाँ तक कि वो इतना बोलने लगता है कि दूसरा उस मूक संवाद को समझने लगते हैं। तो ये जो भाषा है, देखिए भाषा तो बाद में आई, पहले तो सिर्फ सब लोग हाव भाव और से उसी से अभिव्यक्त करते थे। अभी भी आप ऐसी जगह पे चले जाइए जो आपकी भाषा नहीं समझता है, और आप अपने भाव से तो कहते हैं ना, आपको पीना है, खाना है, जाओ, आई एम वेरी हैप्पी, नमस्कार। आपने नमस्कार की मुद्रा हमारी भारतीय देखिए, पंच तत्व अग्नि वायु आकाश पृथ्वी जल सबको मिला के करते हैं, तो कोई भी नहीं सोचेगा मुझे मारने के लिए आ रहा है, मुझसे घृणा कर रहा है, वो पहले ही सोचेगा कि मेरे को। और कभी भी आपके साथ
8: गुड फीलिंग का गेस्चर है ये,
6: कितने हमारे पूर्वज लोगों ने हमारे लिए इतनी गहरे समुद्र से भी गहरा हमारे लिए जो एक संस्कार की नींव दी है, क्योंकि संस्कार और संस्कृति एक साथ चलते हैं, हम कभी उसको संस्कारों को संस्कृति से अलग नहीं कर सकते। हमें भोजन करना है ये हमारी संस्कृति सिखाती है, ये हमारी जीवन की आवश्यकता है। कैसे करना है, नीचे बैठ के करना है, पतल में करना है, पहले अतिथि को खिला के फिर खुद खाना है, या पहले खुद, ये हमें संस्कार सिखाते हैं। एक सुसंस्कृत समाज में, एक सभ्य समाज में ना, और सुसंस्कृत सभ्य समाज में पोशाक पहनना है ये समाज का, कि अंग को ढकना है हमें, लेकिन वो कैसे पोशाक पहनी है ये हमारी संस्कृति से बना है, हमने क्यों वो पहनी है, वो क्यों हमें ऐसा करना है। तो जो संस्कार की प्रबलता है वो मनुष्य को एक ऐसे जीवन से बांध देती है, जो ईश्वर ने हमें केवल बुद्धि दी है, संस्कार हमें समाज ने दिए हैं, हमारे गुरु ने दिए।
8: जैसे आपने बताया कि संस्कार और संस्कृति ये हमारे भारत देश की एक बहुत बड़ी धरोहर
6: जी,
8: और जो भारत की पहचान भी बनाता
6: बिल्कुल,
8: है
6: बिल्कुल बिल्कुल
8: है ना। तो मुझे इसमें ये चीज जानना था कि
6: आज हम इसमें काम कर रहे हैं, प्रधानमंत्री मोदी जी का हमारी संस्कृति हमारी पहचान
8: जी,
6: आई एम द की मेंबर ऑफ वी आर द की।
7: अभी हम लोग दो तीन दिन से इसी पे डिफरेंट कंट्रीज के लोग आ रहे थे, अभी हमने जॉर्जिया का एक डेलीगेशन आया था उसके लिए लेक्चर किया, लेकिन क्या था, इतना बड़ा नाट्यशास्त्र पे हमें लेक्चर करना था, लेकिन बीच में एक इंटरप्रेटर था। अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा मैं कितनी बार बोलूंगा, कितनी बार इंटरप्रेटर, मैंने उसको कहा तुम चुप रहो, अब मैं सारा काम आंख से करूंगी और फिर इनको समझ में आएगा।
6: बोला किसी को किसी से प्रेम अभिव्यक्त करना, उसमें एक इंटरप्रेटर है, तो कभी वो प्रेम पूर्ण हो पाएगा, नहीं हो पाएगा।
8: मैंने एक्चुअली ये सवाल इसलिए आपको पूछा कि आज आप देखते हैं समाज को, और आज समाज में कई कला प्रेमी हैं, आप उनको रसिक बोल सकते हैं।
7: जी जी बिल्कुल।
8: अब पता नहीं वो रसिक के फाइनल डेफिनेशन में फिट होते या नहीं होते, बट चलो एक एक जर्नी पे सबकी शुरुआत हो चुकी है। लोग चाहे तो टीवी चैनल्स के द्वारा या किसी न किसी रीति से किसी न किसी प्रकार के कला से जुड़ रहे हैं, चाहे वो कला उनके देश और संस्कृति से डायरेक्ट कनेक्टेड है या फिर कहीं से देखा हुआ है, अच्छा लगा, अडॉप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। सवाल मेरा ये है कि ये जो मिक्सिंग हो रहा है, चाहे बाहर की संस्कृति से लिया हुआ कोई कला शास्त्र है, हमारे देश की संस्कृति का कोई कला शास्त्र है, उसको जब हम मिक्स कर रहे हैं, कहीं इस मिक्सिंग में आपको दिखता है कि हमारे भारत की जो संस्कृति है या जो संस्कार है उसमें दृढ़ता इतनी है कि वो और भी संवरेगी, या कहीं ना कहीं इसमें आपको लगता है कि देयर इज सम ट्रबल देयर?
6: देखिए, रिदमिक पैटर्न जहां तक है, मैंने बहुत से मैं आपको बताऊं, 83 में हम लोग यूरोप टूर में गए थे, तो मैंने 17 कंट्रीज का तब टूर किया। हमारा सिर्फ 15 दिन का टूर था, बट आफ्टर दैट एक के बाद एक सभी लोगों ने हमको किया, और हम 1.5 साल बाद 185 परफॉर्मेंस करके बाहर लौटे। ऑक्सफर्ड, कैम्ब्रिज, किंग्स मेडिकल कॉलेज, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, ऐसे बहुत से संस्थान रहे जिसमें मैं अपनी भारतीय संस्कृति को कला माध्यम से बताना चाह रही थी और उसकी आध्यात्मिक ऊर्जा से उनको साक्षात्कार कराना चाह रही थी, और लोग प्रभावित होके भारत को, भारतीय संस्कृति को नमन करते। तो मुझे लगता था कि मेरी जो मेरे गुरु की जो एक सोच है वो साकार हो रही है। और उसी दौरान मुझे एक बार ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में क्वेश्चन आवर्स में परफॉर्मेंस के बाद एक लड़का इंडिया आया होगा, तो उसने क्वेश्चन किया, व्हेन वी वेंट टू इंडिया वी सॉ कुतुब मीनार, मुगलाई फूड एंड कथक डांस, यू हैव ऑल पाकी कल्चर्स, डोंट यू हैव ए कल्चर ऑफ योर ओन? ये बात मुझे चुभ गई, और मैंने गुरुजी से कहा, फिर हमने फिल्म बनाई वॉइस ऑफ कथक, एंड दैट टाइम आई रिप्लाइड हिम कि हर चीज पे सेकंड, जैसे कमलनी जी अभी बोली थी, सेकंड लेयर होती है, तो जो सेकंड लेयर थी वो जो मुगल पीरियड की, उसने हमारी संस्कृति के पे आघात किया, क्योंकि सबसे पहले आप संस्कृति पे आघात करते हैं तो क्या होता है, अब आप पहले ही से उसको बदल देते हैं, फिर आपको बाहरी सीमाओं की दीवार को खींचने की जरूरत नहीं है। आपने गिलास तो वही रह दिया, उसके अंदर पात्र के अंदर जो चीज डालनी थी वो तो आपने डाल दी, फिर पात्र के लिए आप क्यों रह जाए, वो सोने का हो चाहे लोहे का हो चाहे कांच का हो, तो हमें उसके अंदर जो कंटेंट है वो हमें उस प्योर फॉर्म में डालने, वो हमारी संस्कृति है और हम सौभाग्यशाली हैं। और मुझे इस बात का गर्व है, मैंने दुनिया भर में देखने के बाद जितनी हमारी पूर्वजों ने हमको संस्कृति दी है, हम एक जन्म में क्या 20 जन्म में भी उसको पूर्ण नहीं कर पाएंगे, बहुत गहरी है, बहुत गहरी। और जो समय बदल रहा है, मेरे कुछ अपनी पंक्ति आपके सामने रखती हूँ, ये जो समय के अभाव से बदलते, जड़ें कभी नहीं बदलती, कहीं ना कहीं से वो फिर वो पल्लवित हो जाती है, जड़ तना शाख सब वैसे के वैसे ही रहे, मौसम के साथ पत्तों का रंग बदलता चला गया, पत्ते झड़ते हैं, जड़ें नहीं झड़ती ना, वो सूखती हैं जब तक, इसलिए हम जब अपनी जड़ों से मिलके रहते हैं, देखिए आप एक कितने अच्छे भी फूल हो काट के गुलदस्ते में लगा लीजिए, कुछ दिनों बाद वो सूख जाएगा क्योंकि वो जड़ से अलग हो गया है। और एक गुलाब का पौधा लगाइए, मैं अभी 20 साल बाद भी आऊंगी, 40 साल बाद भी आऊंगी, और सही तरीके से अगर उसे सींचा जाए तो अंत तक वो खुशबू और फूल देगा। तो अगर आप अपनी जड़ों से, संस्कृति से जुड़े रहेंगे तो आप पल्लवित होते रहेंगे, क्योंकि आपकी जड़ें यहीं पे हैं, आपकी संस्कृति से। आप सोचे कि केसर की खेती दिल्ली में हो जाए तो नहीं हो पाएगी, क्योंकि उसको वही वातावरण, वही वही मिनरल चाहिए, और लेकिन, जो लेकिन, हम सामने देखते हैं।
7: लेकिन अली कितने कितने महापुरुष हुए, जैसे अपने प्रजापति जी थे, उन्होंने किस सोच और कितने दृढ़ संकल्प के साथ,
6: परमात्मा
7: है जो दुनिया में आए, पता नहीं किस अवतार में, देव अवतार में आए, और उन्होंने इतने बड़े समाज का,
6: परमात्मा के आदेश से आए।
8: मैंने जो चीज पिकअप किया अभी आप दोनों के डायलॉग से, कि अगर मतलब देश की संस्कृति और संस्कार इतनी डीप रूटेड है कि भले पत्तों के कलर्स चेंज हो रहे हैं, अभिव्यक्ति चेंज हो रहा है, लेकिन अंदर का भाव वही है। मुझे एक चीज इसमें ये जानना था कि
7: वो स्टाइल के लिए बोलते हैं,
6: पूरे
7: व्हेन दे आर सिटिंग इन द 4-5 यंग पीपल्स आर सिटिंग इन ए ग्रुप टू शो ऑफ, दे टॉक अगेंस्ट इंडिया, दे टॉक समथिंग डिफरेंट, सो दैट यू कैन सी विद देयर फ्राउन आईज कि ये क्या बोल रहे हैं।
6: पीछे से चले जाइए, पीछे से चले जाइए, एक फेस वैल्यू होती है ना, हार्ट वैल्यू, जिस पे जब इंसान उतरेगा तब उसे पता चलेगा इंसान कैसा, फेस वैल्यू से इंसान ही पता चलता। माना फेस इज द इंडेक्स ऑफ द माइंड, बट फेस इज द इंडेक्स ऑफ हार्ट। जब आप ये सोचने लगेंगे कि आपके अंदर की चीज, आपकी आत्मा आपके चेहरे पे आ जाए, वो आपके भाव में आ जाए, बोलने लगे, वो कला है। फेस इज द इंडेक्स ऑफ माइंड, ये सिर्फ पढ़े लिखों के लिए, कलाकारों के लिए है। हार्ट इज द इंडेक्स ऑफ योर होल प्रेजेंटेशन और वो आप आत्मा बोलती है, तभी तो कहते हैं ना आत्मा से आपने गाना बजाया। जब आत्मा निकल जाती है तो शरीर रखा रहता है, अगर आपको शरीर से प्यार है तो उसको फिर क्यों आप उसको क्यों नहीं रख पाते। और क्या है जो आप सामने देख रहे हैं, मैं युवा लोगों से फिर कहती हूँ क्योंकि मुझे युवा को जोड़ना है जो ऑलरेडी अपने राह पे चल पड़े हैं या वो जो ऐसे ठूट हो गए जिनके ऊपर आप जितना भी जल चढ़ाइए उसमें कभी भी कोपिले नहीं फूटेंगे, उनको बताने से फायदा नहीं, उनका मानसिकता बदलनी ही नहीं सकती है। मैं सिर्फ ये कहना चाहूंगी अंत में फिनिश करने से पहले कि जो आप सामने देख रहे हैं संस्कृति आजकल के भारतीय युवक

0: चला गया। अपनी संस्कृति को बचाने के लिए, तो अपने को जोड़ने के लिए, अपने को ही अपने पहचान बनाने के लिए, अपने से जुड़े रहिए, वही आपकी पहचान।
1: अगर एक जादुई छड़ी आप दोनों के हाथ में दी जाए, इसका जवाब आप दोनों को अलग अलग देना पड़ेगा। एक जादुई छड़ी अगर आप दोनों के हाथ में दी जाए और आज जो कला इन जनरल या कथक इन पर्टिकुलर
0: जी
1: देश में जो उसकी स्थिति है या जो अवस्था है उसमें अगर आपको कुछ बदलाव लाना है तो आप उस जादुई छड़ी को हिला के क्या करना चाहेंगे?
0: मैं सबसे पहले कोशिश करूंगी कि जो बच्चे हैं, जैसे आजकल सफाई अभियान चल रहा है, हम उनकी मानसिकता, चेंज द माइंड नॉट द हैंड। जब माइंड चेंज हो जाएगा तो हाथ भी चेंज हो जाएंगे। ये मैंने यहाँ आके भी देखा आपके संस्थान में कि आप मानसिकता उसके उनके दिमाग को एक सुचारू रूप से चलाते हैं। आप तो पटरी साफ नहीं करते हैं, पटरी मजबूत बनाते हैं।
1: तो मतलब कथक के लिए आप चाहते हैं कि पहले लोगों की मानसिकता
0: बताएं कि ये अर्जित करने की चीज है, चुराने की चीज नहीं है कि आप बटन दबाएं और किसी का वीडियो चुरा के और नृत्य करने लगे। ये अर्जित करने की विद्या है।
1: वेरी ब्यूटीफुल। अब आपकी छड़ी की बारी।
2: मैं चाहूंगी कि उनके अंदर सबसे पहले सहनशीलता है, गहराई और सहनशीलता, क्योंकि आर्ट जो होती है ना, होता है वो, हम एक सरस्वती का स्वरूप है, ममत्व है उसके अंदर, लेकिन उसके बावजूद भी वो बहुत कठोर है। वो आपको ऐसे एक्सक्यूज नहीं देगी कि आप कुछ भी कर लीजिए।
0: ये तो गहरे प्रेम का
2: खाला का घर नाई सीज उतारे मही धरे
0: तब आप आए
2: तब बैठे पग पग माही, ऐसा कुछ है ना
1: जी, जी।
2: तो ये वो वाला, इसमें कोई एक्सक्यूज नहीं है, ना ही कोई रिपीटिशन है। तो उनके अंदर और आजकल के लोगों के अंदर सहनशीलता नहीं है, उनके अंदर पेशेंस नहीं है।
0: कोई राजा का बेटा क्या, मैं तो ऐसा लगाऊंगा तो नहीं चलेगा,
2: तो एक्सक्यूज नहीं होगा। और उसको प्रॉपर प्रोसीजर से ही गुजरना पड़ेगा। दे नीड टू हैव सिंसियरिटी, सहनशीलता, प्रोग्रेसिव एटीट्यूड एंड बैलेंस ऑफ माइंड।
1: वही जो शुरुआत में आपने बात कही थी कि पहले डिजायर रखने लगे हैं लोग, बाद में उसके लिए पात्रता लाते हैं अपने अंदर, जबकि होना चाहिए कि आप अपने तपस से अपने अंदर पात्रता लाए तो आपके पास बाकी ऑटोमेटिकली आएंगे।
2: कला क्षेत्र में भी और अन्य क्षेत्र में भी देखिए, जो जो टॉप में पहुंचे हैं, चाहे वो कलाम साहब हो, चाहे हमारे मोदी जी हो, चाहे हमारे प्रजापति जी हो, सब लोगों ने संघर्ष किया है, किसी ने बैठ के नहीं ना लिया है, ना खाया है, ना दिया।
0: देखिए जो पत्थर तराशे जाते हैं ना, वो विशेष पत्थर होते हैं। बजरी के पत्थर को आप एक छेनी मारेंगे वो टूट जाएगा।
1: आप जब बोल रहे थे मेरे को एकदम से एक विविड मेमोरी आई, जब किसी ने मेरे को शेयर किया कि हमारे पास जब पेरेंट्स आते हैं बच्चों को दाखिला कराने ललित कलाओं के लिए, वो पहले पूछते हैं कि कितने दिन में ये तैयार हो जाएंगे, क्योंकि हमको इनको फलाने कंपटीशन में भेजना है या रियलिटी शो में भेजना है, जो ऑडिशन कब तक दे सकते हैं। तो ये क्या आप मतलब क्या लोगों को ऐसे एक्सपेक्टेशन रखना चाहिए शुरुआत करने?
0: देखिए मैं उनको बड़ा अच्छा जवाब देती हूँ। मेरे पास भी ऐसे मानसिक बीमारी से ग्रस्त लोग आते हैं। वो ये है, आप, मैं बोलती हूँ आप आज एक, चलिए कोई और बीज नहीं, अदरक लीजिए, वो जल्दी मल्टीप्लाई होती है ना, उसको आज डाल दीजिए या कोई एक बीज रोप दीजिए और कल उसको फिर खोद के देखिए उसमें क्या हुआ, फिर गाड़ दीजिए, फिर तो हर रोज तो आप उसको नहीं पनपने नहीं दे रहे हैं, उसको गर्माहट नहीं दे रहे, उसको एक पानी का मतलब उसको बढ़ने नहीं दे रहे हैं। या आप हर रोज एक पौधा लगाएं और उसको उखाड़ के कहें कि मैं इसको वहां कर दूंगा, उस जगह लगाने से बहुत अच्छा रहेगा, तो ना वो पौधा उग पाएगा ना बीज उपलब्ध हो जाएगा। उसको एक गर्माहट, उसको एक समय चाहिए। आप कितने भी रईस हो, करोड़पति कितने भी डॉक्टर से जाके कहो मैं बहुत रईस हूँ, मेरे जो बालक है वो एक महीने में जन्म जाए तो मैं आपको इतना, अरे कैसे होगा, उसको जन्मने में ये जन्मती है, ये अंदर से जन्म लेती है।
1: इसीलिए जो इंडिविजुअल
0: हैज टू कंसीव एंड देन
1: कम्युनिटी ने जो कहा कि पेशेंस बहुत जरूरी
2: है। और मान लीजिए एक
0: बच्चा उससे पहले होगा तो इडियट होगा, तो वही इडियट्स बन जाते हैं फिर।
2: तभी तो बताइए, छोटे छोटे बच्चे रोने लगते हैं, ये माना कि उनके अंदर स्किल है, बट इट्स अ टॉर्चर, इट्स अ शॉर्टकट कभी भी आपको वो, और वो सोचते हैं अब मेरे और आपके पास उतना महंगा मोबाइल नहीं होगा जो उनके हाथ में दबा होगा, बताइए दिमाग खराब हो गया, मेकओवर हो गया।
0: देखिए जो आपको ईश्वर ने हाथ पैर मुंह आंख ना दिए, इससे अपना क्लास बनाइए, ना कि गाड़ी से, बंगले से, और उससे स्टेटस बनाते हैं ना, मटेरियलिस्टिक चीजों से स्टेटस नहीं बनता है, मानसिकता से स्टेटस बनता है।
2: लीजिए एक बात हमेशा और कहती है, ना भुना हुआ ना गुना हुआ,
0: ना भुना हुआ ना गुना हुआ बीज कभी भी पलवित नहीं होता।
1: तो अच्छा बात है।
2: तो आप अगर आजकल के पेरेंट्स अपने बच्चों को घुना और भुना बना देते हैं फिर कैसे होगा, वो भुन जाते हैं पहले ही, तो कैसे वो पले

0: कला को समझने के लिए भी एक समझ चाहिए।
1: और कहीं ना कहीं मुझे ये चीज पर्सनली भी मेरे अनुभव से समझ में आता है कि जब भी हम भारतीय शास्त्रीय संगीत या कला या किसी भी ललित कला से जुड़ते हैं हमारे अंदर सहन शक्ति बहुत बढ़ती है, और दूसरा हम बहुत कैलकुलेटिव हो जाते हैं, क्योंकि जैसे हम पहले भी तिहाई चक्रधार आदि कर रहे थे, मल्टीप्लिकेशन कर रहे थे, सो इट्स नॉट जस्ट राइट साइड ऑफ योर ब्रेन विच इज एक्टिव, आपका लेफ्ट साइड भी वर्क करने लगता है। सो स्पेशली मैंने देखा है जो इंडियन आर्ट फॉर्म्स हैं वो हमको बैलेंस करना बहुत अच्छा सिखाते हैं।
2: एक्यूरेसी, परफेक्शन एंड स्ट्रांग विल पावर डेवलप होती है।
1: एक्यूरेसी, परफेक्शन एंड स्ट्रांग विल पावर, वेरी नाइस। तो हम तो ऐसे रात दिन बैठ सकते हैं और मेबी हम ओवरनाइट कॉन्सर्ट भी कर रहे हैं।
0: देखिए ईश्वर भी क्या चीज सोचता है, हम चाहे कितना भी प्रयत्न करें वो नहीं हो सकता, क्योंकि आकाश कितना भी बड़ा हो और कितने भी अनगिनत उसमें तारे हों, सूरज एक है चांद एक है, इसलिए कलाकार भी कुछ चुनिंदा ही होते हैं, उसी की छेनी से तराशे जाते हैं, उसी की सोच उसको गढ़ती है, हम सो से फेक पात्र हैं। ईश्वर करे कि सबकी सोच में वो छेनी चलाए कि वो अपनी पात्रता को समझ सके कि वो इस धरातल पे किस कार्य के लिए आया है, वो चाहे नृत्यवाद संगीत हो, अध्यात्म हो या किसी भी उसमें हो, एक समय में आके हर जल की बूंद जाके सागर में मिलती है और वो बूंद पुनः जाके बादलों का रूप लेके फिर इस धरातल पे आती। इस विचारधारा से जब हम चलते हैं तो हमको अपने अंदर एक व्यक्तित्व बनाना पड़ता है जिसमें आदर्श होता है। आजकल आदर्श की कमी है, इसलिए युवा लोग भटके हुए हैं। देखिए नदी कितनी पवित्र चीज है, हम याचमन करते हैं, पूजा करते हैं सब, लेकिन वो अपनी सीमा की मर्यादा को तोड़ के जब बाढ़ के रूप में घर में आ जाती है, आप उसमें चावल चढ़ाते हैं, आप उसको पूजते हैं, दिया जलाते नहीं, वो आपके दरवाजे पे आ गई, करिए, क्यों नहीं करते? क्योंकि वो अमर्यादित हो गई है, अमर्यादित हो गई है। तो जब हमारे सामने मर्यादा से के रूप में परिपूर्ण आदर्श होगा तो हम कभी भी अपूजनीय नहीं होंगे। जब हम आदर्श के रूप में पूर्ण होंगे तो हमको देख के 10 और बनेंगे, जैसे सूर्य को हर रोज लोग सुबह अपनी ऊर्जा के लिए जल चढ़ाते हैं, इस आशा से आपकी थोड़े प्रकाश हमारे अंदर भी आ जाए और आपको हम उसको नमन करते हैं। चढ़ते हुए सूरज को, डूबते हुए को कोई अर्थ नहीं चढ़ाता, तो ये इस भावना से अगर हम जो भी इसके कस्टोडियंस हैं अपनी एक वो समझें, दायित्व समझें और अपने आप को उसमें ढालें, उस प्रिंसिपल्स में रखें, उस आदर्श में रखें।
2: गर्व से कहें कि हम भारतीय हैं और गर्व से कहें कि हम भारतीय कला का प्रदर्शन करते
0: हैं। कला तो बोलती है,
2: इसके लिए मैं अपने गुरु जितेंद्र महाराज की शत-शत आभारी हूँ, अपनी माँ, मेरी माँ अभी 94 साल की हैं और अच्छा गाती थी, उनका नाम श्याम कुमारी है,
0: और
2: अपने पिताजी के लिए
0: जिन्होंने हमको इसको हमेशा करने के लिए खुला छोड़ा, और सबसे पहले हमारे राष्ट्र की जिसके भूमि पे हम बड़े हुए और उसने हमें ये सोच दी कि हमें उसकी जिसे कहते हैं आंचल जिस पे उसने हमने इतने प्यार से रखा, उसको हम एक तिरंगे के रूप में विश्व भर में लहराएं और उसकी खूबसूरती दुनिया तक जाए, कला के रूप में एक सुगंध जाए, और जहाँ पे भी वो लोग कहें कि भारतीयों से ज्यादा श्रेष्ठ कोई नहीं है,
1: बहुत
2: सिर्फ वो पुनः सोने की चिड़िया बन जाए,
1: बिल्कुल,
2: और हमारा श्रेष्ठ भारत फिर से विश्व गुरु बन जाए,
0: हमारी संस्कृति, हमारी पहचान इस रूप में हम जाने जाते हैं। और बहुत सी बातें करने के लिए मुझे लगता
1: exactly,
0: है
1: बहुत सी बातें, और एक इंटरव्यू तो या एक सेशन तो बिल्कुल छोटा ही है, लेकिन फिर भी एकदम राउंड में हम अगर जाना चाहें तो एक एक शब्द में अब मैं आपसे जवाब मांगूंगा। सवाल एक ही होगा दोनों के लिए, लेकिन एक एक में आपको जवाब देना होगा। भारत क्या है?
0: भारत एक ऐसा गुलदस्ता है जिसमें सारी संस्कृति, सब व्यक्तित्व एक समाया हुआ है, लेकिन एकमय भावना से है, एक गुलदस्ता है।
1: कब लेने चाहिए?
0: अच्छा, एक शब्द में चाहिए,
2: सेम चीज।
1: हाँ, भारत क्या है?
2: आत्मनिर्भर है।
1: भारत आत्मनिर्भर है, वेरी नाइस। कला क्या है?
0: कला आपकी पहचान है,
2: मन के उद्गार है, स्वयं से साक्षात्कार है,
1: वेरी नाइस। तपस्या क्या है?
2: तपस्या अपनी गहराइयों को जो प्रत्यक्ष और परोक्ष में हम आपके सामने प्रस्तुत कर सके।
0: मुझे लगता है कि तपस्या वो है जो आप अपने आप को तपाकर फिर एक सामने एक स्वरूप देखते हैं ढला हुआ, वो तपस्या है।
2: क्या बात है?
1: शांति क्या है?
2: जिसके लिए सब भटक रहे हैं और वो सिर्फ आपको आत्मज्ञान से मिलती है, कला से मिलती है।
1: आपके लिए
0: शांति वो चीज है जिसके लिए लोग हर काम का निष्कर्ष चाहते हैं, और ओम शांति वाले प्रारंभ वहां से होते हैं जहाँ से लोग समाप्त होने की कोशिश करते हैं।
1: कथक क्या है?
2: कथा कहे सो कथा कहलाए, पूरे चीजों का निचोड़, जिसे कहते हैं सांस्कृतिक, प्राकृतिक, सामाजिक, आध्यात्मिक पहलुओं का निचोड़ कथक है
1: आपके लिए।
0: सहजता को अपने अंदर ढाले हुए, क्योंकि जिस तरीके से हम खड़े होते हैं, और इसमें सबसे बड़ा कृष्ण का पहलू है कि उसमें पंचतत्व नटवरी नृत्य है, और सहज इसलिए है क्योंकि अपने आप में एक सहनशीलता के जितना बदलाव इसमें आया है और किसी में नहीं आया, अपने आप में किसी चीज को ढालने की क्षमता रखता है और सहज है।
1: इतने सुंदर शब्दों में नलिनी जी, कमलिनी जी, आपने हमें इतनी सारी बातें बताई कि मैं तो सच में, मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं कैसे इस अनुभव को शेयर करूं। लेकिन हाँ, एक चीज आज मुझे जानने को मिली कि कला दरअसल हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार, यही कला है। और जब इसकी अभिव्यक्ति हम पूरी निष्ठा के साथ, धैर्यता के साथ करते हैं, तो हमारे जीवन में न जाने कितने नगीने, कितने हीरे मोती ये कला जोड़ने लगता है कि हमारा जीवन जो बहुत सुंदर बन जाता है। नलिनी जी, कमलिनी जी, मतलब आज जो हमने डिस्कशन किया है, आज जो हमने चर्चा की है, मैं समझता हूँ कई समय तक, लंबे अरसे समय तक हमारे सभी श्रोता साथियों को अंदर ही अंदर प्रेरणा देता रहेगा। आपके साथ बात करते हुए कथक के हमने उस पहलू को देखा जिस पहलू पे अक्सर हमारा ध्यान नहीं जाता, सुंदरता और कथक की जो कथाएं हैं वो सब चीजें हम देखते हैं, लेकिन उसके अंदर छिपा जो आध्यात्म है, उसके अंदर छिपा वो शक्ति जो हमारे को एक वाइज पर्सन, एक ज्ञानी गुणी बनाता है, वो हमने इतना नहीं समझा था जितना आज आपके साथ मिल करके, बात करके हमने समझा। इसलिए हम आपका बहुत बहुत दिल से धन्यवाद करते हैं। तो श्रोता साथियों, ऐसे ही कई यशस्वी भारतीयों से हम मिलने वाले हैं हमारे आने वाली कड़ियों में, तो जुड़े रहिएगा हमारे साथ। रेडियो मधुबन के साथ जुड़े रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। सुनते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: आदत बने कैसे? करते करते करते करते आदत बने। अब एक नए तरीके से उन्हीं चीजों को करेंगे तो एक नई आदत बन जाएगी। जब हम एक ही तरह से सोचते जाते हैं हर सिचुएशन में, अगर हमारा एक टिपिकल वे ऑफ रिस्पॉन्ड होने लग गया या रिएक्ट होने लग गए, लेट्स से किसी की आदत हो गई इरिटेट होने की कि चिढ़ के बोलना है, कुछ भी हुआ चिढ़ के बोलना है। किसी की आदत हुई क्रिटिसाइज करना है कि सामने वाले ने कुछ भी काम किया हो ना, उसने उसके अंदर कोई ना कोई नुक्स निकाल ही लेना है। अब करते करते एक बार किया होगा, दो बार किया होगा, दस बार किया होगा, दस लोगों को किया होगा, करते करते उस आत्मा को खुद ही नहीं पता चलता।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपण ऐकत आहात रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM. मी स्मिता जयकर आनंदी रहा आनंदवाणी.
1: रेडिओ पुणेरी आवाज, खुश रहो खुशिया बाटो. नमस्कार रेडिओ श्रोतागण, आपके पसंदीदा रेडिओ स्टेशन रेडिओ पुणेरी आवाज पर प्रस्तुत है ज्ञान चिंतन, एक ऐसा प्रोग्राम जो आपको ज्ञान और सोच के नए आयामों से रूबरू कराएगा. ज्ञान चिंतन.
2: नमस्ते, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM. मैं हूँ नीतू जैन. आज मैं आपको रंगों का जीवन में क्या महत्व है इस विषय को लेकर अपना चिंतन आपके साथ शेयर कर रही हूँ. साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, मानव जीवन में रंगों का बहुत महत्व है, क्योंकि रंगों का यह इंद्रधनुष ही तो जिंदगी को रंगीन बनाता है. यह भी सच है कि प्रत्येक रंग मनुष्य के शारीरिक और मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष प्रभाव डालता है. रंग हमारी इंद्रियों को आकर्षित करने के साथ साथ हमारे विचारों और भावनाओं को भी तरह तरह से प्रभावित करते हैं. जिंदगी को खुशनुमा बनाने के लिए हमें अपने जीवन में कई तरह के रंगों की जरूरत होती है, और प्रकृति में हमें ये रंग अपने चारों ओर किसी न किसी रूप में दिखाई दे जाते हैं. रंग हमारी इंद्रियों को आकर्षित करने के साथ साथ हमारे विचारों और भावनाओं को भी तरह तरह से प्रभावित करते हैं. विज्ञान बताता है कि नीला रंग शांति का प्रतीक होता है, जबकि पीला रंग खुशी और ऊर्जा को प्रकट करता है. हरा रंग उम्मीद और नई शुरुआत का प्रतीक होता है, वहीं लाल रंग प्रोत्साहन और गंभीरता का प्रतीक है. हर रंग का अपना एक विशेष मतलब होता है. यहाँ कुछ आम रंगों के मतलब मैं आप सभी को बताने जा रही हूँ. लाल रंग. लाल रंग प्रेम, उत्साह, गंभीरता और प्रोत्साहन का प्रतीक होता है. इसे अक्सर प्यार और प्रेम को दर्शाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. लाल रंग को ऊर्जा, गर्मी, उग्रता, जोश, जुनून, उत्साह, महत्वाकांक्षा और पराक्रम का प्रतीक माना जाता है. लोगों में उत्साह व साहस पैदा करने वाला लाल रंग उल्लास और शुद्धता का प्रतीक है, जिसे प्यार और काम का प्रतीक भी माना जाता है. पीला रंग. पीला रंग सुरमुई, ऊर्जावान और खुशी का प्रतीक होता है. यह रंग आपकी मनोदशा को सकारात्मक रखने में मदद करता है और खुशहाली के भाव को बढ़ाता है. पीले रंग से पवित्रता का एहसास होता है और इसे देवी देवताओं का प्रिय रंग माना जाता है. खुशी, तत्परता, आशा और ऊर्जा को प्रदर्शित करते पीले रंग से शरीर में स्फूर्ति आती है और इसे रोग दूर करने वाला तथा बेचैनी को खत्म करके मन को शांत करने वाला भी माना गया है. हरा रंग. हरा रंग उम्मीद, प्रकृति, ताजगी और नई शुरुआत का प्रतीक होता है. यह रंग ताजगी और प्राकृतिकता की भावना को दर्शाता है और उम्मीद और नई शुरुआत की भावना को प्रोत्साहित करता है. यह रंग आशावाद, नई शुरुआत, स्वास्थ्य तथा ताजगी का एहसास कराता है और प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में नए जीवन के संचार की प्रेरणा देता है. नीला रंग. नीला रंग शांति, विश्राम और आत्मविश्वास का प्रतीक होता है. इसे अक्सर आत्मविश्वास को मजबूत करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है. नीला रंग जीवन में गति और जीवन देने वाला शक्ति का प्रतीक है. कोमलता और स्नेह के साथ इसे वीरता और पौरुष का प्रतीक भी माना गया है। जीवन में उत्साह, उल्लास और पानी के समान शुद्धता के प्रतीक नीले रंग के प्रयोग से मानसिक शांति मिलती है। रक्तचाप नियंत्रित होता है और यह आपसी संबंधों में प्रेम, विश्वास और कोमलता को भी दर्शाता है। सफेद रंग शुद्धता, सादगी और शांति का प्रतीक होता है। इसे शुद्धता और पवित्रता के रूप में इस्तेमाल करते हैं। आध्यात्मिक शांति और जीवन में सकारात्मकता लाने के लिए भी इस रंग का प्रयोग किया जाता है। सफेद रंग में सभी रंगों के गुण मौजूद हैं और इसे सभी रंगों का जनक माना जाता है। भावनाओं और मूड पर भी रंगों का प्रभाव पड़ता है। जैसे रंगों का चुनाव हमारी भावनाओं और मूड पर सीधे असर डाल सकता है। वाइब्रेंट और ब्राइट कलर्स जैसे लाल, पीला, नारंगी हमें खुश और एनर्जेटिक फील करवा सकता है, जबकि पेस्टल और सॉफ्ट कलर्स जैसे हल्का गुलाबी, बेबी पिंक और आसमानी नीला हमें शांत और रिलैक्स फील करवा सकता है। धार्मिक महत्व भी इन रंगों के द्वारा पता किया जा सकता है। कुछ रंग हमारे सांस्कृतिक और धार्मिक महत्व को भी दर्शाते हैं। मिसाल के तौर पर शादियों में लाल रंग का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि ये रंग खुशी, सुहाग और शुभ अवसर का प्रतीक होता है। वैसे ही हर धर्म में अलग अलग रंगों का महत्व होता है। श्रोताओं, आज के रंगों के विषय में बस इतना ही। फिर मिलती हूँ आपसे एक नए चिंतन के साथ। धन्यवाद।
1: आशा करते हैं कि आज की ज्ञान चिंतन ने आपके मन में नई सोच और नए विचारों को जगा दिया होगा। अगले ज्ञान चिंतन में हम आपसे फिर जुड़ेंगे। तब तक बने रहें रेडियो पुनेरी आवाज पर। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
4: एंगर इज अ वेपन जिसको हमने हर परिस्थिति में यूज करना शुरू कर दिया है। व्हाट वी आर नॉट रियलाइजिंग दैट वेपन डजंट वर्क, इट्स नॉट प्रोवाइडिंग एनी रिजल्ट, लेकिन फिर भी हम उसी शस्त्र को बार बार यूज करे जा रहे हैं और उससे चोट दूसरे को नहीं लगती उतनी ज्यादा, वो भूल जाएगा। बॉडी के अंदर भी उसका इफेक्ट होता है, माइंड पर भी होता है। तो अगर हम ये याद रख लें कि ये एक हथियार है मेरे हाथ में जिससे मैं दूसरों को मारने की कोशिश कर रहा हूँ, उसका किसी और पर कोई अच्छा इफेक्ट नहीं होने वाला है, वो सिर्फ मेरा ही नुकसान करे जा रहा है, तो हम उसको धीरे धीरे ऑटोमेटिकली खत्म कर देंगे। बहुत ईजी है खत्म करना, इट्स जस्ट दिस अंडरस्टैंडिंग ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। कि दूसरा, सबसे पहला निवारण यही होगा कि दूसरा मुझे गुस्सा नहीं दिला सकता, ये खुद मेरे हाथ में। तो आधा तो इसी से खत्म हो जाता है, क्योंकि अभी तक हमेशा कोई और मुझे गुस्सा दिला रहा। ये अंडरस्टैंडिंग ही अपने आप, क्योंकि मैं खुद से गुस्सा नहीं करना चाहूंगी जब मुझे समझ में आ गया कि उसका इतना डैमेज है, लेकिन मैं खुद से नहीं कर रही ना, आप मुझे दिला रहे हैं, तो देन आई फील कि नथिंग इज इन माई कंट्रोल। सो दैट इट सेल्फ चेंजेस सो मच ऑफ द पर्सपेक्टिव देखने का।
3: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जैसी
1: धक धक
0: चेहरा परी सावन बैसे।
2: पुनेरी आवाज 107.8 FM वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो स्टेशन। खुश रहो, खुशियां बांटो।
3: बाजू।

0: मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज। वेलकम सिस्टर।
2: ओम शांति।
1: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में।
2: थैंक यू।
1: लास्ट टाइम मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नेवर बेस योर लाइफ डिसीजंस ऑन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स।
2: डिसीजन लेने के टाइम दो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है। एक, जो डिसीजन मैं आज लूंगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है, राइट? व्हाटएवर डिसीजन आई टेक, करियर, कोई भी चीज, रिलेशनशिप्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी कि ये डिसीजन मैंने दिया। फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी। अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है और मेरे अंदर सिचुएशंस को फेस करने की उतनी ताकत नहीं है, तो आई फील कि अगर कोई और मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि इस समय मैं कंफ्यूज्ड हूँ। जब क्लैरिटी होती है तो हम डिसीजन ले लेते हैं ना, जब कंफ्यूज्ड है कि ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा ये या ये, तो हम फील करते हैं कि अगर कोई और डिसीजन ले दे तो हमारा वो काम इजियर हो जाएगा। अब जितना हम औरों से डिसीजन के लिए पूछते रहेंगे उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर
1: कम होती जाएगी।
2: जैसे कई चीजों में हम कहते हैं ठीक है आपने कहा तो मैं करता हूँ, या कई चीजों में हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे कोई फोर्सफुली वो डिसीजन करवाया जाता है। लेट्स से इन लॉज कोई डिसीजन लेते हैं डॉटर इन लॉ के लिए, पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए, और बच्चे को उनकी खुशी के लिए या परिवार के सुख के लिए, क्योंकि कई बार बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बच्चे को या वाइफ को हस्बैंड की खुशी के लिए ये डिसीजन लेना पड़ता है। ये जो डिसीजंस हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं आई हैव नो चॉइस, इवन ऑफिसेज में बॉस के कहने पर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है एंड आई से आई हैव नो चॉइस, तो हम कर रहे हैं वो कर्म, लेकिन कर्म करते हुए हम कह रहे हैं आई हैव नो चॉइस, ये किसकी वजह से? उनकी वजह से। अब क्या होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं है तो जितनी शक्ति मैं लगाऊंगी उस परिस्थिति को फेस करने में वो उतनी नहीं होगी अगर वो डिसीजन मेरा होता तो। लेट्स से कोई करियर मुझे फोर्सफुली डिसीजन लिया जाए मेरे लिए लेकिन मेरा मन नहीं था, तो जितनी मैं अपनी शक्ति लगाऊंगी उस 5 साल की पढ़ाई करने में, उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में, वो तब ज्यादा होते अगर वो चॉइस और वो डिसीजन मेरा होता। अब क्या होगा, छोटी सी भी बात आएगी तो आई विल गिव अप इजिली, क्योंकि आलसे ये डिसीजन किसका था? उनका था। जैसे फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई बच्चा उसकी चॉइस से कोई मैरिज करता है या करियर करता है, उसमें भी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे करना है। जैसे आपने कहा मैं हैदराबाद छोड़ के आ गया एक्टर बनने के लिए, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे ना, लेकिन वो चैलेंजेस को आपने किसी को भी घर जाके कंप्लेंट नहीं किया होगा।
1: मैं घर वापस ही नहीं जा सकता था।
2: हाँ, लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, किसी और को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो डिसीजन किसका था?
1: मेरा।
2: आपका था। जब वो आपका डिसीजन है तो उसमें चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उसको फेस करने के लिए। अब यही अगर आप आना चाहते थे एक्टर बनने के लिए लेकिन अगर आपको फैमिली फोर्स से
1: रोक दे
2: और आपको एक अलग प्रोफेशन के लिए आपका डिसीजन ले, उसमें आप इतनी शक्ति ना लगाते जितनी इसमें लगाए।
1: कितने लोग बोलते हैं मुझे भी वो करना था लेकिन उन्होंने बोला पहले इंजीनियरिंग कर लो, पहले कुछ डिग्री का कोर्स मतलब MBBS कर लो फिर देख लेना, कहीं नहीं हुआ तो।
2: ट्रू,
1: यू नो लाइक दैट। ये तो ठीक है, एक डिसीजन ऑफ अ करियर है।
2: नहीं, बट एनी डिसीजन में जो रूल होता है वो रूल रिमेन्स द सेम। कोई भी डिसीजन, चाहे वो दिन का, आज के दिन का छोटा सा डिसीजन हो, लेट्स से हमने अभी डिसाइड किया कि अभी ये एपिसोड शूट करना है, राइट? सपोज आपका मन नहीं हो शूट करने के लिए, लेकिन हम कहे नहीं नहीं आपको ये अभी करना ही है, अब आपका मन नहीं है, ये आपका डिसीशन नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ये डिसीशन जैसे कि इम्पोज किया जाए, तो फिर क्या होगा, छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी, छोटी सी भी कोई बात आएगी, आप कहेंगे देखा मैंने बोला था ना ये नहीं करना है, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है, ये आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये आपका डिसीशन हो तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत प्यार से क्रॉस करेंगे, क्योंकि मेरा डिसीशन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत है, ये बड़े डिसीशन के लिए नहीं होता है, रूल इज द सेम फॉर एवरीथिंग।
1: प्रॉब्लम ये है कि डिसीशंस लोग लाइफ पार्टनर्स तक ले लेते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बोला, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि मेरा मरा हुआ मुंह देखना अगर इससे शादी नहीं करेगी।
2: yes.
1: इस किताब में जो लिखा है कि हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए जो हमारे साथ अंत में उसके रिजल्ट में हमारे साथ नहीं है। वैसे तो रिजल्ट में कोई भी डिसीशन में हमारे साथ नहीं।
2: अब हमें क्या करना है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है करने के लिए, जैसे आपने कहा पेरेंट्स ने कहा कि आपको यही शादी करनी है, आपको यही करियर लेना है, आज आपको यही करना है, क्योंकि जब हमें राय कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो हमें पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए दे रहा हो, लेकिन जब हम उस राय को ले लेते हैं, उस एडवाइस को ले लेते हैं, हमें उस एडवाइस के साथ काम करना पड़ेगा, एंड काम करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा, जब तक वो डिसीशन वो मेरी चॉइस ना बन जाए। इवन इफ आई हैव टेकन इट फ्रॉम यू, आई टेक द एडवाइस फ्रॉम यू, बट आई विल मेक द डिसीशन ओनली व्हेन आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस इज माय चॉइस। दैट्स अ वेरी थिन लाइन नाउ अगेन बिटवीन दैट। एक है आपने कहा आपको ये करना है, मैं कहा नहीं मुझे नहीं करना है, फिर आपने कहा आपको मेरी खुशी के लिए ये करना होगा। अब अगर मैंने सिर्फ, क्योंकि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, एक रिश्ते, पेरेंट, चाइल्ड, इन लॉज, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहा अगर नहीं किया तो घर में झगड़ा होगा। कई बार तो जैसे आपने कहा ऐसे भी थ्रेटन मिलेंगे कि अगर नहीं कहना माना तो आई विल डू समथिंग टू माई सेल्फ, इतने तक थ्रेट्स। तो उसमें क्या करना होगा, मैं ये करने के लिए इसलिए रेडी हो रही हूं क्योंकि ये करने से इनको अच्छा लगेगा, इनको अच्छा लगना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों, क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिवार की खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवार मेरे इस डिसीशन से खुश होने वाला है, तो परिवार को और अपने रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए मैं ये डिसीशन ले रही हूँ।
1: ये प्यार है या वीकनेस है,
2: ये चॉइस है, ये चॉइस है। सपोज मुझे यहाँ जाना है, आपने कहा नहीं यहाँ जाना है, देखो नहीं मेरा मन यहाँ जाने के लिए है, तो आपने कहा नहीं मेरी खुशी इसमें है कि आप यहाँ जाओ, ठीक है, लेट्स से इतना ही। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो यहाँ जाना है और आप नाराज हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, या यहाँ जाना है और आप खुश हो जाएंगे। अब मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को देखती हूँ, एंड प्रायोरिटी लिस्ट में अगर ये जो चॉइस है कि यहाँ जाना और यहाँ जाना, ये छोटी है और मेरा रिश्ता उससे बड़ा है।
1: अच्छा,
2: मेरा रिश्ता
1: विच इज मोर इम्पोर्टेंट।
2: अगर मेरा रिश्ता उससे बड़ा है और मुझे ये रिश्ते में हार्मनी वो मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, तो आई विल से ओके, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पेरेंट खुश रहे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन उनके लिए कर रहा हूं नहीं। ये जो लाइन हम सारा दिन में बहुत बार लिख देते हैं, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनकी खुशी के लिए ये किया, उनको अच्छा लगता इसीलिए मैंने ये किया, उनकी खुशी मुझे अच्छी लगती है, उनका अच्छा फील होना ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस रास्ते जाना चूज किया, द डिसीशन वॉज कंप्लीटली माइन एंड आई हैव डन इट ओनली एंड ओनली फॉर माई सेल्फ।
1: ये लाइन मुझे बहुत जरूरी है सुननी दोबारा,
2: मैंने ये किया अपनी खुशी के लिए।
1: लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते ना मैं इनके लिए फिर ये किया,
2: अगर मैंने आपके लिए किया,
1: जो समझो गांव में है, छोटी जगह है, उसको बोलते इस घर में तेरी शादी करनी है, क्योंकि मैंने सोच लिया
2: राइट
1: बाप आपने
2: ठीक।
1: अब आप कैसे बोलेंगे ये लाइन जो अभी आप कह रहे थे
2: क्योंकि
1: मैं अपनी चॉइस है ये मेरी घर से भाग जाए
2: ऑप्शन है ना
1: कहाँ से भाग जाए कहाँ कहेगी
2: सी
1: देखिए प्रैक्टिकली नहीं
2: प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली आई टेल
1: अनपढ़ है
2: एब्सोल्युटली
1: पैसे नहीं है अकेली है कोई फ्रेंड्स साथ रखने को नहीं है और कहाँ भागेगी वो
2: तो आई टेल माई सेल्फ ये मेरे जीवन के ऑप्शंस हैं या तो मैं अभी भाग सकती हूँ या मुझे इनका कहना मानना है भागना अगर मैंने चूज किया तो मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं ये चैलेंजेस को फेस करने की ताकत
1: इक्वल प्रॉब्लम हो तो
2: दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम है तो दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम में से फाइनली चूज किसने किया
1: मैं मजबूर हूँ और चॉइस पे फर्क है
2: नहीं मजबूरी हाँ? में भी
1: आप देखिए सुनिए एक इंग्लिश फिल्म में है लिखा हुआ मैं डायलॉग आया था ये माय फादर फोर्स्ड हिम टू सी दैट ही डज नॉट रिफ्यूज ही गेव हिम एन ऑफर व्हिच ही कुड नॉट रिफ्यूज
2: एब्सोल्युटली
1: बोला कि ऑफर को ही कुड नॉट रिफ्यूज का मतलब क्या है पहले गन पॉइंट रखा यहाँ
2: ठीक है अगर मुझे आज कोई गन पॉइंट पे भी रखते आज मुझे कोई गन पॉइंट पे रखे और कहे ये गलत काम करो ठीक है ये हो सकता है ना कि आपको ये गलत काम करना होगा यू आर नॉट गन पॉइंट ठीक तब भी मेरे पास फिर चॉइस है ना
1: नहीं मैं उसे मजबूर कहूंगा चॉइस नहीं बोलूंगा
2: नहीं सी ये जैसे ही हम मजबूरी वर्ड मजबूरी भी चॉइस तो है ना पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्म की ये लेनी पड़ेगी आज मेरा बॉस मुझे बुला के बोले आपको ये करप्ट काम या ये गलत काम करना होगा अदरवाइज यू लूज द जॉब आपकी ये नौकरी आज शाम को जाएगी इट्स एज गुड एज गन पॉइंट फॉर मी राइट नाउ लेट्स से क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है मेरे पास कल मॉर्निंग के लिए जॉब नहीं है नेक्स्ट महीने मेरे घर मेरे बच्चे की शादी है दिस जॉब इज एवरीथिंग फॉर मी राइट नाउ एवरीथिंग अगर ये जॉब आज जाती है इट मीन्स टेरेबल थिंग्स फॉर मी एंड माई फैमिली ठीक है उस समय मुझे क्या करना है इवैल्यूएट करना है अगर मैंने जॉब छोड़ा तो ये मेरे सामने और परिवार के सामने चैलेंजेस है और लेकिन अगर मैंने आज ये काम किया तो या तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती या मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता एंड दैट टाइम आई विल मेक अ डिसीजन इट विल बी माई डिसीजन It will be my choice. I cannot say I have no choice. Even at gunpoint, mere paas choice hai ki main wo kaam karu ya I choose to die. To bhi choice hai. Kabhi bhi hum dusre ko nahi keh sakte inki wajah se maine ye karam kiya. Kyunki karam finally maine hi kiya. एंड इट्स बेटर कि मैं अंडरस्टैंड करके कर्म कर लूं क्योंकि उस कर्म का जो रिजल्ट आने वाला है वो उनके सामने नहीं आने वाला है जिन्होंने एडवाइस दी थी
1: ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ मुझे ही आज तक नहीं मालूम था तो एक गरीब अनपढ़ लड़की जो जिसको जबरदस्ती के बोलते कि भाई फलानी जगह तुम्हारी शादी है फलानी तारीख को है तुम्हारा उस दिन हमारे घर में लास्ट डे चलो शादी करो भाग जाओ
2: आप देखो हमारे पास कुछ बहने आती है जो घर पे मार खाती है सालों से मार खा रही है मतलब उनकी बॉडी पर फिजिकली वो मार दिखती है इतनी मार खा रहे हैं अब वो कहेंगे मजबूरी है परिवार है बच्चे हैं रहने को कहीं नहीं है पैसा नहीं है इसीलिए हम वहां रहते हैं अब आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास ये भी चॉइसेस हैं आप छोड़कर जा सकते हैं आप अकेले लड़ सकते हैं आप अकेले रह सकते हैं कहेंगे नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है
1: They
2: are choosing at every step we are choosing.
1: That means मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि मार खाना आसान है
2: जो भी है वो तो आत्मा
1: अगर ये difficult है तो this is easier ना
2: अब उसी परिस्थिति में कोई और आत्मा चूज करेगी कि नहीं रहने दो मुझे नहीं मालूम कल मेरा क्या होगा लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती इस परिस्थिति में आई चूज टू वॉक आउट कोई कहेगा कि ठीक है अगले महीने मेरे बच्चे की शादी है मेरे पास आज के बाद नौकरी नहीं होगी मेरे पास धन नहीं होगा मुझे नहीं मालूम मैं कैसे उस सिचुएशन को फेस करूंगा आई हैव नो आइडिया लेकिन आई विल नॉट डू दिस दोनों तरह के लोग मिलेंगे ना दोनों तरह के लोग कितने हैं जो आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कितने हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे बोथ इज फाइन वी आर नॉट हियर टू से कि हुज राइट और हुज रॉन्ग. इम्पोर्टेंट इज दोनों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों केसेस में चॉइस मेरी है, डिसीशन मेरा है, कर्म मेरा है, कार्मिक अकाउंट मेरा है, कर्म का फल जिसके पास आएगा वो मेरे पास आएगा. उस समय ये नहीं कहना है मेरे पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने बोला इसलिए मैंने किया. इसलिए अवेयरनेस चाहिए. अगर वो सिर्फ कर्म होता तो भी ठीक था कि आपने कर्म किया सोच करके ये किसी और की वजह से मुझे किया, लेकिन व्हाट अबाउट जब उस कर्म का फल आने वाला है, क्योंकि वो ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे आएगा ना. जब उस कर्म का फल आएगा तब क्या आप कह सकते हैं कि ये उनकी वजह से. लेट्स से टेक अ सिंपल थिंग. आज मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ, मेरे सामने एक टीम ऑफ 100 डॉक्टर्स है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके इतने ऊंचे टारगेट्स हैं, ठीक है. अब मैंने एक ऑर्डर पास किया कि इतने ऊंचे टारगेट्स मीट करने के लिए आपको कुछ कुछ कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत इतना इतना एक आधा टेस्ट इधर एक आधा स्कैन जो भी छोटी मोटी चीजें. आई हैव टू गिव एन इंस्ट्रक्शन. जो डॉक्टर उस इंस्ट्रक्शन को लेगा और कहेगा क्या करूं, नौकरी है करनी पड़ेगी, कहना मानना पड़ेगा, और वो भी वही कर्म करेगा कि आज अपने सामने आए हुए मरीज को वो एक्सप्लॉइट करेगा, उसके सामने भी फल आने वाला है. और जो व्यक्ति ये अंडरस्टैंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है लेकिन ये इस समय डिसीशन कि मैं ये कर रहा हूं, ये चॉइस मेरी है, फल उसके सामने भी आने वाला है. लेकिन जो अवेयरनेस से डिसीशन लेगा कि ये डिसीशन मेरा है, वो ये भी अवेयर रहेगा कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है.
1: बट ये मैं अगर उस जगह पे होऊंगा तो ये कहूंगा कि मैं मजबूरन वो डिसीशन लिया और आज मजबूरन ये कॉन्सिक्वेंसेस ले रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है. आई वॉज फोर्स्ड टू डू देन, आई एम फोर्स्ड टू डू नाउ.
2: यू वर नॉट फोर्स्ड टू डू इट.
1: मेरे को गन पॉइंट पे था, वरना उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चों को मार दूंगा.
2: ठीक है, तो आपने चूज किया.
1: आज कैसे काम करते हैं आप, फलाने रुपए दो, हिंदी फिल्मों में नहीं देखते.
2: तो ठीक है ना, तो मैंने चूज किया ना, तो इट्स ओके ना, मैंने चूज किया. आज अगर मैं ये गलत काम नहीं करता तो मेरे बच्चों पर ये इफेक्ट होता, तो मैंने चूज किया.
1: चूज इतनी जल्दी यूज कर लेते हो शब्द.
2: नो बट
1: चूज वहाँ होता जो मुझे पसंद है, मेरी चॉइस है.
2: मेरे पास ये दो
1: ये,
2: थे.
1: ये मुझे चूज करने के लिए दो दो मिले, ये काला लो या ब्राउन लो या ये लो, तब मेरे पास चॉइस है. अब मजबूरन मुझे बोला कि तुमको गोली छोड़ा देंगे, आप ये रखोगे.

0: मेरा परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने चूज किया वो काम करना, विच इज ओके, मैंने चूज किया। कोई और है वो बोलेगा नहीं, मैं देखूंगा क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, लेकिन मैं ये नहीं करता।
1: डिक्शनरी पे वर्ड कहाँ से है मजबूर?
0: जब हम अपने डिसीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं मुझे मजबूर किया गया। मुझ पर प्रेशर हो सकता है, मुझ पर सारी दुनिया का भी प्रेशर हो सकता है कुछ का, मुझ पर प्रेशर हो सकता है, मुझ पर सारी दुनिया का भी प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए, 1, 2, 10 लोग क्या, मुझ पर सबका प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए, मुझ पर रिलीजन का प्रेशर हो सकता है, मुझ पर बहुत सारे प्रेशर, पॉलिटिकल प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, मेरे पर सारे प्रेशर्स हो सकते हैं, लेकिन फाइनली डिसीशन मुझ आत्मा का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम कभी भी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तो मेरे सामने ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब जब जो भी कर्म किए हमने कहा नॉट माई चॉइस, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है, ये बड़ी बातें क्यों हम लेते हैं, छोटी बात, आज मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए, लेकिन अगर मैं सच बोलूंगा तो बॉस गुस्सा करेगा, अगर मैं बोलूंगा जी मेरी वाइफ बीमार है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे इजीली छुट्टी मिल जाएगी, तो हम कहेंगे आई हैड नो चॉइस, झूठ बोलना पड़ा, सच बोलता ना तो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी हम आई हैड नो चॉइस तो ऐसे बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी, आई हैड नो चॉइस इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा, हमने झूठ बोल दिया। वे नॉट टॉकिंग कि कौन सा कर्म राइट है कौन सा रॉन्ग है, इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है मेरा हर कर्म चाहे वो एक छोटा सा झूठ है, चाहे वो एक जीवन का बहुत बड़ा डिसीशन है, किसी भी कर्म में हम ये नहीं कह सकते आई हैड नो चॉइस करना पड़ा। आई हैड नो चॉइस तो हम बहुत लिबरली यूज करते हैं आज सारा दिन, आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू गो देयर, आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू डू दिस, हर स्टेप पे चूज कर रहे हैं।
1: मैं किसी के खातिर कुछ नहीं करता हूँ दुनिया में, मुझे आपसे प्यार है तो मैं आपकी खातिर ये कर रहा हूँ।
0: अगर हम ये बोलेंगे कि मैं उनकी खातिर ये कर रहा हूँ, तो पहले तो हम उस करने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे, और दूसरा करके हम उनके ऊपर
1: एहसान
0: जताएंगे, और तीसरा फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने उनकी खातिर किया तो अब वो मेरी खातिर करेंगे। तीनों चीजों में डिसएम्पावरमेंट, पहले कहा उनके लिए तो अपनी खुशी नहीं देखी, दूसरा उन पर उस चीज का एहसान जताया, तीसरा उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, चौथा जब उस डिसीशन का कॉन्सिक्वेंस आया अगर अच्छा नहीं था तो उन पे ब्लेम कर दिया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्थ फिर उनसे एक्सपेक्ट किया कि मैंने उनके लिए किया था तो वो भी मेरे लिए करेंगे, तो कॉन्फ्लिक्ट, किया सब खुशी के लिए था, रिजल्ट क्या निकल के आएगा, डिसएम्पावरमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट।
1: आपकी चॉइस करने के लिए आपके पास ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा पैसा है, आप 6 साल बैठ के खा सकते हो घर पे, मैं 6 दिन के 6 घंटे नहीं रह सकता,
0: ठीक है,
1: इतनी जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो तब मैं उसको चॉइस बोलूंगा।
0: एक के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, मतलब बेअंत, फिर भी वो चूज करता है आज चोरी करना या दूसरों को चीट करना, वो चॉइस है। एक के पास अगला मील नहीं है, अगला भोजन नहीं है अपने परिवार को खिलाने के लिए, फिर भी वो चूज करता है कि मैं चोरी करके नहीं खिला सकता हूँ, सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चॉइस है। ये चॉइस हम अपने कर्म और अपने संस्कारों पर बेस्ड बनाते हैं, सिचुएशंस पर बेस्ड नहीं बनाते हैं। क्या चॉइस करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनके संस्कार पर डिपेंड करेगा, लेकिन इम्पोर्टेंट है हर चॉइस करते समय सिर्फ ये अवेयरनेस, मजबूरी नहीं है, सिचुएशंस है, चॉइस मेरी है, कर्म मेरा होगा, और जैसे आपने पढ़ के सुनाया, चलना उस रास्ते मुझे होगा, कार्मिक अकाउंट मेरा क्रिएट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस उस कर्म के मेरे सामने आएंगे, और जब मेरे सामने आएंगे तो मुझे अकेले ही उनका सामना करना है, अब डिसीशन ले ले।
1: नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना सिस्टर, मैं आज सोचता हूँ कि यही चीज 20 साल पहले 30 साल पहले मैंने जो की, आज की बुद्धि के हिसाब से, आज के

0: सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अगर वो मुझे लगता है वो मेरी चॉइस गलत थी, अगर इतनी बुद्धि और इतना तब मुझे अकल होती तब मैं ये नहीं करता, तो वो पछतावा जब आता है, गिल्ट आती है, तो तब वो वाली चॉइस गिवन सर्कमस्टांसेस में तब भी मैं राइट ही तो था ना।
1: आपने जो डिसीशन तब लिया, राइट एंड रॉन्ग की नहीं बात हो रही है कि वो डिसीशन राइट था या रॉन्ग था। इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये है कि वो आपका डिसीशन, आपकी चॉइस था। आज हम जो डिसीशन लेंगे, हो सकता है कल ही हमें वो रॉन्ग लगे, ये भी तो हो सकता है। आज हमने एक डिसीशन लिया, कुछ कर्म में लाए, एंड कल हमें लगे कि नहीं, शायद हमारा मूड ऑफ था उस टाइम, शायद हमारे पास इनकम्प्लीट इंफॉर्मेशन थी उस समय, अवेयरनेस नहीं थी, तो कल मैंने जो डिसीशन लिया वो मेरे लिए राइट नहीं था। आई कुड हैव डन इट दिस वे, तो टुमोरो आई विल डू इट अनदर वे। अगर कल मेरे सामने वो परिस्थिति आए मैं अलग तरह से करूंगी, बट इम्पोर्टेंट है उस दिन भी मैंने लिया था, आज भी मैं लूंगा, कल भी मैं लूंगा।
0: उस दिन की जो डिसीशन है, अगर मैं किसी पे नहीं थोपूं और ब्लेम किसी और को नहीं करूं, तो मैं कितना डिप्रेशन में आ जाऊं, गिल्ट में आ जाऊं कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती की है,
1: और
0: मुझसे
1: अगर
0: गलती हो गई है।
1: गलती किसी और की वजह से,
0: अगर मैं बोलूं यार किसी और की वजह से हो गई है, कितना आसान हो जाता है जीने।
1: कर्म किसका था, डिसीशन किसका था, मेरा था। इम्पोर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस भी किसके सामने आएगा, मेरे सामने आएगा। जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तो कॉन्सिक्वेंस को फेस मुझे करना है, ताकत चाहिए। अगर मैं ब्लेम गेम में गए तो जो ताकत
0: जीना
1: चाहिए,
0: आसान हो जाता है ना उसमें।
1: ब्लेम गेम में जाने से डिसएम्पावरमेंट होती है, आत्मा की शक्ति कम होती है। वो शक्ति हमें चाहिए उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए, उनकी वजह से, उनकी वजह से, मेरी गलती नहीं। ये इवन जब हम भगवान को ब्लेम कर रहे थे कि ये जो मेरे सामने आया ये परमात्मा की वजह से, तो फिर वो कॉन्सिक्वेंस को फेस करने की जो पावर, जो यू नो मोटिवेशन जिससे मुझे उसको फेस करना था, आई के नॉट, बिकॉज आई से उनकी वजह से आपने मुझे इस कॉलेज में डाला, अब नहीं मैं ठीक से पढ़ती। फिर उसमें वी सी सो मेनी चिल्ड्रेन जो IIT में आ जाएंगे, ब्रिलियंट है तभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, लेकिन आने के बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है। जानबूझ के नहीं करते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डिक्लाइन
0: मन
1: होती है।
0: नहीं,
1: इसके ऊपर स्टडी हुई है, वो स्टडी ये बताती है कि सब कॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो उसका डिसीशन नहीं था, वो उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, और वो अपनी जो कैपेसिटी जो लगा सकते हैं उस चीज के अंदर, वो सब कॉन्शियस माइंड उसको लगाने के लिए अलाव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस मन का डिसीशन नहीं था, क्योंकि किसी और ने उसको फोर्स किया है वो करने के लिए। कोई हमें कुछ भी कहे करने के लिए, अगर हमें करना है वो सी करना है, लेट से आपने मुझे कहा यहाँ जाना है एंड फाइनली मुझे जाना है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी जाने के टाइम, ताकि मेरा मन, मेरी बुद्धि अपनी पूरी एनर्जी लगा दे उसके अंदर। और प्रोग्रामिंग ये है, मैं कर रही हूं इनके कहने पर, लेकिन इनका कहना मानना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी खुशी है, ये डिसीशन मेरा है, ये प्रोग्रामिंग करके अब उस रास्ते चलना है। दूसरी चीज जो हम करते हैं, ये कह रहे हैं करने के लिए, इनका कहना तो मानना पड़ेगा, और कोई चॉइस नहीं है, फिर उस रास्ते चलते हैं। रास्ते तो वही चल रहे हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज हो गई पूरी तरह से। जहां ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी, मेरा डिसीशन है, कंप्लीट एनर्जी चेंज हो जाएगी उस कर्म को करने। और मोस्ट इम्पोर्टेंट, अब हम वो कर्म खुश होकर करेंगे, खुश करने के लिए नहीं करेंगे। हैप्पी रहना है ना, खुश रहना है। खुश तब रह सकेंगे जब हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। व्हेन आई से इट्स नॉट माय चॉइस, आई कैन नेवर बी हैप्पी। आई कैन नेवर बी हैप्पी इफ आई एम डूइंग एनी कर्म विद दिस इन माय बैकग्राउंड। आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे को करना पड़ता है। नेवर बी हैप्पी, खुशी डिप्लीट होने का बहुत बड़ा ये कारण है। तो उसके ऊपर मनन करके, चिंतन करके, अपने को काउंसिल करके, कन्विंस करके, आई एम चूजिंग टू डू दिस, फिर आप बहुत खुश होकर, खुश रहकर वो कर्म करेंगे, इवन इफ इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू।
0: खुश होकर कर्म कैसे करना है, कैसे अपना मनन चिंतन करना है, उसके लिए क्या मेडिटेशन करना है और संस्कार को का परिवर्तन कैसे करना है, अगले एपिसोड में मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
1: Sure.
0: तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। नमस्कार।
2: द मोर वी आस्क अदर्स टू टेक डिसीजंस फॉर अस, आवर ओन डिसीजन मेकिंग पावर विल रिड्यूस। व्हेन द डिसीजन इज आवर्स, we put in more than our capacity to implement the decision. We do not blame anyone. Instead, take personal responsibility for the consequences of the decision and face them with power and stability. If people ask us to do something, let us not do it for them. Always remember, they are important to us, their happiness matters to us, so we are doing it for the harmony in our relationship. Decision is for our happiness, not theirs. However challenging the situation may be, the decision we take is our choice. We can never say, I had no choice. The decision is ours. Karma is ours, karmic account is ours, and the return of the karma is our responsibility.

0: अहो ऐकलत का हो
1: अरे रीमा सोलार पैनल लगवा ले, सोलार पैनल लगवा ले। कब से मुझे सारे दोस्त बोलते थे, पर मैंने माना जब प्रधानमंत्री जी ने कहा
2: भारत सरकार का लक्ष्य सोलर पावर से बिजली बिल जीरो करने का भी है।
1: मैंने प्रधानमंत्री जी के कहने पर सोलर पैनल लगवाया और मेरा बिजली बिल जीरो आया। आप भी लगवा लो
3: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना, आज ही रजिस्टर करें पीएम सूर्य घर .gov.in पर।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो दिन में दो लेंगे वो कभी नहीं छूटेगी, क्योंकि जितनी बार की तो वो आदत क्या होती जाएगी, पक्का। लेकिन अगर अब उन्होंने कहा 3 दिन बिल्कुल नहीं, तो वो 3 दिन में उन्होंने उस आदत को कमजोर करना शुरू किया। तो कोई भी आदत को खत्म करने का एक ही तरीका है सिर्फ, कि उसको कर्म में आने नहीं देना। जितनी बार वो आएगी वो सिर्फ क्या होती जाएगी, स्ट्रेंथन होती जाएगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

बाजू मेरे आज

0: पुनेरी आवाज 107.8 FM, वर्ल्ड रिन्यूअल स्पिरिचुअल ट्रस्ट का सामुदायिक रेडियो। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: खाबों का सफर आरजे सनी के साथ।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर ख्वाबों का सफर। मैं हूं आपका हम सफर सनी। जी हां, आइए आज के इस ख्वाबों का सफर को बनाते हैं यादगार सफर। और कहते हैं वक्त बदलता है जिंदगी के साथ, जिंदगी बदलती है रिश्तों के साथ, रिश्ते नहीं बदलते अपनों के साथ, बस अपने बदल जाते हैं वक्त के साथ। आप सुना है रेडियो पुनेरी आवाज। आइए ख्वाबों का सफर को और भी खूबसूरत बनाते हैं। आज जो हम लोग डी अक्षर वाले बहुत ही खूबसूरत गाने आपको सुनाएंगे, और इसका कलेक्शन जो है हमारे दोस्त हमारे साथ है जो आपको सुनाएंगे।
1: मित्रों नमस्कार, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है अच्छे होंगे, मैं भी अच्छी हूँ। ख्वाबों के सफर में मैं किरण मेकल आपके साथ हूँ। रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर आप सबका स्वागत करती हूँ। मेरे साथ इस सफर में चलते चलते बस मेरा साथ ना छोड़ना, मैं भी आपका साथ नहीं छोड़ूंगी। आज के डी अल्फाबेट से मेरे सभी गाने हैं, आशा है आपको अच्छे लगेंगे। एक बात कहना चाहती हूँ, उनका हर अंदाज हकीकत है या ख्वाब है। खुश नसीब हैं वो लोग जिनके पास वो रहते हैं, मेरे पास तो बस उनकी मीठी सी यादें हैं। दोस्तों आप लोग भी हर जगह रहते हैं, मेरे पास तो सिर्फ आपकी मीठी यादें रहती हैं। और आपकी मीठी यादों के साथ ही तो आइए दिल की गिरह खोल दो, आइए सुनते हैं ये गाना।
0: जी, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने याद कराया है, 1967 का, शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ, लता मन्नाडे का गाया हुआ, शंकर जयकिशन का संगीत, चित्रपट रात और दिन। जी हाँ, आइए आगे बढ़ते हैं, इस गाने का लुफ्त उठाते हैं। कार्यक्रम की शुरुआत में ये गाना खास।
2: दिल

0: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीति आवाज 107.8 FM पर खाबों का सफर। कहते हैं यादें अक्सर होती है सताने के लिए, कोई रूठ जाता है फिर मान जाने के लिए। रिश्ते निभाना कोई मुश्किल तो नहीं, बस दिलों में प्यार चाहिए उसे निभाने के लिए। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज खाबो और सफर। चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, शैलेंद्र साहब का लिखा, रात और दिन का, दिल की ग्रह खोल दो। तो आइए, दिल की बातों की जब बात चली रही है तो दिल का एक और गाना सुनते हैं। आपके पास कौन सा एक और गाना है जिसके बारे में आप बताना चाहेगी?
1: मित्रों, अगला गाना है दिल की कहानी रंग लाई। मित्रों, दिल एक ऐसा मीठा एहसास है किसी को भी बांध डाले या ये जब चाहे बना डाले, जब चाहे मिटा डाले, इसका कोई भरोसा नहीं ना कुछ भी इसका कोई ठिकाना। किसी को जिंदगी दे दे और किसी का घर जला डाले, क्योंकि ये दिल बड़ी हरजाई है। जी हाँ, जब कभी भी किसी को दिल देते हो तो आने वाले समय के बारे में जरूर सोचिएगा। पर एक बात है, ये है बहुत खूबसूरत। आइए सुनते हैं ये गाना, दिल की कहानी रंग लाई।
0: चलिए शकील बदायूं का लिखा ये खूबसूरत गाना आपने याद कराया, आशा भोसले का गाया हुआ, रवि साहब का संगीत है और चौधरी का चांद। जी हाँ, ये भी बहुत खूबसूरत फिल्म बनी थी और ये गाने इसके जो है इस फिल्म के चौधरी के चांद के सभी सारे ही गाने हिट थे। लेकिन अभी जो हम सुना रहे हैं वो गाना दिल की कहानी रंग लाई है आपके लिए खास। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ख्वाबो ख़ास सफर, मैं हूँ आपका हम सफर सनी। रिश्ते चाहे कितने भी बुरे हो, लेकिन अभी भी उन्हें मत तोड़ना, क्योंकि पानी चाहे कितना भी गंदा हो, प्यास नहीं तो आग तो बुझा ही देता है। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबो ख़ास सफर। आइए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गाना आपको डी अक्षर से सुनाएंगे अभी। तो चलिए, हमारे साथी जो हमारे साथ है, कौन सा अब गाना आपके पिटारे में है जो डी यानी दिल से जुड़ा हुआ है?
1: मेरे पिटारे में बहुत अच्छे गाने हैं, उम्मीद है आप इन्हें ध्यान से सुन भी रहे होंगे और साथ में गुनगुना भी रहे होंगे। मित्रों, कुछ शब्दों से कहना चाहती हूँ, आकाश में हो रहे ये कैसे इशारे, क्या देखकर खुश हैं ये चांद तारे, क्यों तुम पराए दिल में समाए, ये बात क्या है, ये राज क्या है, कोई हमें बता दे। हाँ मित्रों, प्यार को और प्यार करने वाले को आज दिन तक कोई समझ नहीं पाया, तो आइए सुनते हैं ये प्यारा सा गाना। दिल की नजर से, नजरों के दिल से।
0: चलिए, बहुत ही प्यारा सा शैलेंद्र साहब का लिखा हुआ गाना आपने याद कराया है। लता मंगेशकर और मुकेश का गाया, शंकर जयकिशन का संगीत, फिल्म अनाड़ी से 1959 का। जी हाँ, ये बहुत ही खूबसूरत फिल्म था उस जमाने का। और ये गाना जो आपने अभी याद कराया, दिल की नजर से, नजरों के दिल से, तो आइए इस गाने का लुफ्त उठाते हैं, सुनते हैं। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर ख्वाबो ख़ास सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: दिल की बातें कहने को दिल करता है, दर्दे जुदाई को सहने से दिल डरता है। क्या करे किस्मत में है दूरिया, वरना हमारा तो आपके दिल में रहने को दिल करता है। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गाना हम सुनेंगे, डी यानी दिल से। तो बताइए आपके पास अब कौन सा गाना है।
1: पिछला गाना था दिल की नजर से नजरों के दिल से, और अब जो गाना है दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। जिंदगी हम पहले भी जीते हैं, लेकिन किसी के आने से किसी के जाने से जिंदगी में बहुत अंतर हो जाता है। प्यार में हम कहीं भी जाएं तो ये सोचते हैं कि हर राहों में हर कदम पे हमको यह महसूस होता है कि हम अपनी मंजिल पे हैं, पर क्या जाने मोहब्बत की खुशी क्या चीज है, धूप क्या है और चांदनी क्या चीज है। ये हम तभी जानते हैं जब हम प्यार करते हैं। प्यार जरूरी नहीं है कि हम किसी एक से करें, प्यार हमें किसी से भी हो सकता है। प्यार हमारे माता पिता भाई बहन दोस्त सगे संबंधी रिश्तेदार सबसे हो सकता है, या ये कहें कि आपसे मिलकर ये समझ में आ गया, कोई भी अपना हो सकता है जिसे हम दिल से चाहते हैं, दिल का करीबी हमारा कोई रिश्ता होता है। प्यार एक ही नहीं, प्यार शब्द ही एक ऐसा है जिससे हमने थोड़ा सा स्नेह से भी बात कर ली वो भी एक प्यार होता है। एक के साथ ही प्यार किया, एक के साथ ही जिंदगी बिताई, ऐसा नहीं है। प्यार हमारे परिवार में सबके साथ होता है। तो आइए सुनते हैं दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है।
0: जिंदगी और मौत फिल्म का 1965 का ये गाना आपने याद कराया है, शकील बदायूं साहब का लिखा, आशा भोसले का गाया हुआ, सी रामचंद्र का संगीत। जी हाँ, आइए उस जमाने का ये पॉपुलर गाना है जिंदगी और मौत का, दिल लगाकर हम ये समझे जिंदगी क्या चीज है। आगे बढ़ते हैं, सुनते हैं इस गीत को, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो का सफर। बहुत ही प्यारे प्यारे दिल वाले गाने आप सुन रहे हैं। आशा करता हूँ आपके दिल में हो रही है प्यार की हलचल, उसे थामिए। और भी बहुत सारे ऐसे खूबसूरत गाने सुनाने वाले हैं, और चलिए आगे बढ़ते हैं। कहते हैं, पा लिया था दुनिया की सबसे हसी को, इस बात का तो हमें कभी गुरूर नहीं था, वो पास रह पाते हमारे कुछ और दिन, शायद ये हमारे नसीब को मंजूर नहीं था। आप सुनाए हैं रेडियो पुनेरी आवाज, तो बताइए आपके पास अब कौन सा गीत है।
2: दोस्तों, अब जो मेरे पिटारे में गाना है वो है, जब हम दिल लगाते हैं तो सब तरह की बातें समझ में आ जाती है। कहते हैं दिल क्या चीज है, प्यार क्या चीज है, कैसे होता है, तभी शायद ये गाना बना है। दिल लूटने वाले जादूगर, अब मैंने तुझे पहचाना। उस समय हम सोचते हैं कि मेरे प्यार को कोई देख ना ले, ये चांद ना देख ले, ये तारे ना देख ले, और मेरे प्यार को कोई बंधन ना डाल ले। सोचते हैं अपने प्यार को आंखों में छुपा लूं, पर डर लगता है कि कहीं रूठ ना जाए ये दुनिया वाले और तोड़ ना दे इस प्यार भरे रिश्ते को। प्यार बहुत नाजुक है, इसे बहुत संभाल कर रखना पड़ता है। इसलिए गाना है

वाह वाह वाह वाह, मदारी इस फिल्म का आपने गाना याद दिलाया है, सुनते ही फिल्म का नाम याद आता है और बहुत ही प्यारा सा ये गाना है। 1960 या 59 की बात है, उस जमाने में ये गाना बहुत पॉपुलर रहा और उस समय ये रिलीज हुआ था लता मंगेशकर और मुकेश की आवाज में, कल्याण जी आनंद जी का संगीत। मदारी फिल्म का फारूक कैसर साहब ने इस गाने को लिखा था। तो आइए इस गाने का लुत्फ उठाते हैं। दिल लूटने वाले जादूगर, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। खाबो खास सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं। एक से बढ़कर एक गाना आप सुन रहे हैं दिल का दिल तक। तो कहते हैं एक अजीब दास्ता है मेरे अफसाने की, मैंने पल पल की कोशिश उसके पास जाने की, नसीब था मेरा या साजिश जमाने की, दूर हुई मुझसे इतना जितनी उम्मीद थी करीब आने की। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM पर खाबो खास सफर। चलिए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा

0: कि अब कौन सा गीत है आपके पिटारे में। दिल वाला ही चाहिए। अब बहुत सारे गीत दिल वाले सुनाए हैं, तो दिल के बिना आप नहीं चलेगा।
1: दोस्तों अगला गाना है दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चलें, मंजिल पे क्या होगा ये नहीं सोचते हम, प्यार करने वाले जो होगा देखा जाएगा, बस प्यार की उल्फत की राहों में हमें चलना है, चाहे जहां भी चले जाएं कोई डर नहीं, लेकिन अगर प्यार सच्चा है तो कोई डर हो ही नहीं सकता मित्रों, एक दूसरे का साथ कभी छोड़ना नहीं, मंजिल पे जो होगा अच्छा ही होगा, किस्मत जो फैसला करेगी अच्छा ही करेगी, वो हमें खेल समझकर जीना है, और जिंदगी को खेल समझ के ना जिया और प्यार के साथ अच्छे से उस प्यार को ना जिया तो कोई फायदा नहीं। सच तो है कि कुछ भी प्यार करने वाले पीछे नहीं हटते, एक दूसरे का साथ सच्चा हो तो आइए सुनते हैं दिल में छुपा करके प्यार के तूफान ले चलें।
0: ओके ओके, शकील बदाई साहब का लिखा हुआ, मोहम्मद रफी साहब का गाया हुआ, नौशाद जी का संगीत से सजा आन 1952 का ये गाना आपने याद कराया है, दिल में छुपा के प्यार का तूफान ले चले। आइए सुनते हैं इस प्यारे से गीत को। आप सुना है रेडियो पुणे आवाज 107.8 FM पर ख्वाबों का सफर। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनी आवाज 107.8 FM पर। खाबों का सफर इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं। आशा करता हूँ आप सभी को अच्छा लग रहा है। तो आइए, कोई वादा न कर, कोई इरादा न कर, कोई वादा न कर, कोई इरादा न कर, ख्वाहिशों में खुद को अदा न कर, ये देगी उतना जितना लिख दिया खुदा ने, इस नसीब से उम्मीद ज्यादा न कर। आप सुने हैं रेडियो पुनीरी आवाज। चलिए आगे बढ़ते हैं, और कौन सा एक खूबसूरत गीत दिल का आपके पास है अभी?
1: दिन भी ठीक से नहीं गुजरता और रात भी बड़ी तड़प आती है, क्या करूं यार तेरी याद ही जो इतनी आती है। पहले मुझे कोई खुशी नहीं थी और दिल भी खुश नहीं रहता था और जिंदगी भी कुछ सूनी सूनी सी लगती थी। बस गई मेरी हर मुस्कुराहट तेरे आने के बाद, जब से दिल में बस आके गए तुम। अभी गाना कुछ ऐसा ही है, कुछ ऐसा ही लगेगा आपको। दिल में समा गए साजन, आइए सुनते हैं इस खूबसूरत से गाने को।

0: नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 एफएम पर खाबो का सफर। इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं, बहुत ही प्यारा सा गीत आपने सुना, राजेंद्र कृष्ण साहब का लिखा, लता मंगेशकर की आवाज में। संगीतकार बहुत ही प्यारे संगीतकार, बहुत कम फिल्मों में इन्होंने संगीत दिया। साजिद साहब ने म्यूजिक दिया था इसे, संग दिल फिल्म का 1952 का। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और बहुत ही प्यारे प्यारे गाने आप सुन रहे हैं। आशा करता हूँ आपको अच्छा लग रहा होगा। माना कि किस्मत पे मेरा जोर नहीं, पर मेरी मोहब्बत भी कमजोर नहीं। माना कि उसके दिलो दिमाग में कोई और है, पर मेरी सांसों में उसके सिवा कोई और नहीं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, एक और खूबसूरत गाना आपसे सुनना चाहेंगे दिल से।
1: दोस्तों, उम्मीद है आपको मेरे सभी गाने अच्छे ही लग रहे होंगे और अपने काम के साथ साथ वो गाने भी गुनगुना रहे होंगे। मित्रों, अभी जो गाना है कुछ बोल के सुनाती हूँ उस गाने के लिए। न जाने मोहब्बत में कितने अफसाने बन जाते हैं, शमा जिसको भी जलाती है वो परवाने बन जाते हैं। कुछ हासिल करना है इश्क की मंजिल नहीं होती यारो, किसी को खोकर भी कुछ लोग दीवाने बन जाते हैं। इसी के साथ ये गाना है, दिल ने फिर याद किया।

0: आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीर आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: बहुत ही प्यारा सा गीत आपने अभी सुना, आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छा लग रहा है। जीएल रावल साहब का लिखा, मुकेश और रफी साहब और सुमन कल्याणपुरी साहब ने इसे गाया था तीनों मिलकर। बहुत ही प्यारा सा गाना। सोनिक ओमी ने इसे संगीत से संवारा था। दिल ने फिर याद किया 1966 का, इस फिल्म से आपने सुना। तो चलिए, आशा करता हूँ आपको ये गाना बहुत पसंद आया होगा। आइए आगे बढ़ते हुए मैं चाहूंगा कि आप, हम लोग कार्यक्रम के आखिरी मोड़ पे पहुंचे हुए हैं और आपके लिए चार लाइनें। जीना चाहते हैं मगर जिंदगी रास नहीं आती, मरना चाहते हैं मगर मौत पास नहीं आती, बहुत उदास है हम इस जिंदगी से, नसीब भी तड़पाने से बाज नहीं आती। आप सुनाए हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM पर। चलिए जी, आपके पास कौन सा एक गाना है अभी आखिरी गाना जो बहुत ही प्यारा हो और दिल से शुरू होने वाला हो, क्योंकि दिल से शुरू किया तो दिल तक खत्म होना चाहिए।
2: दोस्तों, ख्वाबों के सफर में डी का अल्फाबेट हमारा लास्ट गाना है, आखिरी गाना है। कैसी है जिंदगी हमारी, कोई हमारा दिल ही दिल में हमारा हो जाता है और हमें पता भी नहीं पड़ता, और उससे कब हमें दिलगी हो जाती है यह भी हमें पता नहीं पड़ता। दिलगी भी हमारे साथ क्या खेल खेलती है और क्या चाल चलती है यह भी कुछ हमें पता नहीं पड़ता। कब किस्मत बदल जाए प्यार में यह भी नहीं पता चलता, और दिल हमारे मन ही मन में प्रश्न पूछता रहता है और हम उत्तर भी देते रहते हैं, वो भी हमको पता नहीं चलता। मित्रों, आपसे मुलाकात होगी आपके ख्वाबों के सफर में, और मेरे सफर में आपके साथ दोबारा चलती हूँ और दोबारा आऊंगी। पहले तो जाना पड़ेगा ना, फिर आपके ख्वाबों के सफर में आना पड़ेगा। मैं आपके साथ थी किरण मेकल, रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। ये लास्ट गाना है, दिल पर हुआ ऐसा जादू।
1: चलिए, बहुत ही प्यारा सा गीत आप मजरू सुल्तानपुरी का लिखा याद कराया है, मोहम्मद रफी साहब ने से गाया है, ओपी नैयर का संगीत, मिस्टर एंड मिसेस 55 1955 का ये खूबसूरत गाना आप सब के लिए हम छोड़े जा रहे हैं। इसी के साथ सलाम नमस्ते खमा गनी सा,
2: नमस्कार,
1: खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जैसे सरकार ने नियम बनाया कि टीचर्स स्टूडेंट्स पर हाथ नहीं उठा सकते, पहले उठा देते थे ऐसे ही, थोड़ा सा रूलर मारा, किसी ने चौक मारा, किसी ने थोड़ा, फिर लॉ बन गया कि नॉट अलाउड, उस दिन के बाद बंद हो गया। तो हम लॉ सरकार क्यों बनाए, हम अपने लिए खुद के लिए लॉ बनाएंगे ना, कि मेरे लिए और जो मेरा एनवायरमेंट है वहां पे ये चीज कितनी हानिकारक है। हम एक दर्द का एनवायरमेंट क्रिएट कर रहे हैं जहां हीलिंग होनी चाहिए। और फिर जब एक ने दूसरे को डांटा, दूसरे ने तीसरे को डांटा, तीसरे ने चौथे को डांटा, तो फिर पांचवे ने तो इरिटेट होके बात कर ही लेनी है।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडियो पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंद रहा आनंद।
1: नमस्कार साथियों, आप सुन रहे हैं रेडियो पुणेरी आवाज। अब हम आपके लिए रेडियो

0: नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के स्पेशल एपिसोड में। आशा करूंगा बिल्कुल हेल्दी वेल्दी और हैप्पी होंगे। और आज हम लोग करियर काउंसलिंग के बारे में और कुछ खास ह्यूमन वैल्यूज को इम्पोर्टेंस देने वाली बातें शेयर करेंगे। आज के हमारे खास मेहमान मनीषा सोनावने हैं, जो पिछले 15 साल से इंजीनियरिंग के बच्चों को पढ़ाती है। तो आइए आज हम उनसे करियर काउंसलिंग की कुछ बातें समझेंगे। मनीषा सोनावने, बहुत बहुत स्वागत है।
1: थैंक यू आप सभी से जुड़ने के लिए। आज हमने टॉपिक चूज किया है करियर काउंसलिंग। हम थोड़ा सा करियर काउंसलिंग के बारे में आज डेप्थ में समझेंगे। ऐसे तो हमने वर्बली उसको जाना है कि वो एक करियर ऑप्शन मींस एक ओनली मनी ऑप्शन या एजुकेशन ऑप्शंस होता है, लेकिन करियर एक्चुअल क्या होता है, ये कहाँ से शुरू होता है, इसका स्टार्टअप मैकेनिज्म क्या है, और ये आपको कैसे होलिस्टिक डेवलपमेंट की हीलिंग प्रोवाइड करता है, लाइक आपका प्रोफेशनल ग्रोथ क्या है, पर्सनल ग्रोथ क्या है, इकोनॉमिकल ग्रोथ क्या है, सोशल ग्रोथ क्या है। तो फर्स्ट हम चर्चा करेंगे करियर, माना ये एक जीवन यात्रा है और जीवन यात्रा हमारी बचपन से ही शुरू हो जाती है। करियर को हम लाइवलीहुड और लाइवलीनेस भी कहते हैं। करियर ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जो हम एजुकेशन कंप्लीट करने के बाद या कौन सा सेटअप मैकेनिज्म हम करें, ये ऐसी चीज नहीं है। करियर एक ये बिग टर्मिनोलॉजी है जिसमें हम उसमें आजीविका देखते हैं, व्यवसाय देखते हैं, प्रोफेशन देखते हैं, अचीवमेंट्स देखते हैं, मोटिवेशन देखते हैं और राइट यूटिलाइजेशन इन द ह्यूमन वर्ल्ड, ये सब चीजें करियर ऑप्शंस में आ जाती है। तो बहुत सारे बच्चों को, स्टूडेंट्स को ये सवाल क्रिएट होता है कि हम अपना करियर कैसे चूज करें। तो करियर चूज करने के लिए मेनली एक साइकोफिजिकल टेस्ट होता है। वो साइकोफिजिकल टेस्ट आपका इंटरेस्ट का टेस्ट होता है कि बचपन में कौन से सब्जेक्ट आपको लाइकिंग सब्जेक्ट रहे हैं, किसमें आपने इंटरेस्ट डेवलप किया है, कौन सी आपकी हॉबीज रही हुई है। ये एक फिजियोलॉजिकल और आप कह सकते हैं साइकोलॉजिकल नेचर होता है। वो अपने स्वभाव से भी डेवलप्ड होता है, माना बचपन में जो अपनी हॉबी है, लाइक आपको स्पोर्ट्स अच्छा लगता है, म्यूजिक अच्छा लगता है, आर्ट्स अच्छा लगता है, कॉमर्स अच्छा लगता है, साइंस अच्छा लगता है, कि अपना स्ट्रीम ऑफ नेचर कैसे है, अपना स्वभाव कैसे है, उससे आप अपना करियर पाथ चूज कर सकते हैं। तो अभी तो इंडिया में यूनिक करियर डेवलपमेंट करके कोर्स चल रहे हैं। दैट यूनिक करियर डेवलपमेंट में प्रोफेशनल काउंसलर्स होते हैं। वो प्रोफेशनल काउंसलर सबको प्रॉपरली आपके सब्जेक्ट के हिसाब से या आपकी जो भी क्यूरीज अराइज होती है, क्वेश्चंस अराइज होते हैं, उस हिसाब से आपको एप्टीट्यूड टेस्ट करवाते हैं। ये एप्टीट्यूड टेस्ट आपकी योग्यता से बिलोंग करता है, आपके कौशल्य से बिलोंग करता है, और ये एप्टीट्यूड टेस्ट में आप खुद का सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ चेकिंग और सेल्फ असेसमेंट कर सकते हैं। तो सेल्फ असेसमेंट करने के लिए मेनली आपको बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना होता है कि सेल्फ असेसमेंट में जीवन से आपको क्या चाहिए, ये आपका फर्स्ट पॉइंट होना चाहिए करियर चूज करने में। तो उसमें मेनली 3 पॉइंट्स हम डिस्कस करेंगे
0: जी।
1: कि फर्स्ट पॉइंट है फिनेंशियल स्टेबिलिटी आप चाहते हैं करियर से, या नेम चाहते हैं, नेम माना फेम प्रेस्टीज आप चाहते हैं, और तीसरा होता है फास्ट डेवलपमेंट और फास्ट प्रोग्रेस इन दैट करियर। आप क्या चाहते हैं, ये आपका फर्स्ट स्टेप हो गया, उसको हम बोलते हैं सेल्फ असेसमेंट टेस्ट। दूसरा एक होता है आपके कौन से फेवरेट सब्जेक्ट बचपन में रहे हैं, दैट इज आपका अकाउंटिंग है, आपका साइंस है, आपका मैथ्स बैकग्राउंड अच्छा था, आपका हिस्ट्री अच्छा था, आपका ज्योग्राफी अच्छा था, तो ये फेवरेट सब्जेक्ट सबके कौन से रहे हैं। फिर बाद में हम चर्चा करेंगे कि इंटरेस्ट आपका किस में है, माना आप सॉफ्ट स्किल में अच्छे हैं, आप टेक्निकल स्किल्स में अच्छे हैं, या पर्सनालिटी डेवलपमेंट में आप अच्छे हैं, तो उस हिसाब से, उस इंटरेस्ट से भी आप अपना गोल सेट करियर के लिए कर सकते हैं। तो गोल सेटिंग मेनली टू टाइप्स के होते हैं. फर्स्ट शॉर्ट टर्म गोल्स होते हैं और दूसरा जो होता है लॉन्ग टर्म गोल. अभी करियर हम इस टाइम पे बहुत डेप से जान पा रहे हैं. करियर इज नॉट ओनली द जॉब कि आप जो बाहर सर्च कर रहे हैं. करियर माना वो आपको इंटरनल चीजें क्या प्रोवाइड कर रहा है. करियर आपको ये नहीं है कि मनी प्रोवाइड कर रहा है ओनली, बट इंटरनली आपकी क्या ग्रोथ हो रही है, आपको खुशी मिल रही है, आप सामाजिक स्तर पे बहुत समाज को बहुत ऊंचे तरीके से बढ़ा रहे हैं, कुछ डेवलपमेंट कर रहे हैं, कुछ न्यू इन्वेंशंस कर रहे हैं, आप सोशली क्या कर पा रहे हैं, फिनेंशियली क्या कर पा रहे हैं, फैमिली वाइज क्या कर पा रहे हैं, ये भी चीजें करियर में देखी जा सकती है. तो करियर में गोल सेट्स बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें हम शॉर्ट टर्म गोल्स और लॉन्ग टर्म गोल्स देख पाते हैं. तो ये खुद ही खुद का एनालिसिस करके, खुद चेकिंग करके अपने को नोट डाउन करने होंगे हमारे शॉर्ट टर्म गोल्स क्या है, लाइफ से रिलेटेड और करियर से रिलेटेड. ये दोनों एम अगर आपके मैच होते हैं लाइफ और करियर के, तभी आप जीवन में ट्रूली सक्सेस पाते हैं, करियर से भी और खुद के लाइफ से भी. करियर एक बहुत लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव है. करियर लॉन्ग प्रोस्पेक्टिव क्यों है, ये आपके निचितम जीवन से बहुत जुड़ा हुआ है. तो जीवन में और जीवन से हमें क्या चाहिए वो डिसाइड करता है कि हमारी लाइफ जर्नी कैसे होगी, हमारी लाइफ पाथ कैसा होगा. क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे आपको उससे सेटिस्फेक्शन होना चाहिए, उससे खुशी होनी चाहिए कि भगवान ने हमें जो जीवन दिया है वो सफल हुआ हमारे करियर से, और कुछ अचीवमेंट्स हम खुद के लिए और औरों के लिए भी कर पाए. खुद भी मोटिवेशन लेके हमने खुद को भी मोटिवेट किया और पूरे सोसाइटी और वर्ल्ड को भी हम मोटिवेट कर पाए.
0: जी,
1: ये एक उदाहरण से हम समझते हैं कि एक लड़का था, उसको जॉब नहीं मिल रहा था. तो वो बार बार भगवान से कंप्लेंट किया जा रहा था कि भगवान मुझे हमेशा फेल्योर मिलता है, मुझे कभी भी जॉब ऑफर नहीं होता है, जब भी मैं इंटरव्यू में जाता हूँ तो मैं रिजेक्ट हो जाता हूँ और मैं बहुत टेंशन में आ गया हूँ, बहुत डिप्रेस्ड हूँ. तो भगवान जी ने उनको एक टास्क दिया. उन्होंने कहा ये बहुत बड़ा पत्थर है आपके सामने, ये पत्थर को आपको धक्का देना है. तो ये टास्क उस भगवान जी ने उनको दिया. तो डेली ये लड़का बहुत घंटे उस पत्थर को हिला रहा था. पर 2 महीने हो गए, 1 इंच भी पत्थर हिला नहीं. तो उसका फ्रेंड आता है और बोलता है कि अरे आपने तो क्या भगवान जी को भी कंप्लेंट कर दिया फेल्योर के बारे में, तभी भी ये पत्थर नहीं हिल रहा है तो जॉब कैसे आपको ऑफर होगा. तो ये तो वो बोलने लगा कि ये पत्थर तो कितना बड़ा पत्थर है, 2 महीने से मैं हिला रहा हूँ लेकिन 1 इंच तक वो हिल नहीं रहा है. तो फ्रेंड बोलता है कि आप ये प्रोजेक्ट जो भगवान जी ने आपको दिया है पत्थर हिलाने का, वो रिजेक्ट कर दो और बोल दो कि हमें नहीं चाहिए ये प्रोजेक्ट, मैं नहीं हिलाऊंगा. तो उसने 2 महीने के बाद फिर भगवान जी को बोला कि भगवान जी हम ये प रोजेक्ट आपने जो दिया हुआ टास्क है धक्का लगाने का पत्थर का, ये हम नहीं करेंगे क्योंकि ये 1 इंच भी हिला नहीं है और कोई चेंज इसमें आया नहीं है. तो भगवान जी ने कहा हाँ आप सही बोल रहे हैं, बाहर के मायने में इसमें 1 इंच भी पत्थर हिला नहीं है लेकिन अंदर बहुत कुछ हिल गया है. आपका फिजिकल बॉडी आप देखो कि कितना आप फिजिकली स्ट्रांग हो गए हैं, कितने बाइसेप ट्राइसेप आपके बन गए हैं. माना फेल्यूर जो होता है जीवन में या करियर में भी हम देखे तो ये कई बार लगता है कि बाहर की चीजें तो कुछ हिल नहीं रही है या कुछ हम सक्सेस नहीं पा रहे हैं, लेकिन अंदर में बहुत कुछ हिला होता है. हिला माना इन द पॉजिटिव सेंस, अंदर में बहुत कुछ परिवर्तन हुआ होता है कि अंदर में उसका तो बॉडी एकदम फिट हो गया तो वो भी हंसने लगा भगवान जी का, उसने शुक्रिया किया कि हाँ अंदर में तो बहुत सारी चीजें मेरी परिवर्तन हुई है। तो इसीलिए उसने फाइनल खुद को समझाया कि ये मेरे लिए फेल्यूर्स नहीं थे, हर एक इंटरव्यू से मैंने सीखा है और क्या ग्रोथ करनी चाहिए आगे के लिए। तो इससे पता चलता है कि फेल्यूर्स इन करियर पाथ इज नथिंग बट योर इनर एक्सरसाइज ऑफ माइंड टू प्रिपेयर फॉर द बेटर डेवलपमेंट। करियर एक बेटर डेवलपमेंट होता है तो ये हमारा इनर एक्सरसाइज भी करता है।
0: जी जी मनीषा जी, काफी अच्छी बातें आपने बताया। आशा करूंगा हमारे सभी श्रोता बंधुओं को भी अच्छा लग रहा है कि किस तरह से करियर चूज करना एक इम्पोर्टेंट रोल है और उसके बाद उसके ऊपर काम करना ये भी एक बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट रोल है। और साथ ही साथ फेलियर या फिर सक्सेस, ये दोनों चीजें एक दूसरे के अलग पूरक है, तो हमें देखना पड़ेगा कि कहाँ चीजें जो है हमारे लिए बेनिफिशियल है। तो बहुत ही सुंदर स्टोरी के साथ आपने इस चीज को बताने की कोशिश की। आइए यहाँ पर लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, सुनते हैं एक बहुत ही प्यारा सा गीत। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

0: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है करियर ऑप्शन इस कार्यक्रम में। आज के हमारे विशेष मेहमान मनीषा सोनावने हमारे साथ हैं और उनसे हम लोग बातें कर रहे हैं करियर को लेकर, काउंसलिंग को लेकर। आइए आगे सुनते हैं कैसे हमारे जीवन में मूल्य जो है हमें सशक्त और मजबूत करियर बनाने में हेल्प करते हैं।
1: थैंक यू, शुक्रिया है सबका। फर्स्टली हमने बातें की कि करियर कैसे हम चूज करें, हमारा लाइकिंग डेवलपमेंट एरिया क्या है और हम किस प्रकार की ग्रोथ करियर से चाहते हैं, दैट इज फाइनेंशियल ग्रोथ चाहते हैं, पर्सनल ग्रोथ चाहते हैं या प्रोफेशनल ग्रोथ चाहते हैं। लेकिन नाउज एरा और आप कह सकते हैं नाउ डेज करियर और यूनिवर्सल ह्यूमन वैल्यूज ये साथ साथ चल रहा है, जिसमें ह्यूमन वैल्यू यानी कि नैतिक मूल्य जिसमें है वो अपने करियर पाथ में बहुत अच्छी तरह से आगे बढ़ सकता है। क्योंकि फर्स्टली भी हमने बात किया कि करियर नॉट ओनली फिनेंशियल स्टेबिलिटी बट इट ऑल्सो गिव्स यू मेंटल स्टेबिलिटी। सपोज ये एक एग्जाम्पल से जानते हैं, आप अपने एक ऑफिस में जॉब कर रहे हैं, वहां पे आपको बहुत सारा अच्छा पैकेज मिल रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ बहुत है, लेकिन आपको स्ट्रेस है, आपको टेंशन है, आपको एंजाइटी है, तो इंटरनल तो कुछ मिल नहीं रहा है आपको, लेकिन एक्सटर्नली आपको फाइनेंशियल ग्रोथ मिल रहा है। अब वहां

0: माइंड का हेल्थ जीरो है बट मनी हेल्थ सब कुछ है. तो करियर डेवलपमेंट एंड वैल्यूज ये अगर साथ साथ चलता है तो हमारे जॉब हो या बिजनेस सेक्टर हो या अकाउंट्स हो या सभी सेक्टर्स में हम ये नैतिक मूल्य यूज करके पीस, प्रॉस्पेरिटी, रिस्पेक्ट, एप्रिसिएशन, फोकस ऑन पर्टिकुलर गोल, ये वैल्यूज सेट करके हम खुद भी खुद के माइंड को कंट्रोल करके औरों को भी जॉब सेटिस्फेक्शन उसमें ला सकते हैं. तो थोड़ा सा नैतिक मूल्य के बारे में हम समझेंगे. नैतिक मूल्य कैसे स्टार्ट होते हैं? बेसिकली नैतिक मूल्य चार स्तरों पर हम काम करते हैं. फर्स्ट उसका स्तर है सेल्फ, कि आपको खुद पर काम करना होगा. खुद पर काम करना मीन्स राइट अंडरस्टैंडिंग. आपको समझना होगा चीजें कि राइट अंडरस्टैंडिंग क्या है, सही क्या है और गलत क्या है. और दूसरा होता है सेल्फ डिसीजन पावर, दैट इज कॉल्ड एज टू डिसाइड द राइट थिंग्स एट अ राइट टाइम. अगर डिसीजंस हमारे जीवन में सही है तभी हम हमारे करियर का भी पूरा पूरा लाभ ले सकते हैं या करियर से हमें खुशी हो सकती है. तो राइट अंडरस्टैंडिंग के लिए सही क्या है, गलत क्या है, उसके लिए आपको आपके जीवन से कहाँ से आपको सुख महसूस हो रहा है, हार्मनी महसूस हो रही है, इस चीज के बारे में भी सोचना होगा. हार्मनी एक ऐसी चीज है जो हमें सेल्फ रियलाइजेशन कराती है. हार्मनी से हम हैप्पीनेस इंडेक्स को जान सकते हैं. माना हार्मनी जो होता है वो हमारे जीवन का हैप्पीनेस इंडेक्स क्या है. तो मनी जो करियर से मिल रहा है आप कैलकुलेट करना वो हैप्पीनेस इंडेक्स आपका इंटरनल है या एक्सटर्नल है, क्योंकि ये दो चीजें बेसिकली देखी जाती है करियर में, इंटरनल हैप्पीनेस इंडेक्स एंड एक्सटर्नल हैप्पीनेस इंडेक्स. अगर आपको फेल्योर आ जाता है जॉब में या किसी भी तरह से आपको जॉब से रिजाइन करना पड़ता है और मंथली मनी नहीं आ रहा है उस टाइम पे, मींस आपने जो करियर पाथ चूज किया था, नॉलेज तो है आपके पास, सिर्फ पैसे नहीं आ रहे हैं उस नॉलेज से, तो आप डिप्रेशन में चले जाएंगे, आपका स्वास्थ्य खराब हो जाएगा. माना ये सब एक्सटर्नल चीजें से बिलोंग करती है, लेकिन उसमें अपने जीवन के नैतिक मूल्य अगर आप देखते हैं, उसमें आप स्टेबल रहते हैं फेल्यूर में, तो वो करियर का फेल्यूर नहीं कहा जाएगा, क्योंकि आपके जीवन मूल्यों ने उस करियर फेल्यूर को ग्रोथ की तरफ या सक्सेस इंडेक्स की तरफ या हार्मनी और आप कह सकते हैं हैप्पीनेस इंडेक्स आपका बढ़ जाता है, आपको खुशी होती है उस जॉब से भी. तो पर्सनली मैं यही कहना चाहूंगी कि जहां पर भी आप बिजनेस कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, सोशल सेक्टर से, साइकोलॉजिकल सेक्टर से, जो भी सेक्टर से, उसमें आपको हैप्पीनेस और हार्मनी कैसे प्राप्त हो, इस चीजों पे आप काम कर सकते हैं. उसके लिए मेन जो पॉइंट है वो है आत्म संयम और आत्म नियंत्रण, जिसको हम कहते हैं सेल्फ रियलाइजेशन और सोल रियलाइजेशन भी कहते हैं, जो एक प्रकार का डिसिप्लिन होता है, अनुशासन होता है, जिसमें आप अपने राइट एंड रॉन्ग्स थिंग को अच्छे से पहचान सकते हैं. जब आप आपके राइट और रॉन्ग को अच्छे से पहचानेंगे तो आपको कोई भी चीज करने में सहायता मिल सकती है, वो सोशल तरीके से मिल सकती है, फैमिली की तरह से मिल सकती है. अगर सेल्फ डेवलप होता है, माना सोल डेवलप होता है सेल्फ रिफ्लेक्शन से, तो सेकेंडली आप आपकी फैमिली की ग्रोथ भी होलिस्टिक हीलिंग से कर सकते हैं. होलिस्टिक हीलिंग एक बहुत बड़ा अप्रोच है जहां पर हम पर्सनल डेवलपमेंट, प्रोफेशनल डेवलपमेंट, इकोनॉमिकल डेवलपमेंट, फैमिली डेवलपमेंट और बाद में फिनेंशियल डेवलपमेंट, स्पिरिचुअल डेवलपमेंट का बात करते हैं. जब सेल्फ डेवलप हो जाएगा ये पांच या छह स्तरों पे होलिस्टिक हीलिंग के, तो ऑटोमेटिकली आप जिनके साथ भी रहते हैं वो आपकी फैमिली है. तो वो फैमिली को आप ग्रोथ कर पाएंगे इन सभी स्तरों पर, फिर ये फैमिली फिर सोशल डेवलपमेंट में आप हेल्प कर पाएंगे, फिर आप स्पिरिचुअल डेवलपमेंट में ग्रोथ कर पाएंगे, और बाद में ओवरऑल आप वर्ल्ड को, इस पूरी सृष्टि के डेवलपमेंट को भी मदद कर सकते हैं। और दूसरा एक है अच्छे विचार और अच्छा व्यवहार। अगर हमारा हम इंजीनियर है, डॉक्टर है, बहुत बड़ा हमारा एजुकेशन है, लेकिन हमें बात करने का तरीका नहीं है, हमारे विचार अच्छे नहीं है, हमारा आचरण अच्छा नहीं है, हमारा व्यवहार अच्छा नहीं है, तो हमारी हैंडलिंग कैपेसिटी उस केस में जीरो हो जाती है। और आप दूसरों को पीसफुल मैनर से लीडरशिप नहीं दे पाते हैं। तो अगर आपको बेस्ट लीडर बनना है आपके करियर में, आपको दूसरों को गाइड करना है, और उससे आप कह सकते हैं हर एक की इच्छा होती है खुद को प्रेस्टीज मिले, नेम मिले, ये बुरी चीज नहीं मानती हूं मैं, अच्छी चीज है नेम मिले, फेम मिले, प्रेस्टीज मिले, लेकिन वो मिलने के लिए आपको खुद के ऊपर भी बहुत बड़ा आत्मनियंत्रण और बहुत पेशेंस से काम करना होगा। वो तभी हो पाएगा जब आप नैतिक मूल्य अपने जीवन में धारण करते हैं, तभी आप कह सकते हैं आप जीवन के हर स्तर पर, बिकॉज जीवन सिर्फ आपका करियर नहीं है, जीवन आपका एक एक सेकंड है, तो जीवन का हर एक सेकंड आप करियर मानकर अगर चलते हैं, तो हर एक सेकंड आपका सफल हो सकता है, आप सक्सेस ग्रोथ को पा सकते हैं। तो फिर आपको इंटरनली फील होगा कि जो मेरा जीवन है वो बहुत अच्छी तरीके से या सक्सेसफुली, पीसफुली, हार्मनी और ब्लिस से चल रहा है।
1: बिल्कुल बिल्कुल मनीषा सोनावने, ये बहुत ही सुंदर बातें आपने बताया, कैसे हम अपने करियर को फ्रेम आउट कर सकते हैं और उसमें वैल्यूज कैसे हमारे जीवन को, हमारे करियर को एनहांस करते हैं, वो भी बातें आपने बताया। चलिए आगे बढ़ते हुए एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं, उसके बाद फिर बातें करते हैं। आप सुन रहे हैं रेडियो मधुबन 107.8 FM पर जीवन कौशल, इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं, सुनते रहो मुस्कुराते रहो।

अपने करियर की उड़ान को दे नई दिशा, क्योंकि आ गया है करियर ऑप्शन सिर्फ रेडियो मधुबन पर।

0: मधुबन पर आरजे रमेश के साथ, क्योंकि आपकी सफलता हमारा मिशन है।
1: नमस्कार, ब्रेक के बाद आप सभी का फिर एक बार स्वागत है और बहुत ही अच्छी बातें हो रही हैं। आज करियर काउंसलिंग को लेकर हम बातें कर रहे हैं। मनीषा सोनावने हमारे साथ है जिनसे बातें हुई और बहुत ही सुंदर जो है उन्होंने वैल्यू बेस्ड करियर के बारे में बताया और उसके बाद स्पिरिचुअलिटी के बारे में बताया और ये सारी चीज़ें जो है हमारे जीवन को बेहतर बनाने के लिए, जीवन को सुंदर बनाने के लिए हैं। तो आइए, करियर में हम लोग जैसे आगे बढ़ते जाते हैं तो नए नए टास्क हमारे पास आते हैं, फिर उसमें टिके रहना, एक ही जॉब पे आगे बढ़ना, प्रोग्रेस करना, ये बहुत मुश्किल वाला काम फिर बाद में लगता है। लेकिन आज के समय में क्या हो रहा है कि हम लोग जल्दी जल्दी जॉब जो है, थोड़ा पैसा उधर ज़्यादा मिल रहा है, थोड़ा सा एडवाइजन अच्छा मिल रहा है तो तुरंत जॉब क्विट करते हैं और दूसरे जॉब को ले लेते हैं। तो ये जो प्रक्रिया है ये बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसमें आदमी जो है एक बार उसका नेचर में आ जाता है कि थोड़ा जहाँ मिलेगा ज़्यादा उधर चले जाएंगे, तो फिर वो लाइबल नहीं रहता है व्यक्ति, हमेशा जो है कहीं ना कहीं उसको भरोसा टूट जाता है लोगों का उसमें। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जहाँ हो वहाँ प्रोग्रेस भी हो और टिके भी रहे। तो आइए मनीषा जी को फिर मैं जोड़ना चाहूँगा आप सभी के साथ में। मनीषा जी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे और एक संदेश सुंदर हमारे विद्यार्थी मित्रों को जरूर दें ताकि वो अपने करियर को अच्छे से फ्रेम आउट कर सके और आगे बढ़ सके। जी
2: जरूर, हम सभी से कहना चाहेंगे कि करियर हमारा लाइफ पाथ डेवलप करता है, लाइफ जर्नी डिसाइड करता है। तो ये तो एक बहुत बड़ा एस्पेक्ट हो जाता है। एक अच्छा करियर आपको पैसा देता है, सम्मान देता है, एक अच्छा उद्देश्य भी देता है, लेकिन आप अच्छा सम्मान, अच्छा पैसा, उद्देश्य तभी प्राप्त कर सकते हैं जब आपके करियर सॉफ्ट स्किल के साथ साथ आप में नैतिक मूल्य भी हो, अच्छे यूनिवर्सल वैल्यूज भी हो। तो आप गर्व से कह सकते हैं, खुशी से कह सकते हैं कि मेरा जो ये जीवन है ये सोशली और वर्ल्ड वाइड ये एक उपयुक्त कारक जीवन है। ये एहसास जब किसी को हो जाता है तो उसके करियर के साथ उसको बहुत खुशी, शांति और आनंद महसूस होता है। तो मैं सभी से कहना चाहूंगी, आप डेफिनेटली प्रोफेशनल सब्जेक्ट्स है, इसे तो आपको करना ही करना है, लेकिन ये करियर्स चलेंगे तब मैं डेफिनेटली कह पाऊंगी, आई एम 100% श्योर इन फेम एंड प्रेस्टीज वाइज। थैंक यू
1: जी। मनीषा जी, काफी अच्छी बात है आपने बता दिया कि कैसे हम, बहुत बढ़िया काम हो जाता है क्योंकि करियर में टाइम इम्पोर्टेंस है। टाइम जब आप देते हैं सिलेक्शन के लिए, आपकी रुचि, आपके इंटरेस्ट, और जैसे शुरू शुरू में मनीषा जी ने बताया कि कैसे आप अपना करियर को चूज करें, जो आपके स्ट्रेंथ है उसको समझ के अगर आप करते हैं तो लॉन्ग टर्म के लिए रुचि के अनुसार, तो वो लॉन्ग टर्म आप वहां पर सरवाइव कर सकते हैं। अगर इंटरेस्टेड चीजें नहीं है तो थोड़ी सी दिक्कतें बाद में हो जाती हैं कि आप काम तो कर लेते, पैसे तो आ जाते हैं, लेकिन जो संतोष है, सेटिस्फेक्शन है, उसकी कमी रह जाती है। तो इसीलिए यहाँ पर एक बार थोड़ा सा आप आत्ममंथन जरूर कीजिए, जिससे आपको अपना स्ट्रेंथ एंड इंटरेस्ट फील्ड मालूम पड़े और फिर उसी से सेग्रीगेटेड कोई भी फील्ड में आप आगे बढ़ सकते हैं। उसी में कोई अच्छा स्ट्रीम जो आपकी रुचि का हो, जहाँ पर आपको अनुकूल लगता है और अच्छा लगता है, वही चीजों को आपको फोकस करके चूज करना। तो मनीषा जी, बहुत बहुत धन्यवाद, शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी बातें बताया और करियर के साथ साथ ह्यूमन वैल्यूज और फिर स्पिरिचुअलिटी को भी कैसे एनहांस कर सकते हैं, वो चीजें आपने बहुत ही सुंदर तरीके से बताया। थैंक यू सो मच। चलिए मित्रों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलते हैं अगले करियर एपिसोड में। तब तक आप बने रहिए हमारे साथ। सलाम नमस्ते, खमा गणिसा, जय हिंद, जय भारत, ओम शांति। सुनते रहो, मुस्कुराते रहो।

0102 बोरियत की एरर, नएपन की कमांड रिजेक्टेड। अब हर चीज हर जगह तो नहीं मिलती, कुछ नयापन चाहिए तो सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: कुछ दिन पहले एक भाई मिले, उन्होंने कहा सुबह क्या हुआ, कहते मैं उठा, ऐसे बेड से उठा तो टेबल थी बेड के सामने, मेरा पैर लग गया टेबल से। तो मैंने सबको जोर जोर से डांट लगानी शुरू कर दी, दिखता नहीं, अपने सब स्टाफ को बुलाया, वाइफ को बुलाया, दिखता नहीं बेड के सामने टेबल रखिए, उठा मेरा पैर लग गया, सबको डांट रहा था। तो धीरे से किसी ने आके कान में कहा, सर रात को आपने रखी थी। अब जैसे ये पता चला कि रात को आपने रखी थी, अब व्यवहार कैसा हो जाएगा? इसीलिए जीवन में जितने विघ्न हमें दिखाई दे रहे हैं, जिनके लिए हम औरों को डांट रहे हैं, औरों को जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, औरों पर चिल्ला रहे हैं, वो जीवन में विघ्न हमारे किसने रखे थे? किसने रखे थे? वो हमने ही रखे थे। अब औरों पर डांटने की बजाय हमें क्या करना है? हमें क्या करना है कि आज उसको ध्यान से साइड पे रखना है। तो जो मेरे जीवन में हो रहा है, अगर मुझे ये क्लैरिटी है कि जैसा कर्म वैसा कॉन्सिक्वेंस, तो मुझे उंगली फिर किसी और पर नहीं, उंगली यहां और ठीक करने की उंगली भी यहां। वी आर नॉट डूइंग अ फेवर टू एनीबडी एल्स। ये हम कहते हैं ना, उसने किया ही इतना, मैं कैसे क्षमा करूं, उनको नहीं क्षमा कर रहे, अपने आप को क्षमा कर रहे हैं।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: पावसाच्या थेंबात दडलेलं जुनं प्रेम, आठवणींचा ओलावा। कधी कधी विरहातलं मौन सुद्धा गाण्यापेक्षा जास्त बोलतं।
3: अश्विनी
2: जीवन म्हणजे चालत राहणं, गाणं, हसणं आणि स्वप्न पाहणं।
4: वाऱ्यावरती गंध पसरला ना ते मनाचे।
2: आईचा आवाज म्हणजे मनाला शांती मिळवण्याचं संगीत। या सगळ्यांची सांगड कुठे बर घातली जाते? आपल्याच पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। आनंदी रहा, आनंद लुटा।
5: चल चल चल मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर, कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुणेरी आवाज 107.8, खुश रहो खुशियां बांटो।

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: गर्मी होगी तो आई एम फाइन विद इट, लेकिन ठंड मेरे से जहन नहीं होती। ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है, तो मैंने अपने आप को कंडीशनिंग दे दी कि गर्मी में आई विल बी फाइन, लेकिन ठंड में तो मैंने बीमार पड़ना ही है। विच मीन्स मैं अपना ध्यान नहीं रखूंगी, ठंड में बीमार पड़ना अलाउड है। तो अब एक महीना दो महीना मैंने अपने आप को बीमार रहना अलाउड हुआ। अगले साल ठंड 6 महीने रही और मेरी प्रोग्रामिंग मैंने चेंज नहीं की और मैंने अपने आप को प्रोटेक्ट भी नहीं किया, तो अगले साल मैं 6 महीने बीमार रही। उसके 2 साल के बाद इतनी ठंड आई, और क्योंकि मेरा इम्यूनिटी सिस्टम हर साल बीमार होते होते होते होते कमजोर होता जा रहा था, उसके 4 साल बाद इतनी ठंड आई दैट आई जस्ट कुडंट टेक इट। एंड देन वी से डिप्रेशन, नर्वस ब्रेकडाउन, दिस, क्योंकि करते करते करते करते ताकत तो कम होती जाएगी और दुनिया की परिस्थितियां बढ़ती जाएंगी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। आइए आइए, दरवाजे पे क्यों खड़े हैं? अंदर आइए। ये घर है मुस्कुराहट का, यहाँ बसती है खुशियाँ। ये है पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।
1: बात पुरानी बड़ी सुहानी, मनात खोलवर रुजलेल्या चित्रपट, साहित्य, संगीत, गाणी यांच्या आठवणींचा नॉस्टैल्जिक खजिना।
2: बात पुरानी बड़ी सुहानी,
1: फक्त रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM वर। संकल्पना आणि सादर करते श्री धनंजय कुलकर्णी।

तेरी चंदी मन के मीत मेरे मिल जा जल्दी दुनिया के सागर

0: रिश्तों में सरलता और प्यार बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: अभी कोई चाहे तो हमसे कुछ भी करवा सकता है, या हम खुद चूज करते हैं उठना है या उठना है, बैठना है, खड़े होना है, हाथ ऊपर करना है, नीचे करना है। ये शरीर हमारी मर्जी से चलता है या औरों की मर्जी से चलता है? हमारी मर्जी से चलता है। हमारे मूड आजकल किसकी मर्जी से चलते हैं? कोई हमसे प्यार से बात करे, हमें रिस्पेक्ट दे, सम्मान दे, आगे रखे, हमसे पूछे हर चीज, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? और कोई हमसे नहीं प्यार से बात करे, रूडली बात करते, इरिटेट करे, तो ऑटोमेटिकली हमारा मूड क्या हो जाएगा? तो इसका मतलब हमारा मूड, हमारी मन की स्थिति किसके कंट्रोल में है? किस किस के पास हमारी मन की स्थिति का कंट्रोल है आजकल?
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: अध्यात्म और मूल्यों से सजा कार्यक्रम रंग नवे जरूर सुने।
1: नमस्कार, आप अपने एकताहित रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: नमस्कार, आपको नहीं कहता है रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।
1: नमस्कार दोस्तों, मैं हूं शोभन सरवस्व, आपका अपना डिजिटल मार्केटिंग एक्सपर्ट, और आप सुन रहे हैं रेडियो पुनीरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: असर्टिवनेस विदाउट जेनरेटिंग एंगर, तभी वो रियल मायने में असर्टिवनेस होगा, क्योंकि असर्टिवनेस इनर स्टेबिलिटी। तो हम ये नहीं कह सकते कि हम गुस्सा भी है और स्टेबल भी है, क्योंकि जैसे ही गुस्सा अंदर जेनरेट हुआ, चाहे वो सप्रेस कर दिया, लेकिन हम स्टेबल नहीं होते हैं तब, यू नो। तो देन आई कैन नॉट से कि आई एम इंटरनली स्टेबल बट नाउ आई एम बीइंग असर्टिव। तो इंटरनल स्टेबिलिटी मीन्स यू नो नो ट्रेस ऑफ एंगर, उसको जब पूरा खत्म होगा, इंटरनली बिल्कुल काम एंड इन कंट्रोल है, लेकिन फिर भी आपको डिसिप्लिन करना, यू नो। एंड असर्टिव जब हम होते हैं, हमें बहुत कम बोलना पड़ेगा, बहुत ज्यादा यू नो, और बहुत सोच समझ के एक एक बोल निकलेगा, क्योंकि आप फुल इन कंट्रोल है। एंगर में या सप्रेशन वाली स्टेज में आप इंटरनली डिस्टर्ब्ड है कि वो हो सकता है कि मुख से कोई ना कोई ऐसा बोल निकल ही जाए कि दूसरे को भी बुरा लगेगा और खुद को भी पश्चाताप हो।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: मित्रांशिवाय आयुष्य पूर्णच हसणं भांडणं आणि गाणं सगळं शेअर
3: करायचं।
2: जुन्या दिवसांची आठवण आली की मन पुन्हा शाळेत जातं।
4: लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा,
2: मनात बीट्स वाजल्या की शरीर आपोआप फिरकत। त्याच सोबत
5: गावाची आठवण, मातीचा सुगंध,

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: किसी की एक लाइन मेरी मन, फीलिंग्स, वर्ड्स, एक्शन, रिलेशनशिप एंड बॉडी, छह चीजों पर असर हुआ मेरे। एक घंटे तक ये पूरी साइकोलॉजी, फिजियोलॉजी सब डिस्टर्ब्ड रही, रिश्ता डिस्टर्ब हुआ, रात को भी वो बात याद आई। एंड डेफिनेटली जब ये चीजें दिन में इतनी देर माइंड पे रही होंगी, ये नींद में जरूर चले होंगे, क्योंकि जो थॉट्स एक्टिव ड्यूरिंग द डे चलेगी ज्यादा, ये नींद में जरूर चले होंगे। नींद का नुकसान इसलिए क्योंकि आपने रात को सोने से पहले भी उस बात के साथ रिजोल्व नहीं किया अपने आप को, आप वो अनरिजोल्व्ड बात के साथ सो गए। तो मन क्या करता है, रात को सारा दिन की हुई बातें या जो कुछ हमारे माइंड पे है, देखो कोई प्रॉब्लम है, क्यों लोगों को नींद नहीं आती व्हेन दे आर अंडर स्ट्रेस, कोई प्रॉब्लम है, नींद नहीं आती, क्यों नहीं आती है? क्योंकि मन सोचना बंद नहीं करता है। सोने के लिए द माइंड नीड्स टू स्लो डाउन। इफ आई एम डिस्टर्ब्ड अबाउट समथिंग द माइंड जस्ट गोज ऑन एंड ऑन। आपके साथ एक बच्चा बैठा है, वो पूछता जाएगा जब तक आप उसको आंसर नहीं देंगे। आंसर दिए बिना ही सो गए तो वो तो रात को भी सोचता रहेगा। एंड इसीलिए मोस्ट ऑफ अस टुडे एक्सपीरियंस कि हम अपने 6 घंटे तो सो रहे हैं, 6 घंटे, 8 घंटे, जितना सोना है, लेकिन जब हम सुबह उठ रहे हैं द माइंड इज नॉट एज फ्रेश एज इट नीड्स टू बी।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: ये मेरा छोटा भाई है ना, बड़ा शरारती है।
1: कॉलेज में मार्कशीट फोटोशॉप करके पापा को दिखाता था। कल मैंने लाइट बिल पर जीरो अमाउंट देखा तो सोचा इसने पक्का फोटोशॉप किया होगा, वरना जीरो बिजली बिल कैसे पॉसिबल है। पूछा तो बोलता है, भैया सब ऊपर वाले की दया है, सोलर पैनल है ना। मैंने कहा, ओ ये सही है बेटा।
2: पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना जुड़ने के लिए रजिस्टर करें PM सूर्य घर .gov.in।

0: ओम शांति। अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में आज फिर आप सबका स्वागत है। सेल्फ मैनेजमेंट की इस पूरी श्रृंखला में हमने पिछली कड़ी में बात की थी रोल्स की। हम में से हर कोई कहीं ना कहीं एक एक्टर के रूप में अपने आप को जरूर देखना चाहता है। तो आज मौका मिला है कि हम जिंदगी में किस तरह के रोल अदा करते हैं उन्हें देख पाएं। जब अवेयरनेस, क्योंकि जब भी हम एक्ट कर रहे होते हैं हम अवेयर होते हैं कि हम एक्ट कर रहे हैं। सिमिलरली अगर जो रोल मैं दिन भर में प्ले कर रहा हूं उसके प्रति अगर हम अवेयर हो जाते हैं, हमें पता चल रहा है कि मैं ये रोल प्ले कर रहा हूं, थोड़ा सा भी अगर अपने आप को डिटैच करके देख पाते हैं, इट इज एक्चुअली लाइक एन एक्टर। हम वो हर रोल को बहुत अच्छी तरह से अदा कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात, अभी तक कहीं ना कहीं प्री डिफाइंड था कि इस रोल को मुझे ऐसे ही डिफाइन करना है। लेकिन स्पिरिचुअलिटी या पिछली कड़ी अगर हमें देखें, वो हमें फ्रीडम देती है कि मैं हर रोल को, हर सीन को अपने हिसाब से अदा कर सकता हूँ। तो फिर कौन ज्यादा अच्छा एक्टर होगा जो अपने हिसाब से स्क्रिप्ट लिखेगा और फिर उसे प्ले करेगा। लेकिन कहीं ना कहीं जब हमने ट्राई किया तो स्क्रिप्ट लिखने में मुश्किल आ रही थी कि कहीं ना कहीं वो पुरानी जो चीजें हैं वो टेक ओवर कर जाती हैं। कैसे अपनी स्क्रिप्ट लिखनी है, इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं प्रमा कुमारी सिस्टर शिवानी। सिस्टर शिवानी, बहुत बहुत स्वागत। ओम शांति।
1: ओम शांति।
0: थोड़ा सा मैं चाहूंगी कि आप शेयर करें कि हाउ इज दिस क्रिएटिविटी एंड स्पिरिचुअलिटी गोज हैंड इन हैंड, क्योंकि उसमें कहीं फन दिखता है, वो जिंदगी के नजदीक दिखती है, और स्पिरिचुअलिटी ऐसा लगता है कि नहीं, समथिंग टू रियली यू नो थिंकिंग है या डूइंग में कुछ नहीं हो रहा होता।
1: सी वी फॉरगॉट व्हाट इज स्पिरिचुअलिटी एक्चुअली। स्पिरिचुअलिटी मींस कि जो हम कर रहे हैं, हमारा हर कर्म, हमारा हर संबंध, हमारा हर इंटरेक्शन, उसमें मेरा अपनी चॉइस, मेरा अपना कंट्रोल, मेरा राइट वे ऑफ थिंकिंग, राइट वे ऑफ फीलिंग, राइट वे ऑफ परसीविंग एंड देन राइट वे ऑफ एक्टिंग। हर कर्म करते हुए मेरी सही सोच क्या है, उसका रिजल्ट मेरी सही फीलिंग क्या होगी, मैं हर एक व्यक्ति को, हर परिस्थिति को किस दृष्टिकोण से देखती हूँ, और फिर जैसा मेरा दृष्टिकोण होगा वैसा मेरे व्यवहार में आएगा। तो वो स्पिरिचुअलिटी ने मुझे पावर दी है कि वो राइट थिंकिंग क्या है। इनफैक्ट स्पिरिचुअलिटी ने मुझे सिखाया कि मैं थिंकिंग करती हूं, पहले तो यही नहीं पता
0: था। वही तो मैं कह रही हूँ कि जो तीन पोर्शन आपने बताए वो तो ऑटोमेटिक हो रहे थे, मैं सिर्फ एक्टिंग या मैं जो कर्म कर रहा था उस पर केंद्रित था,
1: क्योंकि हमने अपने आप को सिर्फ बाहर देखा है। स्पिरिचुअलिटी मीन्स सीइंग कि वो प्रोसेस शुरू कहाँ से होता है। यू नो, जैसे एक प्रोडक्ट है, वो प्रोडक्ट रेडी होकर मेरे हाथ में आ गया, लेकिन प्रोडक्ट का जो प्रोसेस था कि वो प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर कैसे हुआ। तो आज दिन तक बॉडी कॉन्शियस या हम मटेरियलिस्टिक जिसको कहते, मतलब प्रोडक्ट को देखना, दिस पर्सनैलिटी आफ्टर इट इज रेडी, तो ये पर्सनालिटी कैसे बोलती है और ये पर्सनालिटी कैसे व्यवहार करती है, लेकिन ये पर्सनालिटी क्या सोचती है वो उसकी फाउंडेशन है। लेकिन जब हमें ये नहीं पता था कि थिंकिंग इज द फाउंडेशन ऑफ माय एवरी वर्ड एंड एक्शन, और मुझे ये नहीं पता था कि आई एम द क्रिएटर ऑफ एवरी थॉट, मेरा हर संकल्प मैं क्रिएट करती हूँ, एंड मोस्ट इम्पोर्टेंट पावर कि इरिस्पेक्टिव परिस्थिति कैसी भी है, आई हैव द पावर टू क्रिएट विच एवर थॉट आई वॉन्ट। सो बेसिकली ज्ञान या स्पिरिचुअलिटी हमें ऑटोमेटेड मोड से चॉइस के मोड में ले आता है कि आई चूज टू डू, टू थिंक, टू प्ले, टू एक्ट द वे आई वॉन्ट, एंड दिस इज फ्रीडम, दिस इज कम्प्लीट फ्रीडम। तो इसलिए स्पिरिचुअलिटी विल गिव मी फ्रीडम, दिस फ्रीडम विल गिव मी क्रिएटिविटी, कि एक बार मुझे समझ में आ गया मेरी फ्रीडम है, मेरी चॉइस है, मैं हर रोल को कैसे भी प्ले कर सकती हूँ, दिस विल गिव मी क्रिएटिविटी, क्रिएटिविटी विल एनहांस माई इफेक्टिवनेस। नाउ वेदर इट्स अ पेरेंट्स रोल, वेदर इट इज द रोल ऑफ अ बॉस, द रोल ऑफ अ वाइफ, एनी रोल, माई इफेक्टिवनेस इन प्लेइंग दैट रोल विल इंक्रीज, एंड जहां मेरी इफेक्टिवनेस बढ़ती जाएगी माई सेटिस्फेक्शन लेवल विल ऑल्सो इंक्रीज।
0: और कहीं ना कहीं एक बहुत स्ट्रॉन्ग ये रहेगा कि आपको जो कुछ भी मैं एक्ट कर रहा हूँ उससे पहले का प्रोसेस मैं समझ चुका हूँ, और ये मैं अपने कारण कर रहा हूँ।
1: दैट्स व्हाई वी कॉल द प्रोग्राम अवेकनिंग, कि पहले हम अंदर तो एकदम स्लीपिंग मोड में थे और बाहर काम कर रहे थे, तो मतलब ड्राइवर सोया हुआ था, गाड़ी चल रही थी अपने आप, बट देन इट वॉज जस्ट गोइंग व्हेरेवर इट वॉन्टेड। नाउ द ड्राइवर हैज द पावर टू टेक द कार where he wants to take the car and drive exactly the way he wants to drive, and then when the driver wakes up he can drive avoiding accidents. humne spirituality ko प्रैक्टिकल लाइफ में नहीं देखा था कि हाउ इज इट वर्किंग. हमें लगा स्पिरिचुअलिटी मतलब सिर्फ ध्यान करना, परमात्मा को याद करना, विच इज यस, बट परमात्मा को याद करके फिर उससे क्या करना, उस शक्ति को लेकर जीवन के हर रोल में प्ले करते हुए उसको कैसे यूज करना. सो आई थॉट स्पिरिचुअलिटी मेडिटेशन मतलब सिर्फ परमात्मा को याद करना, तो वो तब करेंगे जब सारे कामों से बाकी फ्री हो जाएंगे.
0: 70 साल में आप जाओ और तब करो.
1: सो इसीलिए द फर्स्ट कॉमन आंसर दैट कम्स इज आई डोंट हैव टाइम, बिकॉज इट वॉज सपोज टू बी अ सेपरेट थिंग. तो जहां की मेरे आज अभी की जो जिम्मेवारियां वो ही नहीं पूरी हो रही हैं 24 घंटे के अंदर, तो एक अलग पहलू के लिए टाइम निकालना, इट इज चैलेंजिंग. वी नीड टू हैव फन, बट बिकॉज वी वर नॉट हैविंग फन इनसाइड, वी वर लुकिंग फॉर फन आउटसाइड.
0: हमने इतना खेला बाहर, इतना खेला और समझ में आया नहीं कि हम मतलब उसको हम एंजॉय नहीं कर पाए बिल्कुल. यस,
1: लेकिन हम फिर अगेन वी वर लुकिंग फॉर फन इन सिचुएशंस. सी अगेन मटेरियलिस्टिक मींस आप सब कुछ बाहर सिचुएशंस में ढूंढते हो कि मैं क्या ऐसा करूं जिससे आई हैव फन, मैं क्या ऐसा खाऊं, मैं क्या ऐसा पहनूं, मैं क्या ऐसा यू नो लोगों से मिलूं, मैं क्या करूं जिससे आई विल हैव फन. बिकॉज I want to have fun, I want to have joy, I want to enjoy life. But then we were looking for it in physical things because we thought I am the body. Just then samajh mein aaya ke who wants to have fun? I want to have fun. I, not body doesn't want to have fun, kyunki iski to koi feeling hi nahi hai, isko nahi aati. I want to have fun. Now where do I have fun?
0: In fact, yes, I just go back to that jab hame ye samajh mein aaya tha ki responsibility sabse pehle kiski hai, meri, you know, like the being, aur uski fir core values kya hai aur tab purpose of life jo hai, it actually now stays, you know.
1: So spirituality answered this fundamental question ki main kaun hu, aur main kaun hu jab sharir se hatkar आत्मा पर आंसर आया तो सब कुछ चेंज होने लग गया ना. जस्ट द मीनिंग ऑफ एवरीथिंग चेंज्ड एंड देन आई स्टार्टेड फीलिंग गुड. आई वाज डूइंग एवरीथिंग, पहले भी हम सब कुछ कर रहे थे, बट ये ना जानकर कि कौन है वो जो यू नो चाहता है अच्छा फील करना, एक्सपीरियंस करना, आई डिडंट नो. सो सब कुछ करते हुए भी आई वाज नॉट रियली एंजॉयिंग, एंड फिर वो जीवन कट रहे है वाला एक्सपीरियंस था कि बीत रहा है, हर एक दिन गुजर रहा है. अगेन देयर वाज नो फन. सो स्पिरिचुअलिटी इज नॉट बोरिंग, स्पिरिचुअलिटी इज नॉट सीरियस, स्पिरिचुअलिटी इज एक्साइटिंग. आप एक दिन को ही देख लो ना, अगर हर दिन आप इस अवेयरनेस से हम चलेंगे कि आई एम गोइंग टू चूज माई रोल, इट्स एक्साइटिंग, आई विल लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट सीन. लेकिन अगर मुझे लगे कि कुछ भी मेरे हाथ में नहीं है, यू नो यू आर गोइंग टू कंट्रोल माई सीन, यू आर गोइंग टू लुक control my dialogue, why should I look forward to the next scene? Then I don't look forward to the next scene, kyunki mera jo experience hai wo ye ki paristhitiyan aur log mujhe aise control karke chal rahe hain aur main sab cheez ke andar jaise fasi hui hu aur bas unhi ki wajah se main jaisa soch rahi hu, bol rahi hu aur vyavahar kar rahi hu, that's not fun at all.
0: Lekin ab kya aa raha hai ki very true, agla pal mera kya hoga, agla scene kya hoga, uske bare mein agar main aware bhi hu, agla role mera aayega, par मुझे लग रहा है कि उसके लिए मुझे काम करना पड़ेगा. वो जो कहीं ना कहीं मेरी स्किल्स जो है वो मंजी हुई नहीं है अभी उतनी, क्योंकि वो काफी टाइम से उस पर काम नहीं किया गया है, तो वो थोड़ा यू नो अभी इमर्ज नहीं हो पाया.
1: लाइक व्हाट वी सो लास्ट टाइम वाज के हम पोजीशन को पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं, तो एक्टर कॉन्शियस नहीं रहते. एक्टर कॉन्शियस मीन्स सोल कॉन्शियस, लेकिन हम पोजीशन कॉन्शियस हो जाते हैं. और दूसरा, हम अपने रोल से आइडेंटिफाई कर लेते हैं, तो कहीं ना कहीं हमारा व्यवहार बहुत अग्रेसिव डिफेंसिव हो जाता है कि मेरे रोल को कोई कुछ ना कहे, मेरे रोल को कोई यू नो इनसिक्योरिटी ना हो, आई एम एबल टू मेंटेन माय रोल. तो इसलिए भी हम उसमें क्रिएटिविटी नहीं लाते कि वो जैसे चल रहा है ये ऐसे ही ठीक है, आई डोंट वांट एनी चेंज इन दिस. एंड तीसरा, जैसे आपने कहा था कि सम पीपल से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट, आई एम नॉट अ क्रिएटिव पर्सन, मुझे तो बस ऐसा ही करना आता है, ये भी कहीं ना कहीं अपने आप को लिमिट करना हो गया. क्योंकि बहुत लोग ऐसा सोचते हैं कि हम क्रिएटिव नहीं है, क्रिएटिव बहुत थोड़े लोग होते हैं, यू नो वी फील, बट एक्चुअली एवरीवन इज क्रिएटिव, ईच वन ऑफ अस इज सो क्रिएटिव, लेकिन इट्स जस्ट दैट डिपेंड्स कि कौन अपनी क्रिएटिविटी को यूज कर रहा है और कौन उसको डोमिनेंट रख रहा है. क्योंकि क्रिएट करना, एक्ट करना मतलब क्या, यू आर द क्रिएटर ऑफ योर एक्शंस, एवरी थॉट एंड एक्शन दैट आई एम क्रिएटिंग, I am the creator. इसको ही तो act बोलेंगे ना, creator of the action. तो action कौन create कर रहा है सारा दिन? हम क्रिएट कर रहे हैं।
0: मैं पानी का ग्लास भी उठा रही हूँ, मैं यहाँ बैठ रही हूँ, चल रही हूँ, ये एक्शन है जिन्हें मैं क्रिएट कर रही हूँ।
1: जो मैं सोच रही हूँ, जो मैं बोल रही हूँ, ये मैं एक्शन है जो मैं क्रिएट कर रही हूँ। तो हु इज डूइंग इट? तो हाउ कैन आई से आई डोंट नो हाउ टू एक्ट? लेकिन जब हम उस अवेयरनेस से चलेंगे, हमें पता चलेगा कि रोल मीन्स व्हाट। रोल मीन्स अ सेट ऑफ मेंटल एंड फिजिकल एक्शंस, क्या से सोचना और कैसे उसको व्यवहार में लाना, दैट इज माई रोल एंड आई कैन लर्न हाउ टू डू दैट। आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ थिंकिंग, आई कैन लर्न टू चेंज माई वे ऑफ बिहेविंग। जब हम ये कह रहे हैं कि मैं क्रिएटिव नहीं हूँ, एक्चुअली मतलब मैं चेंज होना नहीं चाहती,
0: मैं जैसा चल रहा है चलने दो, क्योंकि अब उस पर भी कोई काम करे। अभी तक तो मेरे पास इतने सारे काम है, मुझे अपना प्रोजेक्ट कंप्लीट करना है, मेरे पास इतनी बड़ी डेडलाइन है, मुझे फिर आगे चल के जो है अपने हॉलीडे को भी पूरा प्लान करना है, मुझे ये भी करना है, वो भी करना है, तो अब मैं इस पर कैसे काम कर सकती?
1: लेकिन ये हमने देखा कि इस पर काम करने के लिए एक्स्ट्रा टाइम नहीं चाहिए। वो सब कुछ जो आप कर रहे हैं उसको सिर्फ इस अवेयरनेस से करना है, लेट मी डू इट डिफरेंटली, लेट मी डू इट द वे इट विल गिव मी हैप्पीनेस, लेट मी डू इट द वे इट विल गिव मी सैटिस्फैक्शन, बजाय के एक मोनोटोनस तरह से चलने के लिए। इसको तुरंत अपने आप को रिजेक्ट नहीं करना ये कह करके मैं नहीं कर सकता। सी अगेन अ नेगेटिव थॉट।
0: इनफैक्ट लेट अस ट्राई।
1: Yes.
0: इसमें कुछ करना थोड़ा है, कर तो हम वही सारी चीजें रहे हैं।
1: Absolutely.
0: लेकिन उसको हम मतलब थोड़ा सा एडवेंचरस तो हमें होना चाहिए।
1: एडवेंचरस तो होना ही चाहिए, लेकिन क्योंकि एडवेंचर हमेशा अच्छा लगता है, एक्साइटिंग होता है। और दूसरी एक चीज ये भी है कि हम डरते भी हैं। वी आर स्केर्ड ऑफ बींग क्रिएटिव, क्योंकि कहीं ना कहीं हमने सोचा ये जीवन जो है ना एक कॉम्पिटिशन है। तो कॉम्पिटिशन में हार और जीत की कॉन्शियसनेस सारी लगी हुई है कि somebody will win, somebody will lose. आई डोंट want to lose. Definitely. I always want to be a winner. And so I don't want to try anything different. It's all about changing my perception towards the same situation. Challenges, yes. Situations, yes. Suffering, no.
0: No, yes.
1: That's the point. So basically, like you say, लोग सोच रहे हैं कि आप suffer कर रहे हैं. Suffering मतलब अंदर की फीलिंग है और वो हमें ही पता होता है। कई बार लोग हमसे मिलेंगे तो वो कहेंगे बेचारे आप, आपके सामने कितने दुख आए। हमारे सामने परिस्थिति आई, आप उसको दुख की तरह परसीव कर रहे हैं। हो सकता है आई एम नॉट गोइंग थ्रू एनी पेन इनसाइड, एंड कई लोगों के लिए हमें लगेगा कि नहीं वो बिल्कुल ठीक है, लेकिन अंदर से प्रोबेबली दे आर गोइंग थ्रू अ लॉट ऑफ पेन। तो ये हर एक सिर्फ और सिर्फ अपने को जानता है। इसमें वी डोंट नीड एनीवन एल्सेस यू नो ओपिनियन, बिकॉज ओनली आई नो। सो इफ आई नो दैट आई एम नॉट सफरिंग, देन इवन इफ अदर पीपल से इट डजंट
0: नो। एंड इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि सिस्टर शिवानी ये भी एक बिलीफ सिस्टम आता है कि अगर मैं इस सिचुएशन से गुजरा हूँ या कोई और इस सिचुएशन से गुजर रहा है तो इसमें तो दुख होगा ही।
1: तो इट्स अ कंडीशन्ड बिलीफ ना, क्रिएटिविटी नहीं है। अगेन दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट, कि जो कंडीशन्ड बिलीफ सिस्टम्स बन गए थे कि ऐसा होगा ही। लेट्स से फॉर एग्जांपल मी, आई नो मी एज अ पर्सनालिटी, कि अगर मैं किसी से बात कर रही हूँ अच्छी तरह से एंड वो मुझसे वापस ठीक से बात नहीं कर रहे, या वो बात ही नहीं कर रहे हैं, यू नो दे हैव व्हाटएवर इशू और व्हाटएवर एनर्जी फ्लोइंग इन बिटवीन, तो वो बात ही नहीं कर रहे। मैं फिर एक तरफ एक बार बात किया ठीक से, फिर भी नहीं बात कर रहे। दो बार किया, अभी भी नहीं बात कर रहे। ना इफ आई लुक एट माई सेल्फ एज द ओल्ड पर्सनैलिटी, मैं एक बार आपसे करूंगी, दो बार करूंगी, तीसरी बार आई विल से ओके यू डोंट वांट टू टॉक टू मी एंड आई डोंट वांट टू टॉक टू यू, इट्स फिनिश्ड, लेट्स फॉरगेट अबाउट इट। वैसे भी मुझे आपसे क्या चाहिए, यू नो इट्स लाइक दैट, आई डोंट केयर फॉर, आपको बात नहीं करनी तो मुझे नहीं करनी। ना आई विल वर्क कि ठीक है वो बात नहीं कर रहे, Do I have a choice? Do I want to play my role differently? This is the question. Or do I want to play my role the same way that I have played for so many years? And then this time I tried, okay, I will continue speaking to you. And with a very pure thought, not upar se. This is fundamental. See, every time hum is program pe jo bhi discuss kar rahe hain, har ek jo usko practice kar raha hai, usko ye dhyan rakhna padega, it has to be internally.
0: Thought
1: se shuru hoga. Bahar se nahi kijiye. Kyunki majority time jo hum keh rahe hain, hum kar rahe hain, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा, हम कर रहे हैं लेकिन अंदर से अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि उसको अंदर से नहीं कर रहे। अगर आप थॉट और फीलिंग से करेंगे तो यू विल एंजॉय एब्सोल्युटली। तो अब क्या होता है, एक बार दो बार आई कैन गो ऑन टॉकिंग 10 times, 20 times, 100 times to you, because I feel like talking. And every time आप मेरे से नहीं बात कर रहे हैं, लेकिन मैं फिर भी बहुत अच्छा फील करके आपसे फिर भी बात कर रही हूँ. इट गिव्स मी अ सेंस ऑफ विक्ट्री ओवर माई सेल्फ. नथिंग टू डू विद यू. आप जैसे हैं, पहले भी ऐसे ही थे, अभी भी ऐसे हैं, नो प्रॉब्लम. एंड उस एंगल से नहीं बात कर रहे कि आई एम वेटिंग फॉर यू टू चेंज. पहले जब ज्ञान थोड़ा थोड़ा समझ में आने लगा तो बहुत भाई बहने ये लगते हैं, मैंने दो बार बात की, मैंने चार बार बात की, आंट दे सपोज टू नाउ चेंज. नो, नाउ वी आर नॉट वेटिंग फॉर एनीवन. क्रिएटिविटी मीन्स सिर्फ एक के रोल पर फोकस करना है. अच्छा, 50 बार बात की, वो अभी भी नहीं बात कर रहे. हाउ डू आई वॉन्ट टू प्ले माई रोल? नो, आई स्टिल वॉन्ट टू कंटिन्यू नाइसली. स्टिल कंटिन्यू. एंड जिस तरह से हम फिर इस क्रिएटिविटी को यूज करते हैं, हम खुद हैरान होते हैं.
0: और उसमें फिर हमारा हर्ट नहीं आ रहा ना,
1: हर्ट होता है.
0: मेरा डिसीजन, मेरी चॉइस,
1: मुझे अच्छा लगता है करके, यू नो, आई एंजॉय डूइंग इट. एंड दिस इज ट्रांसफॉर्मेशन. हम अपने आप को देखते हैं कि अच्छा, पहले इसी परिस्थिति में हम इस तरह से बिहेव करते, टुडे आई एम डिफरेंट, विच वन मेक्स मी फील बेटर. तो इसलिए आप इसको कल जाकर किसी भी रिश्ते में करके देखिए कि किसी भी रिश्ते में एक पर्टिकुलर कंडीशन रिस्पॉन्स बहुत टाइम से चल रहा होगा. कई बार हस्बैंड एंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक कंडीशन रिस्पॉन्स हो रहा है कि हर रोज इरिटेशन है ही है, हर रोज आर्ग्यूमेंट है ही है.
0: पूरे दिन की स्क्रिप्ट जो है हमने एक ही तरह से लिखी हुई है, तो हर रोज यही होगा, यही हो, और उसी कारण हम फिर दूर भागते हैं. अगर हम आज देखें कि रिश्तों की जो दूरी बढ़ने का सबसे बड़ा कारण, बिकॉज वी नो व्हाट इज गोइंग टू हैपन. इवनिंग में क्या होगा, सुबह क्या रोल प्ले किया जाएगा, सुबह क्या सीन क्रिएट होगा, वी ऑल सीन इट, वी विजुअलाइज्ड इट, एंड वी स्टिल गेट इनटू इट, एंड वी डोंट ट्राई टू चेंज.
1: एंड नाउ लेट्स क्रिएट इट अ डिफरेंट वे, ताकि वी लुक फॉरवर्ड टू द नेक्स्ट डे. अभी क्या होगा, हो सकता है आपके साथ अगर मैं बहुत सालों से रह रही हूँ, यू नो, स्पेशली हस्बैंड वाइफ, 10 साल हो गए, 20 साल हो गए, मुझे आपकी एक एक सोच समझ में आ गई है, व्यवहार समझ में आ गया, तो मुझे पता है कि हर परिस्थिति में आप कैसे रिस्पॉन्ड करेंगे. लेकिन आजकल कई बार वी डोंट रिस्पॉन्ड इन द सेम वे, बिकॉज समटाइम्स आवर रिस्पॉन्सेज हैव बिकम वेरी अनप्रेडिक्टेबल आजकल. लेकिन वो जो अनप्रेडिक्टेबिलिटी है, वो थोड़ी सी नेगेटिव साइड पर जा रही है, क्योंकि अंदर इतना दर्द भरा हुआ है कि वो लोग जो आज तक काफी ठीक थे, स्टेबल थे, अब वो छोटी छोटी बातों में रिएक्ट करने लग गए हैं,
0: स्ट्रॉन्ग होने लग गए.
1: यू नो, बच्चे हमारे जो ठीक थे, सडनली टीनेज एज में आ रहे हैं, वो क्यों इस तरह से जवाब दे रहे हैं, वो क्यों आर्ग्यू कर रहे हैं, तो अनप्रेडिक्टेबिलिटी आ रही है. सो बेसिकली पहले क्या हो रहा था, मुझे आपके रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड पता थे, तो कहीं मेरे भी रिस्पॉन्सेज फिक्स्ड थे आपके. लेकिन नाउ आई हैव टू बी रेडी कि हर एक के साथ, जिनके साथ मैं डील कर रही हूँ, कोई भी तरह का रिस्पॉन्स आ सकता है. तो समवेयर आई कैन नॉट फिक्स माई रिस्पॉन्सेज, आई विल हैव टू बी रेडी कि अलग अलग लोगों से अलग अलग रिस्पॉन्सेज आने वाले हैं. हाउ एम आई गोइंग टू रिस्पॉन्ड इन द बेस्ट वे? कई लोगों के साथ ऑफिस में स्पेशली पता ही नहीं चलता, सडनली आज ये लोग अलग तरह से क्यों बिहेव कर रहे हैं, कल तक तो ठीक थे, आज क्या हो गया? फिर क्या होता, जैसे हमें दूसरे के रिस्पॉन्स में कुछ डिफरेंस दिखाई देता, हम उनके बारे में सोचना शुरू कर देते हैं, ये आज इस तरह से क्यों नहीं बात कर रहे. सपोज आपके अंदर कोई टेंशन है, आपने मुझे गुड मॉर्निंग नहीं कहा सुबह, आप कॉरिडोर में मुझे ऐसे ही क्रॉस करके चले गए, अब मैं आपके बारे में ही सोचना शुरू कर दूंगी, क्या बात है, मेरे से नाराज है?
0: हाँ, मुझसे मैंने मुझसे रूठ क्यों हो गए हैं, मेरे साथ, मेरा इनके साथ रिलेशनशिप खत्म हो जाएगा, मेरे साथ क्या प्रॉब्लम है, कि किसी और ने तो नहीं कहा?
1: एग्जैक्टली, सी वेयर ऑल द थिंकिंग इज गॉन, एंड पूरी कॉन्शियसनेस किस पर है कि आपने अपना रोल किस तरह से प्ले किया, और अब मैं क्या करूं जिससे आप अपना रोल चेंज कर. That's it. Why not कि ठीक है, आपने गुड मॉर्निंग नहीं किया या आपने ठीक से बात नहीं की, why can I just not continue? Is it necessary कि जैसे ही आपका रोल चेंज हुआ, मुझे भी चेंज करना है कि उन्होंने गुड मॉर्निंग नहीं किया तो फिर अब मैं क्यों गुड मॉर्निंग करूं? No, I have to be creative with my role, and कहीं ना कहीं मेरी एनर्जी, मेरी क्रिएटिविटी, फिर कहीं ना कहीं आपके अंदर भी वो क्रिएटिविटी जरूर जागृत करेगी. That is definite. So let's be conscious, aware. Awareness जहाँ आई कि हर पल awareness of how I am going to create my role. अब इसके ऊपर ये शायद सुनने में थोड़ा सा लगे कैसे कैसे करेंगे, is it very difficult? इसको तुरंत आज या कल में जाकर करना है कि जहाँ कोई रिश्तों में फिक्स्ड आ रहा था, या कहाँ हमें बहुत दिनों से एक दूसरे से किसी से अगर हमने बात नहीं की थी या ठीक से बात नहीं की थी, जस्ट गो एंड बी क्रिएटिव एंड यू नो जस्ट डू इट अ डिफरेंट वे टुडे.
0: एंड इन फैक्ट यू नो वो चेंज होता है या नहीं होता, उन तक आपकी वाइब्रेशंस पहुंचती है नहीं पहुंचती, आपकी अपनी वाइब्रेशंस जो है वो आपको बहुत खुशी दे देंगे,
1: बिकॉज हमने खुद को ही खुशी देनी है. दैट्स व्हाट वी सेड, हर चीज जो हम करेंगे इट मेक्स मी फील गुड. अभी मैं सोच रही थी पहले कि आप मुझे अगर ठीक से विश करोगे सुबह में आके, देन आई विल फील गुड, बट नाउ आई हैव अंडरस्टूड, आप करो या नहीं करो, अगर मैं आपको अच्छी तरह से विश करती हूँ आई फील गुड, दैट्स ऑल. अब मैं हर स्टेप पे हर एक को मिलती जाऊँ, हर सीन में क्रॉस करती जाऊँ और हर स्टेप पे ध्यान रखती जाऊँ, फील गुड फैक्टर
0: मेरा. You know, I feel so light actually. Yes.
1: Yes, पहले आपको देख देख कर, आपके बारे में सोच सोच कर मैंने यहाँ बहुत भारी कर लिया था, इसने क्यों नहीं आज ठीक से बात की, इसने इस तरह से क्यों व्यवहार किया, इसने जवाब क्यों नहीं दिया, यू नो हर चीज में भारी. अब मुझे सिर्फ एक के बारे में सोचना है और एक पर ध्यान देते जाना है कि उन्होंने जैसा भी किया मुझे कैसा करना है. अ न्यू रिस्पॉन्स एवरी टाइम, दिस विल मेक मी फील वेरी लाइट एंड ये मुझे बहुत हल्का रखेगा और क्रिएटिविटी मुझे एक मोटिवेशन देगी सारा दिन एंड आई विल लुक फॉरवर्ड टू इट. और उससे क्या होगा, मेरे कोई भी रिश्तों में वो दूरी नहीं आएगी क्योंकि जहां अगर मुझे लगा भी कि कहीं दूरी आ गई है तो वो किसके हाथ में है,
0: मेरे अपने हाथ.
1: क्विकली गो चेंज, प्ले द रोल अ डिफरेंट वे. दूरी आई क्योंकि हम इतने पर्टिकुलर टाइम से उस रोल को इस तरह से प्ले कर रहे थे. अगर लग रहा है दूरी आ रही है एंड इफ यू वॉन्ट टू चेंज इट, यू नो अगर आप उसको ठीक करना चाहते हो जस्ट गो एंड प्ले द रोल अ डिफरेंट वे.
0: बट हम तो बेसिकली क्या होता है कई लेवल्स पे पहुंच के हम चेंज ही नहीं करना चाहते, हम उसको ठीक ही नहीं करना चाहते क्योंकि हम कहते हैं कौन करे क्या है उनसे, हमें मुझे मिल के, जैसे आप कह रहे हैं कि उनसे मुझे मिल क्या रहा था,
1: उनसे नहीं मिल रहा है ना.
0: पर हाँ, बट बेसिकली ये मुझे एम्पावर कर रहा है.
1: Absolutely. तो इसको आई थिंक अगर हम आज के आज एक्सपेरिमेंट करके देखेंगे इट्स गोइंग टू बी अ डिफरेंट फीलिंग ऑल टूगेदर.
0: एंड इफ इज गोइंग टू बी विद मी, जिनके साथ भी मेरा रिश्ता है, अगर वो मेरे साथ ऑफिस में होने वाले हैं तो उनका इम्पोर्टेंट रोल होगा ही.
1: Absolutely.
0: तो मैं उनके साथ दूरी क्यों बढ़ाऊं?
1: क्यों ना हम जितनी बॉन्डिंग क्रिएट कर सकते हैं उतनी करते जाएं, क्योंकि वो सारी किसके हाथ में है, सारी अपने हाथ में है, तो उसको करते जाओ. एंड इसके लिए एक बहुत सिंपल कुछ एक बातों का हमें ध्यान देना है. सबसे पहला है हमारा दृष्टिकोण, माय परसेप्शन हैज टू बी वेरी राइट, कि मेरा जीवन के प्रति क्या परसेप्शन है.
0: हाँ, लोगों को छोड़ो, स्थितियों को छोड़ो, अब लाइफ के प्रति,
1: लाइफ के प्रति मेरा क्या परसेप्शन है. एंड इट हैज टू बी अ वेरी क्लियर परसेप्शन कि ये वर्ल्ड ड्रामा है, ये एक ड्रामा है, इसमें मैं एक एक्टर हूँ, मैं एक रोल प्ले कर रहा हूँ. रोल प्ले कर रहा हूँ इज वेरी इम्पोर्टेंट एंड एवरी टाइम आई हैव टू टेल माई सेल्फ इट्स जस्ट अ रोल. उसके अंदर इतना यू नो ना अटक जाए कि
0: बस वही रुक जाए.
1: इट्स जस्ट अ रोल. एंड जब मुझे याद रहेगा दिस इज जस्ट अ रोल, दिस इज जस्ट अ सीन, हर सीन जो गया इट्स जस्ट अ सीन. नो वन सीन इज मोर इम्पोर्टेंट देन द अदर सीन, एवरी सीन इज इक्वली इम्पोर्टेंट, इट्स जस्ट अ सीन एंड आई एम प्लेइंग अ रोल, आई एम एन एक्टर. जब मुझे ये याद रहता है, ये परसेप्शन रहती है कि आई एम एन एक्टर, आई एम प्लेइंग अ रोल, मुझे ये भी याद रहता है आई कैन क्रिएट इट द वे आई वॉन्ट. मुझे ये भी याद रहता है कि मेरे पास चॉइस है, मेरे पास बहुत सारी ऑप्शंस हैं, मुझे एक पर्टिकुलर तरह से नहीं प्ले करना. मुझे ये भी याद रहता है कि आई विल नॉट स्विम विद द करंट, मैं फ्लो नहीं हो जाऊंगी, आई विल बी एबल टू डिटैच माई सेल्फ जहां चाहिए क्योंकि इट्स जस्ट अ सीन. और फिर मुझे ये याद रहेगा कि फाइनली ये सीन भी खत्म हो जाएगा, चाहे वो कितनी भी बड़ी परिस्थिति आज, इट्स जस्ट अ सीन विच विल फेड अवे. एंड आई ऑल्सो हैव टू रिमेम्बर दिस रोल विल ऑल्सो वन डे फेड अवे. द ओनली वन हु रिमेन्स
0: मी
1: इज द एक्टर. तो वो राइट दृष्टिकोण से मुझे इस जीवन की यात्रा में चलना पड़ेगा कि ये रोल भी आज है, कल हो सकता है, नहीं है. द ओनली थिंग इटर्नल इज आई द एक्टर. तो जब सारे रोल्स प्ले कर रहे हैं एक्टर का ध्यान दे, एक्टर को भूल के रोल की कॉन्शियसनेस में अगर इतने फिट हो जाते हैं तो ये परसेप्शन अगर रहता है इट्स जस्ट अ गेम, इट्स जस्ट अ ड्रामा, इट्स जस्ट अ
0: रोल एंड आई हैव अनदर चॉइस यू नो लाइक अगर ठीक है इस सीन में मैं बहुत अच्छा नहीं भी कर पाया फिलहाल आई हैव अनदर ऑप्शन अगला सीन जो है उसमें आई कैन डू माय बेस्ट
1: आई कैन डू सो इट गिव्स मी दैट फ्लेक्सिबिलिटी और उससे क्या होगा जब यहाँ इस तरह से हम जीवन को देखेंगे तो हम बहुत प्लेफुल हो जाएंगे यू नो जैसे हम प्ले करते थे तो उसमें कितना मजा आता था जीवन में क्यों नहीं वो मजा आ रहा
0: बिल्कुल हम थिएटर की प्रैक्टिस कर रहे होते हैं कितने कितने घंटों हम बैठ पाते हैं क्योंकि जब भी हम किसी भी क्रिएटिव चीज में होते हैं
1: इट्स वेरी एंजॉयबल एब्सोल्युटली इट्स वेरी एंजॉयबल तो वो क्रिएटिव पर्सपेक्टिव को जीवन की यात्रा में ले आओ दिस इज ऑल अ ड्रामा एवरीवन इज एन एक्टर वी आर ओनली प्लेइंग रोल्स रोल्स में इतने ना फंस जाएं क्योंकि एक सेकेंड एंड ये रोल खत्म हो जाएगा एक मिनट लगेगा एंड द रोल कैन फिनिश उस रोल में इतने नहीं अटैच्ड हो जाओ कि एक्टर ही भूल जाए तो वो एंजॉय नहीं करेगा तो रोल प्ले करेंगे क्रिएटिवली बहुत प्लेफुल हो जाएंगे प्लेफुल होंगे ना तो वो जो आनंद का अनुभव हम करना चाहते हैं हर स्टेप पे It will become It'll very, be there. very right. easy. And creativity ki jo basic energy hoti hai, wo hai love, pyar. So when I'm creative continuously, love as my quality will just flow naturally. You know, aap kisi bhi artist ko dekho. Love ki energy hai, to unka jo wo art hai, wo kitne उस तरह के रूप से निकल कर आता है तो मैं आत्मा हूँ ही प्रेम स्वरूप सो व्हेन आई एम यूजिंग माय क्रिएटिविटी आई विल नॉट हैव टू फोर्सफुली बी यू नो क्रिएट लव प्यार स्नेह मेरा फ्लो करेगा
0: सारी हैप्पीनेस फ्लो करने लगती है जब भी हम किसी भी क्रिएटिव एस्पेक्ट में होते हैं जब राइटर लिख रहा होता है जब पोएट पोएम लिख रहा होता है वो बिल्कुल कहते हैं कि वो ब्रह्मानंद में है वो कहते हैं खुद और जब वो पेंटर कुछ भी क्रिएट कर रहा होता है तो हमारे पास तो क्रिएट करने को हर पल है
1: इट्स लाइक अ कैनवस या उस पे कुछ भी क्रिएट
0: जीवन में है तो अब हम में से हर कोई जो कह रहा था कि मेरे पास तो कोई स्किल नहीं है आई एम नॉट अ राइटर आई एम नॉट अ पेंटर बट आई एम अ ह्यूमन बीइंग यू नो हु कैन एक्चुअली क्रिएट ईच मोमेंट
1: एंड देन इट विल बिकम लॉट ऑफ फन लेकिन इसको करके देखना है लेट्स नॉट जस्ट कीप इट हियर वी विल हैव टू एक्सपेरिमेंट एंड देन सी इफ द रिजल्ट वर्क्स फॉर अस
0: वंडरफुल थैंक यू सो मच सचिवानी ओम शांति
1: ओम शांति
0: कोई सवाल कोई बात कोई सजेशन अगर आपके पास है आपके बहुत से सजेशन हम तक आते हैं जिन्हें हम इम्प्लीमेंट करने का प्रयास करते हैं तो आपका हम एक खुला निमंत्रण देते हैं ये मंच आपका है इस पर आप सीधा संपर्क कर सकते हैं या फिर आप हमें फोन कीजिए या फिर ईमेल कर सकते हैं हमारे फोन नंबर्स है 0999-344-555 0999-344-666 0987-366-555 0999-744-555 हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@pkmail.org अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारी इसमें आज इतना ही रोल्स को देखते हुए ये एक्सपेरिमेंट जो हम आपसे कह रहे हैं उसका अनुभव जरूर ले आगे आपसे फिर मुलाकात करेंगे ओम शांति
2: ब्रह्मा कुमारीज के प्रत्येक सेवा केंद्र पर राजयोग मेडिटेशन निशुल्क सिखाया जाता है ये कोर्स 7 दिन प्रतिदिन 1 घंटे का है भारत में बड़े शहरों से लेकर छोटे छोटे गांवों में हमारे 8,000 से अधिक सेवा केंद्र हैं राजयोग सीखने के लिए और अपने नजदीकी सेवा केंद्र का पता जानने के लिए संपर्क करें

मेरे कंप्यूटर, चल चल चल मेरे कंप्यूटर। कुछ चीजें ओरिजिनल ही अच्छी लगती हैं। सुनिए पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो। चल, चल।

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: एक वाक्य ने मेरे थॉट्स को डिस्टर्ब किया, फीलिंग्स को डिस्टर्ब किया, मेरे शब्द डिस्टर्ब हुए, मैंने शायद वो चीजें बोल दी आपने जो बोलनी नहीं चाहिए थी, फिर आपका बिहेवियर डिस्टर्ब्ड हुआ, फिर रिलेशनशिप एनर्जी एक्सचेंज डिस्टर्ब हुआ एक घंटे के लिए। लेकिन मुझे अपने आप को ये चेक करना है कि ये जो मैं सोच रही हूँ, इज इट कम्फर्टेबल फॉर मी। एक चीज हमने मिस आउट की कि ये सारी थॉट्स एंड फीलिंग्स जो हमने क्रिएट की उसका इफेक्ट हमारे शरीर पे भी पड़ा। व्हेन वी हैव अंडरस्टूड कि एवरी थॉट दैट वी क्रिएट, जस्ट द अदर डे एक डॉक्टर ने हमें एक्सप्लेन किया, एक साइकाइट्रिस्ट है, तो उन्होंने कहा ब्रेन के अंदर 10,000 crore सेल्स है, दिस द ब्रेन, ओके, 10,000 crore सेल्स। एंड फिर उन्होंने कहा ये 10,000 crore सेल्स आर, ईच सेल इज कनेक्टेड टू एटलीस्ट 10,000 मोर सेल्स इन द बॉडी, 10,000 crore सेल्स इन द ब्रेन इंटू 10,000, दिस इज द ह्यूमन नेटवर्क, सो मेनी स्विचेस कनेक्टेड टू सो मेनी स्विचेस। अब जब इतने स्विचेस से कनेक्टेड होते हैं तो एक में भी अगर कुछ ऊपर नीचे होगा तो उसका इफेक्ट कितना लंबा जाएगा। तो जब ब्रेन में 10,000 crore सेल्स कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स, ईच सेल कनेक्टेड टू 10,000 सेल्स इन द बॉडी, एंड हर थॉट जो हम क्रिएट कर रहे हैं उसका ब्रेन पर असर पड़ रहा है, ब्रेन से फिर वो केमिकल सिक्रेट होते हैं, फिर उसका असर शरीर पे पड़ता है, और हमने कितनी आराम से एक घंटा डिस्टर्ब रहे। अब हम अगर इस इक्वेशन को सिर्फ चेक करें तो एक घंटे में कितना इम्पैक्ट आया होगा हमारे शरीर के ऊपर, उस समय याद नहीं रहता ना, क्योंकि हमें शायद नॉलेज नहीं है, अवेयर नहीं है, या हम अपने आप को अलाउ करते हैं वैसे करना।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

नमस्कार एंड अ वेरी वार्म वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्म कुमारीज। खुद को तलाशने का, खुद को पहचानने का सफर जो हम तय करते आ रहे हैं, उसमें बहुत कुछ हमारे सामने बातें ऐसी आई हैं जिन्हें हम अभी तक ये मान रहे थे कि ये तो बहुत नेचुरल है, सहज है। जिनमें एक सबसे बड़ी बात

0: हैं, तनाव है जिंदगी में, एंग्जाइटी है, उससे कहीं ना कहीं हमारे जिंदगी में डिप्रेशन भी आता जा रहा है। क्या है ये डिप्रेशन? क्या ये डिप्रेशन मैं खुद ठीक कर सकती हूँ या फिर मुझे इसके लिए कोई प्रोफेशनल हेल्प चाहिए? क्यों होता है डिप्रेशन, क्यों इतना कॉमन होता जा रहा है? यही सारी बातें हैं जिस पर आज हम डिस्कस करेंगे, चर्चा करेंगे। और इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हैं मुंबई से आए आज हमारे साथ डॉक्टर गिरीश पटेल। आपका स्वागत। डॉक्टर गिरीश पटेल एक जाने माने साइकोथेरेपिस्ट हैं और पिछले 30 सालों से ब्रह्म कुमारी ऑर्गेनाइजेशन के साथ जुड़े हैं। और हर बार की तरह हमारे साथ हैं ब्रह्म कुमारी सिस्टर शिवानी। आपका स्वागत।
1: ओम शांति।
0: ओम शांति। और डॉक्टर गिरीश, सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। डिप्रेशन, आज की इस भागती दौड़ती जिंदगी में कोई मुझे ऐसा व्यक्ति नहीं मिलता जो डिप्रेस्ड ना फील करता हो। किसी ना किसी वक्त पर जिंदगी में हम में से हर कोई डिप्रेस्ड फील करता है। क्या है डिप्रेशन? क्या ये कोई बीमारी ही है या फिर ऐसा कुछ नहीं, एक फीलिंग है?
2: नहीं, बीमारी तो जरूर है, जब हम कह रहे बीमारी है, परंतु क्या है उसका अगर एसेंस हम देखें या तो कहे वो शुरू कहाँ से होता है, ट्रिगरिंग पॉइंट जिसे कह सकते हैं कि वो ट्रिगर कहाँ से होता है। एक्चुअली ट्रिगरिंग पॉइंट है योर अनएबिलिटी टू एक्सपीरियंस हैप्पीनेस। ये जो सुख है जीवन का, जो मे बी 99% लोग उस परिस्थिति में सुख का अनुभव करेंगे, लेकिन आप वो परिस्थिति के बीच में भी सुख को फील नहीं कर पा रहे, तो वो वास्तव में ट्रिगरिंग पॉइंट कि जो आगे चल के तो सुसाइडल टेंडेंसी तक भी व्यक्ति को ले जाएगा।
0: बहुत अच्छे आपने बात ये कही कि हम सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे हैं, एहसास ही नहीं कर पा रहे, जबकि हमें करना चाहिए जिस परिस्थिति में है, वही हम चाहते थे। तुझे क्या चाहिए जिंदगी वाली बात आ जाती है। सुश्री शिवानी, अगर हम इसको इंटरनल जर्नी की तरफ अगर हम बात करें, जो हम ये बात कर रहे हैं कि एक तो एक्सटर्नल जर्नी हमारी है, एक समवेयर अवेयरनेस अबाउट सेल्फ अवेयरनेस की बात, इंटरनल जर्नी, उसमें वो वक्त कब है जब हम वो सुख का अनुभव नहीं कर पा रहे होते हुए भी?
1: अनुभव हर वक्त करना चाहिए। दैट्स व्हाट वी हैव सीन कि हैप्पीनेस एक इंटरनल फीलिंग है, सुख जैसे बताया वो एक इंटरनल फीलिंग है, और इसको कोई समय निकाल कर अनुभव नहीं करना और ना ही किसी परिस्थिति या व्यक्ति का इंतजार करना है कि ऐसा होगा। बिकॉज जनरली अगर अपने जीवन की यात्रा में हम देखें तो हमने एक माइलस्टोन रख दिए हैं अपनी लाइफ में, ये होगा तो खुशी मिलेगी, ये ऐसा कर देंगे तो खुशी मिलेगी, और कई बार उस परिस्थिति में आकर इट डजंट रियली फील वेरी बिग, क्योंकि अंदर अगर होलोनेस है तो बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी वो एक मोमेंट्री एक्साइटमेंट जेनरेट कर सकती है, लेकिन वो आंतरिक खुशी शायद नहीं एक्सपीरियंस होगी। और एक बहुत पीरियड ऑफ टाइम, जैसे हमने कहा टेंशन टेंशन फिर बहुत बढ़ती जब जा रही है, तो बहुत टाइम अगर वो नहीं एक्सपीरियंस किया है तो थोड़े समय के बाद परिस्थिति फेवरेबल होगी तो भी हम एक्सपीरियंस नहीं कर पाएंगे, बिकॉज दैट यू नो दैट पिट हैज गॉन वेरी वेरी डीप, वेरी डीप। अभी पहले शुरुआत की स्टेज में कैसे था, थोड़ी टेंशन है, लेकिन कुछ अच्छा हो गया तो आई वॉज एबल टू यू नो अपने आप को वो बूस्ट दे पाते थे, लेकिन बार बार टेंशन, बहुत दिन टेंशन, हर छोटी छोटी बात पर टेंशन, तो थोड़े दिन के बाद वो जो खालीपन है वो इतना गहरा हो जाता है, फिर बड़ी से बड़ी परिस्थिति भी उसको ट्रिगर नहीं कर पाती है उस हैप्पीनेस को।
0: डेफिनेटली दिस इज आर इंटरनल जर्नी, यू नो, जो हम अंदर अपने सफर को तय करते हैं। डॉक्टर गिरीश, लेकिन ये इंटरनल और एक्सटर्नल के बीच का एक कहीं ना कहीं समन्वय बनाना बहुत जरूरी है, क्योंकि आपने ये कहा कि जब हम उसको अनुभव ही नहीं कर पा रहे, वो ट्रिगरिंग पॉइंट है, और उसके बाद हम उस लेवल पे पहुंचते हैं कि वो इतना नीचे चला जाता है कि बस कुछ भी फिर नहीं निकाल पाता। वो जो स्टेजेस हैं डिप्रेशन की, जो स्टेजेस की आपने बात की है, जो हमने यहाँ बात की है, वो अगर हम अपनी जिंदगी में मोटे तौर पर देखें तो किस तरह से आती है?
2: नहीं, बहुत अच्छा सवाल है। मेरे राजयोग के अनुभव से, साथ साथ करीब 25 साल हो गए साइकोथेरापी की प्रैक्टिस करते हुए, मैंने सोचा कि भी स्टेजेस क्या है लोगों की। जैसे कहे सबसे हाईएस्ट स्टेज तो यह है कि जीवन का सच्चा आनंद आप अनुभव कर रहे, नो रियली देयर इज अ स्पार्कल इन लाइफ, नो एट एवरी डे, मे बी नो एवरी आवर यू फील हैप्पी इन योर लाइफ, विच इज रेयर। शायद ना 1 करोड़ में भी एक व्यक्ति को भी ऐसी स्टेज नहीं होगी, बट दैट्स अ रियल स्टेज। देन सेकेंड स्टेज इज यू आर हैप्पी, आप सुख का अनुभव कर रहे हैं, खुश है जीवन में, अच्छा लग रहा है, वह भी रेयर है, वह भी काफी लोग इसको अनुभव नहीं कर पा रहे वास्तव में। थर्ड स्टेज है लोगों की कि जो आप सब सब सचमुच ठीक चल रहा है ना, आप खुश है, ऑफिस में जा रहे, बिजनेस अच्छा चल रहा है, बच्चों की संभाल कर रहे हैं, यू आर हैप्पी ऑल्सो, बट

0: एवरी आवर यू मे नॉट बी हैप्पी. फिर एक स्टेज आती है कि जब आप भी ऑफिस भी जा रहे, काम काज कर रहे, लेकिन वो खुशी नहीं है. यहाँ पर वो स्टेज कहेंगे कि भी शुरुआत हुई डिप्रेशन की, कि यू आर नॉट एबल टू एक्सपीरियंस दैट रियल हैप्पीनेस. उसके बाद की जो स्टेज है कि भी दिन में कई बार आपको अच्छा नहीं लगता है, भी जीवन इतना अच्छा नहीं है, नहीं मजा नहीं है जीवन में जो. उसके बाद की स्टेज है कि भी कभी कभी आपको ऐसा लगता है कि इससे तो नहीं होता तो अच्छा था. भल अभी भी सुसाइडल थॉट्स नहीं है,
1: लेकिन हाँ,
0: फिर भी होता है कि भी चलो नहीं हो, मृत्यु हो जाए तो अच्छा है. कई लोग बोलने में भी बोलते हैं कि भी भगवान मुझे ले ले तो
1: मुक्ति अच्छा, मिल जाए मुझे
0: तो अच्छा है. तो ये फिर स्टेज है. उसके बाद की जो स्टेज है कि यू रियली फील डिप्रेस्ड, कि भी लगता है कि भाई नहीं,
1: एवरीथिंग फिनिश्ड.
0: हाँ, या तो आप ढूंढ रास्ता ढूंढते कि भी मरे तो कैसे मरे, है ना. लोग उसके बारे में सोचने लगते हैं, है ना, प्लान भी बनाने लगते हैं. और फिर की स्टेज है सचमुच की नो पर्सन कमिट सुसाइड,
1: कर ही लेते हैं.
0: या तो भी काम काज नहीं कर पा रहा है, स्नान करने का मन नहीं होता है उसे, समझो कि भी टीवी के सामने बैठे हैं, प्रोग्राम बोरिंग है तो भी देखते ही जा रहे हैं, खड़े होने की दिल नहीं होती है व्यक्ति को. ऐसे कई बातों में कि भी खाना अच्छा तैयार है लेकिन भी खाने का मन नहीं हो रहा है. That is a really, you are deep down in depression if that stage comes.
1: Good. So like, ये एक पूरे stages को हमारे सामने बहुत clarity से आप लेकर आए हैं. तो वो stage पर आते हैं जहाँ हम पकड़ सकते हैं. You know, like,
0: या तो उससे भी पहले मैं कहूँगा, सचमुच तो लक्ष्य ये होना चाहिए कि ऐसी स्टेज बने कि जिसमें स्पार्क इन लाइफ है, नो, यू आर रियली फीलिंग हैप्पीनेस एट एवरी आवर, एवरी मोमेंट ऑफ योर लाइफ. और वो लक्ष्य होगा तो कहीं ना कहीं आप पहुंचेंगे. अगर आपका लक्ष्य है कि भी सब कुछ ठीक चल रहा है, मैं ऑफिस में जा रहा हूँ, थोड़ी खुशी थोड़े गम, तो फिर वैसा ही जीवन आपका बने.
1: बिल्कुल, हम बहुत अच्छे, आपने बात ये कही कि लक्ष्य जो है हमें वो रखना है कि ईच मोमेंट इज लाइक यू हैव टू लिव लाइफ फुल्ली. क्या पा सकते हैं हम?
2: आई थिंक अभी भी जो बहुत अच्छी पॉइंट निकली, बिलीव सिस्टम, कभी खुशी कभी गम, ये भी एक बिलीव सिस्टम है कि जीवन है तो कभी सुख होगा कभी दुख होगा. ऐसा तो जीवन, मतलब इट्स अ बिलीफ कि ऐसा जीवन हो ही नहीं सकता कि हमेशा सुखी है. ये तो पॉसिबल ही नहीं है. जीवन है तो कभी हंसना कभी रोना. यहाँ तक कि भी वी हैव सीन पीपल कि अगर बहुत खुश रहे और बहुत समय खुश रहे तो कहते हैं बहुत ज्यादा खुशी एक्सपेक्ट, यू नो, एक्सप्रेस नहीं करो, अभी कोई दुख आ जाएगा. दे आर अफ्रेड ऑफ बीइंग हैप्पी.
1: ज्यादा हंसोगे तो उतना ही रोना पड़ेगा.
2: सो अफ्रेड, इतनी इनसिक्योरिटी है कि ज्यादा खुशी भी नहीं, ये नेचुरल नहीं है. अभी जैसे द, यू नो, दुख आपके कॉर्नर पर है, इट्स जस्ट गोइंग टू कम. लेकिन क्योंकि हमने बिलीव किया कि ऐसी जीवन नहीं है जहां हमेशा सुख हो सकता है, क्योंकि वो परिस्थिति पे डिपेंडेंट थी. अब जब ये अंदर से अंडरस्टैंडिंग आ जाएगी कि इट्स इंटरनल, वी रियलाइज इट कैन बी एवरी मिनट. तो जैसे डॉक्टर साहब ने कहा, एक टारगेट रख दें कि सुख मेरी अपनी प्रॉपर्टी है एंड मैं अपनी इस प्रॉपर्टी को किसी भी व्यक्ति या किसी भी परिस्थिति को मुझसे छीन लेके जाने नहीं दूंगा. दिस विल बी विद मी एट एवरी मोमेंट. ये सुबह ही हम दिन शुरू करने से पहले एक लक्ष्य बना लेते हैं कि कोई भी ये मुझसे आज छीन के नहीं लेके जा सकता. अगर कल सारा दिन में 50% टाइम खुश थे, आज वो 70% हो जाएगा एंड फिर वो धीरे धीरे
1: अगेन अ पॉजिटिव थॉट विल लीड टू माय
2: बिलीफ. लेकिन वो बिलीफ को चेंज करना पड़ेगा कि इट्स पॉसिबल टू बी हैप्पी एवरी टाइम.
0: शिवानी बेन ने बहुत अच्छा पॉइंट रेज किया ना, इट्स अ डीपर पॉइंट कि भी व्यक्ति सोचने लगता है कि अभी सुख चला, एक महीने तक सुख चला, तभी दुख आना ही चाहिए. इवन दिन में 10 बार 20 बार ऐसा सोचेगा और सोचता तो होगा,
1: सोचता है कि कौन सा दुख आएगा और क्या होगा. लेकिन डॉक्टर साहब, आपसे एक बात ये भी जानना चाहेंगे कि आज के इस वक्त में जब हम देखते हैं कि जब भी हम सुबह उठते हैं, पहली चीज हम ये सोचते हैं, इवन ये कहा जाता है कि जब आप उठते हैं सुबह सबसे ज्यादा आपको खुश होना चाहिए, लेकिन पहली चीज बहुत लोगों में मैंने देखी है ये है कि उफ एक और दिन, क्या करूंगा मैं, क्या होगा, उफ ओ, फिर ये सारा कुछ, फिर इससे गुजरना पड़ेगा, फिर ये क्या है? इज इट अ सिम्टम ऑफ डिप्रेशन?
0: या इट कैन बी कि जैसे जो डिप्रेस्ड है उनमें ये स्टेज बन सकती है, कि इट इज अदर वे राउंड ऑल्सो, क्योंकि आपका अप्रोच ये है आज अभी मुझे और तकलीफ और समस्या, तो इसलिए आप डिप्रेस्ड होंगे. इंस्टेड इफ यू कैन चेंज द अप्रोच, अगर सवेरे उठते बोले कैसा भी है समस्या है, आपको पता है कि भी ऑफिस में प्रॉब्लम्स आने वाले हैं, किंतु भी सोच आज नया दिन आया, आज और अच्छा। देखो बच्चे कैसे उठते हैं, आपने देखा होगा कि भी बच्चों को है ना आप उठाएंगे ना कि नहीं मम्मी और सोने दो, मम्मी और 10 मिनट सोने दो, और 1 मिनट सोने दो, फिर उठते हैं तो जोर से उठ, तो ऐसे बच्चों की तरह उठे। मैं हमेशा ये भी बताता हूँ कि एक तो ऐसे उठो अच्छे से, सोचो आज का दिन अच्छे से अच्छा होने वाला है, और फिर कहीं भी है ना ओपन में, समझो टेरेस है तो सबसे अच्छा है, टेरेस में बाहर आ जाओ और नेचुरल सवेरे के सीन को थोड़ा देखो और सचमुच उसे एंजॉय करो, या कम से कम खिड़की में से भी देखो,
1: लेट इट सीप, एक्चुअली अंदर जाने देने
0: देते हैं, से इट्स अ गुड डे टुडे। अभी सूर्योदय होता है ना, वास्तव में सूर्योदय से पहले ही उठ जाना चाहिए। जब सूर्योदय होने लगे ना तब देखना, वातावरण भी चेंज होने लगे, एंड इफ यू रियली सिट इवन फॉर कपल ऑफ मिनट्स एंड फील दैट नो ग्लो, जो अवेकनिंग है वो सचमुच तो इंटरनल स्पिरिचुअल अवेकनिंग भी नेचुरली हो जाएगी।
1: लेकिन डॉक्टर साहब शिवानी बात वही आ जाती है कि एक सच्चाई के रूप में तो आ चुका है, ये अवेकनिंग विल हैपन इनफैक्ट, and it's a long process, it's a whole way of life, you know, when we talk about, in fact such a interesting thing ki jab hum kehte hain ki meditation karna, to ab ye realization ho raha hai to meditation is part of is life, you know, ki aap zindagi ji kaise rahe hain wo meditation ho jati hai, to hum jahan tak aa chuke hain depression ek sachchai ke roop mein hamare samne hai, usse ek to aware kaise hona hai ki main depressed hu, kyunki agar jab tak mujhe pata nahi chalega ki main depressed hu tab tak uska ilaaj nahi talashunga main, तो मुझे ये कैसे पता चलेगा, कौन सी एक वो बात, कौन से कुछ ऐसे सिम्टम्स हैं जो मुझे इस बात का एहसास करा देंगे कि मैं डिप्रेस्ड हूँ।
0: कनुप्रिया जी आपके प्रश्न में उत्तर है, बहुत अच्छा है आपने कहा अवेयरनेस, है ना, जो अवेयरनेस एक पावरफुल शब्द है जिसको हम हिंदी में कहेंगे सजग हो जाओ। आज हमारे में सजगता खत्म हो गई है, अगर व्यक्ति सजग भी हो जाए कि मुझे क्या क्या हो रहा है, क्या चेंजेस हो रहे हैं, तो भी आप उसे पकड़ सकेंगे कि भी कहां पर शुरुआत हुई, कि जो रियल जॉय था वो जॉय कब मैंने गंवा दिया, बस उस समय पर अगर आपको समझ में आ जाए तो पता चलेगा डिप्रेशन की शुरुआत हुई। फिर और भी सिम्टम्स देख सकते हैं कि भी सचमुच मुझे आनंद नहीं आ रहा है काम करने का, मैं कर रहा हूँ लेकिन वो काम करने का आनंद नहीं आ रहा है।
1: कैन वी गो बैक शिवानी, डॉक्टर साहब जैसे आप कह रहे हैं,
2: आई एक्चुअली जस्ट रिमेम्बर्ड समथिंग, थोड़े दिन पहले ये किसी से बात हो रही थी तो उन्होंने कहा कि पहले जब मैं ड्राइव करता था तो ड्राइव करते करते गीत गुनगुन आते हैं, जैसे कहते हैं आज मुझे याद आया, मतलब बात करते करते, कि तो बहुत समय हो गया मैंने गीत गाया नहीं है ड्राइव करते करते, दैट मीन्स डेफिनेटली आई एम नॉट इन दैट सेम स्टेट ऑफ माइंड विच आई यूज टू बी अ कपल ऑफ इयर्स बैक, एंड देन ही सेड व्हाई, दैट मीन्स समथिंग इज हैपनिंग इनसाइड। तो इस तरह से जो अवेयरनेस अगर हमें रहे कि हम अंदर या फिर बिहेवियरल पैटर्न में
1: नहीं, तो हम क्या वो वापस जा पाना इतना आसान है? देखिए आपने अभी ये कहा कि हमें वो पूरे उस मोड़ पर पहुंचना चाहिए जहां से मैंने वो खुशी खोनी शुरू की, जहां से मैं वो डिप्रेशन की शुरुआत में गया, तो क्या मैं अपने वापस सफर को वापस कर सकती हूँ, तय कर सकती
0: हूँ? डेफिनेटली कर सकते हैं, लेकिन जितना जल्दी आप कोशिश करेंगे इट इज इजियर। जैसे कि फर्स्ट से सेकंड स्टेज में आपने पकड़ लिया तो फर्स्ट पे पहुंचना इजी है, आप सिक्स्थ स्टेज तक चले गए हैं और फिर फर्स्ट पे आना है तो शायद थोड़ा टाइम, लेकिन संभव है, इम्पॉसिबल नहीं है।
2: मुझे लगता है जो स्टेजेस आपने बताई थी, एक है हमेशा सुखी, मतलब वो खुशी का अनुभव करे, और एक है कि हमेशा उदासी, लेकिन वो स्टेज पे पकड़ लें जब खुश रहते रहते कभी कभी उदास हो जाते हैं, यू नो वट इज इट दैट ट्रिगर्स दैट, और उसकी फ्रीक्वेंसी आज बढ़ती जा रही है कि खुश रहते रहते कभी कभी परेशान हो जाते हैं, वो कभी कभी परेशान होने वाली स्थिति धीरे धीरे ज्यादातर परेशान
1: होने लग गया है कि कभी कभी हमेशा परेशान रहते हैं कभी कभी खुश हो रहे हैं वो भी, और वो भी डर लगता है फिर हो ये चली जाएगी हमारे हाथ से, तो वो इनसिक्योरिटी जो है वो आ जाती है। क्या इसको मेडिकली ही हमें करेक्ट करना है, क्या इसके लिए हमें प्रोफेशनल हेल्प ही चाहिए जब हमें यह एहसास हो जाए कि हम डिप्रेस्ड हैं, या हम खुद माइंड पावर से कर सकते हैं?
0: नाउ इट डिपेंड, किस स्टेज पर आधार, कि कौन से स्टेज पर आप है,
1: जैसे कि किस स्टेज पर हम अपने हाथ में ले सकते हैं उसे?
0: ऐसे हाथ पे तो हर स्टेज पे भी ले सकते हैं।
1: अच्छा,
0: आज रिसर्च भी हुई है इस प्रकार की कि जो अंतिम स्टेज है उसमें भी आप ठीक से पुरुषार्थ करो तो उसे हम रिवर्स कर सकते हैं, भले मेहनत ज्यादा लगेगी परंतु जो फर्स्ट सेकंड थर्ड स्टेज है वहां तक तो बिल्कुल इजी है। थोड़ा भी व्यक्ति अगर इस हमारे विचारों की मैकेनिज्म को समझ ले, क्योंकि इसका मूल क्या है, जैसे हम जानते हैं ना कि बीज आज कॉमन कोल्ड है, तो उसका मूल है वायरस, बी वायरस के कारण ये हो रहा है। तो डिप्रेशन क्यों हो रहा है? डिप्रेशन हमारे गलत विचारों के कारण हो रहा है,
1: नेगेटिव थॉट,
0: या तो भी आपके नेगेटिव ना भी हो लेकिन सही नहीं है, जो सही विचार होने चाहिए, और हम दोष औरों को देते हैं, नहीं अपनी सास को दोष दे रहे हैं, बॉस को दोष दे रहे हैं, अब बिजनेस नहीं चल रहा है समझते, उसी के कारण मुझे डिप्रेशन।
1: एक बात बताइए डॉक्टर साहब, एक और मिथ हमारे साथ जो बहुत से दर्शकों के पास है वो ये कि डिप्रेशन कोई बीमारी नहीं है, इट्स ओके, इट हैपेंस, यू नो, हो जाता है, तो इसके बारे में इतना सोचने की जरूरत नहीं है। लेकिन जो गुजर रहा होता है वो तो बहुत तकलीफ में होता है, लेकिन जो आस पड़ोस हमारे रिलेटिव हैं या हमारे घर वाले हमारे दोस्त हैं वो कहते हैं हाँ ठीक है, हर कोई उससे गुजरता है, तो कितना सीरियसली लेना चाहिए उसे? इसमें केमिकल चेंजेस भी क्या हमारे दिमाग में हमारी पूरी बॉडी में हो रहे होते हैं जब हम इस दौर से गुजर रहे होते हैं?
0: वेरी गुड, इट सीम्स नो यू आर नॉलेजेबल, आपने शायद पढ़ा भी इसके बारे में। हाँ, लोग नहीं समझते, मिथ है सचमुच, ये एक्सेप्ट ही नहीं करते कि भी कोई बॉडी में भी फिजियोलॉजिकल चेंजेस हो रहे हैं। उल्टा एक तो सबसे बड़ा तो मिथ यह है कि भी आपको डिप्रेशन हो गया तो आप वीक है,
1: हाँ।
0: है ना, कि भी आप कमजोर व्यक्ति
1: है, अरे बहुत, हाँ, हाँ।
0: क्यों हो गया तुमको, तो इसलिए व्यक्ति तो छिपाता है फिर, नहीं कहीं बार मेजर डिप्रेशन
1: ये कहा जाता है ना, बी स्ट्रॉन्ग,
0: यू नो, इवन वी हैव सीन पीपल कि भी उन्होंने सुसाइड किया उससे एक दिन पहले भी किसी को ये सिग्नल्स नहीं दिए कि भी आई एम डिस्टर्ब, क्योंकि इस प्रकार की एक गलत फहमी थी, मैं बोल दूंगा तो लोग क्या सोचेंगे, तो कमजोर आदमी है, और यहाँ तक चला गया कि सुसाइड भी कर लिया उसने। तो सबसे पहले तो बहुत बड़ी मिथ है, और जो बात है कि भी केमिकल चेंजेस सचमुच होते हैं, कि जब आप डिप्रेस्ड फील करते हैं तो केमिकल चेंजेस होते हैं, परिस्थितियां भी ऐसी आ सकती हैं जो परिस्थितियों के कारण भी केमिकल चेंजेस हो सकते हैं, जीन्स भी पॉसिबल है, बल जीन्स को दोष नहीं देना चाहिए परंतु कुछ हद तक जीन्स भी पॉसिबल है, कि भी पेरेंट्स को डिप्रेशन है तो बच्चों को होने की ऑलमोस्ट 30-35% पॉसिबिलिटी है। ऐसे नहीं, ये फिजियोलॉजिकल चेंजेस
2: तो क्या उस केस में पहले से ध्यान रख सकते हैं ना कुछ, फिर इसका मतलब इफ आई वुड ऑलरेडी नो कि जेनेटिकली मेरे को सस्केप्टेबल है उस चीज के लिए।
1: शिवानी, इफ यू रिमेम्बर व्हेन वी टॉक्ड अबाउट पेन, जब हमने ये पेन की थी कि डिप्रेशन हर्ट होने की, कि हमें एक पेन जब होता है तो हमें आदत पड़ जाती है, एडिक्शन हो जाता है कि पेन अच्छा लगने लगता है, ना कहीं ना कहीं कोई केमिकल जनरेट हो रहा है। तो सिमिलरली मे बी डिप्रेशन इज वन पार्ट ऑफ इट, कि क्या कहीं हमें, हम खुद ही डिप्रेशन को तो अपने अंदर नहीं आने देना चाहते कि हमें अच्छा लग रहा है कि हम नीचे ही जाए जा रहे हैं, नीचे ही जाए जा रहे हैं, स्टार्ट टेकिंग इट दैट,
2: उस आदत में रहने, उस स्थिति में रहने की एक आदत से पड़ जाती है।
0: या तो ये होता है जैसे कईयों को, जैसे आपके बिल्कुल राइट है कि व्यक्ति जब नॉर्मल होता है तो लोग अटेंशन नहीं देते, लेकिन व्हेन यू आर डिप्रेस सब अरे अरे अरे क्या हो गया तुमको, कुछ चाहिए क्या, ये ला दूं, ऐसा कर दूं, अदरवाइज नोबडी आस्क्स। तो आज
2: तो कई लोग अटेंशन, वो इसलिए भी है कि अगर मुझे बहुत यू नो, जैसे क्योंकि आजकल लोगों के पास टाइम नहीं है ना एक दूसरे के लिए, तो अटेंशन सीख करने के लिए, क्योंकि वैसे तो मेरी तरफ कोई ध्यान नहीं देगा, सभी अपना इतना बिजी है, तो जहां थोड़ा सा मेरे अंदर ये फीलिंग आ जाएगी, एवरीबडी विल कम बैक टू मी। तो ये चीज भी
0: बच्चों में, स्पेशली तो बच्चों में मुझे किस्सा याद आता है, बहुत अच्छा किस्सा है, पहले इट्स डायरेक्टली डिप्रेशन से रिलेटेड नहीं है, लेकिन यह समझाने के लिए कि कैसे अटेंशन के लिए लोग कर रहे हैं। एक बार एक बच्चा खेल रहा था साइकिल से, तो उसके ऊपर साइकिल गिर गई, तो माँ भाग के आई और साइकिल को उठाई, फिर से रख दी, फिर से बच्चा खेलने लगा, फिर से साइकिल गिर गई, ऐसा करीब 4 बार हुआ। फिर माँ को यह रियलाइजेशन हुआ कि शायद बच्चा मेरा अटेंशन देने के लिए जानबूझ के उसको ठोकर मारता है और उस पर साइकिल गिर जाती है।
1: तो इसका मतलब कहीं ना कहीं लोनलीनेस आज बच्चों में भी है। और अगर हम डिप्रेशन की बात करें डॉक्टर साहब, तो वो कई अकेलेपन का एक बहुत बड़ा द्योतक जो है, एक बहुत बड़ा कारण अकेला होना जो है वो डिप्रेशन की तरफ लेकर जाता है। क्या किया जा सकता है, क्या हमारा परिवार हमें डिप्रेशन के इस पूरे दौर से निकाल सकता है, क्या हमारे मित्र, क्या हमारे दोस्त, या फिर दवाइयां ही हैं जो डिप्रेशन से बाहर निकाल सकती हैं?
0: सबसे पहले तो अपने आप को, फैमिली पे देखो, हाँ फैमिली ये भी ठीक है कि भी मैं क्यों निकलना चाहती हूँ, और फिर सबसे पहले मुझे कुछ करना है ताकि मैं डिप्रेशन से बाहर निकलूं। फिर ये सेकंड स्टेज है कि भी फैमिली मेंबर्स, फ्रेंड्स भी डेफिनेटली बहुत कुछ कर सकते हैं, हमें सपोर्ट दे सकते हैं, कुछ गलतियां भी वह करते हैं, वह नहीं करनी चाहिए। और फिर सिर्फ थर्ड स्टेज आती है कि कुछ ऐसी सीवियर डिप्रेशन हो जाता है कि जिसमें मेडिसिन की भी जरूरत पड़ेगी। स्पेशल टाइप ऑफ डिप्रेशन भी है कि जिसमें मेडिसिन की जरूरत पड़ेगी, जैसे एक रिएक्टिव डिप्रेशन जहां विदाउट मेडिसिन ऑलमोस्ट 95% लोग बाहर आ सकते हैं, और दूसरा एक एंडोजिनस डिप्रेशन कि जिसमें आपके केमिकल्स ही इतने डिस्टर्ब हुए हैं ऑल्दो यू आर एब्सोल्युटली नॉर्मल, तो वहां पर आप अपने आप शायद 50-60% एफर्ट कर सकेंगे, अनदर 50-60% जो है वो मेडिसिन काम करेगी।
1: एंड लाइक आने वाली कड़ियों में हम इन पे जरूर हर जो डिप्रेशन का एस्पेक्ट है उस पर डिटेल में बात करेंगे कि क्या है। सिस्टर शिवानी, जिस जर्नी पे हम चल रहे हैं, जिसको हम एक पूरा पहचानने की बात कर रहे हैं, हर तरह के एस्पेक्ट को तलाशा है, उसमें ये बात सामने जो आ रही है, क्योंकि मैं व्हेन आई गो आउट आई ट्राई टू इम्प्लीमेंट देम, कि इट्स नॉट दैट इजी, यू नो, हर कदम पे ऑब्स्टिकल्स हैं, क्योंकि हमारा एक तरीका बन चुका है, तो उसको चेंज करके इंटरनलाइज करने का नहीं है। खासकर डिप्रेशन में कितना इम्पोर्टेंट हो जाता है ये पूरा इंटरनल जो प्रोसेस है, जैसे हमने कहा था थॉट से क्या क्या किस तरह से वो पूरी जर्नी एक होती है।
2: जैसे आपने भी कहा ना कि मेडिकल हेल्थ में भी जैसे मेडिसिन एक बहुत इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है, दूसरा काउंसिलिंग। तो हमने जैसे पहले भी देखा सेल्फ काउंसलिंग,
1: खुद से बात कर,
2: सेल्फ काउंसलिंग भी इसमें, क्योंकि जितना अच्छा शायद हम खुद अपने आप को काउंसल कर सकते हैं कोई भी नहीं कर सकता है, नॉट इवन फैमिली। साइकेट्रिस्ट यस, बिकॉज वो उनकी मेडिकली ट्रेन्ड है, लेकिन फिर भी शायद जितना अच्छा हम अपने आप को जानते हैं और अपने आप को मोटिवेट कर सकते हैं, तो भले भी टेक एक्सटर्नल हेल्प द मेडिकल हेल्थ, लेकिन अपना रोल जितना अच्छा हम अपना प्ले करेंगे तो शायद बीमारी से उतना जल्दी ठीक आ जाएंगे। क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि डॉक्टर पूरा प्रयास कर रहे हैं फिर भी पेशेंट को बहुत टाइम लग रहा है, बिकॉज उसके पार्ट का जो एफर्ट है दैट वी आर नॉट टू
1: कम है।
0: बहुत अच्छी है, जो बिल्कुल है ना, सेल्फ काउंसिलिंग क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब आप साइकोथेरापिस्ट या काउंसिलर के पास जाते हैं तो देखा गया कि सबसे बड़ा जो बैरियर है वह है कि यू डोंट ओपन अप, जो रियल चीज है ना वो आप उनको बताते ही नहीं,
1: क्योंकि खुद भी नहीं पता होता ना शायद।
2: नहीं, कई बार खुद पता होता है, पता है फिर भी नहीं पता। आप अपनी हर बात, अपनी हर गलती, अपनी हर कमजोरी शायद किसी से नहीं शेयर कर पाते।
0: फ्रॉइडियन साइकोथेरेपी है ना, सारी साइको एनालिसिस उसको कहते, साल भर लग जाता है
2: निकलवाने के लिए
0: व्यक्ति उसकी बात को ओपन हो कि मेरे चाइल्ड।
1: एक और मैं चलते चलते जो एक और मिथ को या एक उस चीज को मैं बात करना चाहती हूँ, उसके बाद हम अगली कड़ियों में भी जानेंगे इसके बारे में, कि जब हम बिल्कुल डूब रहे हैं, जब ये है कि बिल्कुल उस गहराई में जैसे यू नो डीप में चले गए हैं हम, तो उसमें बाहर निकलने के लिए तिनके को सहारे की बात करते हैं ना, हम किसी एक थॉट को, किसी एक चीज को पकड़ के क्लिंग करके उसे बाहर निकलने की कोशिश करते हैं, क्योंकि सर्वाइवल तो हमारा है ही, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, एक इंसान जो है अपने आप को बचाता, उस थॉट के साथ फिर हम जुड़ जाते हैं। ये जो रिश्ता है कि वो उसे हम सच्चाई मान लेते हैं, ये भी कहीं एक डिप्रेशन को, क्योंकि वो एक प्रॉब्लम फिर आ जाती है अटैचमेंट की जो बात है, वो भी एक क्या ये सही तरीका है कि एक किसी थॉट को पकड़ के बाहर निकल आना, लेकिन फिर उसके साथ क्लिंग करना, उससे अपने आप को दूर कैसे कर सकते हैं।
0: ये तो बिल्कुल सही है कि भी एक विचार भी आपको बाहर ला सकता है, इस उदाहरण के रूप में कि भी सब कुछ ठीक हो जाएगा, इफ आई रिमेन परसिस्टेंट मैं इससे बाहर आ जाऊंगा, वो एक थॉट भी आपको हेल्प कर सकता है, परंतु उससे अटैच नहीं।
1: हाँ, वो हम क्लिंग कर जाते हैं उससे, फिर वो तंग करती रहती है चीज। सो हाउ वो जो दोनों के बीच का जो डिफरेंस, उसको हटाना, क्योंकि हम फिर एक चीज से निकल के दूसरी चीज में अटक गए। ये बहुत सारे लोगों के साथ मैंने देखा है कि बाहर निकलने का एक प्रयास तो करते हैं हम किसी एक थॉट को, कि वो व्यक्ति है या वो कोई एक थॉट है, वो कोई चीज है, कोई एक प्रोफेशन है, कुछ भी है उसको, पर उससे क्लिंग कर जाते हैं उस क्लिंगिंग से।
2: लेकिन ये थॉट नहीं है, मेरे को लगता है ये कोई एक्सटर्नल या तो व्यक्ति है।
1: हाँ,
2: कुछ क्योंकि थॉट से अटैचमेंट नहीं होगी, अटैचमेंट जनरली
1: जॉब है,
2: समथिंग आउटसाइड, तो फिर एक चीज से निकले दूसरे पे डिपेंडेंट हो गए।
1: बिल्कुल, हम ये बात कर रहे थे कि जो क्लिंग कर जाते हैं, सो दैट कैन बी अ साइकेट्रिस्ट,
2: वी कैन यू नो क्लिंग ऑन टू द काउंसलर। क्योंकि वो एक सकर थे ना, उन्होंने हमें उस वैक्यूम से निकाला, तो फिर उनसे स्टिक हो गए।
1: काउंसलर के साथ अगर हम क्लिंग कर जाएं तो फिर क्या करना चाहिए?
0: एक्चुअली पहले से ही ध्यान रखना, यहाँ तो देखेंगे काउंसिलर को ही अटेंशन देना है। वी नीड टू ट्रेन काउंसिलर्स एंड साइकोथेरेपिस्ट दैट यू वांट टू टेक आउट दैट पर्सन फ्रॉम डिप्रेशन, लेकिन उन्हें इंडिपेंडेंट बनाओ।
1: बिल्कुल,
0: उन्हें आपके ऊपर डिपेंडेंट नहीं बनाओ। अगर इसे उनकी पहले से अंडरस्टैंडिंग है तो कभी वो डिपेंडेंट नहीं।
1: और बहुत सुंदर बात डॉक्टर पटेल जो सामने आई थी वो ये कि माइंड पावर से पॉजिटिव थॉट्स एक्चुअली किसी भी स्टेज पे हो हम डिप्रेशन के उससे बाहर हमें लेकर आ सकते हैं। ये पूरे मुद्दे हम अपने आने वाली श्रृंखला में जरूर हर एपिसोड में हर कड़ी में डिटेल में डिस्कस करेंगे। आज आप हमारे साथ शामिल हुए डॉक्टर गिरीश पटेल, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। सिस्टर शिवानी, थैंक यू सो मच।
2: थैंक यू।
1: आज जो हमने बातें की उससे ये बात तो सामने आई कि डिप्रेशन एक सच्चाई है, आज के इस दौर की सच्चाई है। हम में से किसी को भी डिप्रेशन हो सकता है, कई स्टेजेस होती हैं डिप्रेशन की। जरूरत है कि उसे सही वक्त पर पहचान ले। कहा जाता है कि जहां आंख खुले वहीं सवेरा होता है, सवेरे की या रोशनी की वो किरण वहीं से नजर आने लग सकती है और अपनी ही माइंड पावर से हम काफी कुछ चीजें बदल सकते हैं। लेकिन जहां लगे कि सहायता चाहिए तो फिर सहायता या मदद ले लेनी चाहिए। और एक और बात जो सामने आ रही है कि किसी भी उम्र में डिप्रेशन हो सकता है। ये कार्यक्रम सिर्फ उन्हीं लोगों के लिए नहीं है जो डिप्रेशन का शिकार हैं, बल्कि बच्चे, बूढ़े, जवान, जितने भी दर्शक हमारे जो प्रोग्राम देखते हैं उन सबके लिए है। क्योंकि हम सबकी जिंदगी में कभी कभी ऐसे मुकाम आते हैं जब लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हो गए हैं। अगर आपके पास भी कोई सवाल है जो डिप्रेशन से जुड़ा हो या फिर जिंदगी से जुड़ा हो, आपका स्वागत है। आप हमें ईमेल कर सकते हैं या फिर फोन पर भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फोन नंबर है 9873666555 और हमारा ईमेल आईडी है omshantistudio@gmail.com। तो फिर डिप्रेशन क्यों होता है, हर स्टेज डिप्रेशन की क्या होती है और किस तरह के सिम्टम्स होते हैं, अगली कड़ी में यही जानने की कोशिश करेंगे अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज में। अब दीजिए इजाजत, नमस्कार।

लिबास चाहे जो हो, अंदर से हम सब हिंदुस्तानी हैं। एकता की डोर में सबको बांधता पुनेरी आवाज 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

नाना। खुशियों की फुहार लाएगी हर दिन त्योहार, अब हर दिन बजेंगे मन में ढोल, अपने पन के रंग में अब रोज रंगेंगे, उड़ान भरेंगे सपनों के रॉकेट में, सिर्फ पुनेरी आवाज में 107.8। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: हिंदुस्तान हमारा स्वाधीनता संघर्ष की महाकथा, आजादी के रणबांकुरों की क्रांति कथा के जाने पहचाने और अनजाने पन्ने, अनुसूचित जाति और जनजाति सहित सभी अमर बलिदानियों की प्रेरक कथाएं।
1: क्रांतिकारी जगत में सूफी अम्बा प्रसाद का नाम बड़ी श्रद्धा से लिया जाता है। ईरान के लोग उन्हें आका सूफी के नाम से याद करते हैं। ईरान की संस्कृति पर सूफी जी का काफी प्रभाव है और वहाँ उनकी समाधि भी बनी हुई है। देशभक्त सूफी अम्बा प्रसाद भारत माता सोसाइटी के संस्थापक थे और उन्होंने पंजाब में किसान विद्रोह का नेतृत्व किया था। उन्होंने 6 सालों की जेल भी काटी थी। विदेशों में भारतीय पक्ष का समर्थन प्राप्त करने के लिए सूफी अम्बा प्रसाद 1909 में कराची से जहाज द्वारा ईरान चले गए थे। उनके साथ प्रसिद्ध क्रांतिकारी सरदार अजीत सिंह भी थे। एक बार जब अंग्रेजों ने ईरान में उन पर घेरा डाला तो दाहिना हाथ न होने पर भी सूफी जी ने बाएं हाथ से पिस्तौल चलाकर अंग्रेजों का डटकर मुकाबला किया। अंत में गोलियां चुक जाने के कारण वे पकड़े गए और अगले दिन उन्हें गोली से उड़ा देने का निश्चय किया गया। सूफी जी कोठरी में बंद थे। 21 फरवरी 1915 को उन्हें मौत की सजा दी जानी थी। उन्हें निकालने के लिए जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो सूफी जी समाधि की अवस्था में पाए गए। प्राणायाम के द्वारा वे अपने प्राण विसर्जित कर चुके थे। सिर्फ भारतीय ही नहीं, ईरान के लोग भी सूफी जी का नाम सुनते ही श्रद्धा से नतमस्तक हो जाते हैं।

0: आज भाई दादा?
1: ठीक ही है बेटा, राम जी की कृपा से।
0: दादा अपनी दो पेशल बनेगी।
1: ए छोटू, दो चाय गुलाबी पेशल तीन नंबर पे, और दो नंबर पे कपड़ा मार, और देख एक नंबर पे बाबू क्या कह रहे हैं।
2: अरे रात डिस्को में तू क्या कर रहा था?
0: अबे तेरा सवाल ही गलत है, तुझे मालूम होना चाहिए आखिर डिस्को में लोग किस लिए जाते हैं।
2: मुझे सब मालूम है, पर तुझे ये मालूम है कि नहीं कि हमारे पास तेरी हर एक्टिविटी की खबर रहती है बच्चों।
0: अच्छा, तो हमारी जासूसी की जा रही है? पर बंदे को क्या डर, अबे जो करते हैं खुलेआम करते हैं, तेरी तरह छिपकर नहीं, समझा?
2: अच्छा तो फिर घर पर झूठी कहानी बनाकर कौन सुनाता है और कौन अपने सपोर्ट के लिए वकालत की रिक्वेस्ट करता है?
0: अबे वो तो इसलिए कि अपने घर में तेरी इमेज सही बनी रहे, समझा?
2: वाह क्या बात है, तुझे मेरी इमेज की चिंता कब से होने लगी, और इससे इमेज किसकी बन रही है, मेरी या तेरी?
3: हमें भी तो बताओ ये इमेज का फंडा क्या है।
0: आजा आजा, तू भी आजा बैठ, ये फंडा राज की बात है, समझा? दादा अरे दो की तीन कर देना।
3: यह कैसा राज यार?
0: राज राज होता है, कह दिया तो राज कहाँ रहेगा है?
3: और अगर नहीं कहा तो जिगर की आग बीड़ी जलाने लायक हो जाएगी।
2: सच कहा है, ये इश्क कमीना मुश्किल कर दे जीना।
4: लो बाबूजी ये आपकी चाय।
0: अबे ये क्या इश्क मोहब्बत की बात लेकर बैठ गया, आज किसे इतना पेशेंस है और किसके पास इतना टाइम है कि इश्क की सवारी कर सके है?
3: ले तू चाय पिया। सच कहता है आज का फंडा तो मौज मस्ती का फंडा है, मस्त रहो और सीरियस बातों को धुएं में उड़ा दो।
0: अरे गजबाई दादा, ये कौन सा स्टेशन लगा दिया है? अरे वो लगाओ ना एफएम चैनल जिसमें जानदार फड़कते हुए गाने आते हैं।
3: हाँ दादा वो लगाओ ना।
1: क्या जमाना आ गया है, अरे देशभक्ति के गाने तुम्हें बुरे लग रहे हैं? बेटा तुम्हें पता है देश आजादी की लड़ाई की 150वीं सालगिरह मना रहा है।
0: अब आप भी दादा 150 साल पुरानी बात लेकर बैठ गए हो, उस जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है,
3: और वो भी आज के जमाने में। हाँ।
1: यही तो हम कह रहे हैं, जमाना कहाँ से कहाँ पहुँच गया है। इतनी देर से हम तुम्हारी बातों को सुन रहे हैं और सोच रहे हैं, आज के इन युवकों को क्या हो गया है। एक समय वो भी था जब देश का हर युवक देश की आजादी के खातिर अपना सब कुछ न्योछावर करने को उतावला रहता था।
3: अब दादा ये आप किस जमाने की बात कर रहे हो, आज उन बातों का मतलब ही क्या है?
1: देशभक्ति के जज्बे की तो हर जमाने में जरूरत रहती है बेटा। अभी तुम लोग जासूसी की बात कर रहे थे ना?
3: हाँ।
1: अच्छा तो हमें बताओ, तुमने कभी सूफी संत अम्बा प्रसाद का नाम सुना है?
3: अम्बा प्रसाद? तूने सुना है?
0: नहीं मैंने भी नहीं सुना।
3: हमने तो नाम नहीं सुना।
0: अब क्या हमारी उम्र साधु संतों की जानकारी रखने की है? कोई साधु था क्या?
1: नहीं बेटा, न साधु न संत, एक जासूस था।
3: जासूस? अरे वाह, जासूसी कहानियां पढ़ने का तो मुझे बहुत शौक है, बहुत अच्छी लगती है, सुनाओ ना दादा।
1: तो सुनो बेटा, सूफी अम्बा प्रसाद के नाम से बहुत कम लोग परिचित हैं। ये उस क्रांतिकारी का नाम है जिसकी जासूसी ने तत्कालीन भोपाल रियासत में मौजूद अंग्रेज रेजिडेंट का पत्ता साफ कर दिया था। बात सन 1890 ईस्वी की है, रियासतों और राजवाड़ों का जमाना, और भोपाल रियासत में नवाब का राज था।
5: वजीर साहब
6: जी,
5: मुझे समझ में नहीं आता आखिर फिरंगी सरकार ने यहाँ ये रेजिडेंट क्यों रख छोड़ा है।
6: हुजूर आला, अपनी भोपाल रियासत में ही नहीं बल्कि सभी रियासतों में कंपनी सरकार ने रेजिडेंट तैनात किए हैं।
5: अच्छा,
6: दरअसल उनका मकसद तो रियासतों में चल रहे हालातों पर नजर रखना है।
5: हालातों पर नजर रखना
6: जी,
5: या फिर रियासतों के सियासती कामों में दखल देना?
6: आप बिल्कुल सही फरमाते हैं, दरअसल हुजूर ये कंपनी सरकार की हड़प नीति का एक हिस्सा ही है। उनका असली मकसद तो रियासतों में ऐसे हालात पैदा कराने से है ताकि कंपनी सरकार से रियासतों को अंग्रेजी राज में मिलाने की सिफारिश की जा सके।
5: पर शायद इस रेजिडेंट को ये मालूम नहीं कि उनकी हरकतें हमारी नजरों से नहीं बच सकी हैं।
6: बिल्कुल सही फरमाते हैं हुजूर।
5: इसीलिए तो हमने उन्हें आज दरबार में तलब किया है।
6: बहुत अच्छा किया है हुजूर आपने। हुजूर का इकबाल बुलंद हो, रेजिडेंट साहब ने हुजूर की खिदमत में हाजिरी दी है।
5: बुलाओ उन्हें,
6: हुजूर के फरमान की तामील होगी।
7: नवाब साहब की खिदमत में रेजिडेंट का आजाब।
5: तशरीफ रखें जनाब।
7: ओ शुक्रिया, हिज हाइनेस ने हमें याद किया।
5: हाँ रेजिडेंट साहब, शायद हालात ही ऐसे बन गए हैं कि हम आपको आगाह कर दें कि आप सिर्फ उसी काम से मतलब रखें जिसके लिए आपको यहाँ तैनात किया गया है।
7: लगता है हिज हाइनेस को कोई गलत फहमी हुआ है। मैं तो वही करता जिसके वास्ते यहाँ अपॉइंटेड हूँ।
5: पर जनाब, ये काम यहाँ के एडमिनिस्ट्रेशन में दखल देना तो नहीं है?
7: सर्टनली नॉट, बिल्कुल नहीं।
5: तो मैं उम्मीद करता हूँ जनाब इस बात का खास ख्याल रखेंगे।
7: सर्टनली, जरूर जरूर। अब हम जाने को सकता?
5: जी हाँ।
7: ओके।
1: जाहिर है इस बातचीत के बाद नवाब साहब और रेजिडेंट के आपसी संबंधों में अच्छी खासी खटास पैदा हो गई। बदले में रेजिडेंट ने खुलेआम कंपनी सरकार को नवाब साहब के खिलाफ झूठी शिकायतें भेजना शुरू कर दिया।
5: वजीर आला
6: जी, हुजूर
5: देख रहे हैं ना, ये रेजिडेंट तो एकदम पगला गया है।
6: आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं।
5: वो समझता है उसकी झूठी शिकायतों के जाने भी हमारी रियासत हड़प ली जाएगी।
6: पर हुजूर, उसकी झूठी शिकायतों का उल्टा ही असर हो रहा है। हमें ही नहीं, हमारी रियासत की राज परस्त जनता को भी उसने अपने खिलाफ कर लिया है।
5: अच्छा,
6: और अब तो समाचार पत्र और खबर नवीस भी उसकी खिलाफत करने लगे हैं।
1: उन्हीं दिनों बेटा एक घटना घटी। उस रोज सुबह के कोई 8 बजे होंगे, रेजिडेंट का बेरा वॉटसन साहब के ब्रेकफास्ट की तैयारी में व्यस्त था। उसके साथी ने बताया,
8: वॉटसन, एक पगला सा मैन तुमको मिलने को मांगता।
9: कौन है?
8: कोई दुबला पतला ब्लैक फेलो है।
9: तुम जानता, इस टाइम हमको मरने का फुर्सत भी नहीं। उससे कह दो, उसे मिलने का मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है।
1: वॉटसन का संदेश आगंतुक को दे दिया गया और सभी अपने अपने कामों में व्यस्त हो गए। ब्रेकफास्ट का काम निपटा कर वॉटसन सुस्ताने के लिए बंगले के पीछे आहते की ओर निकला तो उसने देखा एक काला सा दुबला पतला आदमी पत्थरों के टुकड़ों को एक के ऊपर एक जमा कर हंसता जा रहा है। वॉटसन ने सिगरेट चलाकर उस आदमी की ओर बढ़ गया। वॉटसन को अपनी ओर आता पाकर वो उठ खड़ा हुआ और ताली बजाकर हंसने लगा।
9: ए, तुम कौन और इधर क्या करता?
8: यही तो वो आदमी होता जो तुमको मिलना मांगता था वॉटसन।
10: साहब, आपका बहुत नाम सुना साहब, बस आपके दर्शन करने चला आया।
9: क्या चाहता तुम?
10: काम, मुझे काम चाहिए साहब।
9: कैसा काम? तुम क्या करने को सकता?
10: खाना बनाने से लेकर सफाई, चौका, बर्तन सभी काम अच्छे से कर सकता हूँ साहब।
9: खाना बनाने को तो इधर एक से बढ़ के एक कुक होता। हाँ, बर्तन साफ करने का काम तुम करने को सकता? करेगा?
10: जी जी साहब, आपकी बड़ी मेहरबानी।
1: और वो आदमी भी खुशी से ताली बजाकर हंसते हुए बार बार झुककर वॉटसन का अभिवादन करने लगा।
10: शुक्रिया हुजूर, शुक्रिया शुक्रिया।
9: ओके।
1: वॉटसन अपने साथी से बोला,
9: आदमी इंटरेस्टिंग है, इससे काम में मदद के साथ अपन लोगों का एंटरटेनमेंट भी होगा। रख लेते हैं, क्या बोलता तुम?
8: तुम ठीक सोचते हो वॉटसन, रख लो।
9: देखो मैन, क्या नाम तुम्हारा?
10: प्रसाद हुजूर।
9: देखो प्रसाद, एक शर्त पर हम तुमको बर्तन सफाई करने को रखता।
10: शर्त? कौन सी शर्त?
9: शर्त ये कि तुमको काम के बदले केवल खाना मिलेगा, कोई पे तनख्वाह ना आए।
10: मेरी जरूरत खाने की ही है, मुझे आपकी शर्त मंजूर है। मंजूर है साहब, मंजूर है।
1: आखिर प्रसाद को बर्तन सफाई के लिए नौकर रख लिया गया। प्रसाद बड़े मनोयोग से बर्तन सफाई के काम में जुट गया। काम के साथ साथ वो वाटसन और उसके साथियों का मनोरंजन भी करता रहता था।
7: अरे प्रसाद, तुम बर्तन साफ करके आता कि मिट्टी से नहा के आता?
10: साहब, ये मिट्टी थोड़ी ही है, ये तो चंदन है।

0: ग्रेट ग्रेट, देखो देखो प्रसाद सारे कपड़े मिट्टी से खराब करके किस तरह खुश होता और गाता भी है।
1: इधर रेजिडेंट की कोठी के अंदर जहाँ प्रसाद खुशनुमा माहौल बनाए हुए था, उधर

0: पूरी भोपाल रियासत में और कंपनी सरकार में रेजिडेंट के खिलाफ माहौल गर्माता जा रहा था। अमृत बाजार पत्रिका में रेजिडेंट के खिलाफ धड़ाधड़ लेख छप रहे थे। उसके सभी षड्यंत्रों का भंडाफोड़ एक के बाद एक हो रहा था। रेजिडेंट बोखलाहट में पुलिस अधिकारियों पर बरस पड़ा।
1: कितना शर्म का बात है, इंटेलिजेंस का क्लियर रिपोर्ट छोटा, पत्रिका को हमारे खिलाफ इन्फॉर्मेशन भोपाल शहर से ही बेची जा रही है, इसके बावजूद तुम्हारा सारा फोर्स उस रिपोर्टर को पकड़ नहीं पाता है। अनाउंसमेंट कराओ, जो भी उस रिपोर्टर को पकड़ाएगा उसे भारी इनाम दिया जाएगा।
2: यस सर।
1: गो एंड सीज दैट बास्टर्ड इज अरेस्टेड। हेलो, गुड मॉर्निंग सर। जी,
3: वो भेजा रिपोर्टर का क्या हुआ?
1: उसे पकड़ने का कोशिश की जा रही है सर, वो अभी पकड़ा नहीं जा सका है।
3: इधर तुम्हारे खिलाफ माहौल बहुत खराब हो गया है, हमें कड़ा डिसीजन लेना पड़ रहा है।
1: पर सर, हम अपनी ओर से पूरी पूरी कोशिश कर रहा है।
3: तुम समझते क्यों नहीं हो, आखिर विद्रोह की स्थिति से बचने के लिए तुम्हें वहाँ से हटाने के सिवाय और कोई चारा नहीं है।
0: आखिर रेजिडेंट को भोपाल से हटा दिया गया। रेजिडेंट ने दिल्ली को अपना स्थायी निवास बना लिया। भोपाल से विदा होने से पहले सभी घरेलू नौकरों को खूब इनाम बांटे गए।
4: अच्छा,
0: सभी खुश थे, पर प्रसाद बहुत दुखी था।
5: साहब, आप जा रहे हैं, अब मेरी नौकरी का क्या होगा?
1: तुमने हमारा बहुत खिदमत किया, पर अब हम तुम्हारे वास्ते कुछ नहीं करने को सकता। जब नया रेजिडेंट आएगा तुम उससे बात करने का।
0: दिन निकलने लगे। अभी रेजिडेंट को दिल्ली आए कुछ ही दिन हुए थे। एक दिन सुबह उसने देखा एक दुबला पतला काला सा सूटेड बूटेड आदमी धारा प्रवाह अंग्रेजी में घर के नौकरों से उसके बारे में पूछ रहा है। जिज्ञासा में वो बाहर आया तो आश्चर्य से उसकी आंखें फटी रह गई।
5: गुड मॉर्निंग सर।
1: अरे प्रसाद, तुम इस तरह सूट बूट में और ये अंग्रेजी?
5: आपको हैरान होना स्वाभाविक है, मुझे आप एक नए रूप में जो देख रहे हैं।
1: तो मैं इस रूप में देख के खुशी हुआ, इधर कैसे आया?
5: आपसे इनाम लेने आया हूँ।
1: इनाम? वो तो हम भोपाल से चलते टाइम तुमको दे दिया था।
5: वो तो आपके यहाँ बर्तन साफ करने का इनाम था, मैं तो उस जासूस को पकड़वाने का इनाम लेने आया हूँ जिसने तुम्हारे सारे भेद अमृत बाजार पत्रिका को देकर तुम्हारा भोपाल में रहना मुश्किल कर दिया था।
1: What? वो अभी पकड़ा नहीं गया, क्या तुम जानता उसको?
5: हाँ।
1: क्या तुम पकड़ा सकता उस भेदिये को?
5: अरे मूर्ख, वो भेदिया तेरे सामने खड़ा है।
1: ओह नो, क्या तुम?
5: हाँ, मैं ही वो भेदिया हूँ। लाओ, अब लाओ मेरा इनाम।
1: इनाम? हाँ, तुम इस तरह पर निगाह से हमको क्यों देखता? देखो, हमने तुमको सब तरह से हेल्प किया, कोई गलत काम नहीं करना। तुम्हें इनाम चाहिए ना? लो ये गोल्ड चेन वाला घड़ी ले लो, मैं तुम्हारी जासूसी का कायल हो गया हूँ। तुम चाहो तो मैं तुम्हें जासूसी डिपार्टमेंट में अफसर बनाने को सकता। सुनो, अच्छी पे मिलेगा।
5: तू सचमुच मूर्ख है। अरे यदि मुझे वेतन ही चाहिए होता तो तेरे घर पर मुफ्त में बर्तन साफ नहीं करता।
1: तो फिर तुम क्या चाहता?
5: हाँ? तेरे जैसे अन्यायी अफसरों को ठिकाने लगाना चाहता हूँ। मेरा नाम अच्छे से याद कर ले।

0: प्रकृति से सरल और विनोदी स्वभाव के थे। एक क्रांतिकारी घटना में उनका दाहिना हाथ जड़ से साफ हो गया था। एक नए साथी ने जब उनसे पूछा
1: भाई जी का हाथ तो देखो,
2: भाई जी आपका ये हाथ कैसे कट गया?
1: हाथ कैसे कट गया?
3: ये तो तलवार से तुम्हारा हाथ काट कर ही बताया जा सकता है।
2: अरे भाई जी, मेरा मतलब था किस घटना में आपका हाथ कट गया।
3: अरे ये पुरानी कहानी है, बात सन 1857 की लड़ाई की है।
1: अच्छा,
2: पर ये कैसे हो सकता है? आपने अपना जन्म तो 1858 का बताया है।
4: अरे तो क्या जन्म के पहले ही हाथ कट गया?
3: हाँ, बिल्कुल ठीक।
2: फिर 1857 में तो आप पैदा भी नहीं हुए थे।
1: और क्या है?
3: गलत। उस समय मेरी उम्र 40 वर्ष की थी और मैं रानी लक्ष्मीबाई की फौज के एक अधिकारी के रूप में अंग्रेजों से लड़ रहा था। क्या समझे?
2: आप अंग्रेजों से लड़ रहे थे?
3: जी हाँ, उसी समय तलवार के वार से मेरा हाथ कटा था और मेरी मृत्यु हो गई थी। 1858 में जब मैं फिर पैदा हुआ तो इस कटे हाथ के साथ। क्या
2: है?
0: दिन निकलते गए, अम्बा प्रसाद की क्रांतिकारी घटनाएं अधिक तेज होती चली गईं। भ्रष्ट और जालिम अधिकारियों की काली करतूतों का भंडाफोड़, उनकी सरेआम हत्याएं और सरकारी खजानों के लूटपाट आदि की सभी घटनाओं से अम्बा प्रसाद का नाम जुड़ता चला गया। आखिर कंपनी सरकार परेशान हो उठी।
5: मिस्टर वॉटसन।
6: यस सर।
5: भोपाल में रेजिडेंट रहते तुमने जो अम्बा प्रसाद को करीब से देखा है?
6: यस।
5: ऐसा उसमें क्या है जो इतनी वारदातों में शामिल होने के बाद भी उसे पकड़ा नहीं जा सका है?
6: सर, अम्बा प्रसाद बड़ा एक्सपर्ट जासूस होता। ये लोग अपना गेटअप के साथ काम कराने का मेथड और प्लेस लगातार चेंज करता रहता।
5: इंटरेस्टिंग।
6: फिर पकड़े जाने पर बिना सबूत के 2-4 साल की सजा भुगतने पर भी इनका जुनून में कमी नहीं आता। फिर सरकार की नजरों से बचने के वास्ते ये अंडरग्राउंड भी हो जाता।
0: सन 1908 में जब अम्बा प्रसाद 6 वर्ष की सजा काट कर जेल से बाहर आए तो उन्होंने अपनी देशभक्त मंडली के सदस्यों से चर्चा की।
3: दोस्तों।
2: जी भाई जी।
3: हम जेल से तो बाहर आ गए हैं, पर हमें एक बात ठीक से समझ लेनी है।
1: वो क्या?
3: यही कि फिरंगी सरकार हमें इतनी आसानी से खुला नहीं छोड़ने वाली।
2: भाई जी क्या मतलब?
3: मतलब हम पर पूरी पूरी नजर रखी जाएगी और किसी भी बहाने से हम में से प्रत्येक पकड़ा जाकर फिर से जेल में ठूस दिया जाएगा।
1: हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं।
2: तो भाई जी
3: एक ही रास्ता है, अज्ञातवास। हम अपनी क्रांतिकारी गतिविधियां कुछ दिन के लिए रोक देंगे
1: भाई जी। लेकिन
3: और हाँ, जब शासन हमारी ओर से निश्चिंत हो जाए तो फिर हम अपना काम तेजी से शुरू कर देंगे।
1: बिल्कुल ये ठीक रहेगा।
2: जी भाई जी। हाँ। तो अब भाई जी हमें क्या करना होगा?
3: हमें सूफी साधुओं के वेश में पर्वतों की ओर निकलना पड़ेगा।
0: बेटा जब अम्बा प्रसाद की मंडली साधु वेश में पहाड़ों की ओर चली तो उन्होंने देखा एक सूटेड बूटेड व्यक्ति भी उनके साथ साथ चल रहा है। अम्बा प्रसाद ने उसे टोका।
3: तुम पीछे पीछे कहाँ चल दिए बच्चा?
7: मैं आपका भक्त हूँ।
3: हमारा भक्त?
7: हाँ बाबा, आपकी सेवा के लिए साथ चल रहा हूँ।
3: अच्छा। हाँ। हमारी सेवा के लिए साथ चल रहा है?
7: हाँ बाबा।
3: पर तू कहाँ तक हमारे साथ चलेगा बच्चा?
7: जहाँ तक आप जाएंगे। आपका निवास कहाँ है बाबा?
3: तेरे सर में।
7: जी
3: संत का निवास कहाँ होता है रे? बहते पानी और रमते जोगी से ठिकाना पूछता है।
7: लगता है आप नाराज हो गए हैं बाबा।
3: जय गुरु घंटाल। बाबा का बच्चा, मेरी नाराजी छोड़ और महात्मा लोगों के भोजन प्रसादी का इंतजाम कर। जा, चला है बाबा की सेवा करने।
7: लगता है अभी ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा है। बाबा मैं इंतजाम करके अभी

0: आता हूँ।
1: हेलो निरंजन,
2: भक्त दौड़कर कई तरह के व्यंजन ले आया।
3: अच्छा।
2: सभी ने भरपेट प्रसादी खाई। खा पीकर सभी संत विश्राम करने लगे। अम्बा प्रसाद ने भक्त को अपने पास बुलाया।
4: इधर आ।
0: जी।
4: अब बता, तेरा इरादा क्या है?
0: साधु संतों की जितनी सेवा हो जाए अच्छा है।
4: मतलब तू हमारा पीछा नहीं छोड़ेगा?
0: बाबा, मैं तो आपकी सेवा करना चाहता हूँ।
4: तू अपने को बहुत चालाक समझता है?
0: जी।
4: चला है जासूसी करने?
0: क्षमा करें, ये सब तो पेट की खातिर है।
4: चला, मेरे पैर छोड़।
0: बाबा,
4: जानता है ना इसे क्या कहते हैं?
0: बाबा क्षमा करें, मुझे मारे नहीं। नहीं,
4: ये तेरा इरादा इस पहाड़ पर समाधि लेने का नहीं है।
0: नहीं।
4: और यदि तू बाल बच्चों की परवरिश करना चाहता है
0: बाबा,
4: तो तू ये जासूसी छोड़कर भाग जा।
0: जी बाबा।
4: चला जा यहाँ से
0: और
4: जाके अपने आका अंग्रेज से कह दे सूफी पहाड़ पर गदर करने जा रहे हैं। चल जल्दी से भाग, नहीं तो तेरा
0: बाबा।
2: इसके बाद वो जासूस वहाँ से ऐसा भागा कि वर्षों तक उसका पता ही नहीं चला। सन 1909 में अम्बा प्रसाद विदेशों में भारतीय पक्ष का समर्थन बटोरने की गरज से सूफी संत के वेश में ही ईरान जा पहुँचे। साथ में क्रांतिकारी भगत सिंह के चाचा सरदार अजीत सिंह भी थे। ईरान में आका सूफी के रूप में उन्होंने अतिशय श्रद्धा बटोरी। उन्होंने ईरान की संस्कृति को भी गहरे प्रभावित किया। यहीं से उनके नाम के साथ सूफी जुड़ गया। वे सूफी अम्बा प्रसाद कहलाने लगे। सन 1915 में ईरान में शिराज के घर में फंसने के बाद वे नहीं बच पाए। एक हाथ से ही पिस्तौल चलाकर सूफी जी ने डटकर मुकाबला किया, पर गोलियां समाप्त होने पर वो पकड़े गए। उन्हें एक कोठरी में बंद कर दिया गया। दूसरे दिन उन्हें सार्वजनिक रूप से गोलियों से भून देने का निर्णय हुआ, पर दूसरी सुबह जब कोठरी का दरवाजा खोला गया तो सबने उन्हें समाधि की अवस्था में पाया। उनके प्राण पखेरु मिट्टी के पिंजरे को छोड़कर कब के उड़ चुके थे। ईरान में ही उनकी समाधि है, जहां आज भी लोग श्रद्धा से शीश झुकाते हैं।
5: निर्देशन प्रमोद शर्मा, परिकल्पना श्रीराम तिवारी, समन्वय संजय यादव, निर्माण और प्रस्तुति स्वराज संस्थान संचालनालय मध्य प्रदेश शासन संस्कृति विभाग।
6: नमस्कार, मैं हूं पेंटल। आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: किसी।
1: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
2: मेजोरिटी पीपल सिर्फ अगर अपने जीवन और अपने मन की एक्सरे करनी है उस क्षण चेक करें जब सुबह उठते हैं। अगर सुबह उठते ही फर्स्ट थॉट आती है कि मुझे थोड़ा और सोना है, इसका मतलब मेरे जो 6 घंटे के 8 घंटे की नींद थी मेरी उसमें रेस्ट और रिचार्जिंग नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? शरीर सो रहा था लेकिन मन अभी भी कंटिन्यूअसली चल रहा था। मन की बात का समाधान नहीं मिला उसको। अब हमारा मन अगर उसको उसकी बात का समाधान नहीं मिलता है तो वो 5 दिन नहीं 5 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ, 50 साल चल सकता है उस प्रॉब्लम के साथ। और अगर फिर भी समाधान नहीं मिला तो आत्मा शरीर छोड़ेगी, दूसरा शरीर लेगी और वो ही सोच और संस्कार अपने साथ लेकर जाएगी।
1: आप सुन रहे हैं पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: करते आप भगवान की ताका जाप।
1: क्यों रे निखट्टू भाड़े के टट्टू, और नहीं कोई तुझको काम। जब देखो ये पुस्तक लेकर जपता है तू राम नाम।
0: अरे भगवान नाम राम का लेना तो कोई पाप नहीं है।
1: पकी पकाई देने वाला घर में कोई तेरा बाप नहीं है।

हाथों बेजार, मर गए जीते जी हम यार। चुप बैठूं तो वो नाराज, बोल पड़ूं तो सत्यानाश। यार कहीं से ला दे मुझको

0: क्यों रनी खट्टू भाड़े के टट्टू हो तेरा सत्यानाश। बोल ये तेरे मुंह से कैसी आज आ रही बास।
1: हम तो आज जरा के आए, पी के आओ पिला के आए।
0: अरे बोल कहाँ से पी के आया,
1: ये न समझना चोरी की है, तेरे बाबा के संग पी है।
0: लेता है मेरे

0: आवाज सामाजिक व सांस्कृतिक माहिती देणारे आपले रेडिओ स्टेशन ऐकत रहा 107.8 FM आनंदी रहा आणि आनंद लुटा.
1: वेलकम टू अवेकनिंग विद ब्रह्मा कुमारीज. वेलकम सिस्टर.
2: ओम शांति.
1: आपका स्वागत है बीइंग ब्लिस में.
2: थैंक यू.
1: लास्ट टाइम मैंने एक लाइन पढ़ी थी कि नेवर बेस योर लाइफ्स डिसीजंस ऑन एडवाइस फ्रॉम पीपल हु डोंट हैव टू डील विद द रिजल्ट्स.
2: डिसीजन लेने के टाइम दो चीजों का हमें ध्यान रखना पड़ता है. एक, जो डिसीजन मैं आज लूंगा उसकी जिम्मेवारी मेरी है. राइट. वट एवर डिसीजन आई टेक, करियर, कोई भी चीज, रिलेशनशिप्स, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी कि ये डिसीजन मैंने लिया. फिर उस डिसीजन को इम्प्लीमेंट करके जो कॉन्सिक्वेंसेस आने वाले हैं उसकी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरी हो जाएगी. अब क्योंकि अनसर्टेनिटी है और मेरे अंदर सिचुएशंस को फेस करने की उतनी ताकत नहीं है, तो आई फील कि अगर कोई और मुझे बता दे कि मेरे लिए क्या सही है, क्योंकि इस समय मैं कंफ्यूज्ड हूँ. जब क्लैरिटी होती है तो हम डिसीजन ले लेते हैं ना. जब कंफ्यूज्ड हैं कि ऑप्शंस हैं लेकिन मुझे नहीं पता चल रहा ये या ये, तो हम फील करते हैं कि अगर कोई और डिसीजन ले दे तो हमारा वो काम इजियर हो जाएगा. अब जितना हम औरों से डिसीजन के लिए पूछते रहेंगे उतना हमारी डिसीजन मेकिंग पावर
1: कम होती जाएगी.
2: जैसे कई चीजों में हम कहते हैं ठीक है आपने कहा तो मैं करता हूँ, यू नो, या कई चीजों में हम करना नहीं चाहते लेकिन हमसे कोई फोर्सफुली वो डिसीजन करवाया जाता है. लेट्स से इन लॉज कोई डिसीजन लेते हैं डॉटर इन लॉ के लिए, पेरेंट्स कोई डिसीजन लेते हैं बच्चे के लिए, और बच्चे को उनकी खुशी के लिए या परिवार के सुख के लिए, क्योंकि कई बार बहुत एक्सट्रीम में चला जाता है, अगर तुम हमारी बात नहीं मानोगे तो ऐसा हो जाएगा, ये हो जाएगा, तो बच्चे को या वाइफ को हस्बैंड की खुशी के लिए ये डिसीजन लेना पड़ता है. ये जो डिसीजंस हम ले लेते हैं जिसमें हम कहते हैं आई हैव नो चॉइस, इवन ऑफिस में बॉस के कहने पर मुझे कोई डिसीजन लेना पड़ता है एंड आई से आई हैव नो चॉइस, तो हम कर रहे हैं वो कर्म, लेकिन कर्म करते हुए हम कह रहे हैं आई हैव नो चॉइस. ये किसकी वजह से? उनकी वजह से. अब क्या होगा, क्योंकि वो डिसीजन मेरा नहीं है तो जितनी शक्ति मैं लगाऊंगी उस परिस्थिति को फेस करने में वो उतनी नहीं होगी अगर वो डिसीजन मेरा होता तो. लेट्स से कोई करियर मुझे फोर्सफुली डिसीजन लिया जाए मेरे लिए लेकिन मेरा मन नहीं था, तो जितनी मैं अपनी शक्ति लगाऊंगी उस 5 साल की पढ़ाई करने में, उसमें आने वाले चैलेंजेस को फेस करने में, वो तब ज्यादा होते अगर वो चॉइस और वो डिसीजन मेरा होता. अब क्या होगा, छोटी सी भी बात आएगी तो आई विल गिव अप इजिली, क्योंकि आलसे ये डिसीजन किसका था? उनका था. जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर कोई बच्चा उसकी चॉइस से कोई मैरिज करता है या करियर करता है, उसमें भी तो बहुत ऑब्स्टिकल्स आते हैं, बट वो कहते हैं नहीं नहीं मुझे करना है. जैसे आपने कहा मैं हैदराबाद छोड़ के आ गया एक्टर बनने के लिए, लेकिन चैलेंजेस तो बहुत सारे आए होंगे ना. लेकिन वो चैलेंजेस को आपने किसी को भी घर जाके कंप्लेंट नहीं किया होगा.
1: मैं घर वापस ही नहीं जा सकता था.
2: हाँ, लेकिन कंप्लेंट भी नहीं कर सकते थे, किसी और को रिस्पॉन्सिबल भी नहीं ठहरा सकते थे, क्योंकि वो डिसीजन किसका था?
1: मेरा.
2: आपका था. जब वो आपका डिसीजन है तो उसमें चाहे कितने भी चैलेंजेस आ जाए आप उसको अपनी पूरी शक्ति लगा देंगे उसको फेस करने के लिए. अब यही अगर आप आना चाहते थे एक्टर बनने के लिए लेकिन अगर आपको फैमिली फोर्स से
1: रोक दे
2: और आपको एक अलग प्रोफेशन के लिए आपका डिसीजन ले, उसमें आप इतनी शक्ति ना लगाते जितनी इसमें लगाए.
1: कितने लोग बोलते हैं मुझे भी वो करना था लेकिन उन्होंने बोला पहले इंजीनियरिंग कर लो, पहले कुछ डिग्री का कोर्स मतलब MBBS कर लो फिर देख लेना.
2: Right.
1: कहीं नहीं हुआ तो
2: ट्रू
1: नो लाइक दैट. ये तो ठीक है, एक डिसीजन ऑफ अ करियर है.
2: नहीं, बट एनी डिसीजन में जो रूल होता है वो रूल रिमेन्स द सेम. कोई भी डिसीजन, चाहे वो दिन का, आज के दिन का छोटा सा डिसीजन हो, लेट्स से हमने अभी डिसाइड किया कि अभी ये एपिसोड शूट करना है. राइट. सपोज आपका मन नहीं हो शूट करने के लिए लेकिन हम कहे नहीं नहीं आपको ये अभी करना ही है. अब आपका मन नहीं है ये आपका डिसीशन नहीं है, लेकिन आपके ऊपर ये डिसीशन जैसे कि इम्पोज किया जाए, तो फिर क्या होगा? छोटी सी कोई प्रॉब्लम आएगी, छोटी सी भी कोई बात आएगी, आप कहेंगे देखा मैंने बोला था ना ये नहीं करना है, ये नहीं हो सकता है, ये बहुत मुश्किल है, ये आज पॉसिबल नहीं है। लेकिन अगर ये आपका डिसीशन हो तो बड़े से बड़ी प्रॉब्लम आएगी, आप उसको बहुत प्यार से क्रॉस करेंगे, क्योंकि मेरा डिसीशन मुझे इम्प्लीमेंट करना है। ये बहुत है, ये बड़े डिसीशन के लिए नहीं होता है, रूल इज द सेम फॉर एवरीथिंग।
1: प्रॉब्लम ये है कि डिसीशंस लोग लाइफ पार्टनर्स तक ले लेते हैं। कई बार मुझे लोगों ने बोला, मेरी माँ ने मुझे बोला था कि मेरा मरा हुआ मुंह देखना अगर इससे शादी नहीं करेगी।
2: yes.
1: इस किताब में जो लिखा है कि हमें उनकी बात नहीं माननी चाहिए जो हमारे साथ अंत में उसके रिजल्ट में हमारे साथ नहीं है। वैसे तो रिजल्ट में कोई भी डिसीजन में हमारे साथ नहीं।
2: अब हमें क्या करना है कि अगर कोई हमें कुछ कहता है करने के लिए, जैसे आपने कहा, पेरेंट्स ने कहा कि आपको यही शादी करनी है, आपको यही करियर लेना है, आज आपको यही करना है, क्योंकि जब हमें राय कोई ऐसा व्यक्ति दे रहा है जो हमें पता है कि वो हमारे अच्छे के लिए दे रहा हो, लेकिन जब हम उस राय को ले लेते हैं, उस एडवाइस को ले लेते हैं, हमें उस एडवाइस के साथ काम करना पड़ेगा, एंड काम करते जाना पड़ेगा, करते जाना पड़ेगा, जब तक वो डिसीशन वो मेरी चॉइस ना बन जाए। इवन इफ आई हैव टेकन इट फ्रॉम यू, आई टेक द एडवाइस फ्रॉम यू, बट आई विल मेक द डिसीशन ओनली व्हेन आई एम कंप्लीटली कन्विंस्ड दैट दिस इज माय चॉइस। दैट्स अ वेरी थिन लाइन नाउ अगेन बिटवीन दैट। एक है आपने कहा आपको ये करना है, मैं कहा नहीं मुझे नहीं करना है, फिर आपने कहा आपको मेरी खुशी के लिए ये करना होगा। अब अगर मैंने सिर्फ, क्योंकि रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, यू नो, एक रिश्ते, पेरेंट, चाइल्ड, इन लॉज, ये रिलेशनशिप इम्पोर्टेंट है, तो मैं कहा अगर नहीं किया तो घर में झगड़ा होगा। कई बार तो जैसे आपने कहा ऐसे भी थ्रेटन मिलेंगे कि अगर नहीं कहना माना तो आई विल डू समथिंग टू माई सेल्फ, इतने तक थ्रेट्स। तो उसमें क्या करना होगा, मैं ये करने के लिए इसलिए रेडी हो रही हूं क्योंकि ये करने से इनको अच्छा लगेगा, इनको अच्छा लगना मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्यों? क्योंकि ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। तो परिवार की खुशी मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, परिवार मेरे इस डिसीशन से खुश होने वाला है, तो परिवार को और अपने रिश्तों को जोड़कर रखने के लिए मैं ये डिसीशन ले रही हूँ।
1: ये प्यार है या वीकनेस है?
2: ये चॉइस है, ये चॉइस है। सपोज मुझे यहाँ जाना है, आपने कहा नहीं यहाँ जाना है, मेरे को नहीं, मेरा मन यहाँ जाने के लिए है, तो आपने कहा नहीं, मेरी खुशी इसमें है कि आप यहाँ जाओ, ठीक है, लेट्स से इतना ही। अब मेरे पास दो ऑप्शंस है, या तो यहाँ जाना है और आप नाराज हो जाएंगे या दुखी हो जाएंगे, या यहाँ जाना है और आप खुश हो जाएंगे। अब मैं अपनी प्रायोरिटी लिस्ट को देखती हूँ, एंड प्रायोरिटी लिस्ट में अगर ये जो चॉइस है कि यहाँ जाना और यहाँ जाना, ये छोटी है और मेरा रिश्ता उससे बड़ा है।
1: अच्छा,
2: मेरा रिश्ता
1: विच इज मोर इम्पोर्टेंट।
2: अगर मेरा रिश्ता उससे बड़ा है और मुझे ये रिश्ते में हार्मनी वो मेरे लिए ज्यादा प्रायोरिटी है, तो आई विल से ओके, ये रिलेशनशिप मेरे लिए इम्पोर्टेंट है, पेरेंट खुश रहे ये मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है मेरे लिए, लेकिन उनके लिए कर रहा हूँ नहीं। ये जो लाइन हम सारा दिन में बहुत बार लिख देते हैं, मैंने उनके लिए ये किया, मैंने उनकी खुशी के लिए ये किया, उनको अच्छा लगता इसीलिए मैंने ये किया, उनकी खुशी मुझे अच्छी लगती है, उनका अच्छा फील होना ये मुझे अच्छा लगता है, इसीलिए मैंने इस रास्ते जाना चूज किया, द डिसीशन वॉज कम्प्लीटली माइन एंड आई हैव डन इट ओनली एंड ओनली फॉर माई सेल्फ।
1: ये लाइन मुझे बहुत जरूरी है सुननी दोबारा,
2: मैंने ये किया अपनी खुशी के लिए।
1: लेकिन ये कभी नहीं बोल सकते ना, मैं इनके लिए फिर ये किया,
2: अगर मैंने आपके लिए किया,
1: जो समझो गांव में है, छोटी जगह है, उसको बोलते है, इस घर में तेरी शादी करनी है क्योंकि मैंने सोच लिया,
2: राइट,
1: बाप आपने,
2: ठीक।
1: अब आप कैसे बोलेंगे ये लाइन जो अभी आप कह रहे थे,
2: क्योंकि
1: मैं अपनी चॉइस है, मेरी, घर से भाग जाए,
2: ऑप्शन है ना,
1: कहाँ से भाग जाएगी, कहाँ खाना खाएगी?
2: सी
1: देखिए प्रैक्टिकली नहीं जमता,
2: प्रैक्टिकली तो प्रैक्टिकली आई टेल
1: माय सेल्फ
2: एब्सोल्युटली
1: पैसे नहीं है, अकेली है, कोई फ्रेंड्स साथ रखने को नहीं है, और कहाँ भागेगी वो?
2: तो आई टेल माय सेल्फ ये मेरे जीवन के ऑप्शंस हैं, या तो मैं अभी भाग सकती हूँ या मुझे इनका कहना मानना है। भागना अगर मैंने चूज किया तो मेरे सामने इतने सारे चैलेंजेस हैं, ये चैलेंजेस को फेस करने की ताकत,
1: इक्वल प्रॉब्लम हो तो,
2: दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम है, तो दोनों तरफ इक्वल प्रॉब्लम में से फाइनली चूज किसने किया?
1: मैं मजबूर हूँ और चॉइस पे फर्क है।
2: नहीं, मजबूरी में भी
1: आप देखिए सुनिए, एक इंग्लिश फिल्म में है लिखा हुआ, मैं डायलॉग आया था ये, माय फादर फोर्स्ड हिम टू सी दैट ही डज नॉट रिफ्यूज, ही गेव हिम एन ऑफर व्हिच ही कुड नॉट रिफ्यूज।
2: एब्सोल्युटली,
1: तो बोला कि ऑफर को ही कुड नॉट रिफ्यूज का मतलब क्या है, पहले गन पॉइंट रखा यहाँ,
2: ठीक है, अगर मुझे आज कोई गन पॉइंट पे भी रखते, आज मुझे कोई गन पॉइंट पे रखे और कहे ये गलत काम करो, ठीक है, ये हो सकता है ना कि आपको ये गलत काम करना होगा, यू आर नॉट गन पॉइंट, ठीक, तब भी मेरे पास फिर चॉइस है ना?
1: नहीं, मैं उसे मजबूर कहूंगा, चॉइस नहीं बोलूंगा।
2: नहीं सी, ये जैसे ही हम मजबूरी वर्ड, मजबूरी भी चॉइस तो है ना, पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी अपने कर्म की ये लेनी पड़ेगी। आज मेरा बॉस मुझे बुला के बोले आपको ये करप्ट काम या ये गलत काम करना होगा, अदरवाइज यू लूज द जॉब, आपकी ये नौकरी आज शाम को जाएगी, इट्स एज गुड एज गन पॉइंट फॉर मी राइट नाउ लेट्स से, क्योंकि मेरा पूरा परिवार उस पर डिपेंडेंट है, मेरे पास कल मॉर्निंग के लिए जॉब नहीं है, नेक्स्ट महीने मेरे घर मेरे बच्चे की शादी है, दिस जॉब इज एवरीथिंग फॉर मी राइट नाउ, एवरीथिंग। अगर ये जॉब आज जाती है, इट मींस टेरेबल थिंग्स फॉर मी एंड माय फैमिली, ठीक है, उस समय मुझे क्या करना है, इवैल्यूएट करना है, अगर मैंने जॉब छोड़ा तो ये मेरे सामने और परिवार के सामने चैलेंजेस है, और लेकिन अगर मैंने आज ये काम किया तो या तो मेरी कॉन्शियस अलाउ नहीं करती या मैं इस तरह का जीवन नहीं जी सकता, एंड दैट टाइम आई विल मेक अ डिसीजन, इट विल बी माय डिसीजन, it will be my choice, I cannot say I have no choice, even at gunpoint mere paas choice hai ki main wo kaam karu ya I choose to die, to bhi choice hai, kabhi bhi hum dusre ko nahi keh sakte inki wajah se maine ye karam kiya, kyunki karam finally maine kiya, एंड इट्स बेटर कि मैं अंडरस्टैंड करके कर्म कर लूं, क्योंकि उस कर्म का जो रिजल्ट आने वाला है वो उनके सामने नहीं आने वाला है जिन्होंने एडवाइस दी थी।
1: ये डिसीजन मैं ले रहा हूँ, मुझे ही आज तक नहीं मालूम था, तो ये गरीब अनपढ़ लड़की जो जिसको जबरदस्ती के बोलते हैं कि भाई फलानी जगह तुम्हारी शादी है, फलानी तारीख को है, तुम्हारा उस दिन हमारे घर में लास्ट डे, चलो शादी करो भाग जाओ।
2: आप देखो हमारे पास कुछ बहने आती है जो घर पे मार खाती है, सालों से मार खा रही है, मतलब उनकी बॉडी पर फिजिकली वो मार दिखती है, इतनी मार खा रहे हैं। अब वो कहेंगे मजबूरी है, परिवार है, बच्चे हैं, रहने को कहीं नहीं है, पैसा नहीं है, इसीलिए हम वहां रहते हैं। अब आप उनको बता सकते हैं कि आपके पास ये भी चॉइसेस हैं, आप छोड़कर जा सकते हैं, आप अकेले लड़ सकते हैं, आप अकेले रह सकते हैं, कहेंगे नहीं ये बहुत डिफिकल्ट है।
1: They
2: are choosing at every step, we are choosing.
1: That means मैं आपसे कह रहा हूँ कि मार खाना आसान है,
2: जो भी है वो तो आत्मा,
1: अगर ये डिफिकल्ट है तो दिस इज इजियर ना।
2: अब उसी परिस्थिति में कोई और आत्मा चूज करेगी कि नहीं रहने दो, मुझे नहीं मालूम कल मेरा क्या होगा, लेकिन मैं यहाँ नहीं रह सकती इस परिस्थिति में, आई चूज टू वॉक आउट। कोई कहेगा कि ठीक है अगले महीने मेरे बच्चे की शादी है, मेरे पास आज के बाद नौकरी नहीं होगी, मेरे पास धन नहीं होगा, मुझे नहीं मालूम मैं कैसे उस सिचुएशन को फेस करूंगा, आई हैव नो आइडिया, लेकिन आई विल नॉट डू दिस। दोनों तरह के लोग मिलेंगे ना, दोनों तरह के लोग, कितने हैं जो आज कॉम्प्रोमाइज करेंगे और कितने हैं जो कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे, बोथ इज फाइन, वी आर नॉट हियर टू से कि हु इज राइट और हु इज रॉन्ग, इम्पोर्टेंट इज दोनों को ये पता होना चाहिए कि ऐसे करो या ऐसे करो, दोनों केसेस में चॉइस मेरी है, डिसीशन मेरा है, कर्म मेरा है, कार्मिक अकाउंट मेरा है, कर्म का फल जिसके पास आएगा वो मेरे पास आएगा। उस समय ये नहीं कहना है मेरे पास चॉइस नहीं थी, उन्होंने बोला इसलिए मैंने किया। इसलिए अवेयरनेस चाहिए। अगर वो सिर्फ कर्म होता तो भी ठीक था कि आपने कर्म किया सोच करके, ये किसी और की वजह से मुझे किया, लेकिन व्हाट अबाउट जब उस कर्म का फल आने वाला है, क्योंकि वो ऐसे जाएगा तो फिर ऐसे आएगा ना, जब उस कर्म का फल आएगा तब क्या आप कह सकते हैं कि ये उनकी वजह से। लेट्स से टेक अ सिंपल थिंग, आज मेरा एक बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, मैं उस हॉस्पिटल का चेयरपर्सन हूँ, मेरे सामने एक टीम ऑफ 100 डॉक्टर्स है, बहुत बड़ा हॉस्पिटल है, उसके इतने ऊंचे टारगेट्स हैं, ठीक है। अब मैंने एक ऑर्डर पास किया कि इतने ऊंचे टारगेट्स मीट करने के लिए आपको कुछ कुछ कुछ ऐसा ऐसा थोड़ा बहुत इतना इतना एक आधा टेस्ट इधर, एक आधा स्कैन, जो भी छोटी मोटी चीज है, आई हैव टू गिव एन इंस्ट्रक्शन। जो डॉक्टर उस इंस्ट्रक्शन को लेगा और कहेगा क्या करूं, नौकरी है करनी पड़ेगी, कहना मानना पड़ेगा, और वो भी वही कर्म करेगा कि आज अपने सामने आए हुए मरीज को वो एक्सप्लॉइट करेगा, उसके सामने भी फल आने वाला है। और जो व्यक्ति ये अंडरस्टैंड करेगा कि इंस्ट्रक्शन उन्होंने दी है, लेकिन ये इस समय डिसीशन कि मैं ये कर रहा हूं, ये चॉइस मेरी है, फल उसके सामने भी आने वाला है। लेकिन जो अवेयरनेस से डिसीशन लेगा कि डिसीशन मेरा है, वो ये भी अवेयर रहेगा कि ये जो कॉन्सिक्वेंसेस आया ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
1: बट ये मैं अगर उस जगह पे होऊंगा तो ये कहूंगा कि मैं मजबूरन वो डिसीशन लिया और आज मजबूरन ये कॉन्सिक्वेंसेस ले रहा हूँ, इसमें मेरी गलती नहीं है। आई वॉज फोर्स टू डू देन, आई एम फोर्स टू डू नाउ।
2: यू वर नॉट फोर्स टू डू इट,
1: मेरे को गन पॉइंट पे था, वरना उन्होंने बोला कि मैं आपके बच्चों को मार दूंगा।
2: ठीक है, तो आपने चूज किया।
1: आज कैसे काम करते हैं आप, फलाने रुपए दो, हिंदी फिल्मों में नहीं देखते
2: आप, तो ठीक है ना, तो मैंने चूज किया ना, तो इट्स ओके ना, मैंने चूज किया। आज अगर मैं ये गलत काम नहीं करता तो मेरे बच्चों पर ये इफेक्ट होता, तो मैंने चूज किया।
1: चूज इतनी जल्दी यूज कर लेते हो शब्द,
2: नो बट
1: चूज वहाँ होता जो मुझे पसंद है, मेरी चॉइस है,
2: मेरे पास ये दो
1: ये,
2: थे,
1: ये मुझे चूज करने के लिए दो मिले, ये काला लो या ब्राउन लो या ये लो, तब मेरे पास चॉइस है। अब मजबूरन मुझे बोला कि तुमको गोली छोड़ा देंगे आप ये रखो यहाँ,
2: तो मैंने चूज किया ना, ये मेरा गलत काम।
1: सिस्टर दिस इज नॉट प्रैक्टिकल, आई डोंट अग्री विद यू।
2: It is a choice. At every step,
1: anybody who forces me on gunpoint is my choice.
2: They are forcing you to do something. Finally, what you do will be your choice and your decision. अगर कोई मुझे कहे अगर आपने ये नहीं किया तो आपके परिवार के साथ ऐसा होगा, तो मैंने परिवार को इम्पोर्टेंस दिया, which is fine ना, मैंने अपने परिवार को इम्पोर्टेंस दिया कि नहीं ये गलत काम कुछ भी चीज नहीं है, मेरा परिवार बहुत इम्पोर्टेंट है, तो मैंने चूज किया वो काम करना, विच इज ओके, मैंने चूज किया। कोई और है वो बोलेगा नहीं मैं देखूंगा क्या कॉन्सिक्वेंसेस है, लेकिन मैं ये नहीं करता।
1: डिक्शनरी पे वर्ड कहाँ से है मजबूर?
2: जब हम अपने डिसीशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि हम एक्चुअली पर्सनल रिस्पॉन्सिबिलिटी लेने के लिए तैयार नहीं होते हैं, तब हम कहते हैं मुझे मजबूर किया गया। मुझ पर प्रेशर हो सकता है, मुझ पर सारी दुनिया का भी प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए, 1, 2, 10 लोग क्या, मुझ पर सबका प्रेशर हो सकता है कुछ करने के लिए, मुझ पर रिलीजन का प्रेशर हो सकता है, मुझ पर बहुत सारे प्रेशर,
1: पॉलिटिकल
2: प्रेशर हो सकता है, सोशल प्रेशर हो सकता है, मेरे पर सारे प्रेशर हो सकते हैं, लेकिन फाइनली डिसीशन मुझ आत्मा का है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। तब हम कभी भी जीवन में ये नहीं कहेंगे कि मैंने तो कुछ भी गलत नहीं किया तो मेरे सामने ऐसा क्यों, क्योंकि हमने जब जब जो भी कर्म किए हमने कहा नॉट माई चॉइस, नॉट माई चॉइस, झूठ बोलना पड़ता है, ये करना पड़ता है। ये बड़ी बातें क्यों हम लेते हैं, छोटी बात, आज मुझे ऑफिस से छुट्टी चाहिए, लेकिन अगर मैं सच बोलूंगा तो बॉस गुस्सा करेगा, अगर मैं बोलूंगा जी मेरी वाइफ बीमार है इसलिए मुझे छुट्टी चाहिए तो मुझे इजीली छुट्टी मिल जाएगी, तो हम कहेंगे आई हैड नो चॉइस, झूठ बोलना पड़ा, सच बोलता ना तो छुट्टी नहीं मिलती, छुट्टी हम आई हैड नो चॉइस तो ऐसे बोलते हैं, मतलब छोटी छोटी, आई हैड नो चॉइस इसलिए मुझे ऐसा बोलना पड़ा, हमने झूठ बोल दिया. वी आर नॉट टॉकिंग कि कौन सा कर्म राइट है कौन सा रॉन्ग है. इम्पोर्टेंट सिर्फ ये है मेरा हर कर्म चाहे वो एक छोटा सा झूठ है चाहे वो एक जीवन का बहुत बड़ा डिसीशन है, किसी भी कर्म में हम ये नहीं कह सकते आई हैड नो चॉइस, करना पड़ा. आई हैड नो चॉइस तो हम बहुत लिबरली यूज करते हैं आज सारा दिन. आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू गो देयर. आई हैड नो चॉइस सो आई हैड टू डू दिस. हर स्टेप पे चूज कर रहे हैं.
1: मैं किसी के खातिर कुछ नहीं करता हूँ दुनिया में. मुझे आपसे प्यार है तो मैं आपकी खातिर ये कर रहा हूँ.
2: अगर हम ये बोलेंगे कि मैं उनकी खातिर ये कर रहा हूँ तो पहले तो हम उस करने में अपनी पूरी शक्ति नहीं लगाएंगे और दूसरा करके हम उनके ऊपर
1: एहसान
2: जताएंगे और तीसरा फिर हम उनसे एक्सपेक्ट करेंगे कि हमने उनकी खातिर किया तो अब वो मेरी खातिर करेंगे. तीनों चीजों में डिसएम्पावरमेंट. पहले कहा उनके लिए तो अपनी खुशी नहीं देखी, दूसरा उन पर उस चीज का एहसान जताया, तीसरा उसको इम्प्लीमेंट करने में अपनी पूरी ताकत नहीं लगाई, चौथा जब उस डिसीजन का कॉन्सिक्वेंस आया अगर अच्छा नहीं था तो उन पे ब्लेम कर दिया, और मोस्ट इम्पोर्टेंट फिफ्थ फिर उनसे एक्सपेक्ट किया कि मैंने उनके लिए किया था तो वो भी मेरे लिए करेंगे. तो कॉन्फ्लिक्ट किया सब खुशी के लिए था, रिजल्ट क्या निकल के आएगा? डिसएम्पावरमेंट एंड कॉन्फ्लिक्ट.
1: आपकी चॉइस करने के लिए आपके पास ज्यादा बुद्धि है, ज्यादा पैसा है, आप 6 साल बैठ के खा सकते हो घर पे, मैं 6 दिन के 6 घंटे नहीं रह सकता.
2: ठीक है,
1: इतनी जब मेरे साथ प्रॉब्लम्स हैं लाइफ में तो तब मैं उसको चॉइस बोलूंगा.
2: एक के पास करोड़ों करोड़ों रुपया है, मतलब बेअंत, फिर भी वो चूज करता है आज चोरी करना या दूसरों को चीट करना, वो चॉइस है. एक के पास अगला मील नहीं है, अगला भोजन नहीं है अपने परिवार को खिलाने के लिए, फिर भी वो चूज करता है कि मैं चोरी करके नहीं खिला सकता हूँ. सिचुएशंस पे डिपेंडेंट नहीं है, ये चॉइस है. ये चॉइस हम अपने कर्म और अपने संस्कारों पर बेस्ड बनाते हैं, सिचुएशंस पर बेस्ड नहीं बनाते हैं. क्या चॉइस करते हैं वो इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल, उनके संस्कार पर डिपेंड करेगा. लेकिन इम्पोर्टेंट है हर चॉइस करते समय सिर्फ ये अवेयरनेस, मजबूरी नहीं है, सिचुएशंस है, चॉइस मेरी है, कर्म मेरा होगा, और जैसे आपने पढ़ के सुनाया चलना उस रास्ते मुझे होगा, कार्मिक अकाउंट मेरा क्रिएट होगा, कॉन्सिक्वेंसेस उस कर्म के मेरे सामने आएंगे, और जब मेरे सामने आएंगे तो मुझे अकेले ही उनका सामना करना है. अब डिसीजन ले ले.
1: नहीं, बट कभी कभी ऐसा होता है ना सिस्टर, मैं आज सोचता हूँ कि यही चीज 20 साल पहले 30 साल पहले मैंने जो की, आज की बुद्धि के हिसाब से, आज की सिचुएशन के सर्कमस्टांसेस के हिसाब से, अगर वो मुझे लगता है वो मेरी चॉइस गलत थी, अगर इतनी बुद्धि और इतना तब मुझे अकल होती तब मैं ये नहीं करता, तो वो पछतावा जब आता है, गिल्ट आती है, तो तब वो वाली चॉइस गिवन सर्कमस्टांसेस में तब भी मैं राइट ही तो था ना.
2: आपने जो डिसीशन तब लिया, राइट एंड रॉन्ग की नहीं बात हो रही है कि वो डिसीशन राइट था या रॉन्ग था. इम्पोर्टेंट बात सिर्फ ये है कि वो आपका डिसीशन, आपकी चॉइस था. आज हम जो डिसीशन लेंगे हो सकता है कल ही हमें वो रॉन्ग लगे, ये भी तो हो सकता है. आज हमने एक डिसीशन लिया, कुछ कर्म में लाए, एंड कल हमें लगे कि नहीं, शायद हमारा मूड ऑफ था उस टाइम, शायद हमारे पास इनकम्प्लीट इन्फॉर्मेशन थी उस समय, अवेयरनेस नहीं थी, तो कल मैंने जो डिसीशन लिया वो मेरे लिए राइट नहीं था. आई कुड हैव डन इट दिस वे, तो टुमारो आई डू इट अनदर वे. अगर कल मेरे सामने वो परिस्थिति आए मैं अलग तरह से करूंगी, बट इम्पोर्टेंट है उस दिन भी मैंने लिया था, आज भी मैं लूंगा, कल भी मैं लूंगा.
1: उस दिन की जो डिसीशन है अगर मैं किसी पे नहीं थोपूं और ब्लेम किसी और को नहीं करूं तो मैं कितना डिप्रेशन में आ जाऊं, गिल्ट में आ जाऊं कि यार मैंने इतनी बड़ी गलती की है.
2: और अगर
1: गलती हो गई,
2: गलती किसी और की वजह से,
1: अगर मैं बोलूं यार किसी और की वजह से हो गई है, कितना आसान हो जाता जीने.
2: कर्म किसका था, डिसीशन किसका था, मेरा था. इम्पोर्टेंट है कॉन्सिक्वेंस भी किसके सामने आएगा, मेरे सामने आएगा. जब कॉन्सिक्वेंस आएगा तो कॉन्सिक्वेंस को फेस मुझे करना है, ताकत चाहिए. अगर मैं ब्लेम गेम में गए तो जो ताकत चाहिए
1: जीना आसान हो जाता है ना उसमें।
2: ब्लेम गेम में जाने से डिसएम्पावरमेंट होती है, आत्मा की शक्ति कम होती है, वो शक्ति हमें चाहिए उस कॉन्सिक्वेंसेस को फेस करने के लिए, उनकी वजह से मेरी गलती नहीं ये। इवन जब हम भगवान को ब्लेम कर रहे थे कि ये जो मेरे सामने आया ये परमात्मा की वजह से, तो फिर वो कॉन्सिक्वेंस को फेस करने की जो पावर, जो यू नो मोटिवेशन जिससे मुझे उसको फेस करना था, आई कैन नॉट बिकॉज आई से उनकी वजह से आपने मुझे इस कॉलेज में डाला, अब नहीं मैं ठीक से पढ़ती फिर उसमें। वी सी सो मेनी चिल्ड्रेन जो IIT में आ जाएंगे, ब्रिलियंट है तभी एंट्रेंस एग्जाम क्लियर करके आए हैं, लेकिन आने के बाद परफॉर्मेंस डिक्लाइन हो जाती है, जानबूझ के नहीं करते हैं, पढ़ते हैं बहुत अच्छी तरह से करते हैं, लेकिन फिर भी परफॉर्मेंस डिक्लाइन होती है। इसके ऊपर स्टडी हुई है, वो स्टडी ये बताती है कि सब कॉन्शियस माइंड, नॉट कॉन्शियस माइंड, सब कॉन्शियस माइंड, क्योंकि वो उसका डिसीशन नहीं था, वो उस चीज को रिजेक्ट कर रहा है, और वो अपनी जो कैपेसिटी जो लगा सकते हैं उस चीज के अंदर, वो सबकॉन्शियस माइंड उसको लगाने के लिए अलाव ही नहीं कर रहा है, क्योंकि वो उस मन का डिसीशन नहीं था, क्योंकि किसी और ने उसको फोर्स किया है वो करने के लिए। कोई हमें कुछ भी कहे करने के लिए, अगर हमें करना है वो सी करना है, लेट्स से आपने मुझे कहा यहाँ जाना है एंड फाइनली मुझे जाना है, लेकिन मुझे सिर्फ अपनी प्रोग्रामिंग चेंज करनी होगी जाने के टाइम, ताकि मेरा मन मेरी बुद्धि अपनी पूरी एनर्जी लगा दे उसके अंदर, और प्रोग्रामिंग ये है मैं कर रही हूं इनके कहने पर, लेकिन इनका कहना मानना मुझे अच्छा लगता है, ये मेरी खुशी है, ये डिसीशन मेरा है, ये प्रोग्रामिंग करके अब उस रास्ते चलना है। दूसरी चीज जो हम करते हैं, ये कह रहे हैं करने के लिए, इनका कहना तो मानना पड़ेगा और कोई चॉइस नहीं है, फिर उस रास्ते चलते हैं। रास्ते तो वही चल रहे हैं ना, लेकिन प्रोग्रामिंग चेंज हो गई पूरी तरह से, जहां ये प्रोग्रामिंग हो जाएगी मेरा डिसीशन है, कंप्लीट एनर्जी चेंज हो जाएगी उस कर्म को करने, और मोस्ट इम्पोर्टेंट अब हम वो कर्म खुश होकर करेंगे, खुश करने के लिए नहीं करेंगे। हैप्पी रहना है ना, खुश रहना है, खुश तब रह सकेंगे जब हम जो कुछ कर रहे हैं वो हमारी चॉइस है। व्हेन आई से इट्स नॉट माय चॉइस, आई कैन नेवर बी हैप्पी इफ आई एम डूइंग एनी कर्म विद दिस इन माय बैकग्राउंड, आई डोंट हैव अ चॉइस, मेरे को करना पड़ता है, नेवर बी हैप्पी। खुशी डिप्लीट होने का बहुत बड़ा ये कारण है। तो उसके ऊपर मनन करके, चिंतन करके, अपने को काउंसिल करके, कन्विंस करके, आई एम चूजिंग टू डू दिस, फिर आप बहुत खुश होकर, खुश रहकर वो कर्म करेंगे, इवन इफ इट्स द मोस्ट डिफिकल्ट थिंग टू डू।
1: खुश होकर कर्म कैसे करना है, कैसे अपना मनन चिंतन करना है, और उसके लिए क्या मेडिटेशन करना है, और संस्कार को का परिवर्तन कैसे करना है, अगले एपिसोड में मैं आपसे सुनना चाहूंगा।
2: Sure.
1: तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू।
2: ओम शांति।
1: ओम शांति, नमस्कार।
3: द मोर वी आस्क अदर्स टू टेक decisions फॉर अस, आर ओन डिसीजन मेकिंग पावर विल रिड्यूस। When the decision is ours, we put in more than our capacity to implement the decision. We do not blame anyone. Instead, take personal responsibility for the consequences of the decision and face them with power and stability. If people ask us to do something, let us not do it for them. Always remember, they are important to us, their happiness matters to us, so we are doing it for the harmony in our relationship. Decision is for our happiness, not theirs. However challenging the situation may be, the decision we take is our choice. We can never say, I had no choice. The decision is ours, karma is ours, karmic account is ours, and the return of the karma is our responsibility.
4: Puneri Awaz 107.8 FM, World Renewal Spiritual Trust ka samudayik radio. Khush raho, khushiyan baato.

0: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: जब हम अपने आप को परमिशन देते हैं ना गुस्सा करने की, तो हम दिन में दो चार बार कर देते हैं। अब जितनी बार हम करेंगे वो संस्कार क्या होता जाएगा, वो संस्कार पक्का होता जाएगा। जैसे सपोज किसी को स्मोकिंग की आदत है, तो वो कहते हैं दिन में सिर्फ दो, तो जब तक वो

मैं हूँ गीतांजलि राव, फिल्म एंड टेलीविजन एक्ट्रेस। नमस्कार, आप सुन रहे हैं रेडियो पुनेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियाँ बांटो।

0: खुशी को निरंतर बनाए रखने के लिए सुनिए शिवानी बहन के प्रेरणादायी विचार।
1: तो वो लोग जो हमें छोटी छोटी बातों पे डांटते हैं, जो हमारी गलतियां निकालते हैं, जो हमारी निंदा करते रहते हैं, जो हमारी की हुई मेहनत का क्रेडिट ले लेते हैं, जो हमें धोखा दे देते हैं, जो हमारे पीठ पीछे गलत फैलाते हैं, कुछ भी लोग, वो छोटी ब्लैक बॉल हो सकती है, ग्रे हो सकती है या बहुत बड़ी ब्लैक बॉल हो सकती है, क्या हमारे पास पावर है कि हम ब्लैक का रिटर्न व्हाइट से भेजेंगे? वो हमारे साथ गलत करेंगे, हम उनको दुआएं भेजेंगे, इज दैट पॉसिबल? पहली बात, ये मेरे साथ गलत क्यों कर रहे हैं? क्योंकि मैंने कभी ना कभी वो बॉल भेजी थी, तो गलती इनकी या मेरी? मेरी। तो इनके ऊपर से जो मैंने ब्लेम लगाया हुआ था वो पहले खत्म, वन। सेकंड, अब मैं अगर व्हाइट भेजूंगी तो किसके फायदे के लिए? उनके ऊपर एहसान नहीं, अपने फायदे के लिए व्हाइट भेजने में भी सोचना पड़ेगा, सोचना पड़ेगा। उनके लिए नहीं भेज रहे, अपने फायदे के लिए भेज रहे हैं, क्योंकि अब जब हम व्हाइट एनर्जी भेजेंगे, मतलब दुआएं देंगे अपने फायदे के लिए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM, खुश रहो खुशियां बांटो।
2: नमस्कार दोस्तों, ज्ञान की धारा इस कार्यक्रम में मैं ज्योत्सना MP छत्तीसगढ़ से आपका स्वागत करती हूं और आशा करती हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, प्रसन्न होंगे। तो आज हम चर्चा करते हैं लौकिक ज्ञान विस्फोट के साथ साथ ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। तो आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान। ईश्वरीय ज्ञान क्या है, इसके बारे में आज हम जानेंगे। आज जो है संसार में अनेकानेक नए जो है नामों से नई विद्याओं के बारे में हम सुनते हैं, और पहले जो ज्ञान शाखाएं भी थी उनमें से भी हर एक का इतना विस्तार हो गया है कि अब वे स्वतंत्र रूप से तथा अलग अलग नाम से पढ़े जाने वाले ज्ञान अथवा विज्ञान हो गए हैं, और उनका जो है घेरा इतना बढ़ गया है कि उनका पूरी तरह अध्ययन करने के लिए मनुष्य को उन विषयों का विशेष बोध प्राप्त करना पड़ता है। अब हम अंतरिक्ष युग से गुजर रहे हैं, हाँ, तो देखते हैं कि आज हर एक विषय पर कई संस्थानों में एक ही समय पर शोध कार्य हो रहा है, कितने ही लोग नए नए विषयों पर अनुसंधान करने में लगे हुए हैं। हर विषय पर इतनी पुस्तकें लिखी हुई है कि उनकी सूचियां बनाने पर भी काम नहीं चलता। ज्ञान के विश्वकोश डायरेक्टरिया जो है लेखकों की नामावलियां इत्यादि तैयार की गई है, परंतु वे छपते छपते ही पुरानी हो जाती है, और इसी बीच नए आश्चर्यजनक आविष्कार अथवा दृष्टिकोण सामने आ जाते हैं। समाचार पत्र तथा पत्रिकाएं भी इतनी संख्या में छपते हैं कि जिसकी पहले कल्पना भी नहीं हो सकती थी। विश्व में शीघ्र ही एक के बाद दूसरे युग का पदार्पण हुआ, पहले आविष्कार युग, फिर मशीनी युग, फिर उसके बाद विज्ञान युग और तकनीकी युग, फिर अणु युग आया, और अब हम अंतरिक्ष युग से गुजर रहे हैं। तो इस प्रकार आज ज्ञान विज्ञान ऐसी स्थिति को पहुंच चुके हैं जिसे विश्व में आप देखो तो विज्ञ लोग जो है ज्ञान विज्ञान विस्फोट की स्थिति कहते हैं। औषधि विज्ञान को ही आप ले लीजिए, एक ही बीमारी की जांच करने के लिए खून, मल, थूक, फेफड़े इत्यादि की जांच करने वाले अलग अलग विशेषज्ञों के पास जाना पड़ता है। नित्य प्रति इतनी नई दवाइयां निकल जाती है कि एक सामान्य डॉक्टर के लिए क्या होता है उनके बारे में तुरंत जान पाना भी कठिन है। आंकड़े और ब्यौरे इतने दिए जाते हैं कि मनुष्य का दिमाग चक्कर खा जाता है। इतनी सूचनाएं कठिन हो जाती है कि इतनी सूचनाएं आती है कि इसकी इकट्ठी हो जाती है इतनी सूचनाएं कि आज कंप्यूटरों के बिना आज काम चलना कठिन हो गया है। छोटी कक्षा के बच्चों को लोहे के पेटी भरकर स्कूल में ले जानी पड़ती है और उसे वे जो है अपने छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से, कोमल हाथों से उठाते हैं। कभी एक हाथ में उठाते हैं, कभी दूसरे हाथ में। आप ही बताइए कि क्या अभी भी आणविक विस्फोट, जनसंख्या विस्फोट, पर्यावरण प्रदूषण विस्फोट और भ्रष्टाचार विस्फोट की तरह ज्ञान विज्ञान के विस्फोट की स्थिति नहीं आ पहुंची है क्या? इस पे हम विचार करते हैं और अपने आगे की चर्चा जारी रखते हुए लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे अगर मिलती हूँ, और तब तक के लिए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। जैसा कि हम देखते हैं कि अभी स्मरण शक्ति की भी तो कोई सीमा होती है ना, तो यदि इस गति से अनुसंधान होते रहे तो विज्ञान जो है विज्ञान को इतना मतलब इतना हो जाएगा कि मनुष्य बचपन से लेकर और कुछ ना करके 30-40 वर्षों तक स्कूल कॉलेज में विद्या ही पढ़ता रहे तो उसका पाठ्यक्रम शायद ही पूरा होगा और शायद ही वह वैज्ञानिक कहलाने के का जो है वो अधिकारी हो सकेगा। नित्य नए गणित के तरीकों को कौन सीख सकेगा? इतिहास का जो ज्ञान है इतना अधिक हो जाएगा कि या तो पुराना इतिहास पढ़ाना बंद करना पड़ेगा और या केवल इतिहास ही का एकमात्र विषय पढ़ाया जा सकेगा। आखिर मनुष्य को स्मरण शक्ति जो है, मनुष्य की जो स्मरण शक्ति की भी तो कोई सीमा है। अतः जो लोग कहते हैं कि कलयुग अभी दूध मुहा बच्चा है और कि अभी यह 4,27,000 वर्ष और चलेगा, उनसे कोई पूछे कि क्या मनुष्य ईंटों की बजाय किताबों के घर फर्श और छत बनाकर रहेगा और क्या इससे पहले ही वह बावरा नहीं हो जाएगा? तो आप सोचो कि आज मनुष्य की जो स्थिति है वो क्या है। एक होता है प्रवेशार्थी विस्फोट, देखने के योग्य। एक बात यह भी है कि आप देखो तो इसका योग्य जो एक इसकी बात जो है कि ज्ञान जो है वो ज्ञान विज्ञान में वृद्धि होने के साथ साथ विद्यार्थियों की जो है संख्या भी तीव्र गति से बढ़ी है। एक दो पीढ़ी पहले इतनी संख्या में लोग पढ़े लिखे नहीं होते थे। कैलिफोर्निया विश्वविद्यालय के डॉक्टर कार कहते हैं कि ज्ञान विज्ञान विस्फोट के साथ साथ आज जो है प्रवेशार्थी विस्फोट की भी स्थिति आ पहुंची है। द्वितीय महायुद्ध के पहले कोई बिरला ही व्यक्ति स्नातक और स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करता था। बहुत से लोग स्कूल के बाद ही शिक्षा समाप्त कर देते थे, परंतु अब तो ऐसे लोग की संख्या यहाँ पर ऐसे लोगों की संख्या बहुत ही बढ़ गई है जो विज्ञान तकनीक औषधि तथा अन्य प्रकार की स्नातकोत्तर शिक्षा प्राप्त करना चाहते हैं। अब सोचने की बात है कि हर वर्ष तीव्र गति से बढ़ती हुई प्रवेशार्थी संख्या को प्रवेश कैसे मिल सकेगा? इतने अधिक तकनीकी या औषधि विज्ञान संबंधी कॉलेज इत्यादि कैसे खोले जा सकेंगे और पढ़ने के बाद उन लोगों को रोजगार कैसे मिल सकेगा? इसका भी विस्फोट होगा। इसका जो है इसका और कोई चारा नहीं है, क्योंकि हम हर वर्ष देखते हैं कि प्रवेशार्थियों की जो लाइन बढ़ती ही जाती है और कितनी ही जो है कितनों को ही प्रवेश तथा रोजगार न मिलने से युवा असंतुष्ट, तोड़फोड़, अनुशासनहीनता, मादक पदार्थों का प्रयोग तथा अपराध इत्यादि बढ़ते ही जाते हैं। तो इसी के साथ हम लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

तो स्वागत है आपका फिर से इस कार्यक्रम में। और हम बात कर रहे थे ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय, तो हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। इस प्रकार के ज्ञान विज्ञान के जो परिणाम है उसे हम क्या करते हैं। पहले कहा जाता था कि जैसे जैसे मनुष्य का ज्ञान बढ़ेगा वैसे वैसे समाज की जो समस्याएं हैं उसकी भी हल होगी, और मनुष्य को जो है मनुष्य का दूसरों से व्यवहार सुधरेगा तथा उसमें नम्रता, संतोष और सद्गुण आएंगे, लड़ाई झगड़ों तथा बुराइयों का अंत होगा। इसके ज्ञान को प्रकाश, सद्गुण, नैतिक, प्राकृतिक, मानसिक तथा सृजनात्मक शक्ति देने वाला माना जाता था, परंतु आज हम जो देख रहे हैं वह इसके विपरीत हो रहे हैं। आज मनुष्य में इच्छाएं, असंतोष, अशांति, अधैर्य, असहनशीलता और अनुशासनहीनता जो है बढ़ती जाती है, उदंडता भी बढ़ती जा रही है और लड़ाई भी, और उदंडता के साथ लड़ाई ये सब भी बढ़े हैं ही है। बल्कि विज्ञान तथा तकनीक ने तो लड़ाई के ऐसे नए अस्त्रों शस्त्रों का आविष्कार किया है जिससे वह स्वयं के अस्तित्व का भी मूल्यांकन कर देगा। आज सभी लोग कहने लगे हैं कि इस ज्ञान से संसार में उथल पुथल बढ़ी ही है, जीवन में कृत्रिमता जो है आई है और मनुष्य और अधिक कुटिल तथा दम्भी बना है, और प्रकृति के कार्यों में हस्तक्षेप करके मनुष्य ने सारे संतुलन को बिगाड़ दिया है। उसने वायु, जल, खाने पीने की चीजें और जो भी है सभी को दूषित और जहरीला बना दिया है, और ये नई समस्याओं तथा मानसिक व्याधियों को जन्म दिया है। एक तरफ हम देखते हैं दूसरों के लिए जो गड्ढा खोदने वाला है वो स्वयं खाई में गिरता है। इस ज्ञान द्वारा यद्यपि मनुष्य ने एक कंप्यूटर की तरह कुछ तथ्य बुद्धि में धारण कर लिए हैं या विश्वकोश में ये जो एक दो खंड हैं, एक दो खंडों में जितनी सामग्री खोपड़ी में फूसती है, तथापि उसके लिए जीवन में वह भद्रता, स्नेह, शील, शांति की स्थापना नहीं हुई है, न ही उसने सही मूल्य तथा दृष्टिकोण अपनाए हैं। स्वाभाविक है कि ऐसा ज्ञान और विज्ञान स्वयं अपने लिए तथा जो है उपजाने वाले के लिए अभिशाप भी सिद्ध होगा। जिस ज्ञान से मनुष्य की आवेगों का जो संतुलन तथा शुद्धिकरण नहीं हुआ और जिससे मनुष्य की उलझने बढ़ी है और उसमें निराशा, अतृप्ति, वासना तथा भोग विपासा में वृद्धि हुई है, वह ज्ञान उसे अवश्य ले डूबेगा। आज जिस ज्ञान के आधार पर मनुष्य अपनी पंडिताई तथा तार्किकता का अभिमान करके अपने जीवन से विश्वास, ईश्वर निष्ठा, नैतिकता इत्यादि को खो बैठा है, वह ज्ञान उसे एक बारूद की ढेरों पर ले जाकर बिठाएगा, जहां से उसका अस्तित्व सुरक्षित रहना संभव नहीं होगा। सच जो दूसरों के लिए गड्ढा खोदता है वह स्वयं खाई में गिरता है, जो दूसरों के लिए एटम बम बनाता है वह स्वयं भी नष्ट हो जाता है। जिस ज्ञान ने भगवान से मुख मोड़ना सिखाकर पति पत्नी को तलाक देना, बच्चों को उनके हाल पर छोड़ देना सिखाया, जिस विज्ञान ने ईश्वरीय प्रकाश के प्रति आंखें मूंदकर एटम के प्रकाश
का साक्षात्कार कराया, जिस सभ्यता ने पारंपरिक आनंद को हम दिला चले, देकर अफीम शराब तंबाकू तथा सेक्स की ओर मनुष्य का मुख मोड़ दिया, वह ज्ञान विज्ञान रूपी बम निश्चय ही फट पड़ेगा और अपने कर्ता के कर्मों का महाविषम फल भी उसे देगा। तो इसी के साथ हम लेते हैं छोटा सा ब्रेक, और ब्रेक के बाद मैं फिर से आपसे आकर मिलती हूँ, और तब तक के लिए आइए सुनते हैं इस गीत को।

0: नमस्कार, तो मैं ज्योत्सना फिर से आपका स्वागत करती हूँ इस कार्यक्रम में और हम अपने आगे की चर्चा जारी रखते हैं। आज का हमारा विषय है ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय। तो आज हम देखते हैं एक ईश्वरीय ज्ञान का जो है अनोखी जो संधि का समय है ये। दूसरी ओर हमें यह भी समझना चाहिए कि आज जब भौतिक ज्ञान तथा विज्ञान अपनी अंतिम सीमा तक जा पहुंचा है, तब आध्यात्मिक ज्ञान, नैतिक शिक्षा तथा योग विज्ञान का सूर्य भी पूर्ण प्रकाशमान हो चुका है। असत्य की तुलना में ही सत्य और अधर्म की तुलना में ही धर्म को समझा जा सकता है। अतः आज जबकि भौतिक ज्ञान के द्वारा मनुष्य देह अभिमान तथा नैतिक रात्रि में प्रवेश कर चुका है, जो उसके बाद ईश्वरीय ज्ञान का अरुणोदय होना ही स्वाभाविक है, क्योंकि जो है घटा टोप रात्रि के बाद ही दिन की प्रकाश रश्मियां उजाले और जागृति का सवेरा लेकर प्रवेश शुरू करती है। यह बात हम अपने अनुभव के आधार पर संसार को बता रहे हैं कि एक ओर कलयुग के अंत के लिए विज्ञान अपने जो है वो विध्वंसक जो है आणविक अस्त्रों शस्त्रों के लिए बोलिए वो क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, तो दूसरी ओर ईश्वरीय ज्ञान आत्मिक परामात्मिक और उजाला लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के माध्यम से जो है पदार्पण कर चुका है। दोनों की यह अनोखी संधि का समय है। एक का जो है पटाक्षेप और दूसरे के पट के अनावरण की एक जो है यह शुभ बेला है। हम जैसा कि हम देखते हैं अभी समाज की जो स्थिति है, तो आप थोड़ा सोचिए कि यदि हम इस बात पर अगर विचार ना करें तो हमारा क्या हाल होगा। हम तो इस ज्ञान को जानना और समझना बहुत जरूरी है। हम ईश्वरीय ज्ञान को लेना हमारे जीवन में एक उजाले की तरह है, तो इसे हम अवश्य धारण करें अपने जीवन में और अपने जीवन का जो है भाग्यों को जो है यहाँ से भाग्य का उदय होगा। तो आज का कार्यक्रम हम यही समाप्त करते हैं और मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। तब तक के लिए गाते रहिए, हंसते रहिए और कुछ गुनगुनाते भी रहिए। नमस्कार, ओम शांति।
1: प्यारे बाबा, जब से पाया अनुपम ज्ञान तुम्हारा, नैनों में है नूर नया,

0: स्वयं को सशक्त बनाने के लिए सुनिए शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
1: नो स्मोकिंग जोन जैसे बन गए हर जगह, वैसे नो एंगर जोन। इधर गुस्सा नहीं कर सकते, आया है तो बाहर जाओ, कर क्या। यहाँ नहीं कर सकते, यहाँ नहीं कर सकते। क्यों? स्मोकिंग के लिए क्यों अलग जगह बनाई? क्यों नहीं कर सकते सबके बीच? क्योंकि कर आप रहे हैं, नुकसान हमारा हो रहा है। इसी तरह गुस्सा कर आप रहे हैं सारे वातावरण में और सब लोगों का नुकसान हो रहा है, तो आप जाइए वहां, वो कमरा है, उधर गुस्सा करिए, वापस आइए।
0: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: रेडिओ पुणेरी आवाज 107.8 FM, आनंदी रहा, आनंद लुटा।
1: चुलबुली चीनी।
2: चीनी अपनी 3 मंजिला बिल्डिंग की छत पर अपने दोस्तों के साथ खेल रही थी।
3: अरे तेज भागो, नहीं तो हम हार जाएंगे।
4: हुर्रे, हम जीत गए।
2: अचानक
5: इस बिल्डिंग में कोई है क्या?
3: लगता है कोई हमें आवाज लगा रहा है, चलो देखे कौन है।
2: चीनी ने छत से ही आदमी से पूछा,
3: तुम्हें क्या चाहिए?
5: बच्ची जरा नीचे आओ, फिर मैं तुम्हें अपनी बात बताऊंगा।
3: ठीक है, तुम वहीं रुको, मैं आ रही हूँ।
2: चीनी तेजी से सीढ़ियों से उतरकर नीचे आ गई।
3: हाँ, अब बताओ क्या बात है।
5: मैं गरीब आदमी हूँ, मेरे पास खाने के लिए कुछ नहीं है। मुझे खाने के लिए या कुछ रुपए दे दो बेटी।
3: ये आदमी हट्टा कट्टा है और अपाहिज भी नहीं है, फिर यह भी क्यों मांग रहा है?
2: चीनी सीढ़ियों पर आ गई और बोली,
3: मेरे पीछे आओ।
5: लगता है ये लड़की मुझे खाने के लिए अच्छी चीज देने वाली है।
2: चीनी के साथ भिखारी भी छत पर पहुंच गया।
3: माफ करना, पर तुम्हें देने के लिए ना तो मेरे पास पैसे हैं और ना ही खाना।
5: क्या?
3: मैं तुम्हें कुछ भी नहीं दे सकती, क्योंकि मम्मी कहती है कि भीख मांगना गंदी बात है। तुम तो हट्टे कट्टे हो और अपाहिज भी नहीं हो, मेहनत करके क्यों नहीं कमाते हो? अब तुम जाओ।
5: ये तो तुम नीचे भी कह सकती थी, फिर मुझे ऊपर क्यों लाई?
3: अगर तुम मुझे खाना मांगने के लिए नीचे नहीं बुलाते, तो मैं भी मना करने के लिए तुम्हें ऊपर नहीं बुलाती।
6: जिंदगी आसान बनाने के लिए आइए सुनते हैं शिवानी बहन के श्रेष्ठ विचार।
7: छोटी छोटी बातों में अपनी एनर्जी को डिप्लीट नहीं करना, क्योंकि हम हीलर्स हैं, हम एंजल हैं, और हमारी एनर्जी का असर हमारे आसपास के लोगों पर एंड ऑफ कोर्स फिर हमारे पास जो हीलिंग के आ रहे हैं उनके ऊपर पड़ने वाला है। आई कैन नॉट अफोर्ड टू वेस्ट माई एनर्जी लाइक दिस। माई एनर्जी इज फॉर अ पर्पज ऑफ हीलिंग थाउजेंड्स ऑफ पीपल। एंड जब हम उस इंटेंशन से अपनी एनर्जी को बचाएंगे, सबसे पहले कौन बच जाएगा? हम खुद। हम काम करेंगे, काम करवाएंगे, डिसिप्लिन करेंगे, डिसिप्लिनरी एक्शन भी लेंगे, लेकिन हिले बिना। इट्स ओनली अ लाइफ स्टाइल चेंज, दीज आर लाइफ स्टाइल चेंजेस। एनर्जी लाइफ है, ये निकल जाए तो लाइफ खत्म हो जाती है।
6: आप सुन रहे हैं पुणेरी आवाज 107.8 FM। खुश रहो, खुशियां बांटो।

0: तेरी का इशारा समझू अब तेरा दिल का जलाना होगा।
1: तुम बड़े वो हो, मुझे जाने दो।
0: जा सकोगी?
1: मुझे जाना होगा।
0: जाओ।
1: छोड़ो
0: नहीं।
1: छोड़ो ना
0: आज की रात, तो दिल तोड़ो ना।

हंस तेरा रंग है नशीला अंग अंग है नशीला रंग है नशीला अंग अंग है नशीला।

0: ज्ञानी है, अंतर्यामी है, बताइए ना महाराज।
1: क्या देवी?
0: कौन सी दुविधा आपके चरणों में इनको ले आई? किस चिंता में मगन है दोनों, क्यों आंखें पथराई? ये मरे हुए हैं या जीवित?
1: बस मरने ही वाले हैं देवी। हा? इनका अंत निकट है।
0: तथा

मर जाओगे प्यार कर लो। कल का सपना किसने देखा, इन राहों से आज गुजर लो। अपने दिल का दामन भर लो, मर जाओगे प्यार कर लो।

मुलार में मेले में अकेले पीरी बाजार सर में तो सा बनाया न बहाना बहाना बहाना।

पसीना, प्रेम का रोग पुराना पुराना पुराना, झट जमला पगला दीवाना हो रखा, किसी बात न जाना के ओ

जब किरण मुस्कुराई चांदनी रात आई, चांद से तेरे घर का